0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहे के दरबार में 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का चढ़ावा। 1 किलो की 24 कैरेट सोने की ईट और 18 कैरेट सोने की 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में आज से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एनसीआर में प्रदूषण 35% घटाने का लक्ष्य, नए नियमों से सख्ती से पालन के निर्देश। श्रीनगर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत मेगा आई सर्जिकल कैंप का समापन समारोह। सेना के डॉक्टर्स ने श्रीनगर और तंगधार में की 364 आई सर्जरी। सैलानियों के लिए शानदार खबर लेकर आया अक्टूबर का महीना। राजस्थान में आज से जंगल सफारी का नया सीजन शुरू, बढ़ेगी पर्यटकों की चहल पहल। गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, पहली बार 400 प्लस की रन चेस के बाद वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक। एशियन गेम्स में आज भारत क्रिकेट और हॉकी में सेमीफाइनल खेलेगा। मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा, तो वहीं मेंस हॉकी में होगी पाकिस्तान से भिड़ंत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

श्राद्ध पक्ष का पावन पर्व है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से है। मेरे पागलों, आप श्राद्ध करके तो केवल 3 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते, लेकिन यदि श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार किया जा सकता है। और श्राद्ध में भी श्रद्धा ना हो तो 3 पीढ़ी भी संभव नहीं। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध की उत्पत्ति ही श्रद्धा से हुई। और बिना श्रद्धा के परमात्मा की प्राप्ति बहुत असंभव है, मुश्किल है। सतलुज नदी के तट पर भारत का जिसे मैनचेस्टर कहा जाता, ये लुधियाना अपने आप में अद्भुत नगरी है, लेकिन ये अब तक केवल अद्भुत नगरी थी, अब ये अभूतपूर्व नगरी हो गई जहां श्राद्ध पक्ष में हनुमान जी की कथा का आयोजन किया जा रहा। अद्भुत से अभूतपूर्व की यात्रा इस नगरी ने की, जहां पहले से ही वैष्णो देवी दरबार, दुर्गा माता मंदिर, सिंगला का सिबाला, गुरुओं की पुण्यमयी भूमि, नानक सर गुरुद्वारा, और आज शहीद ए आजम, देश का गौरव शहीद भगत सिंह का पुण्य स्मरण जन्मोत्सव है, जिसको पूरा भारत गौरवता के साथ मना रहा। ये वीर हमको शिक्षा देकर जाते, मेरे पागलों, भारत एक ऐसा देश है जहां के युवाओं में वीर है तो देवताओं में महावीर है। युवाओं के अंदर वीर है, वीरता है, तेज है, उत्साह है, इसलिए इनको वीर कहा जाता। क्या कहा जाता? वीर। पर हनुमान जी का एक नाम महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी। लेकिन हम वीरों के आराध्य महावीर हैं, और महावीर के जो आराध्य हैं उनका नाम रघुवीर है। हमारे आराध्य, हम सबके आराध्य, हम सब वीर हैं, हनुमान जी के सेवक, तो हम सबके आराध्य यदि महावीर हैं तो महावीर के आराध्य रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वंजनानंदन श्री हनुमान जी किसके आराध्य हैं? बोले कौम लांगम सीता समारोह प्रभु श्री राम के। उनको क्या कहा जाता? बोले रघुवीर कहा जाता। और रामायण की दृष्टि देखें तो रामायण में 3 वीर का वर्णन है। लक्ष्मण जी वीर है, जो कभी युद्ध से पीछे ना हटे उसे वीर कहते। तो लक्ष्मण जी वीर हैं, और जो कभी युद्ध हारे ना उन हनुमान जी को महावीर कहा गया, और जो

लेकिन ये रामचरितमानस को समझना कोई कठिन भी नहीं, तुलसीदास जी की वाणी से समझना तो बहुत सरल है, क्योंकि पका पकाया फल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में दिया। देखो, एक होता फल, फल को खाया जाता तो धोना पड़ता, धो करके उसमें याद रखना पड़ता, यदि बीज वाला फल है तो कहीं बीज ना खा जाए, जिस फल का ऊपर का छिलका नहीं खाना, वो छील कर खाएं, छोड़ कर खाएं, बड़ा सावधानी रखनी पड़ती। पर कई लोग ऐसे होते जो फल को पसंद नहीं करते, जूस पीते। हमें लगता वाल्मीकि रामायण यदि फल है तो उस वाल्मीकि रामायण का जो निचोड़ जूस है वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। एक गांव में क्या, लुधियाना में हमारा एक चेला रहता था चंगी लाल। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में बहुत सीधा साधा लुधियाना के पास व्यक्ति रहता था, बड़ा भक्त था, सीधा साधा। राजाओं का जमाना, पुराना समय, तो राजा जी के जो गुरु थे वो गांव आए। गुरु जी और राजा के गुरु जी, तो पूरे राज्य में हाहाकार हल्ला मच गया, शोर मच गया, गुरु जी आए। तो पूरा गांव गया मिलने, तो पूरे गांव ने मिले, राजा साहब के गुरु जी हैं, गांव के गांव मिलने आए। तो एक गरीब आदमी जो था, उसका नाम चंगीलाल था, उसने सोचा काश इन गुरुजी से हमारी दीक्षा हो जाएगी तो थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी, भक्ति बढ़ेगी और राजा के यहाँ पहुंच हो जाएगी, गुरुजी पहुंचे भाई हैं, राजा के गुरु हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। तो भीड़ बहुत थी गुरुजी के पास। रात को गया, हे गुरु महाराज हमें दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले अब रात हो गई है, फिर दोबारा आएंगे तब देंगे, कल हमें जाना है। और इतना कह के गुरुजी सो गए। अब इसको तो बड़ी खुजली, क्या पता दोबारा आए ना आए, हम दोबारा तक रहे ना रहे, पहले ही मर गए, बड़ी आफत हो जाएगी, जिंदा ना रहेंगे तो बिना दीक्षा लिए ही मर जाएंगे, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा, बड़ी झंझट। तो ये रात भर जागता रहा, सोया ही नहीं, सोचा सुबह से गुरुजी उठेंगे, नहाने जाएंगे, उसी वक्त दीक्षा लेंगे। तो सुबह सुबह की बात, गुरुजी उठे, अब आज जाना था गुरुजी को, तो लोटा लेकर समझ गए सुबह सुबह। अब पहले पहले के जमाने में तो लोग खेतों में जाते थे, अब तो अटैच हो गई है, अटैच हो गए रूम, अटैच हो गए, अच्छा गजब का जमाना आया। पहले के जमाने में आदमी पेट साफ करने बाहर जाता था, सोना चांदी घर में रखता था, आज के जमाने में सोना चांदी बाहर रखता है, पेट साफ घर में करता है। बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा उल्टा। पहले के जमाने में लोग पेट साफ करते थे बाहर, सुबह सुबह लोटा लेकर बाहर जाते थे और ये 2-3 किलोमीटर साफ करने, पेट साफ करने सुबह सुबह से, घर में सोना चांदी गाड़ के रखते थे। अब आजकल सोना चांदी रखते हैं बैंक में और पेट की सफाई घर में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हम तो कभी कभी सोचने लगते कि कभी मान लो भूकंप आया और ऊपर से मिट्टी लगी, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो खुदाई करेगी, तो पहले तो वो पैर चलाएगी, धम्म धम्म आवाज आ रही, लगता है खूब सोना है यहां गड़ा हुआ धन है, और जब खुदाई करेगी राम राम तब पता लगेगा। तो पुराना जमाना, महात्मा जी सुबह सुबह से लोटा लेकर के खेत में गए, तो वो गांव का आदमी पीछे पड़ गया, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। अरे बोले भाई, सुबह सुबह दीक्षा नहीं दी जाती है, अभी स्नान ध्यान हमने किया नहीं, जा रहे हैं, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर हमें जाना है, अगली बार देंगे। अब वो तो पीछे पड़ गया, गुरुजी सोचेंगे पीछा छोड़े तो हम पेट साफ करें।

0: अब वो पीछे ही पड़ गया। गुरुजी आंगे आंगे, चेला पीछे पीछे, और गुरुजी का दिमाग खराब। हर बार समझा, अरे भाई लौटो, लौट जाओ। बोला नहीं, हम तो दीक्षा लेके ही रहेंगे। गुरुजी बोले यहां कहां भाई, हम यहां जा रहे हैं, तुम दीक्षा मांग रहे, चुप रहो, चलो भगो, हम पेट साफ करने आए था। बोला नहीं, हम तो दीक्षा ही लेके रहेंगे, क्योंकि वो आदमी लुधियाना का था। बोला हम तो दीक्षा ही लेंगे। अब नहीं माना तो गुरुजी का दिमाग खराब। कम से कम 3 किलोमीटर दूर गुरुजी चले गए। अब वो पीछा छोड़े ना, अब भागे तो कुछ गुरुजी करें, पर वो भागे ही ना। अब गुरुजी को चढ़ी गुस्सा, उनने लोटा लिया। वो बोला गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी बोले मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, लोटा फेंकू मारूंगा तो खपाड़ यानी सिर फूट जाएगा। अच्छा चेला था सीधा साधा, उसे पता ही नहीं था दीक्षा कैसे होती। उसकी समझ में ये आया यही मंत्र है, हाँ यही गुरु मंत्र है। तो उसने कहा जय हो गुरुजी, वो चला गया। तो गुरुजी को लगा डर गया है। अब वो घर आया तो पत्नी ने कहा कि रात भर कहां रहे। अरे बोले गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से मंत्र दिया है। अब मंत्र क्या दिया, अब ली उसने माला, मार हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, मार हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, मारी हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, मारी हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, ये मंत्र जपे। पत्नी बोली ये कौन सा मंत्र है। बोले चुप रहे, किसी को बताना मत, गुरुजी का मंत्र है। और गुरुजी ने कहा था गुरु मंत्र बताया नहीं जाता। अब बताओ, यही मंत्र जपने लगा, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई। अच्छा गुरुजी तो चले गए, अब ये मंत्र जप करता रहा रोज 10-20 माला, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। जो राजा था वहां का, राजा के लड़का को भूत लग गए। तो बड़े बड़े जानकार सिद्ध तांत्रिक मांत्रिक झाड़ फूंक वाले गए, पर वो भूत भगे ही ना। तो राजा ने मुनादी करवाई कि जो हमारे लड़का के भूत भगा देगा उसे मन चाहा इनाम देंगे। इसने किसी पंडित जी से सुन रखा था कि गुरु मंत्र में वो ताकत होती है कि भूत तो भूत, जम के दूत भी भाग जाते। तो इसने सोचा हमारे पास तो मंत्र है, अभी भगाते हैं। तो ये गया राजा से, बोला हम भूत भगा देंगे तुम्हारे लड़का के। तो बड़े बड़े जानकार पंडित बोले क्या भगाओगे, बड़े बड़े जानकार हार गए, तुम गांव के गवार, तुम क्या भगाओगे, ध्यान से सुनना। ये बोला एक बार ट्राई कर लो। बोले ठीक है। तो लड़का लेटा था राजा का, ये गया कान में और कान पकड़ करके वही मंत्र बोला जो गुरुजी ने दिया था। कान में बोला सुन, मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। जो भीतर भूत था उसको लगा कि ये हमें पहचान गया, सो वो भाग गया, भाग गया। सो लड़का ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो अब राजा ही चरणों में गिरा, गुरुजी की जय हो। अब तो इसकी चांदी कट गई, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, बढ़िया। अब तो लंबी लंबी लेन लगने लगी, जैसे हमारे पास भीड़ लगती है भूत भगवाने की, ऐसे ही उसके पास भीड़ लगने लगी, बढ़िया। भूत भगाने लगा, किसी को ताबीज, किसी को भभूती, किसी को गंडा। अब ये खबर, राजा की खबर राजा के गुरुजी के पास गई कि एक ऐसा संत है जो राजा के लड़का को कोई ठीक नहीं कर पाया और कान में एक मंत्र से ठीक कर दिया। तो गुरुजी ने सोचा हम भी दर्शन करें। तो वो राजा के गुरुजी दर्शन करने आए, जो जिसने इन, जो इसने भी उनको ही गुरु मान रखा था। गुरुजी लाइन में लगे, लंबी लाइन लगी, इसने देखा अरे गुरुजी लाइन में, आने दो सीधा आने दो, गुरुजी हैं गुरुजी, और तुरंत चरणों में। अब गुरुजी हैरान कि हमने इसे चेला कब बनाया। तो भीड़ में तो गुरुजी कुछ ना बोले, रात को बोले हम आएंगे, और रात को गुरुजी आए बोले बेटा तुम किसके चेला हो, बोले आप ही के, बोले दीक्षा कब दी, बोले गुरुजी याद करो पिछली बार जब आप लोटा लेके जा रहे थे। अब गुरुजी खूब दिमाग लगाए कि हमने दीक्षा दी कब है, रजिस्टर में चेक करवाया, रजिस्टर में नाम ही नहीं, क्योंकि सब चेलों के नाम लिख लेते और रजिस्टर में नाम नहीं। अब गुरुजी का बड़ा दिमाग है, बोले बेटा हमने दीक्षा कहां दी थी, बोले गुरुजी खेत में। अब गुरुजी का और दिमाग खराब कि हमने खेत में दीक्षा कब दी, तो गुरुजी बोले जरा कन्फर्म नहीं हो रहा हमारे कान में, तुम हमारा मंत्र बताओ हमने कौन सा मंत्र दिया। सब गुरुजी के अपने अपने मंत्र होते हैं, किसी का ओम नमः शिवाय, किसी का ओम सीतारामाय नमः, ओम रामाय नमः, अथवा द्वादश अक्षर मंत्र होता है, सबके अपने अपने मंत्र होते हैं। तो गुरुजी बोले कन्फर्म नहीं हो रहा जरा मंत्र बताओ कौन सा मंत्र दिया। बोले गुरुजी कान करो। गुरुजी ने जैसे ही कान किया सोई बोला मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। अब गुरुजी का दिमाग खराब, बोले ये मंत्र तो किसी वेद ही में नहीं है। तो चेला बोला चाहे वेद में हो या ना हो, हमने तो यही मंत्र जप के राजा के भूत भगा दिए, यही मंत्र जप कर हमने राजा के भूत भगा दिए। गुरुजी बोले बेटा ये मंत्र हमने दिया कब। बोले गुरुजी याद करो जब आपका एकदम पेट भयंकर लगी थी, आपको फ्रेश होने की खुजली चढ़ी थी, तब हमने मांगा था गुरुजी मंत्र दे दो, तब आपने कहा था मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। गुरुजी समझ गए, बोले अब हमें पूरी तुम वही हो जो पीछे पड़ गए थे दीक्षा के। बोले हाँ हाँ हाँ वही है भाई। तब गुरुजी हाथ जोड़ के बोले भैया हम इतने मंत्र जपत जपत मर गए, आज तक भला नहीं हुआ, आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, दूसरे का तो छोड़ो, पर धन्य है तू, एक बहुत अच्छी तूने शिक्षा दे दी कि यदि पूरे भरोसे के साथ गुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द यदि जोर के भरोसे के साथ कह दिया जाए तो वो भी मंत्र नहीं महामंत्र बन जाता है। इसलिए शास्त्र कहते विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फलीभूत होता है। लुधियाना के पागलो यदि तुम्हारा भरोसा बजरंग बली पर होगा तो बजरंग बली को तुम पर कृपा करनी ही पड़ेगी। बोलो सीतारा।
1: किस तरह के आहार का आपके विचार पर प्रभाव पड़ता है? सात्विक आहार ग्रहण करने के लाभ क्या हैं? और अपने मन को बदलने के लिए आहार में किस तरह का बदलाव किया जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
6: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: सर्दियों की आहट के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 5 साल में सितंबर में सबसे साफ रही हवा की गुणवत्ता, 102 दर्ज किया गया औसत AQI। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद शुभारंभ। गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहे के दरबार में 6,11,00,000 रुपए से चढ़ाया गया ज्यादा का चढ़ावा। 1 किलो की 24 कैरेट सोने की ईट और 18 कैरेट सोने की 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी शामिल। गुवाहाटी टी वनडे में भारत की शानदार जीत, पहली बार 400 प्लस की रन चेस के बाद वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। कैप्टन शुभमन गिल ने जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक। एशियन गेम्स में आज भारत क्रिकेट और हॉकी में सेमीफाइनल खेलेगा। मेंस क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा, हॉकी में होगी पाकिस्तान से भिड़ंत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेस, 2 विकेट खोकर 406 रन का टारगेट का आसानी से किया पीछा। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। गिल ने बनाए 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाए रिकॉर्ड्स की झड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कैप्टन शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। रोहित शर्मा ने भी खेली शतकीय पारी, 75 गेंदों में बनाए शानदार 101 रन। विराट कोहली ने खेली 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी, विराट ने अपनी पारी में जड़े 3 चौके और 1 छक्का। इससे पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 405 रन, वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों ने लगाए शतक। वेस्टइंडीज के लिए कैम्बिल, शाय होप और अमीर जंगू ने लगाया शतक, वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा और गुन्नूर को मिले 2-2 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज रहे कुलदीप यादव। गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहा के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, 12 दिनों में चढ़ाया गया कुल 6,11,96,500 रुपए का दान। चरण स्पर्श और मुखदर्शन की लाइन में रखी दान पेटियों में 2,42,40,000 रुपए जमा हुए, जबकि विसर्जन के दौरान दान पेटी के जरिए 16,14,500 रुपए जमा हुए। पंडाल में दान की गई चीजों में धनराशि के साथ सोने की ईंट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी शामिल। इस साल एक अज्ञात भक्त ने लालबाग चौराहा को 1 किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईंट भेंट की, इस सोने की ईंट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है। वहीं बप्पा को 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भेंट की गई, जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए है। श्रीनगर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत 11वें मेगा आई सर्जिकल कैंप के समापन समारोह हुआ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें शामिल हुए। ऑपरेशन दृष्टि में शामिल डॉक्टर्स और जवानों को सम्मानित किया गया, इस मौके पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एलजी ने सेना के समर्पण और सेवाभाव के लिए नेत्र चिकित्सा दल की सराहना की। ऑपरेशन दृष्टि के तहत सेना के डॉक्टर्स ने श्रीनगर और तंगधार में 364 आई सर्जरी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरहदी जिले बाड़मेर और जोधपुर का दौरा किया, कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा, सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए राज्य के विकास के लिए किया प्रोत्साहित। कोलकाता में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। कोलकाता के कुमारटुली इलाके में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हैं। छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं बना रहे हैं कारीगर, खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर रंग रोगन का काम तेज। राम की पैड़ी में साफ सफाई का काम जारी, इस बार 30,00,000 दीयों से जगमग होगी धर्मनगरी। अयोध्या में एनएसजी की मॉक ड्रिल, कनक भवन पर सुरक्षा अभ्यास किया, आपात स्थिति में रेस्क्यू और त्वरित कार्रवाई की तैयारी परखी गई। एनएसजी कमांडो ने संभावित खतरे की स्थिति में रेस्क्यू और जवाबी कार्रवाई का अभ्यास किया, स्थानीय पुलिस बल भी रहा साथ। एनएसजी कमांडो ने कनक भवन के हर हिस्से को परखा, चप्पे चप्पे पर रही कमांडो की नजर। कनक भवन की छत पर बनाई गई सुरक्षा की रणनीति, राम मंदिर और आसपास के इलाकों का बना वीडियो। एनएसजी कमांडो के जवानों ने कनक भवन में रहने वाले लोगों से भी की बात, मंदिर के बारे में जानकारी की इकट्ठा। पिछले 5 वर्षों में इस साल सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की हवा, औसत AQI 102 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में आज से ईंधन भराने के लिए वैध PUC जरूरी, CAQM ने दिए सख्ती के निर्देश। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर उठाया गया कदम, स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी रहेगा जोर। आज से व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के नियमों में बदलाव, जिसके तहत यूटिलिटी और सर्विस मैसेज के लिए कंपनियों पर लागू किया गया है चार्ज। आज से कंपनियों को महीने में पहले 1000 मैसेज के बाद ग्राहकों को भेजे जाने वाले सर्विस मैसेज पर देना होगा चार्ज, ग्राहक की तरफ से भेजे गए मैसेज पर कोई चार्ज नहीं। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने गांव रोहतक पहुंची क्रिकेटर शेफाली वर्मा, हुआ जोरदार तरीके से स्वागत। शेफाली के घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता, शेफाली बोली, एशियन गेम्स में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर रहना उनके लिए गर्व की बात। एशियाई खेलों में रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद किरण पहल के घर रौनक, देश के लिए गोल्ड जीतकर परिवार का भी नाम रोशन किया। सोनीपत में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल के घर बांटी जा रही है मिठाइयां, कंपाउंड आर्चरी के टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न का माहौल। आज से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित खेल परिसर में यमुना प्रहरी कार्यक्रम का शुभारंभ, परवेश वर्मा ने जानकारी दी। 3 महीने बाद 1 अक्टूबर से रणथंभौर में फिर पर्यटकों की चहल पहल होगी, वन विभाग ने सफारी और पर्यटन व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली। मॉनसून में खराब हुए पर्यटन जोन के रास्तों की मरम्मत पूरी कर ली गई है, पर्यटकों की सुविधा के लिए नेचर गाइड्स को भी नया प्रशिक्षण दिया गया है। रणथंभौर में सभी 280 गाइड्स की कार्यकुशलता जांची गई है, वन्य जीव और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गाइड की दक्षता परखी गई। गणेश धाम में कॉमन बोर्डिंग प्लेस, वेटिंग एरिया और पार्किंग की सुविधा विकसित होगी, यहां कन्वेंशन सेंटर और मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। नए पर्यटन सत्र में कैंटर से सफारी करने वाले पर्यटकों की सीट नंबर अलॉट होगी, पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए जोन की अनुमति भी मांगी गई है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: किस तरह के आहार का आपके विचार पर प्रभाव पड़ता है, सात्विक आहार ग्रहण करने के लाभ क्या हैं, और अपने मन को बदलने के लिए आहार में किस तरह का बदलाव किया जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके आहार की और उससे जुड़े हुए विचार की। आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार के बारे में और आपके विचार के बारे में। हमारे जीवन में आहार की क्या भूमिका है? देखिए, जीव की मुख्य रूप से चार आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप भले ही भोजन से, खाद्य पदार्थ से आहार ग्रहण न करें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे संत महात्मा प्रकृति से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो आहार ग्रहण करके, चाहे भोजन से चाहे इनडायरेक्टली, आप अपने शरीर में ऊर्जा पहुंचाते हैं और उस ऊर्जा से आपके शरीर का निर्माण होता है और काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से जो ये आहार है ये हमारे ऊपर असर डालता है। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का, मेंटल लेवल का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है। इस कोश की शुद्धि के बिना आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में हार्मोन्स आते हैं, रस का क्षरण होता है। हार्मोन जो है, रस जो है, ये हमारी सोच और हमारे विकास में परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पुरानी कहावत है, जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आहार से आपके मन पर, आपके विचारों पर और आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी तामसिक आहार मानते हैं, सात्विक आहार नहीं कहेंगे। मांस मछली और मादक पदार्थ भी सात्विक आहार नहीं हैं। जो खाद्य पदार्थ स्टोर करके बेचे जाते हैं, डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी सात्विक नहीं हैं। बासी खाना भी सामान्यतः सात्विक नहीं माना जाता। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर ध्यान या साधना के मार्ग पर चलते हैं सामान्यतः बासी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अब ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं। सभी प्रकार की अनाजें और सभी प्रकार की दालें ये सात्विक हैं। दूध और इनसे निर्मित पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे ये सामान्यतः सात्विक माने जाते हैं। सब्जियों में प्याज लहसुन को छोड़ करके ज्यादातर सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं। अब आपका जो आहार है वो आपके स्वभाव पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर असर डालेगा। तो किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें खाइए, आपको लाभ होगा। रोटी जरूर खाइए और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिए और कच्चा प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाइए। इससे तामसिक स्थिति और आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती हो, तो दूध और दूध से बनी चीजें आपको खानी चाहिए। मशरूम और कंद ये अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हो, शरीर से परेशान हो, कोई ना कोई समस्या लगी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए और अनाज कम से कम खाइए। अगर आप बुरे विचारों से परेशान हो, निगेटिव थॉट्स से, अश्लील या बुरे विचारों से पीड़ित हो, तो मांस मछली प्याज लहसुन इसका सेवन ना करें और मसूर की दाल से भी आपको परहेज करना चाहिए। यानी आप अगर अपने आहार में सात्विकता लाएं, थोड़ा सा अपने आहार में अगर आप परिवर्तन करें, तो आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके सोच विचार और स्वभाव में सुधार होगा। अपने घर के दरवाजे पर कोई शुभ चिन्ह या स्वस्तिक लगाइए, ओम लिखकर लगाइए या स्वस्तिक लगाइए और घर से निकलते समय उसको स्पर्श करके, उसको छू करके घर से निकलिएगा। आप जिस काम के लिए निकलेंगे आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। कि अगर आप खेल कूद के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए और मेहनत करते जाइए, आपको खेल कूद के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: सर्दियों की आहट के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 5 साल में सितंबर में सबसे साफ रही हवा की गुणवत्ता, 102 दर्ज किया गया औसत AQI। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद शुभारंभ। गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहे के दरबार में 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का चढ़ावा, 1 किलो की 24 कैरेट सोने की ईट और 18 कैरेट सोने की 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी शामिल। गुवाहाटी वनडे में भारत की शानदार जीत, पहली बार 400 प्लस की रन चेस के बाद वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कैप्टन शुभमन गिल ने जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक। एशियन गेम्स में आज भारत क्रिकेट और हॉकी में सेमीफाइनल खेलेगा, मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा, हॉकी में होगी पाकिस्तान से भिड़ंत।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके जीवन में आप किस तरह का आहार लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि जैसा आप आहार लेते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। तो कैसे अपने आहार में बदलाव करके आप अपने विचारों में भी बदलाव ला सकते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अपने घर के दरवाजे पर कोई शुभ चिन्ह या स्वस्तिक लगाइए, ओम लिखकर लगाइए या स्वस्तिक लगाइए, और घर से निकलते समय उसको स्पर्श करके उसको छू करके घर से निकलिएगा। आप जिस काम के लिए निकलेंगे आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी।
4: और आइए अब जान लेते हैं 1 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 1 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:35 तक, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आपके जीवन में आप किस तरह का आहार लेते हैं उसके बारे में। तो क्या है हमारे जीवन में आहार की भूमिका, आइए जान लेते हैं पंडित जी से।
0: जी, आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार के बारे में और आपके विचार के बारे में। हमारे जीवन में आहार की क्या भूमिका है? देखिए, जीव की मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप भले ही भोजन से, खाद्य पदार्थ से आहार ग्रहण न करें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे संत महात्मा प्रकृति से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते हैं, बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो आहार ग्रहण करके, चाहे भोजन से चाहे इनडायरेक्टली, आप अपने शरीर में ऊर्जा पहुंचाते हैं और उस ऊर्जा से आपके शरीर का निर्माण होता है और काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है।
4: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा

0: मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाद विवाद से बचाव करें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से आहार हमारे ऊपर असर डालता है।
0: अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से जो ये आहार है ये हमारे ऊपर असर डालता है। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का, मेंटल लेवल का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है। इस कोश की शुद्धि के बिना आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में हार्मोन्स आते हैं, रस का क्षरण होता है। हार्मोन जो है, रस जो है, ये हमारी सोच और हमारे विकास में परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पुरानी कहावत है, जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आहार से आपके मन पर, आपके विचारों पर और आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। छोटी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। मनोरंजन

0: में व्यस्त रहेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज के सवालों और उनके जवाब के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है।
0: जी आज का पहला प्रश्न द्रौपदी जी ने हमें बिहार से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 13 नवंबर 1994 शाम को 5:40। जन्म स्थान है बेगूसराय बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। द्रौपदी जी आपके पुत्री के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से जुलाई 2027 के पहले इनके विवाह की संभावना बनती है। उस समय इनका विवाह हो जाना चाहिए। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लिया जाए तो जीवन बेहतर होगा। एक अपनी बेटी को ओपल बनवा करके पहना दें, 10

0: की शाम को इनको ओपल पहनाइए और इनसे कहिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसी के साथ अब वक्त हो गया आज के दूसरे प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का दूसरा प्रश्न आप किसका ले रहे हैं?
0: जी, अगला प्रश्न हमें आकाश जी ने लिखा है और आकाश जी हमें जोधपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1980। जन्म का समय सुबह के 8:05। जन्म का स्थान है जोधपुर। आकाश कह रहे हैं कि काफी समय से मैं और मेरे परिवार वाले मिल करके एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उसमें बहुत अड़चन आ रही है। तो मेरे परिवार में संपत्ति का लाभ कब होगा? आकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2027 से दिसंबर 2027 का जो समय है,

0: लाभ उस समय आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का मामला आपकी कुंडली में कुल मिलाकर बेहतर है और सेहत के मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति का लाभ हो सके इसके लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते।
0: अब हम ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी तामसिक आहार मानते हैं, सात्विक आहार नहीं कहेंगे। मांस मछली और मादक पदार्थ भी सात्विक आहार नहीं है। जो खाद्य पदार्थ स्टोर करके बेचे जाते हैं, डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी सात्विक नहीं है। बासी खाना भी सामान्यतः सात्विक नहीं माना जाता। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर ध्यान या साधना के मार्ग पर चलते हैं, सामान्यतः बासी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं।
0: अब ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं। सभी प्रकार की अनाजें और सभी प्रकार की दालें, ये सात्विक हैं। दूध और इनसे निर्मित पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे, ये सामान्यतः सात्विक माने जाते हैं। सब्जियों में प्याज लहसुन को छोड़ करके ज्यादातर सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं।
1: और जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार हमें ग्रहण करना चाहिए।
0: अब आपका जो आहार है वो आपके स्वभाव पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर असर डालेगा। तो किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें खाइए, आपको लाभ होगा। रोटी जरूर खाइए, और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिए, और कच्चा प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाइए, इससे तामसिक स्थिति और आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती हो, तो दूध और दूध से बनी चीजें आपको खानी चाहिए। मशरूम और कंद, ये अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हो, शरीर से परेशान हो, कोई ना कोई समस्या लगी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए और अनाज कम से कम खाइए। अगर आप बुरे विचारों से परेशान हो, निगेटिव थॉट्स से, अश्लील या बुरे विचारों से पीड़ित हो, तो मांस मछली प्याज लहसुन इसका सेवन ना करें, और मसूर की दाल से भी आपको परहेज करना चाहिए। यानी आप अगर अपने आहार में सात्विकता लाएं, थोड़ा सा अपने आहार में अगर आप परिवर्तन करें, तो आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके सोच विचार और स्वभाव में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए जान लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न देवेश जी ने हमें लिखा है और देवेश जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर 2008, जन्म का समय सुबह के 6:55, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसे किस क्षेत्र में ले जाना बेहतर होगा, किस तरह के करियर में मेरे बेटे को सफलता मिलेगी। देवेश जी, मैं कहूंगा कि आप अपने पुत्र को ग्रेजुएशन करवाइए और ग्रेजुएशन करवाने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब में ले जाने का प्रयास करिए, उस क्षेत्र में इनको बेहतर सफलता मिलेगी। अगर ये बैंक, फाइनेंस या अकाउंट्स आदि के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो उसमें इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करवाएं और अपने पुत्र से कहें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो काफी बेहतर होगा।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जान लेते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न वसुधा जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। वसुधा जी की जन्म की तारीख है 24 मार्च 1996, जन्म का समय दोपहर में 1 बजे, जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं शिक्षा क्षेत्र में, क्या मुझे शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वसुधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में अपनी नौकरी के लिए प्रयास करती रहिए। कुंडली आपकी कहती है कि साल 2027 के मध्य में आपको प्रयास करने से गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रयास बढ़ाइए, मेहनत बढ़ाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।

0: एक अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन और लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं क्या कहती है आज की जिज्ञासा।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या राहु काल में पूजा उपासना और मंत्र जप नहीं करना चाहिए? देखिए, राहु काल में सामान्यतः नए काम की मनाही की जाती है, लेकिन इस समय में पूजा करने में उपासना करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप राहु काल में साधना पूजा उपासना निश्चिंत हो करके कर सकते हैं।
1: और इसी के साथ हम जानेंगे 1 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 1 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय भगवान कृष्ण की पूजा पीले फूलों से करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती है आज की गुडलक राशि।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में क्या करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है मीन। आपको पूजा में सफेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर बना रहेगा।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: हैं कि अगर आप खेल कूद के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए और मेहनत करते जाइए, आपको खेल कूद के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए बात करते हैं हार्ट अटैक के डर से लोग क्यों छोड़ रहे हैं रनिंग और जिम। आजकल बहुत ही चिंताजनक मामले देखने को मिल रहे हैं, कम उम्र के और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट दिखने वाले लोग जिम में वर्कआउट करते हुए दौड़ते समय या अपने दफ्तर की डेस्क पर अचानक गिर रहे हैं। ऐसी खबरें अक्सर हम सभी को डरा देती हैं और मन में सवाल उठाती हैं कि आखिर अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अगर आपको अपने हार्ट को फिट रखना है तो देखिए रिपोर्ट।

0: हम सभी जानते हैं कि वॉक करना, दौड़ना, जिम में पसीना बहाना सेहतमंद शरीर के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज करने से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता है, बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत भी बनते हैं। लिहाजा रोज सोचते हैं कि सुबह उठकर रनिंग करेंगे या जिम जरूर जाएंगे, लेकिन एक ख्याल आते ही हम डर जाते हैं कि कहीं अचानक अगर दौड़ते समय हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे।
1: कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हर एक में नहीं होगी, और भी कई एबनॉर्मैलिटीज हैं, जैसे मसल थिक हो जाता है जिसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हार्ट मसल अनस्टेबल होता है और वो कई बार आप देखोगे सडन डेथ उसकी वजह से होती है कि, और ये फैमिलीज में चलता है। तीसरा है कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी हो, तो अगर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स आ रही हैं या इरेगुलर हार्ट बीट्स आ रही हैं वो भी पता होना चाहिए हमें, स्पेशली अगर जो कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज रूटीन में कोई जा रहा है, जैसे जिमिंग में होती है। आपने देखा कितने लोगों को जिम में ऐसा हुआ और कितने लोगों की लाइफ बचा भी ली गई, पर कई लोग तो फिर भी ना बच सके। तो ये उसके सुझाव भी हैं, बट मेन चीज ये है कि अपने एक तो अपने आप को अगर जो कुछ फील हो रहा है तो उसका चेकअप जरूर कराएं। दूसरा, एक्सेसिव एक्टिविटी, जैसे आप ट्रैकिंग जा रहे हैं माउंटेन पे कहीं, या आप कोई विगरस स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर रहे हो जो आपने अभी तक नहीं करी थी, या कोई एक्सेसिव जिमिंग, आप वेट लिफ्टिंग, रनिंग ऑन ट्रेडमिल वगैरह कर रहे हो, उससे पहले एक बार बड़ा सिंपल चेकअप होता है वो करवा लें और उससे पता लग जाएगा आपकी सेफ्टी सेफ है।
0: इस डर और ख्याल के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हम सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो देख चुके हैं जिनमें लोगों को जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक आ गया। इस वजह से मन में एक डर बैठ गया कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, और लोगों में ये डर इतना बढ़ गया है कि अब इसे मेडिकल की भाषा में कार्डियोफोबिया नाम दिया गया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी हार्ट का खतरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। तो इसके जो एक वजह जो सोच सकते हैं और लगती है कि वो ज़्यादा अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन की भी है, कि कोविड के बाद बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जैसे आ गए, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, और ओवर रिसेंट ईयर्स लोग सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन में कैमरे होते हैं, वीडियो कैमरे होते हैं, और वो लोग एकदम उसको फोटो खींच के उसका रील बना के एकदम शेयर करते हैं, तो इस वजह से भी रिपोर्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक तो ये कारण है, दूसरा ये कारण ये भी है कि राइजिंग प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो लोग जो हैं उनका लाइफस्टाइल थोड़ा ऑल्टर हुआ है और वो एक जो है हार्ट डिजीज का खतरा बनता है।
0: हालांकि ये कोई अलग मेडिकल बीमारी नहीं है बल्कि हार्ट अटैक का डर है। अब सवाल है कि कार्डियोफोबिया क्यों है और इससे कैसे निपटें? इस बारे में डॉक्टर त्रिहान बताते हैं, एक्सरसाइज करते समय हार्ट रेट बढ़ना, सांस तेज चलना, पसीना आना और शरीर में गर्मी महसूस होना सामान्य है, लेकिन जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक का डर बैठ गया हो वो इन सामान्य बदलावों को भी खतरे का संकेत समझ सकता है।
1: बेसिकली आपको ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करके पता लग जाएगा कि आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या आपके हार्ट की रिदम, आपके हार्ट की इरेगुलरिटी कोई है या कोई चेंजेस है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, वो सारा पता लग जाएगा उसको, और अगर जो हार्ट मसल थिक है उसमें भी पता लग जाएगा। सो ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं जिससे पता लग जाता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल टुडे बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल ड्रॉपिंग डेड, चाहे कोई डांस करता हुआ चला गया या साइकिल चलाता हुआ चला गया या दौड़ लगाता हुआ। सो ये बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें देखी गई हैं, इसलिए हमें भी बहुत चिंता है और हम चाहते हैं कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
0: ऐसे में सवाल ये भी है कि कार्डियोफोबिया क्या होता है, इसे हम कैसे जान सकते हैं? फोबिया किसी खास चीज या स्थिति से होने वाला बहुत ज्यादा और अक्सर बेकाबू कर देने वाला डर है। फोबिया में डर का लेवल असल खतरे के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको कार्डियोफोबिया है तो आप मानसिक तनाव होने पर अपना ध्यान अपने दिल पर लगाते हैं और ये ध्यान इतना ज्यादा होता है कि आपको लगता है कि आपको दिल की कोई असली बीमारी है, जबकि मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं निकलता। आप बार बार तसल्ली करना चाहते हैं कि कहीं हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं अटैक तो नहीं आ जाएगा, इस वजह से बार बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उन कामों से बच सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके लक्षण बढ़ सकते हैं। और ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो हार्ट को कहीं कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकल की भाषा में इन्हीं लक्षणों को कार्डियोफोबिया कहा जाता है। अब सवाल ये भी है कि कार्डियोफोबिया का इलाज क्या है। कार्डियोफोबिया का इलाज भी दूसरे फोबिया के इलाज की तरह ही किया जाता है। आपके डॉक्टर आपको साइकोथेरेपी, दवाएं या दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की सलाह दे सकते हैं। भारत में दिल की बीमारियां, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल की नसों में ब्लॉकेज की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। खासकर हमारे खान पान की आदतें और जीवन शैली इसका एक बड़ा कारण है। पश्चिमी देशों में जहां करीब 4-5% लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलती है, वहीं भारत में यह आंकड़ा करीब 10-12% तक पहुंच गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन अभी भी काफी ज्यादा है। तंबाकू किसी भी रूप में शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।
2: हमें पता होना चाहिए कि बच्चों में और खासकर जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कई बार वो बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेते हैं और उसमें भी कई बार हो सकता है कि ऐसे पदार्थ हों जो कि हार्ट के लिए इतने अच्छे ना हों। फिर स्मोकिंग भी इस एज ग्रुप में थोड़ा कॉमन है और स्मोकिंग तो बहुत ही डेफिनेट जो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का है। तो एक हार्ट डिजीज़ जो है कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, जिसमें 8 ऐसे क्लियर रिस्क फैक्टर आए थे जो कि ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ रिस्क को डिफाइन करते थे। तो हम लोगों को सब ये 8 रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए। तो इसमें है, नंबर 1 है स्मोकिंग, नंबर 2 है हाई ब्लड प्रेशर, और नंबर 3 है हाई कोलेस्ट्रॉल, और चौथा है डायबिटीज़। तो ये तो 4 बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको कंट्रोल करना सबसे महत्वपूर्ण है।
0: डॉक्टर त्रिहान के मुताबिक भारतीयों में दिल की बीमारी होने की अनुवांशिक संभावना भी अधिक होती है। अमेरिका और यूरोप में आमतौर पर दिल की बीमारी, एंजाइना या स्टेंट की जरूरत 50-60 साल की उम्र में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में पिछले कुछ वर्षों में ये समस्या 40-50 साल की उम्र में ज्यादा दिखाई देने लगी थी और अब 30-40 साल के लोगों में भी दिल की बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जिन लोगों के माता पिता को डायबिटीज या दिल की बीमारी है, उनके बच्चों में भी आगे चलकर दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है।
1: देखो, एक तो मैंने बताया ना कि अपने जीन्स को पहचानिए। अपने जीन्स को पहचानिए का मतलब ये है कि अगर जो आपके फैमिली में हार्ट डिजीज है तो बच्चों को डबल रिस्क होगा। जैसे नॉर्मली इंडिया में 8-12% लोगों को हार्ट डिजीज है, ये ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि अगर जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे वहाँ पे 4-5% है। तो एज इट इज़ हमारी डबल है। बट अगर जो आपकी फैमिली में मदर फादर या दोनों को या अंकल्स वगैरह को है, तो देन यू नो दैट आपके चांसेस डबल है। तो एक इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो बिफोर द एज ऑफ 25 अपना चेकअप करा लें कि कहीं आपको तो ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे, क्योंकि ये हमने देखा है कि यंगर एंड यंगर एजेस में आ रहे हैं। दूसरा, आपको ये जो चेकअप से रिस्क फैक्टर्स पता लग जाएंगे तो यू कैन मॉडिफाई कि आपने अपने आप को प्रिवेंटिव ट्रैक पे रख दिया।
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। ऐसे में हार्ट को फिट रखने के लिए सबसे जरूरी है कि स्ट्रेस कम करें, क्योंकि मानसिक तनाव जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इसके अलावा अपने खान पान पर ध्यान दें और रोज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें और योग भी करें।
2: जो लोग सारा दिन बैठे बैठे काम करना पड़ता है उनको तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम कहते हैं, तो उनको हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। तो उनको चाहिए रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करा करें। दिन में भी अगर सारे टाइम बैठने गए तो हर घंटे उठ के 5-10 मिनट थोड़ा चल लिया, अगर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर तो सीढ़ी चढ़ ली, तो उससे एक्सरसाइज हो जाती है। और सवेरे के टाइम पर वॉक करके आ गए, शाम के टाइम वॉक कर सकते हैं, वीकेंड पर अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर रिस्क फैक्टर है डाइट का। तो डाइट का उस स्टडी में पाया गया था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं। तो जो लोग रेगुलरली अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं, उनको हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है।
0: हृदय रोग को अक्सर बढ़ती उम्र, मोटापा और डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता है, जबकि असल में हार्ट अटैक का कारण बनने वाली प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो सकती है। लिहाजा सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब बात अवधपुरी की कर लेते हैं, जहां 7 नवंबर को दिव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन वहां की छटा देखने वाली रहेगी। अयोध्या का कोना कोना रोशनी से सराबोर होगा। इस विशेष अवसर के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा भी की गई है। इन सबके बीच अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग तैयारी होती भी दिख रही है।

0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनएसजी कमांडोज की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। अवधपुरी में इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ मजदूर कामकाज में जुटे हैं, तो वहीं अधिकारी लगातार निरीक्षण करते नजर आए।
1: हम लोग यहां क्वीन हो पार्क में उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग की प्लानिंग है कि कुछ प्रदर्शनी या झांकी जैसा कुछ दीपोत्सव के दौरान लगाया जाएगा, तो उसी के संबंध में इस पार्क का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट, सरयू तीर्थग्रह, जो हेलीपैड बनता है, रामकथा पार्क, इन सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और कहीं पर भी जो छोटी मोटी चीजें पाई जा रही है, जिनके बारे में निर्देश दिए जाने हैं, जिनको ठीक किया जाना है, वो लगातार किया जा रहा है। लगातार इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहे।
0: इस बार के दीपोत्सव को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक खास योजना तैयार की गई है। UPSTDC ने दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु और पर्यटक राम मंदिर, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे।
2: एक अलग नजारा है, एक अलग दृश्य होगा, जब इस बार देश से नहीं विदेशों से भी खास मेहमान आएंगे, इस दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां अब की बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बनाया जाएगा। यहाँ अगर आते हैं टूरिस्ट तो उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर हो, कनक भवन हो या हनुमानगढ़ी, हर जगह वो दर्शन करेंगे, उनके रुकने के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये पूरी राम की पैड़ी को जो है पूरा दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो 7 नवंबर की तारीख है जब विशालकाय दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए, हर एक चीज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे। इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है।
0: दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राम की पैड़ी पर विजिटर गैलरी और सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। श्रद्धालु लेजर और ड्रोन शो का आनंद भी उठा पाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती करेंगे। 240 से अधिक मंदिर और मठों में भी दीप प्रज्वलित होंगे। रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सरयू के तट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नए घाट, एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट्स जैसे आकर्षक केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की टीम अयोध्या में समीक्षा और मॉक ड्रिल करती नजर आई। NSG की टीम राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। कनक भवन में भी NSG की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। NSG की टीम सभी महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर रही है और मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जा रहा है।
2: निरीक्षण किया जा रहा है। NSG कमांडेंट यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं। राम मंदिर हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, हनुमानगढ़ी परिसर में पूरी डायरेक्शन दी गई है, बाकायदे कंट्रोल रूम पूरे चेक किए गए हैं। तो यहाँ लगातार जो है अयोध्या की राम नगरी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पर NSG की तैयारी है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में एक नया NSG क्षेत्रीय केंद्र बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि NSG कमांडोज की मौजूदगी और लगातार चल रही मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, और आने वाले समय में अयोध्या की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में NSG की अहम भूमिका तय की जा सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: भारतीय पायलट स्मित मचार की बहादुरी की दुनिया मुरीद, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताया असली हीरो, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने की तारीफ, पीएम मोदी बोले कैप्टन स्मित मचार हीरो हैं, 180 लोगों की बचाई थी जान। सर्दियों की आहट के बीच दिल्ली वालों के लिए आई गुड न्यूज, 5 साल में सितंबर में सबसे साफ रही आबो हवा, 102 दर्ज किया गया औसत AQI। प्रदूषण के खिलाफ बड़ी सख्ती, आज से वैलिड PUC नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक, पुरानी गाड़ियों की चेकिंग शुरू। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद शुभारंभ। जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती, भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु।

0: एशियन गेम्स में आज क्रिकेट और हॉकी का सेमीफाइनल। मेंस क्रिकेट में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। हॉकी में इंडिया का पाकिस्तान से मैच। गुवाहाटी वनडे में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी। इंडिया ने पहली बार 400 प्लस की रन चेस के बाद वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। गिल ने बनाई सबसे तेज डबल सेंचुरी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है देश।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशोभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: शुभ समाचार की शुरुआत बप्पा के साथ करेंगे। मुंबई में गणेशोत्सव के 12 दिनों में लालबाग चौराहे के दरबार में भक्तों ने जमकर दान किया। इस बार कुल 6,11,96,500 रुपए का दान प्राप्त हुआ। धनराशि के साथ सोने की ईंट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी दान में आए। और क्या कुछ चढ़ावा आया आगे आपको बताएंगे। तो वहीं नवरात्र की भी तैयारियां तेज हैं। कोलकाता की गलियों में दुर्गा पूजा की आहट साफ सुनाई देने लगी है। शहर का मशहूर कुमार टोली इलाका इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, क्योंकि दुर्गा पूजा में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में कलाकार दिन रात मेहनत कर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हैं, तो ये तैयारी भी आपको आगे दिखाएंगे।
2: उधर दुनिया भारतीय पायलट को सलाम कर रही है, जिसने अपने साहस और सूझबूझ से न सिर्फ 174 विमान यात्रियों की जान बचाई है बल्कि एक बड़े हमले को भी टाल दिया। स्मिथ मछार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तारीफ उनकी की। क्या कुछ उन्होंने कहा आगे आपको बताएंगे।
0: ईपीएफओ ने आज यानी 1 अक्टूबर से लागू नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब 25,000 रुपए तक के मासिक वेतन पर पीपीएफ अनिवार्य कर दिया जाएगा। पहले ये लिमिट 15,000 रुपए की थी और इस फैसले से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा इसकी पूरी जानकारी भी आपको आगे देंगे।
2: इसके अलावा एशियन गेम्स में आज क्रिकेट और हॉकी का सेमीफाइनल होगा। मेंस क्रिकेट में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। तो हॉकी में भारतीय टीम एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो इसके लिए आगे क्या है रणनीति वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
0: एशियन गेम्स के 12वें दिन आज भारत के कई अहम मुकाबले होने वाले हैं। क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी, जबकि पुरुष हॉकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। तीरंदाजी में चिकिता तनी परथी और गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु पदक की दावेदारी पेश करने वाले हैं। वहीं कुश्ती में अमन, सुमित, नितेश और मानसी से भी पदक की उम्मीदें रहने वाली हैं।
2: पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में नवरात्रि से पहले यहां कारीगरों और पूजा कमेटीज की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

0: मुंबई में गणेश उत्सव के 12वें दिन में लाल बहादुर राजा के दरबार में भक्तों ने जमकर दान किया और इस बार कुल 6,11,96,500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। चरण स्पर्श और मुख दर्शन की कतारों में रखी दान पेटियों में 2,42,40,000 रुपए जमा हुए। वहीं गणपति विसर्जन के दौरान दान पेटियों में 16,14,500 रुपए प्राप्त हुए। धनराशि के साथ सोने की ईंट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी शामिल हैं।
1: आज से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। वन विभाग ने मॉनसून के दौरान बारिश से खराब हुए सफारी रूट्स को दुरुस्त कर लिया है ताकि पर्यटकों को सफारी के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं नेचर गाइड्स को भी नए सिरे से प्रशिक्षण दिया गया। गणेश धाम प्रवेश द्वार पर इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।
0: एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं। अब बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। प्रदूषण कम करने के लिए नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को करीब 35% तक कम करना है। पेट्रोल पंप्स पर नियमों की निगरानी और सख्ती बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
1: दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 406 रन का विशाल लक्ष्य रखा था जिसे टीम इंडिया ने सिर्फ 44वें ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने वनडे में अपना दूसरा सबसे बड़ा रन चेस पूरा किया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। जीत के हीरो रहे शुभमन गिल जिन्होंने 223 रन की नाबाद पारी खेलते हुए वनडे का दूसरा दोहरा शतक जड़ा।
0: विराट कोहली आईसीसी की वनडे बैटर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रनों की पारी खेलने का उन्हें फायदा मिला। कोहली ने अब 796 रेटिंग पॉइंट में हैं और वो टॉप पर मौजूद भारतीय कैप्टन शुभमन गिल से सिर्फ 20 पॉइंट्स पीछे हैं। रैंकिंग हर हफ्ते बुधवार को जारी की जाती है।
1: चीन का हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज खुलने के 1 साल बाद ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस पुल ने करीब 2 घंटे के सफर को महज 2 मिनट में बदल दिया। अगस्त 2026 तक पुल के यूंडू सर्विस एरिया में 33,65,000 से ज्यादा विजिटर्स पहुंच चुके हैं। वहीं जिनफिंग काउंटी में 54,73,000 से ज्यादा पर्यटक आए।
0: जैकी श्रॉफ और शरद केलकर जैसे दमदार कलाकार फिल्म काली खेती को लेकर मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। जैकी श्रॉफ, शरद केलकर और नेहा सरगम स्टारर ये ग्रामीण हॉरर फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने पोस्टर जारी करते हुए फिल्म की रिलीज डेट बताई है।

शुभ समाचार की शुरुआत भारतीय पायलट स्मित मछार के साथ करेंगे, जिन्होंने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दरअसल फ्लाई दुबई के विमान को हाईजैक कर जमीन से क्रैश कराने की साजिश नाकाम हो गई। इस साजिश को नाकाम करने में विमान के भारतीय पायलट स्मित मछार ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समेत मछार की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्होंने उन्हें हीरो बताया। दुबई से उड़ने के 2 घंटे बाद विमान अचानक 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिरकर करीब 17,000 फीट पर आ गया। ये किसी तकनीकी गड़बड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह थी विमान के भारतीय पायलट स्मित मछार पर चाकू से हमला, और हमलावर कोई और नहीं बल्कि सह पायलट था। चाकू के हमले में जख्मी होने के बावजूद पायलट स्मित ने गजब की दिलेरी दिखाई। जख्मी हालात में ही सह पायलट से लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। कॉकपिट का दरवाजा खुला, विमान यात्री खूनी मंजर देखकर सकते में आ गए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू ने हो, सभी ने पायलट मछार की तारीफ की। और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू ने मछार की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें हीरो बताया। दुबई से उड़ने के 2 घंटे बाद विमान अचानक 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिरकर करीब 17,000 फीट पर आ गया। ये किसी तकनीकी गड़बड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह थी विमान के भारतीय पायलट स्मित मछार, जिन पर चाकू से हमला हुआ, और हमलावर कोई और नहीं बल्कि उनके सह पायलट थे। चाकू के हमले से वो जख्मी हो गए, और उसके बावजूद पायलट स्मित ने गजब की दिलेरी दिखाई, और जख्मी हालात में ही सह पायलट से वो लड़ते रहे और

0: का दरवाजा उन्होंने खोल दिया। कॉकपिट का दरवाजा खुलते ही विमान यात्री खूनी मंजर देखकर सकते में आ गए। बड़ी ही दिलेरी उन्होंने दिखाई और पायलट मचान ने अपनी दिलेरी का इसी के साथ सबूत दिया। तमाम यात्रियों की जान इससे बच पाई और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की। हर भारतीय का सर इससे गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने फ्लाई दुबई के विमान को हाईजैक कर जमीन से क्रैश कराने की साजिश इसी के साथ नाकाम हो गई। तो इस साजिश को नाकाम करने में विमान के भारतीय पायलट का सबसे बड़ा हाथ है। स्मित मचान ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो, स्मित मचान की बहादुरी की तारीफ हर कोई कर रहा है, उन्हें हीरो बता रहा है। और दुबई से फ्लाइट ने 2 घंटे के बाद ही जब भी इसने उड़ान भरी तो विमान में अचानक से 30,000 फीट की वो ऊंचाई पर था और ऊंचाई से नीचे गिरकर करीब 17 फीट पर वो आ गया।
1: और चलिए आपको एआई के जरिए दिखाते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे। तो देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो पायलट्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक पायलट यहाँ पर हमला कर देता है, चाकू से हमला कर दिया जाता है और उसके बाद कॉकपिट का दरवाजा किसी तरह से दूसरा पायलट जख्मी हालत में ही खोल देता है। उनका नाम है स्मित मचार, जिनकी दुनिया भर में आप तारीफ हो रही है और उनकी बहादुरी थी, उनकी दिलेरी थी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश होने से बच गया, हाईजैक होने से बच गया और किसी तरह से इसे सुरक्षित लैंड करवाया गया और तमाम यात्री जो इस प्लेन में मौजूद थे उनकी जान बचाई जा सकी। ये एआई जनरेटेड वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें देखिए कुछ इसी तरह की घटना वहां पर घटित हुई थी जिसके बावजूद पायलट स्मित मचार ने अपनी बहादुरी से इन तमाम लोगों को बचा लिया। ये देखिए किस तरह से यहां पर चाकू से हमला किया गया। एक प्लेन जो कि फ्लाई दुबई इसका नाम था और इसमें कई यात्री उस वक्त सवार थे जब ये घटना घटित हुई और इसे हाईजैक करने के मकसद से पायलट के ऊपर हमला किया गया और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सह पायलट ही था। वो तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं चाकू से हमला करने की कोशिश और उसके बाद जख्मी हालात में किसी तरह से कॉकपिट का दरवाजा खोल देते हैं पायलट स्मित मचार। वहां पर तमाम यात्री सकते में आ जाते हैं, तमाम जो क्रू है वो दौड़कर वहां पर पहुंचता है और किसी तरह से लैंडिंग करवाई जाती है, तमाम यात्रियों को सुरक्षित लैंड करवाया जाता है। ये बेहद शानदार खबर है, तारीफ करने वाली बात है। स्मित मचार की यही बहादुरी है, उनकी यही दिलेरी है जिसकी वजह से दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है।
0: और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मित मचार की तारीफ की और उन्होंने ट्वीट भी किया। जिस दिलेरी से स्मित मचार ने पूरी सिचुएशन को संभाला इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उनकी तारीफ की है। और देखिए दुबई में यह हादसा हुआ और स्मित मचार की बहादुरी से और दिलेरी से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तो देखिए हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रहे हैं और साथ में दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जो उन्होंने स्मित मचार की बहादुरी के लिए किया है और फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया है पायलट स्मित मचार ने। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं।

0: देखिए, भारतीय पायलट हैं कैप्टन स्मिथ मछार, जिन्होंने एक असाधारण बहादुरी दिखाई है, सूझबूझ का परिचय दिया है और कुछ इस तरह से 30,000 फीट की ऊंचाई पर जो प्लेन उड़ रहा था, जिसमें 180 तक यात्री मौजूद थे, उन्हें सुरक्षित लैंड करवाया गया है, जिसके बाद देश के कई देशों के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट की तारीफ की है, स्मिथ मछार की बहादुरी और साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि गंभीर खतरे का सामना करने और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मछार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अदम्य साहस और अटूट संकल्प का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने विमान में सवार करीब 180 लोगों की जान बचाई।
1: और इसी के साथ हमारे संवाददाता दीपेश जो हैं वो कैप्टन स्मिथ मछार के घर पर मौजूद थे। आइए देखिए क्या कुछ दिखा रहे हैं।
2: स्मिथ मंचर ने एक साहसपूर्ण कार्य किया है, खुद घायल हुए लेकिन प्लेन को सेफली लैंडिंग कराया। हमारे साथ हैं उनके पड़ोसी डॉक्टर शाहजी। सर, क्या उनके परिवार से आपकी बात हुई इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद उनके माता पिता से बात हुई और वो इस वक्त कहाँ पे हैं?
3: सो उनके पेरेंट्स से मेरी बात तो हुई नहीं है आफ्टर द इंसिडेंट। दे आई थिंक लेफ्ट आफ्टर द इंसिडेंट।
2: बिल्कुल, तो पहले से ही नेक स्वभाव था, लोगों की मदद करने वाला स्वभाव था, ऐसा जो उनके दोस्त हैं जो काफ़ी सालों से उनको जानते हैं, डॉक्टर जिनीत शाह उनका कहना है। और यही वो स्वास्तिक हाइट्स बिल्डिंग है जहां पर स्मिथ जो है अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ साल पहले ही वो दुबई शिफ्ट हुए थे लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो इसी सोसाइटी में रहते थे, जिसके बाद जैसे ही कल उनको इस घटना के बारे में पता चला वो तुरंत सऊदी निकल गए स्मिथ के पास। और जो आखिरी बात डॉक्टर जिनीत की उनके माता पिता से हुई थी, तब उनको पता चला था कि जो स्मिथ है उस पर इलाज चल रहा है और उसको उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: तो वही भारतीय पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, कैसे सराहना की है वो भी सुनिए।
4: एंड इट सीम्स एज दो द को पायलट वाज परहैप्स अ टेररिस्ट और परहैप्स अ व्हैक जॉब एंड ही स्टैब्ड द पायलट। The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
1: तो दीपाली, एक बहुत बड़ा हादसा जो है होते होते टल गया। आप सोचिए उस वक्त की क्या सिचुएशन रही होगी जिस वक्त पायलट ने ये पूरी दिलेरी दिखाई। उनका जज्बा देखने लायक था कि आपकी जो फ्लाइट है वो यात्रियों से भरी हुई है और आपको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ उन्होंने प्लेन क्रैश होने से बचा लिया।
0: कुछ इसी तरह से पायलट्स की ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन उसके बावजूद, जख्मी होने के बावजूद, इतनी स्ट्रेस भरी सिचुएशन में कोई आप पर हमला कर दे, चाकू से हमला हो जाए, आप इतने जख्मी हैं, उसके बाद भी आप कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये अदम्य साहस दिखाया है स्मिथ मछार ने, जिसकी तारीफ होना लाजमी है। और यही वजह है कि देश भर में उनकी तारीफ की जा रही है, तमाम भारतीय उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं और कई देशों के प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करने में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हमने सुनवाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हमने दिखाया, बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे उनकी तारीफ की है, उनकी सराहना की है, जिस तरह से उन्होंने 180 भारतीयों की जान बचाई है, ये इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है।
1: बिल्कुल, बेहद ही सराहनीय जो है ये उनका एक्ट था। और यात्रियों को बचाते हुए आप देखिए किस तरह से दुबई से फ्लाइट जो है वो इजराइल जा रही थी, और इसको ध्यान में रखते हुए कि इतने यात्रियों की जान भी उन्हें बचानी है, प्लेन क्रैश होने से भी बचाना है, कितना साहस और कितनी दिलेरी इसमें चाहिए वो हम सोच सकते हैं आप देखिए। लेकिन सब कुछ ठीक रहा, इसीलिए आज पायलट स्मिथ मछार की तारीफ जो है उनकी सराहना की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनकी सराहना की, नेतन्याहू ने भी ट्वीट किया और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप भी हम अभी उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने भी उनकी तारीफ में क्या कुछ कहा। तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाई दुबई की उड़ान में हमले के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचा की बहादुरी की सराहना की। नेतन्याहू ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मचा ने हिम्मत नहीं हारी, हमलावर का सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों और क्रू को उसे काबू करने का मौका दिया। नेतन्याहू के मुताबिक पायलट की इस कार्रवाई से विमान में सवार 174 लोगों की जान बच सकी। उन्होंने कैप्टन मचार के जल्द और पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्हें सच्चा हीरो बताया है।
0: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लालबाग चौराहे के चढ़ावे की।

0: तो गणेश उत्सव हाल ही में संपन्न हुआ और ऐसे में हर साल बप्पा को अर्पित किया जाने वाला चढ़ावा सिर्फ भक्त की अपने आराध्य को लेकर भेंट नहीं बल्कि उनके चरणों में समर्पित श्रद्धा है। खासतौर से मुंबई में लालबाग चौराहे को चढ़ाया गया चढ़ावा तो हर साल सुर्खियों बटोरता ही है, सुर्खियों में रहता ही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लालबाग चौराहे को देश और विदेश के श्रद्धालुओं से 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा चढ़ाया गया है। इसके अलावा लाखों करोड़ों के आभूषण और कीमती वस्तुओं की नीलामी भी लालबाग राजा के प्रति सम्मान और आस्था को ही दर्शाती हुई नजर आ रही है। सोने चांदी की भेंट भी बप्पा को चढ़ाई गई, आभूषणों की नीलामी भी हुई है। लालबाग चौराहे को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया गया है।
1: करोड़ों भक्तों की आस्था से सजता है लालबाग के राजा का दरबार। यहाँ हर चढ़ावा बनता है विघ्नहर्ता के प्रति गहरे विश्वास और प्रेम का उपहार। कहते हैं जिस चढ़ावे में भक्त की सच्ची भावना होती है वही बप्पा के दरबार की सबसे अनमोल भेंट होती है। शायद यही सच्ची भावना इस साल भी मुंबई करों की अटूट आस्था का केंद्र लाल बागचा राजा को करोड़ों के चढ़ावे के रूप में नजर आई है। ये बेश कीमती चढ़ावा यकीनन आस्था की एक नई कहानी, एक नई तस्वीर को पेश कर रहा है। बता दें कि लाल बागचा राजा को देश और विदेश के श्रद्धालुओं से 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा इस साल प्राप्त हुआ है, जिनमें बप्पा के चरण स्पर्श की दान पेटी यानी चढ़ावे में 3,53,00,000 से ज्यादा रुपए जमा हुए थे। वहीं रंग पेटी में 2,42,00,000 से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया गया। विसर्जन पेटी में 16,14,000 से ज्यादा चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसके अलावा दर्शन के लिए लगी कतार की पेटियों में भी काफी रकम जमा होने की बात कही गई है। बता दें कि इस अपार नकदी में भारतीय करेंसी के साथ काफी डॉलर भी मिले हैं। चढ़ावे की ये रकम इस साल 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच भक्तों द्वारा अर्पित की गई है। जाहिर है लाल बागचा राजा के चरणों में अर्पित हर भेंट ही श्रद्धा और विश्वास की ही प्रतीक है। तभी तो इस साल आयोजित हुए भव्य गणेशोत्सव के दौरान लाल बागचा राजा को उनके भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया, जिनमें सोने चांदी के आभूषणों की भी नीलामी हुई। 30 सितंबर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हुई इस सार्वजनिक नीलामी में बप्पा के भक्तों ने नीलामी में रखी गई मूल्यवान वस्तुओं पर दिल खोलकर खर्च किया। बप्पा के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषणों की नीलामी के बीच 1 किलो वजन की 24 कैरेट सोने की ईंट का भी ऑक्शन हुआ। 24 कैरेट सोने की ईंट सबसे खास आकर्षणों में शामिल रही। एक अज्ञात भक्त द्वारा अर्पित इस सोने की ईंट की कीमत करीब 1,48,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं एक दूसरे अज्ञात भक्त ने 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी अर्पित की। इस गणेश प्रतिमा की कीमत करीब 15,65,000 रुपए है। यहां बता दें कि लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से हर साल भक्तों द्वारा अर्पित कीमती वस्तुओं की नीलामी की जाती रही है, जिसके तहत इस साल भी सभी आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं को लाल बागचा राजा के बेहद खूबसूरत पंडाल में करीने से सजाया भी गया। गणेश भक्तों के लिए की गई इस नीलामी में सोने के कई आभूषणों के साथ सोने और चांदी की कई वस्तुएं रही। इनमें मोदक, चांदी का एक दंत, चांदी की कई गदाएं, सोने और चांदी के बड़े बड़े नायाब हार थे। इसके अलावा मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी, सुंदर फोटो फ्रेम की अनुपम बनावट और सुंदरता भी हर भक्त का मन मोह ले रही थी। यही नहीं, बप्पा की सोने की मूर्ति, क्रिकेट का बैट और 2 बाइक भी इस विशेष नीलामी का आकर्षण का केंद्र बने। बेशक बप्पा के चरणों में सच्ची श्रद्धा का चढ़ावा इस अपार धन दौलत से बढ़कर ही है, मगर फिर भी बीते कुछ सालों में भी भक्तों ने अपनी हैसियत के अनुसार अपने आराध्य के प्रति जैसा प्यार और सम्मान दिखाया उसमें श्रद्धा ही सर्वोपरि रही। साल 2025 में लगभग 5,65,00,000 नकद राशि बप्पा के चरणों में अर्पित की गई। इसमें सोने चांदी की नीलामी से भी करीब 1,65,00,000 की अतिरिक्त कमाई हुई थी। वहीं सोना 4 किलो से अधिक और चांदी लगभग 55 किलो अर्पित की गई। साल 2024 का गणेशोत्सव इस गणेश मंडल के लिए चढ़ावे के लहाज से काफी बड़ा रहा। इसमें 6,25,00,000 की नकद राशि बप्पा के चरणों में अर्पित की गई, जिसमें विसर्जन के बाद तक की कुल जमा राशि भी शामिल थी। खास तौर से इस वर्ष उद्योगपति अनंत अंबानी द्वारा बप्पा को 20 किलो का सोने का मुकुट भी उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इस सोने के मुकुट की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ बताई गई थी। वहीं सोना लगभग 4.25 किलो अर्पित किया गया और चांदी करीब 64 किलो चढ़ाई गई। इससे पहले साल 2023 में भी भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। नकद राशि 5 करोड़ से ज्यादा थी। सोना लगभग 3 किलो और चांदी लगभग 51 किलो बप्पा के चरणों में अर्पित की गई। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मुंबई के लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना चांदी नकदी और दूसरी कीमती वस्तुओं का चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। ऐसे में यहां बप्पा के चरणों में रखा गया करोड़ों का चढ़ावा सिर्फ रकम या संपत्ति भर नहीं बल्कि भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास की तस्वीर भी पेश करता रहा है। और बप्पा के चरणों में अर्पित ये चढ़ावा उनके हर भक्त को दिली सुकून देता आया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चैंपियंस का स्वागत आपको दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है? आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: भारतीय पायलट स्मिथ मचार की बहादुरी की दुनिया की मुरीद, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताया असली हीरो, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने की तारीफ, प्रधानमंत्री मोदी बोले कैप्टन स्मिथ मचार हीरो है, 180 लोगों की बचाई थी जान। सर्दियों की आहट के बीच दिल्ली वालों के लिए आई गुड न्यूज, 5 साल में सितंबर में सबसे साफ रही आबो हवा, 102 दर्ज किया गया औसत EQI।

0: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी सख्ती, आज से वैलिड पीयूसी नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक, पुरानी गाड़ियों की चेकिंग शुरू।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: तो ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एशियन गेम्स की। आज भारत क्रिकेट और हॉकी में सेमीफाइनल मुकाबले खेलने जा रहा है। आपको बता दें, मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा, तो वहीं मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में भारत पाकिस्तान क्लैश देखने को मिलने वाला है।
0: तो साथ ही आर्चरी में आज भारत को मेडल की आस है। स्क्वाश में भारतीय मेंस और विमेंस टीम सेमीफाइनल राउंड खेलेंगी। इसके अलावा जूडो, कुश्ती और साइकिलिंग में भी इंडियन एथलीट जलवा दिखाते आपको नजर आएंगे।
2: और इससे पहले कल यानी 11वें दिन एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला। भारत ने कल 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स भारत के नाम किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, फिलहाल 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज समेत भारत के कुल 60 मेडल्स हो गए हैं।
0: और पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर है। तीरंदाजी में भारत ने कंपाउंड इवेंट में 3 गोल्ड जीते। शूटिंग में भी भारतीय टीम का दमखम दिखा। नीरू धांडा और कायनन चेनाई की जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम फाइनल में गोल्ड जीता।
2: तो वहीं आपको बता दें, ये नीरू का इस बार के एशियन गेम्स में 2रा गोल्ड मेडल है। मेडल टैली में भारत अब 8वें स्थान पर पहुंच चुका है। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं बॉक्सिंग में प्रिया और कपिल पोखरिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
0: तो एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन करके लौटने वाले खिलाड़ियों का देश भर में भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद रोहतक की स्टार क्रिकेटर शेफाली वर्मा भी अपने घर पहुंची, तो परिवार और गांव ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। शेफाली वर्मा के घर पहुंचते ही खुशी का माहौल बन गया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने फूलों का बुके तैयार किया और उन्हें दिया। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी, उनकी उपलब्धि की सराहना की। वहीं जापान के नागोया में भारत ने एक बार फिर कबड्डी की ताकत का लोहा मनवाया है। एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को 40-34 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत में सोनीपत के खिलाड़ी आशु मलिक भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे। आशु मलिक के सोनीपत पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया।

0: तो वही एशियन गेम्स से जुड़ी हुई एक शानदार खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, स्क्वॉश में देश को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और साथ ही अनहद सिंह की टीम ने कमाल कर दिखाया है। भारत के पास अब तक कुल 61 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। ये गुड न्यूज सामने आई है। जापान में एशियन गेम्स चल रहा है और अब भारत का शानदार प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। स्क्वॉश में महिला टीम का कमाल देखने को मिला है। एक और मेडल भारत के नाम हो चुका है और अब मेडल टैली में भारत ऊपर पहुंच चुका है। आपको बता दें, 61 मेडल कुल भारत के पास हो चुके हैं, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। देखिए, अब लगातार एशियन गेम्स में भारतीय टीम का दबदबा कायम है। भारतीय टीम, खासतौर से महिलाएं, शानदार प्रदर्शन कर रही हैं एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स भारत के नाम कर रही हैं। एक और बड़ी उपलब्धि भारत को हासिल हुई है। स्क्वॉश में लगातार भारत मेडल्स जीत रहा है और एक बार फिर से महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक मेडल दिलाया है। एक और ब्रॉन्ज भारत के नाम हो चुका है और अब कुल मेडल्स की संख्या 61 पर पहुंच चुकी है। स्क्वॉश में महिला टीम का शानदार प्रदर्शन है, उनका कमाल है, जिसका ये नतीजा है। तो वहीं आपको बता दें, कल तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और एक के बाद एक गोल्ड मेडल्स भारत के नाम किए थे और आज महिला टीम ने ये शानदार प्रदर्शन किया है, जिनमें तन्वी, जोशना, अनहद की तिकड़ी ने मेडल जीता है और ये ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया है।
1: और गुवाहाटी के बरसापरा क्रिकेट स्टेडियम में कल रनों की जबरदस्त बारिश हुई। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में दोनों ओर से कुल 811 रन बने, 4 शतक और 1 दोहरा शतक भी आया और इस जबरदस्त मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। देखिए,
2: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 8 विकेट से मिली जीत सिर्फ जीत नहीं, महाविजय है। एक ऐसी महाजीत जिसका स्वाद टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट इतिहास के 52 साल में पहली बार चखा है। बुधवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रनों की बरसात हुई। सीरीज बचाने के लिए वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने 405 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मेहमान टीम की ओर से 1-2 नहीं, 3-3 शतक आए। पहले जॉन कैंपवेल, फिर शाई होप और उसके बाद आमिर जांगू ने भी शतक लगाया। इससे पहले भारत कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सका था। जाहिर है चुनौती कड़ी थी, इसलिए मोर्चा संभाला खुद कप्तान शुभमन गिल ने। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी हुई। इसी तूफानी पार्टनरशिप के दम पर भारत ने महज 26 ओवर में 250 का आंकड़ा पार कर लिया। रोहित शर्मा 75 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हुए। हिटमैन ने इस शानदार पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं शुभमन गिल दूसरे छोर पर डटे रहे, उन्होंने महज 133 गेंदों पर 223 रन की नॉट आउट पारी खेली और 26 चौके और 8 छक्के जमाए। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के आतिशी तेवर ऐसे थे कि गुवाहाटी की बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज पानी मांग रहे थे और टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से 43 ओवर और 3 गेंदों में 405 रन का विशाल लक्ष्य भेद दिया। खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद टीम इंडिया वनडे में ये कारनामा करने वाली दूसरी टीम बन गई है।
3: बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटेंस था मैच। हम लोग आए थे विराट कोहली के सेंचुरी के लिए और रोहित का भी बहुत ही बड़े हम लोग फैन है। जो भी हुआ, विराट का तो सेंचुरी नहीं हुआ लेकिन रोहित शर्मा का सेंचुरी हुआ, इसी के साथ शुभमन गिल का 200 हुआ। पूरा बहुत इंटेंस मैच था, बहुत अच्छा लगा मैच देख के हम लोग को।
4: शुभमन गिल का डबल सेंचुरी बहुत अच्छा लगा, ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा था, 255 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप गिल और रोहित शर्मा का, बहुत बढ़िया,
5: बहुत अच्छे ही खेला है, यही है, फिर अच्छा लगा आज का मैच।
2: इससे पहले भारत का सबसे सफल रन चेज 360 रन का था, जो उसने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। जाहिर है इस महाविजय के नायक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने वनडे में अपना दूसरा दोहरा शतक जमाया। खास बात यह भी है कि 2022 के बाद से शुभमन गिल को रिकॉर्ड दसवीं बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और ट्रेविस हेड जैसे दिग्गजों को पछाड़ा जिन्होंने 9 बार ये मुकाम हासिल किया। इसी महाविजय के साथ भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 14वीं वनडे सीरीज जीत हासिल की। बायलेटरल वनडे सीरीज में किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा वनडे जीतने का कीर्तिमान भी टीम इंडिया ने हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आज से दिल्ली में बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल और डीजल भरवाना मुश्किल होने वाला है। राजधानी में नो पीयूसी नो फ्यूल व्यवस्था लागू हो चुकी है और दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंप्स पर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप्स पर लगे कैमरे वाहन के नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और परिवहन विभाग के डेटाबेस से पीयूसी की वैधता को चेक करने वाले हैं। अगर किसी वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट वैध नहीं हुआ तो पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी और फिर ऐसे वाहन को पेट्रोल डीजल देने से मना कर दिया जा सकता है। हालांकि गाड़ी मालिक के पास मौके पर ही पीयूसी बनवाने का ऑप्शन भी होने वाला है। वो पेट्रोल पंप पर मौजूद प्रदूषण जांच केंद्र से सर्टिफिकेट बनवा सकता है। यानी अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल भरवाने से पहले पीयूसी की वैधता बेहद जरूरी है और नियम का उल्लंघन करने पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो आपको बता दें, प्रदूषण को कम करने के लिए ये तमाम नियम एक बार फिर से लागू कर दिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली में जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर निगरानी की जाने वाली है। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा।
6: अगर आप दिल्ली में हैं और आज आपको पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाना है तो पीयूसी आपको दिखाना पड़ेगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के पास जनपद पे इस पेट्रोल पंप पे हैं जहां अभी अभी रिफिलिंग हुई है। मैडम, आपने इनकी पीयूसी चेक की क्या?
7: नहीं चेक किया।
6: पीयूसी है आपके पास भाई साहब? आज नियम आपको पता चला कि आज से हर गाड़ी को पीयूसी दिखाना पड़ेगा तभी पेट्रोल डीजल रिफिल हो सकता है? नहीं पता जानकारी नहीं है, लेकिन यही रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग ग्राउंड पे आए हैं कि आखिरकार सरकार ने नियम तो लागू कर दिया है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरा जाएगा जिसका पीयूसी है, लेकिन क्या ग्राउंड पे वो चेकिंग हो रही है? एक और बाइक वाले आए हैं, अब उनसे हमने क्योंकि कहा कि पीयूसी है कि नहीं, चेक किया कि नहीं, तो पहली बार में आपको जवाब सुनने में आया। सर, पीयूसी आज चेक नहीं कर रहे हैं आप लोग?
8: मैनेजर साहब
6: इधर है, मैनेजर साहब से बात करते हैं हम लोग। भाई साहब, आज से नियम चेंज हो गया, पीयूसी चेक करके ही पेट्रोल डीजल भरना है, चेकिंग हो रही है?
8: सर, अभी हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। बाकी जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है वहाँ, जब वो बोलता है तो उस गाड़ी को हम नहीं देते हैं।
6: ओके,
8: जब तक पोल्यूशन ना हो।
6: आप बता रहे हैं जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं?
8: काम करता है, उसमें लगा हुआ पोल्यूशन में।
6: ओके,
8: जैसी गाड़ी आती है रोड से वो उसको कैच करती है और उसका नंबर बोलती है। अगर
6: गाड़ियाँ उससे मिस हो गई, वो
8: जो मिस हो गई तो हमारे पास आएगी नहीं, वो अब उसका हम क्या कह सकते हैं?
6: ओके, क्योंकि अभी आपके स्टाफ को भी नहीं पता है कि पीयूसी चेक करना है।
8: आया ही नहीं है ना, कोई सर्कुलर ही नहीं आया।
6: सर्कुलर नहीं आया,
8: सर्कुलर तो आएगा, हमें बताया जाएगा तभी हम कर सकते हैं ना। ये अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते कुछ भी।
6: ये नाम है आपका? सर,
8: दिनेश कुमार
6: जी। तो ये कह रहे हैं कि सर्कुलर नहीं आया है। सरकारी तंत्र के हिसाब से आज से दिल्ली में कम से कम जो 500 पेट्रोल पंप है जहां पे कैमरा इंस्टॉल्ड है कि किस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट है किसका नहीं है।
0: अक्टूबर का महीना सैलानियों के लिए शानदार खबर लेकर आया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज से जंगल सफारी का नया सीजन शुरू हो गया है। यानी आज से सरिस्का, रणथंबोर समेत कई टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी 3 महीने के मॉनसून ब्रेक के बाद राजस्थान के जंगल एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार होने वाले हैं। जंगल बंद रहने के दौरान वन विभाग की ओर से सफारी रूट और पर्यटकों से जुड़ी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया। राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स में हर साल मॉनसून के दौरान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटकों की नियमित सफारी बंद रहती है। इस दौरान जंगल के कोर एरिया में पर्यटन गतिविधियां रोक दी जाती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर बफर जोन में सफारी की अनुमति रहती है। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी से आई ये तस्वीर बताती है कि कभी कभी मासूमों की छोटी सी गुहार भी बड़ा असर कर जाती है। गांव में अंधेरा था और रास्तों पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो तीन मासूम बच्चे हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से गांव की रोशनी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बच्चों की अपील पर डीएम ने लाइट लगाने का आदेश दे दिया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजा गया और गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए गए और अब इस गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है।
9: आइए दिखाते हैं, किसी खंभे में भी लाइट नहीं है। दूसरा खंभा दिखाते हैं, ये देखिए, ये दूसरा खंभा है, इसमें भी लाइट नहीं लगी है। तीसरा खंभा है, खंभे में भी लाइट नहीं लगी है। ये चौथा खंभा है, इसमें भी लाइट नहीं लगी है। ये देखिए, ये पांचवा खंभा है, इसमें भी लाइट नहीं है। देखिए इधर जंगल है, इधर भी अंधेरा, कितना चारों तरफ अंधेरा है।
10: मेरा नाम असाय है, मेरे कुत्ते का नाम कंचन देव, मैं चकाई मधुपुर का रहने वाला हूँ। हमने डीएम अंकल से मांग की थी, हमारी मांग पूरी होगा, स्ट्रीट लाइट लग गई हमारे मोहल्ले में और अभी हमारे गांव में लग रही है लाइट। हमने डीएम अंकल से मांग की थी, हमारी मांग पूरी हो गई।
0: और हिमाचल प्रदेश विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मंडी जिले में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल का निर्माण किया गया। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कंट एंड कवर के स्थान पर बनाया गया, जिससे मंडी का थलौट बाजार में क्षतिग्रस्त हुआ फोरलेन का हिस्सा अब नए रूप में नजर आएगा।
11: हिमाचल, इस राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सुंदर वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ जाता है, जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन ये प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा भी लिखने जा रहा है। दरअसल मंडी जिला के थलौट में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। कीतरपुर मनाली फोर लेन प्रोजेक्ट के तहत इस बॉक्स टनल का निर्माण होगा, जिसके निर्माण कार्य को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
12: टनल बन रही है हमारी, ये बॉक्स आरसीसी बॉक्स टनल है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टनल है, ये नेचुरल हिल में टनल नहीं बन रही, आर्टिफिशियली बॉक्स हम आरसीसी का बनाएंगे। प्लस इस बॉक्स को हम केबल एंकर से जो है बेड उसका एम्बेड करेंगे हिल साइड में, उसमें साइड में भी रहेगी और बॉटम में भी इसमें केबल एंकर रहेंगे, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले। प्लस स्लोप में भी 70 मीटर हाइट तक हम इसकी केबल एंकर करके स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बनने के बाद जो है पूरा ये जो 500 मीटर का सेक्शन है जो डैमेज हुआ है, ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए।
11: ये आर्टिफिशियल टनल 500 मीटर लंबी होगी। इसका निर्माण ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। इस आर्टिफिशियल टनल का ढांचा सामान्य गोलाकार टनल की बजाय स्क्वायर होगा। इसके निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर की जगह पर ही बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद थलौट में फोर लेन यातायात व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप मिलेगा। बॉक्स टनल तैयार होने के बाद कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को इसी रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि कुल्लू मनाली से मंडी की तरफ आने वाला यातायात थलौट की पुरानी टनल से गुजरेगा। फिलहाल यहां बनाई जा रही प्रदेश की पहली बॉक्स टनल से इस पूरे हिस्से में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए बात करते हैं इंस्टा स्टोरी की। अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए तनीषा मुखर्जी की फनी इंस्टा स्टोरी।
13: का काम करती हूँ, घर में ही रहती हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती। कहीं मैं सिंड्रेला तो नहीं? गणेश जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक बात बता, जब मैं अकल बांट रहा था तो तुझे सकल के लाइन में कौन लगने बोला था?
0: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
15: किस तरह का आहार आपके विचारों पर असर डालता है, आहार में परिवर्तन करके विचारों को कैसे बदल सकते हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
19: श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से है। मेरे पागलो, आप श्राद्ध करके तो केवल 3 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते, लेकिन यदि श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार किया जा सकता है।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
20: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: एशियन गेम्स में भारत को मिला एक और मेडल, स्क्वैश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, भारत के पास अब तक कुल 61 मेडल। भारतीय पायलट स्मित मचार की बहादुरी की दुनिया मुरीद, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताया असली हीरो, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने की तारीफ, पीएम मोदी बोले कैप्टन स्मित मचार हीरो है, 180 लोगों की बचाई जान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बढ़ी सख्ती है, आज से वैलिड पीयूसी नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक, पुरानी गाड़ियों की चेकिंग शुरू। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद शुभारंभ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती, भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु।
20: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क बीएलडीसी फैंस।
15: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके आहार की और उससे जुड़े हुए विचार की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपको एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार के बारे में और आपके विचार के बारे में। हमारे जीवन में आहार की क्या भूमिका है? देखिए, जीव की मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप भले ही भोजन से, खाद्य पदार्थ से आहार ग्रहण न करें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे संत महात्मा प्रकृति से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो आहार ग्रहण करके, चाहे भोजन से चाहे इनडायरेक्टली, आप अपने शरीर में ऊर्जा पहुंचाते हैं और उस ऊर्जा से आपके शरीर का निर्माण होता है और काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाद विवाद से बचाव करें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। छोटी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से जो ये आहार है ये हमारे ऊपर असर डालता है। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का, मेंटल लेवल का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है। इस कोश की शुद्धि के बिना आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में हार्मोन्स आते हैं, रस का क्षरण होता है। हार्मोन जो है, रस जो है, ये हमारी सोच और हमारे विकास में परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पुरानी कहावत है, जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आहार से आपके मन पर, आपके विचारों पर और आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब हम ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी तामसिक आहार मानते हैं, सात्विक आहार नहीं कहेंगे। मांस मछली और मादक पदार्थ भी सात्विक आहार नहीं हैं। जो खाद्य पदार्थ स्टोर करके बेचे जाते हैं, डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी सात्विक नहीं हैं।

किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं? सभी प्रकार की अनाजें और सभी प्रकार की दालें ये सात्विक हैं। दूध और इनसे निर्मित पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे ये सामान्यतः सात्विक माने जाते हैं। सब्जियों में प्याज लहसुन को छोड़ करके ज्यादातर सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपका जो आहार है वो आपके स्वभाव पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर असर डालेगा। तो किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें खाइए, आपको लाभ होगा। रोटी जरूर खाइए और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिए और कच्चा प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाइए। इससे तामसिक स्थिति और आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती हो, तो दूध और दूध से बनी चीजें आपको खानी चाहिए। मशरूम और कंद ये अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हो, शरीर से परेशान हो, कोई ना कोई समस्या लगी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए और अनाज कम से कम खाइए। अगर आप बुरे विचारों से परेशान हो, निगेटिव थॉट्स से, अश्लील या बुरे विचारों से पीड़ित हो, तो मांस मछली प्याज लहसुन इसका सेवन ना करें और मसूर

की दाल से भी आपको परहेज करना चाहिए। यानी आप अगर अपने आहार में सात्विकता लाएं, थोड़ा सा अपने आहार में अगर आप परिवर्तन करें तो आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके सोच विचार और स्वभाव में सुधार होगा। अपने घर के दरवाजे पर कोई शुभ चिन्ह या स्वस्तिक लगाइए, ओम लिखकर लगाइए या स्वस्तिक लगाइए और घर से निकलते समय उसको स्पर्श करके, उसको छू करके घर से निकलिएगा। आप जिस काम के लिए निकलेंगे आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। कि अगर आप खेल कूद के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए और मेहनत करते जाइए, आपको खेल कूद के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कुछ दिन बाद शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक, उसकी खूबसूरती और भव्यता देखने लायक रहती है। दुर्गा पूजा यहाँ बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होने के साथ साथ बंगाली समाज की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और भाईचारे को भी दर्शाती आई है। देखिये

0: बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है। शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा बंगाल माँ दुर्गा के स्वागत में ऐसे सज उठता है मानो स्वयं देवी अपने मायके आई हों। माँ जगदम्बा को ही समर्पित भव्य पंडाल, आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं, धाक के गूंज, धुनुची नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाज इस उत्सव को एक अनूठी पहचान देते आए हैं। कुछ ऐसी ही छटा इस साल भी बिखेरने की तैयारियां हो रही हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान की हैं, जहां भव्य पंडालों को बनाने का काम शुरू हो गया है। मां की मूर्तियों को भी दिन रात की मेहनत के साथ आकार दिया जा रहा है, उनमें रंग भरा जा रहा है। ऐसे में पूर्व बर्दवान में प्रसिद्ध लालटू स्मृति संघ के इस निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल की थीम इस बार बालाजी पर आधारित है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर मिट्टी के कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई बहुत व्यस्त है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं इसको एक जो पूर्ण इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। त्रिकुति बालाजी जो मंदिर है बालाजी का, उसी का चीज है।
2: अच्छा, तो इस्तेमाल किया जा रहा है
1: इसमें, आपको देखिए वो प्लाई भी है, सनपैक भी है, प्लाईवुड भी है और वो सब तो उन लोग को कोई जो दरकार पड़ता है उसी से मिलते, फाइबर भी है, ये भी है।
2: कब तक ये तैयार हो जाने का?
1: मेरा ख्याल से तो हम लोग जो इनका काज का स्पीड बहुत बढ़िया है, देखिए ना कितना पूरा बना दिया। तो महालय का दिन ये लोग कर रहे।
0: पंडाल बनाने वालों के साथ ही मूर्ति कारीगरों के बीच भी कुछ ऐसा ही उत्साह दिख रहा है। मूर्तियां बनाने के काम में भले ही कुछ रुकावटें आ रही हैं, लेकिन बिना थके बिना रुके तेजी से काम जारी है। उद्देश्य है कि महालया से पहले मूर्तियां केवल बर्दवान ही नहीं बल्कि शहर से बाहर दूसरे शहरों के पंडालों तक पहुंचाई जाएं।
3: बहुत जोर से
2: रात दिन काम कर
3: रहा, रात दिन एकदम 1:30-2 बजे तक काम चल रहा है। दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है,
2: तभी बर्दवान का है या फिर बाहर
3: भी? ना थोड़ा इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
0: फिलहाल तो पूर्व बर्दवान शहर में बड़े बजट वाले सभी पूजा पंडालों में अभी से जबरदस्त हलचल है। पंडालों को भव्य बनाने की तैयारियां दिन रात हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये पंडाल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और भाईचारे को भी अभिव्यक्त करते आए हैं। तो पंडाल में सजी दजी माँ की पारंपरिक भव्यता और सजावट का प्रदर्शन करती अनुपम प्रतिमाएं तो अलौकिकता का अनुभव देती ही आई हैं। निश्चित तौर पर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि ये जीवन का उत्सव है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान से सुजाता मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: श्राद्ध पक्ष का पावन पर्व है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से है। मेरे पागलो, आप श्राद्ध करके तो केवल 3 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन यदि श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार किया जा सकता है। और श्राद्ध में भी श्रद्धा ना हो तो 3 पीढ़ी भी संभव नहीं। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध की उत्पत्ति ही श्रद्धा से हुई और बिना श्रद्धा के परमात्मा की प्राप्ति बहुत असंभव है। मुश्किल है। सतलुज नदी के तट पर भारत का जिसे मैनचेस्टर कहा जाता, ये लुधियाना अपने आप में अद्भुत नगरी है, लेकिन ये अब तक केवल अद्भुत नगरी थी, अब ये अभूतपूर्व नगरी हो गई जहां श्राद्ध पक्ष में हनुमान जी की कथा का आयोजन किया जा रहा। अद्भुत से अभूतपूर्व की यात्रा इस नगरी ने की, जहां पहले से ही वैष्णो देवी दरबार, दुर्गा माता मंदिर, सिंगला का शिवाला, गुरुओं की पुण्यमयी भूमि, नानक सर गुरुद्वारा, और आज शहीद ए आजम, देश का गौरव शहीद भगत सिंह का पुण्य स्मरण जन्मोत्सव है, जिसको पूरा भारत गौरवता के साथ मना रहा। ये वीर हमको शिक्षा देकर जाते, मेरे पागलों, भारत एक ऐसा देश है जहां के युवाओं में वीर है तो देवताओं में महावीर है। युवाओं के अंदर वीर है, वीरता है, तेज है, उत्साह है, इसलिए इनको वीर कहा जाता। क्या कहा जाता? वीर। पर हनुमान जी का एक नाम महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी। लेकिन हम वीरों के आराध्य महावीर हैं, और महावीर के जो आराध्य हैं उनका नाम रघुवीर है। हमारे आराध्य, हम सबके आराध्य, हम सब वीर हैं, हनुमान जी के सेवक, तो हम सबके आराध्य यदि महावीर हैं तो महावीर के आराध्य रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि व अंजनानंदन श्री हनुमान जी किसके आराध्य हैं? बोले कौम लांगम सीता समारोह प्रभु श्री राम के। उनको क्या कहा जाता? बोले रघुवीर कहा जाता। और रामायण की दृष्टि देखें तो रामायण में तीन वीर का वर्णन है। लक्ष्मण जी वीर है, जो कभी युद्ध से पीछे ना हटे उसे वीर कहते, तो लक्ष्मण जी वीर हैं। और जो कभी युद्ध हारे ना, उन हनुमान जी को महावीर कहा गया। और जो युद्ध के ही निर्माता हो उनको रघुवीर कहा गया। तो रामायण में भी तीन वीर का वर्णन है। मेरे पागलो, रामचरितमानस अद्भुत है, इसमें मर्यादा है, वीरता है, पुरुषार्थ है, कर्तव्य है, लेकिन ये रामचरितमानस को समझना कोई कठिन भी नहीं। तुलसीदास जी की वाणी से समझना तो बहुत सरल है, क्योंकि पका पकाया फल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में दिया। देखो, एक होता फल, फल को खाया जाता तो धोना पड़ता, धो करके उसमें याद रखना पड़ता, यदि बीज वाला फल है तो कहीं बीज ना खा जाए, जिस फल का ऊपर का छिलका नहीं खाना, वो छील कर खाएं, छोड़ कर खाएं, बड़ा सावधानी रखनी पड़ती। पर कई लोग ऐसे होते जो फल को पसंद नहीं करते, जूस पीते। हमें लगता वाल्मीकि रामायण यदि फल है तो उस वाल्मीकि रामायण का जो निचोड़ जूस है वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। एक गांव में क्या, लुधियाना में हमारा एक चेला रहता था चंगीलाल। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में बहुत सीधा साधा लुधियाना के पास व्यक्ति रहता था, बड़ा भक्त था, सीधा साधा। राजाओं का जमाना, पुराना समय, तो राजा जी के जो गुरु थे वो गांव आए, गुरु जी तो गुरु जी, अब राजा के गुरु जी, तो पूरे राज्य में हाहाकार हल्ला मच गया, शोर मच गया, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, तो पूरा गांव गया मिलने, तो पूरे गांव ने मिले, राजा साहब के गुरुजी हैं, गांव के गांव मिलने आए, तो एक गरीब आदमी जो था उसका नाम चंगीलाल था, उसने सोचा काश इन गुरुजी से हमारी दीक्षा हो जाएगी तो थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी, भक्ति बढ़ेगी और राजा के यहाँ पहुंच हो जाएगी, गुरुजी पहुंचे भाई हैं, राजा के गुरु हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। तो भीड़ बहुत थी गुरुजी के पास, रात को गया, हे गुरु महाराज हमें दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले अब रात हो गई है, फिर दोबारा आएंगे तब देंगे, कल हमें जाना है। और इतना कह के गुरुजी सो गए। अब इसको तो बड़ी खुजली, क्या पता दोबारा आए ना आए, हम दोबारा तक रहे ना रहे, पहले ही मर गए, बड़ी आफत हो जाएगी, जिंदा ना रहेंगे तो बिना दीक्षा लिए ही मर जाएंगे, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा, बड़ी झंझट। तो ये रात भर जागता रहा, सोया ही नहीं, सोचा सुबह से गुरुजी उठेंगे, नहाने जाएंगे, उसी वक्त दीक्षा लेंगे। तो सुबह सुबह की बात, गुरुजी उठे, अब आज जाना था गुरुजी को, तो लोटा लेकर समझ गए, सुबह सुबह, अब पहले पहले के जमाने में तो लोग खेतों में जाते थे, अब तो अटैच हो गई है, अटैच हो गए, रूम अटैच हो गए, अच्छा गजब का जमाना आया। पहले के जमाने में आदमी पेट साफ करने बाहर जाता था, सोना चांदी घर में रखता था, आज के जमाने में सोना चांदी बाहर रखता है, पेट साफ घर में करता है। बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा उल्टा। पहले के जमाने में लोग पेट साफ करते थे बाहर, सुबह सुबह लोटा लेकर बाहर जाते थे, और ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर साफ करने, पेट साफ करने सुबह सुबह से, घर में सोना चांदी गाड़ के रखते थे। अब आजकल सोना चांदी रखते हैं बैंक में, अब पेट की सफाई घर में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हम तो कभी कभी सोचने लगते कि कभी मान लो भूकंप आया और ऊपर से मिट्टी लगी, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो खुदाई करेगी, तो पहले तो वो पैर चलाएगी, धम्म धम्म आवाज आ रही, लगता है खूब सोना है यहां गड़ा हुआ धन है, जब खुदाई करेगी राम राम, तब पता लगेगा। तो पुराना जमाना, महात्मा जी सुबह सुबह से लोटा लेकर के खेत में गए, तो वो गांव का आदमी पीछे पड़ गया, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। अरे बोले भाई, सुबह सुबह दीक्षा नहीं दी जाती है, अभी स्नान ध्यान हमने किया नहीं, जा रहे हैं, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर हमें जाना है, अगली बार देंगे। अब वो तो पीछे पड़ गया, और गुरुजी सोचेंगे पीछा छोड़े तो हम पेट साफ करें, अब वो पीछे ही पड़ गया, गुरुजी आंगे आंगे, चेला पीछे पीछे, अब गुरुजी का दिमाग खराब, हर बार समझे, अरे भाई लौटो, लौट जाओ। बोला नहीं, हम तो दीक्षा लेके ही रहेंगे। गुरुजी बोले यहां कहां भाई, हम यहां जा रहे, तुम दीक्षा मांग रहे, चुप रहो, चले भगो, हम पेट साफ करने आए थे। बोला नहीं, हम तो दीक्षा ही लेके रहेंगे, क्योंकि वो आदमी लुधियाना का था। बोला हम तो दीक्षा ही लेंगे, हम नहीं माना। तो गुरुजी का दिमाग खराब, कम से कम 3 किलोमीटर दूर गुरुजी चले गए, अब वो पीछा छोड़े ना, अब भागे तो कुछ गुरुजी करें, पर वो भागे ही ना। अब गुरुजी को चढ़ी गुस्सा, उनने लोटा लिया, वो बोला गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी बोले मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, लोटा फेंकू मारूंगा तो खपाड़ यानी सिर फूट जाएगा। अच्छा चेला था सीधा साधा, उसे पता ही नहीं था दीक्षा कैसे होती, उसकी समझ में आया यही मंत्र है, हाँ यही गुरु मंत्र है। तो उसने कहा जय हो गुरुजी, वो चला गया। तो तो गुरु जी को लगा डर गया है। अब वो घर आया तो पत्नी ने कहा कि रात भर कहां रहे। अरे बोले गुरु जी ने बड़ी मुश्किल से मंत्र दिया है। अब मंत्र क्या दिया, अब ली उसने माला, मार हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, मार हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, मारी हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, मारी हो लोटा तो खपाड़ फूट जाई है, ये मंत्र जपे। पत्नी बोली ये कौन सा मंत्र है, बोले चुप रहे किसी को बताना मत, गुरु जी का मंत्र है। और गुरु जी ने कहा था गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, अब बताओ। यही मंत्र जपने लगा, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई। अच्छा गुरु जी तो चले गए, अब ये मंत्र जप करता रहा रोज 10-20 माला, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है, मारी हो लोटा खपाड़ फूट गई है। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी, जो राजा था वहां का, राजा के लड़का को भूत लग गए। तो बड़े बड़े जानकार सिद्ध तांत्रिक मांत्रिक झाड़ फूंक वाले गए, पर वो भूत भगे ही ना। तो राजा ने मुनादी करवाई कि जो हमारे लड़का के भूत भगा देगा उसे मन चाहा इनाम देंगे। इसने किसी पंडित जी से सुन रखा था कि गुरु मंत्र में वो ताकत होती है कि भूत तो भूत, जम के दूत भी भाग जाते। तो इसने सोचा हमारे पास तो मंत्र है, अभी भगाते। तो ये गया राजा से, बोला हम भूत भगा देंगे तुम्हारे लड़का के। तो बड़े बड़े जानकार पंडित बोले क्या भगाओगे, बड़े बड़े जानकार हार गए, तुम गांव के गंवार, तुम क्या भगाओगे, ध्यान से सुनना। ये बोला एक बार ट्राई कर लो, बोले ठीक है। तो लड़का लेटा था राजा का, ये गया कान में और कान पकड़ करके वही मंत्र बोला जो गुरुजी ने दिया था। कान में बोला सुन, मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। जो भीतर भूत था उसको लगा कि ये हमें पहचान गया, सो वो भाग गया, भाग गया। सो लड़का ठीक हो गया, अब ठीक हो गया तो अब राजा ही चरणों में गिरा, गुरु जी की जय हो। अब तो इसकी चांदी कट गई, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, बढ़िया। अब तो लंबी लंबी लेन लगने लगी, जैसे हमारे पास भीड़ लगती है भूत भगवाने की, ऐसे ही उसके पास भीड़ लगने लगी, बढ़िया। भूत भगाने लगा, किसी को ताबीज, किसी को भभूति, किसी को गंडा। अब ये खबर, राजा की खबर राजा के गुरु जी के पास गई कि एक ऐसा संत है जो राजा के लड़का को कोई ठीक नहीं कर पाया और कान में एक मंत्र से ठीक कर दिया। तो गुरुजी ने सोचा हम भी दर्शन करें। तो वो राजा के गुरुजी दर्शन करने आए, जो जिसने इन, जो इसने भी उनको ही गुरु मान रखा था। गुरुजी लाइन में लगे, लंबी लाइन लगी, इसने देखा अरे गुरुजी लाइन में, आने दो सीधा आने दो, गुरुजी हैं गुरुजी, और तुरंत चरणों में। अब गुरुजी हैरान कि हमने इसे चेला कब बनाया। तो भीड़ में तो गुरुजी कुछ ना बोले, रात को बोले हम आएंगे। और रात को गुरुजी आए, बोले बेटा तुम किसके चेला हो, बोले आप ही के। बोले दीक्षा कब दी, बोले गुरुजी याद करो पिछली बार जब आप लोटा लेके जा रहे थे। अब गुरुजी खूब दिमाग लगाए कि हमने दीक्षा दी कब है, रजिस्टर में चेक करवाया, रजिस्टर में नाम ही नहीं, क्योंकि सब चेलों के नाम लिख लेते, रजिस्टर में नाम नहीं। अब गुरुजी का बड़ा दिमाग है, बोले बेटा हमने दीक्षा कहां दी थी, बोले गुरुजी खेत में। अब गुरुजी का और दिमाग खराब कि हमने खेत में दीक्षा कब दी। तो गुरुजी बोले जरा कन्फर्म नहीं हो रहा हमारे कान में, तुम हमारा मंत्र बताओ, हमने कौन सा मंत्र दिया। सब गुरुजी के अपने अपने मंत्र होते हैं, किसी का ओम नमः शिवाय, किसी का ओम सीतारामाय नमः, ओम रामाय नमः, अथवा द्वादश अक्षर मंत्र होता है, सबके अपने अपने मंत्र होते हैं। तो गुरुजी बोले कन्फर्म नहीं हो रहा, जरा मंत्र बताओ कौन सा मंत्र दिया। बोले गुरुजी कान करो। गुरुजी ने जैसे ही कान किया सो ही बोला मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। अब गुरुजी का दिमाग खराब, बोले ये मंत्र तो किसी वेद ही में नहीं है। तो चेला बोला चाहे वेद में हो या ना हो, हमने तो यही मंत्र जप के राजा के भूत भगा दिए हैं। यही मंत्र जप कर हमने राजा के भूत भगा दिए। गुरुजी बोले बेटा ये मंत्र हमने दिया कब? बोले गुरुजी याद करो जब आपका एकदम पेट भयंकर लगी थी, आपको फ्रेश होने की खुजली चढ़ी थी, तब हमने मांगा था गुरुजी मंत्र दे दो, तब आपने कहा था मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। गुरुजी समझ गए, बोले अब हमें पूरी तुम वही हो जो पीछे पड़ गए थे दीक्षा के? बोले हाँ हाँ हाँ वही है भाई। तब गुरुजी हाथ जोड़ के बोले भैया हम इतने मंत्र जपत जपत मर गए, आज तक भला नहीं हुआ, आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, दूसरे का तो छोड़ो, पर धन्य है तू, एक बहुत अच्छी तूने शिक्षा दे दी कि यदि पूरे भरोसे के साथ गुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द यदि जोर के भरोसे के साथ कह दिया जाए तो वो भी मंत्र नहीं महामंत्र बन जाता है। इसलिए शास्त्र कहते विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फलीभूत होता है। लुधियाना के पागलो यदि तुम्हारा भरोसा बजरंग बली पर होगा तो बजरंग बली को तुम पर कृपा करनी ही पड़ेगी। बोलो सीताराम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वही फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
10: सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने, इस उम्र में फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
0: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत को अब तक मिले 2 मेडल्स, मनु और प्रिंस की जोड़ी ने सेलिंग में सिल्वर दिलाया, स्क्वॉश महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी की दुनिया मुरीद हुई, इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने बताया असली हीरो, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की, पीएम मोदी बोले कैप्टन स्मिथ मछार हीरो हैं, 180 लोगों की जान बचाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बढ़ी सख्ती, आज से वैलिड पीयूसी नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक लगी, पुरानी गाड़ियों की चेकिंग शुरू हुई। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद शुभारंभ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती, भजन और कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले एशियन गेम्स से जुड़ी हुई शानदार खबर आपको बता दी। भारत ने 2026 एशियन गेम्स में सेलिंग में अपना पहला मेडल जीत लिया है। आज प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिसी की जोड़ी ने पुरुषों के स्किफ इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 62 मेडल्स हो चुके हैं, जिनमें गोल्ड की संख्या 10 है और सिल्वर 22, जबकि 30 ब्रॉन्ज मेडल्स भारत के नाम है। ये बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। प्रिंस और मनु की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। भारत के पास अब कुल मेडल्स की संख्या 62 हो चुकी है। इससे पहले स्क्वाश में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं कल बैक टू बैक तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने के बाद आज भी भारत का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: एशियन गेम्स में भारत की अच्छी शुरुआत, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल, महिला स्क्वाश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला सेलिंग में पहला मेडल, सिल्वर से खुला खाता। पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में मनु फ्रांसिस ने दिया कमाल का प्रदर्शन किया, तो वहीं जोड़ी के तौर पर प्रिंस नोबल ने भी दिया साथ। महिला स्क्वाश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, तन्वी खन्ना, जोशना चुनप्पा, अनाहत सिंह की टीम ने कमाल किया। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 22 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, कुल मेडल्स की संख्या 62 हुई। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने गांव रोहतक पहुंची क्रिकेटर शेफाली वर्मा, हुआ जोरदार स्वागत। शिफाली के घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता, शिफाली बोली एशियन गेम्स में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर रहना उनके लिए गर्व की बात है। एशियन गेम्स में रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद किरण पहल के घर पर रौनक देखने को मिली, देश के लिए गोल्ड जीतकर परिवार का नाम भी रोशन किया। सोनीपत में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल के घर बांटी जा रही है मिठाई, कंपाउंड आर्चरी की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न का माहौल। आज से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में स्थित खेल परिसर में यमुना प्रहरी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, परवेश वर्मा ने जानकारी दी। गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेज, 2 विकेट खोकर 406 रनों का टारगेट को आसानी से पीछा किया, 44वें ओवर में जीता मैच। कैप्टन शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगाया सबसे तेज दोहरा शतक, शुभमन ने लगाया करियर का दूसरा दोहरा शतक। शुभमन गिल ने बनाए 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कैप्टन शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। रोहित शर्मा ने भी खेली शतकीय पारी, 75 गेंदों में बनाए शानदार 101 रन। विराट कोहली ने खेली 19 गेंदों पर 29 रनों की तेज पारी, विराट ने अपनी पारी में जड़े 3 चौके और 6 एक छक्के। इससे पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 405 रन, वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों ने लगाए शतक। वेस्टइंडीज के लिए कैंपबेल, शाय होप और अमीर गंजू ने लगाया शतक, वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा और गुरनूर को मिले 2-2 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज रहे कुलदीप यादव।

0: هيرو. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय पायलट स्मिथ मचार की तारीफ की. डोनाल्ड ट्रंप ने स्मिथ को बताया हीरो. फ्लाइट कैप्टन स्मिथ मचार की बहादुरी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान. 180 यात्रियों के लिए बने देवदूत. फ्लाई दुबई की फ्लाइट में कैप्टन स्मिथ मचार ने दिखाई बहादुरी. गंभीर चोट लगने के बावजूद विमान को संभाला. गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहा के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया. 12 दिनों में चढ़ाया गया कुल 6,11,96,500 रुपए का दान. चरण स्पर्श और मुख दर्शन की लाइनों में रखी दान पेटियों में 2,42,40,000 रुपए जमा हुए, जबकि विसर्जन के दौरान दान पेटी के जरिए 16,14,500 रुपए जमा हुए. पंडाल में दान की गई चीजों में धनराशि के साथ सोने की ईंट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी शामिल दिखे. इस साल एक अज्ञात भक्त ने लालबाग चौराजा को 1 किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईंट भेंट की. इस सोने की ईंट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है. वहीं बापा को 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम गणेश प्रतिमा भी भेंट की गई, जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए है. पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज हुई. मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर. पूर्व वर्धमान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने और सवारने में जुटे हुए हैं. पूर्व वर्धमान में मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने का भी काम तेज है. अंतिम चरण में पंडाल की तैयारी. पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला. विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती. भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया. तीन महीने बाद आज से रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला. पहले दिन पहुंचे सैकड़ों देशी और विदेशी पर्यटक. तिलकमाला से पर्यटकों का किया गया स्वागत. राजस्थानी अंदाज में स्वागत के साथ लोक नृत्य और संगीत ने माहौल को खास बनाया. रंगोली और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच सफारी वाहनों को जंगल के लिए किया गया रवाना. बाघ समेत अन्य वन्य जीवों के दीदार और जंगल की खूबसूरती को देखने के लेकर पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह. रणथंभौर के पर्यटन सीजन के पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की भी सफारी के लिए पहुंचने की तस्वीरें आई सामने. प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को करीब से देखने का बच्चों में दिखा उत्साह. मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता. बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू हुई जंगल सफारी. पूजा पाठ के बाद नेशनल पार्क का शुभारंभ हुआ. जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके पढ़ने
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद. तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है. मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना. मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना. आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर. अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर

0: इरका रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: दर्शन है भारत की भव्यता।
8: यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे, दिल्ली के भारत मंडप में खास प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत को अब तक मिले 3 मेडल्स, मनु और प्रिंस की जोड़ी ने सेलिंग में सिल्वर दिलाया, स्क्वॉश महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, तीरंदाजी में गणेश मणि को कांस्य पदक। भारतीय पायलट स्मिथ मचार की बहादुरी की दुनिया मुरीद हुई, इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने बताया असली हीरो, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की, पीएम मोदी बोले कैप्टन स्मिथ मचार हीरो हैं, 180 लोगों की जान बचाई थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बढ़ी सख्ती, आज से वैलिड पीयूसी नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक, पुरानी गाड़ियों की चेकिंग शुरू। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद शुभारंभ।
9: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी। हाँ?
10: इसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
11: अरे यार
12: संसार पे होगा।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बात करते हैं नई नवेली की। बॉलीवुड में एक बार फिर से एक ऐसी कहानी दस्तक देने जा रही है जिसमें रोमांस, रिश्ते और ड्रामा का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इवेंट में सितारों का ग्लैमर भी दिखा और खूब मस्ती भी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही यामी गौतम की खास एंट्री की, जो मूवी में बवाल मचा देने वाला है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान नई नवेली दुल्हन के अंदाज में यामी गौतम ने जैसे ही एंट्री ली पूरा माहौल ही बदल गया। फिल्म का ट्रेलर भी काफी धमाकेदार है। ट्रेलर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर भी फिल्म और स्टार कास्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दर्शकों को कहानी में क्या नया देखने को मिलेगा, इसकी झलक ट्रेलर में साफ दिखाई दे रही है। और खास बात है कि फिल्म की टीम ने ट्रेलर लॉन्च को सिर्फ एक प्रमोशनल इवेंट नहीं रहने दिया, बल्कि इसे यादगार बनाने की पूरी कोशिश की है। स्टार्स का ग्लैमर, ट्रेलर की झलक और यामी की स्पेशल एंट्री ने फिल्म को इवेंट में चार चांद लगा दिए हैं।
1: भाभी, डायन है।
2: भाभी, आलतेम पांव रखिए ना, हम भी तो देखें आपके शुभ चरणों के प्रिंट सीधे हैं या
3: नई नवेली बहू पर डायन होने का शक।
4: पंडू, बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
3: यामी गौतम का रहस्यमय अवतार।
5: काया ही पलट कर दी। हाँ,
6: इसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
3: फैंटेसी और कॉमेडी का लगने वाला है तड़का।
7: ये सब क्या क्या बनाया बेटा, आप लोग समझ आ रहा है कुछ है? कितना सर्वगुण संपन्न कुछ कैसे हो सकता है, सोचो ना यार।
1: वही तो वजह होगी भैया।
3: यामी गौतम अब ऐसी नई नवेली बनकर आ रही हैं, जिसे देखकर भूत प्रेत भी शायद अपना रास्ता बदल ले। उनके आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म नई नवेली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में यामी मोहिनी के किरदार में नजर आ रही हैं और उनकी एंट्री ही ऐसी है कि पूरा माहौल सेट हो जाता है।
8: अरे यार,
3: कहानी मेरठ के एक परिवार की है जिनकी सामान्य जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब परिवार के एक सदस्य को अपनी परफेक्ट से दिखने वाली भाभी पर शक होने लगता है। क्या वो सच में डायन है या फिर इस रहस्यमयी बहू के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसका अंदाजा परिवार को भी नहीं है।
9: ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है?
10: त्रेता युग में शक्ति को पाने के लिए एक राक्षस ने अपनी जान लगाई।
3: यामी फिल्म में पारंपरिक साड़ी पहने एक नई नवेली दुल्हन के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन उनका ये मासूम सा अंदाज सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है उनका एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। रावण, रावण।

0: इसके फर्स्ट लुक पोस्टर में भी यामी साड़ी पहने राक्षसी जीवों से लड़ते और उन्हें खत्म करते हुए दिखी थी। अब ट्रेलर ने उनके किरदार को लेकर रहस्य और भी बढ़ा दिया है। नई नवेली को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है। यामी गौतम के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि वो इनमें अपने अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं। रिलीज हुई नई नवेली के ट्रेलर को देखकर सवाल उठता है कि आखिर भाभी सच में डायन है या फिर छिपा है ऐसा कोई राज जो पूरी कहानी बदल देगा। इस राज से पर्दा उठेगा 16 अक्टूबर यानी दशहरा के मौके पर, यानी जब नई नवेली सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के लिए एक अनोखा इवेंट किया जिसमें यामी समेत दूसरे सितारों की एंट्री शानदार रही। खासतौर से फिल्म की मेन लीड यामी गौतम की ग्रैंड एंट्री हुई जिसमें ढोल ताशों और फिल्म के गानों की धुन पर यामी इवेंट में पहुंची और फिल्म के दूसरे मेकर्स और एक्टर्स के साथ फोटोशूट कराया। इवेंट में धमाल भी था, मस्ती भी थी और लाफ्टर का डोज भी था। सुगंधा मिश्रा ने जहां स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस दी तो वहीं पर यामी के साथ उनका बैंटर भी देखने को मिला। देखिए।

कमाल, क्या फुल ऑन एंटरटेनमेंट है बॉस। एक तरफ शादी का जश्न, दूसरी तरफ इतना बड़ा राज, और बीच में कॉमेडी, फैंटेसी, फैमिली ड्रामा, एडवेंचर, सब कुछ एक साथ, फुल ऑन मसाला, वाओ। और यहाँ अवसी अवसी परिवार के साथ जितना क्योस है ना, मुझे लगता है कि इनको अवस्थी परिवार नहीं, अव्यवस्थित परिवार कहना चाहिए। है ना, मतलब मैं तो बोलूंगी यार, एकदम मम्मी डैडी, दादा दादी, चाचा चाची, पूरे फैमिली के साथ देखकर जाने वाली फिल्म है ये, है ना। तो मजा तो आने वाला है, मैं भी फुल फैमिली देखने जरूर आने वाली हूँ ये फुल फिल्म। वैसे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? एकदम कड़क ना। एक मिनट, आप लोग मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? नहीं, मेरे पैर सीधे हैं। वो ट्रेलर देख के शक आ जाता है ना, शक आ जाता है ना। जैसे हमारी मोहिनी के देवर जी, उनको हमेशा शक रहता ही है। खैर, होता है, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं सनरीटा। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं चाहती हूं यहां पर ये बताना कि अगर डायन हमारी, आप सब देख सकते हैं, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी, यामी गौतम जी जैसी, तो मुझे लगता है कि कोई भी अपने घर के बाहर ये नहीं लिखवाएगा कि भाई नींबू मिर्ची नहीं लगवाएगा, सब लोग ये लिखवाएंगे, वेलकम होम। मैं तो ऐसे ही करूंगी, इतनी प्यारी डायन है। तो चलिए मिलते हैं हमारी खूबसूरत नई नवेली बहू से, जो एक डायन, दो पिशाच और चार भूत तो नाश्ते में ऐसे खा जाती है। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इस फिल्म।

0: जहाँ हम खड़े होते हैं वही सेंटर हो सकता है। चलिए आपने रिक्वेस्ट किया तो आप सही हैं।
1: क्या बात है, क्या बात। सबसे पहले तो मैम नेशनल अवार्ड के लिए मेनी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो एवरीबॉडी प्लीज। यामी जी, जितनी आप खूबसूरत हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है आपको देखकर कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होगी ऑब्वियसली। जैसा कि वो होता है ना एवोकाडो टोस्ट एंड ऑल, और वो सब्जी होती है ना एक गोभी की, वो बहन जो फॉरेन पढ़ने गई थी, ब्रोकली ब्रोकली या ब्रोकली, वो सब खाती होंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल। बट ट्रेलर में देख के तो आपकी डाइट वो क्या दो पिशाच चार क्या था वो मैम, वो मतलब कैसे ऐसे आप डाइजेस्ट कैसे कर लेती हैं? आपका ट्रेनर कुछ कहता नहीं?
0: सुगंधा, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई विश मैं आपकी जितनी स्पॉन्टेनियस होती इन सब सवाल जवाब और बैंटर में, बट मैं नहीं हूँ, तो आई जस्ट कम टू द पॉइंट जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और सिर्फ इतना कह सकती हूँ, I'm a person of very, very few words. I don't think I've ever been known for my communication skills that much.
1: You're being so grounded.
0: I just like to say, it मेरे मुझ जैसे एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है जब इतने वरिष्ठ, इतने acclaimed फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव हेड्स faith दिखाएं, कॉन्फिडेंस दिखाएं कि इस तरह की फिल्म कर सकते हैं। और खासकर आज के दौर में जहाँ पर मैं इस चीज़ को एक अच्छा चैलेंज मानती हूँ कि हमें नहीं पता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, हमें नहीं पता कौन सी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, वो सब बात की बातें हैं, पर फिल्म करने में मज़ा आएगा कि नहीं, कुछ सीखेंगे कि नहीं। रोज़ आप घंटों काम करते हैं, 20-20 घंटे हम लोग काम करते हैं, बट काम काम की तरह ना लगे और लगे कि कुछ मज़ा आ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, एंड आई थिंक दैट्स द मार्क ऑफ अ ग्रेट टीम। सो थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू सो मच बालाजी सर, हिमांशु, एवरीबडी एवरीबडी हुज यू नो मेड दिस हैपन, टू माई एंटायर फैमिली द अवस्थीज हु आर नॉट लुकिंग लाइक अवस्थीज टूडे बिकॉज मोहिनीज एंटर्ड देयर लाइफ, सो देयर लुकिंग फुल ऑल डिजाइनर वेयर एंड ऑल, बट थैंक यू सो मच। और मुझे पता है आप लोग ओपन हाउस की वेट कर रहे हैं।
1: हमें भी पता है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट एक एक मिनट यामी जी, एक रिक्वेस्ट है, मेरे इधर थोड़ा सा हाथ रख दीजिए प्लीज, इधर ये सर्वाइकल प्लीज प्लीज प्लीज थोड़ा ये सर्वाइकल,
0: गली मिले गली मिले,
1: एकदम एकदम एक सेकंड, सारा दर्द गायब हो गया, सारा दर्द, बहुत ऐसे कब से ऐसे टाइट टाइट लग रहा था। नहीं मतलब ये मैजिकल शक्तियां, मैंने देखा ट्रेलर में कैसे दादी जी के घुटनों का दर्द आपने गायब कर दिया, और ये ऐसी कैसी डायन जो सबका भला कर रही है, मतलब आपको कैसा लग रहा है? मतलब मुझे पता है रिवील तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मतलब शक्तियों वाली भले करने वाली डायन है या क्या, थोड़ा सा कुछ हमें हिंट दीजिए।
0: देखिए, एक बहुत ही यूनिक लाइन है जो मैं बोलने जा रही हूँ कि ये जानने के लिए देखिए आप, नई नवेली रिलीज हो रही है 16 अक्टूबर को आपकी नज़दीकी सिनेमा घरों में, इन थिएटर्स नहीं होगी।
1: लेकिन मैम मैं ना ट्रेलर देख के समझने की कोशिश कर रही थी कि ये पल में मुझे लग रहा था कि यार कितनी भोली भाली, क्या नई नवेली बहू है ये, और फिर मुझे डर भी लग रहा था, तो ये जो मिक्स फीलिंग है ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है, करने के वक्त आपको मतलब ऐसे स्विच ऑन ऑफ कैसी फीलिंग हो रही थी, मतलब एक पर्सनल लेवल पे जानना चाहूंगी क्योंकि मेरा तो रोज का है।
0: देखिए ये सवाल ऐसा, इस पे तो घंटों बातें हो सकती हैं, बट ये आई थिंक एक मिस्ट्री रहने देते हैं कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं ये सब, एंड इसके पीछे हम लोग ऑफकोर्स चेहरा हमारा है, बट बाय दिस टाइम वी नो, द ऑडियंस नोज, वो उन सबके रिस्पॉन्स से पता चलता है कि अच्छा ये कोरियोग्राफी कैसी है, ये एक्शन कैसे किया, ये मेकअप एंड साउंड एंड एवरीथिंग, तो उसके पीछे जो म्यूजिशियंस हैं वो फर्स्ट रो में यहाँ बैठे हैं और भी बहुत सारे हैं जो इस वक्त पोस्ट में लगे हैं, सो इट्स ऑल देम, वी आर जस्ट प्रेशन, और सो कूडोज टू देम फॉर क्रिएटिंग दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड जिसके लिए लोग एक ऐसे ही हॉल में अनजान लोग आसपास एक साथ बैठते हैं, और एक कम्युनिटी वॉच का जो मजा है मेरे लिए आई थिंक सबसे ज्यादा, मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ, ऑफकोर्स एक्टर बाद में हूँ, पहले एक ऑडियंस हूँ, मजा आना चाहिए आप वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, तो मजा आना चाहिए ना कि पिक्चर देखने जाना है, पॉपकॉर्न की वो खुशबू, हम तो 90s के हैं,
1: क्या बात है
0: ना, तो जब वो ₹5 के पॉपकॉर्न और ₹5 की,
1: लेकिन सॉरी मुझे लगता है यहाँ पे पॉपकॉर्न वालों को नुकसान होने वाले क्योंकि इनके मुंह खुले के खुले रहने वाले हैं। तो फिर भी पॉपकॉर्न ले लेना.
0: तो आइडिया बस वो है, हमें नहीं पता. ऑफ कोर्स वी आर ओनली होपिंग फॉर द बेस्ट कि एक फैमिली फैंटेसी एंटरटेनर है तो खूब आप, दैट मींस कि हम चाहते हैं ये कम्युनिटी वॉच, फैमिलीज फ्रेंड्स, आप जिसके साथ आप देखना चाहें आप जरूर देखें और साथ में मिलकर बैठ कर देखें. जरूरी है कि अब दोबारा आई थिंक थिएटर्स विच इज हैपनिंग ऑल्सो वापस भरे, लोग मजा करें, इंजॉय करें. जैसे बोलते हैं एक टर्म है पैसा वसूल, वो फीलिंग आनी चाहिए कि मजा आया फिल्म देख के.
2: तो इस इवेंट में फिल्म के स्टार्स ने तो समा बांध ही दिया, साथ में सुगंधा मिश्रा के लाफ्टर का तड़का भी देखने को मिला. तो वहीं आपको बता दें ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सुगंधा और बाकी स्टार्स के बीच मजेदार बातचीत की तस्वीरें हैं.
1: ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं स्टेज पर हूँ और ऑडियंस लेट के मुझे सुन रही है. समथिंग न्यू. आपके साथ भी पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, मुझे लगा कि आपको शायद आदत हो गई. शौक, बड़े बड़े लोग बड़े शौक. एनीवे मजा आने वाला है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सबसे पहले नमस्ते नमस्ते नमस्ते हमारे सभी दोस्तों को और आप सबका नई नवेली के इस खास जश्न में बहुत बहुत बहुत स्वागत है. तो भाई बाहर ढोल भी बज चुके हैं, आरती भी हो गई है और हमारी जो बहू रानी है नई नवेली उसका भी ग्रैंड वेलकम हो गया है. तो मैंने सोचा जरा हमारे खास मेहमानों का भी वेलकम कर लिया जाए. आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्या बात है. वैसे अपने बारे में बता दूं, मैं हूं सुगंधा मिश्रा, अवस्थी परिवार की बहुत दूर की रिश्तेदार. इतनी दूर की रिश्तेदार कि कास्टिंग के टाइम पर मैं पहुंच ही नहीं पाई. इसलिए फिल्म में नहीं हूं लेकिन ट्रेलर के टाइम पे एकदम बराबर ऑन टाइम पहुंच गई हूं मैं. वैसे आज का दिन बहुत स्पेशल है. क्या है ना, नॉर्मली नई नवेली दुल्हन जो होती है उसकी एंट्री मायके से सीधा ससुराल में होती है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर नई नवेली दुल्हन सीधा बड़े पर्दे पर एंट्री मार रही है. तालियां होनी चाहिए इस बात पर यार. अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो आपको पता है ना, ये जो नया नया फ्रिज आता है स्पेशली हमारे स्मॉल टाउन्स में, नया नया फ्रिज, नए फ्रिज की अनबॉक्सिंग और हमारी नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई, दोनों में सेम माहौल होता है. पूरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए देखने के लिए अंदर से कैसी है. है ना, एक दो हंसी आई, उनके साथ शायद रियल में हुआ है. अच्छा, एक और बड़ी एक कॉमन सी एक चीज है जो हम सब करते हैं, एक्सपेक्टेशंस है. स्पेशली घर वाले है ना, बहुओं से, नई नवेली बहू से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं. मतलब उनको लगता है कि ये नई नवेली बहू है तो संस्कारों में एकदम रस मलाई की जैसे भीगी हुई होनी चाहिए. मतलब वो अगर फूंक भी मारेगी ना तो सीधा शंख की आवाज आएगी.
2: तो यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के लिए एक अनोखा इवेंट किया जिसमें यामी समेत दूसरे सितारों की एंट्री भी शानदार रही. खास तौर से फिल्म की जो मेन लीड हैं यामी गौतम, उनकी शानदार एंट्री हुई, ग्रैंड एंट्री हुई. ढोल ताशों और फिल्म के गानों की धुन पर यामी इवेंट में पहुंची और फिल्म के दूसरे एक्टर्स के साथ उन्होंने फोटोशूट कराया. इस ग्रैंड इवेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यामी गौतम की एंट्री की तस्वीरें. कुछ खास अंदाज में इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है. फिल्म का नाम नई नवेली, जिसमें यामी गौतम मेन लीड और बहू का किरदार निभा रही हैं. हॉरर कॉमेडी फिल्म है यामी गौतम की नई नवेली फिल्म, जिसमें फैमिली ड्रामा दिखाया गया है. फैमिली वॉच फिल्म में से बताया जा रहा है, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ और बेहद ही धूमधाम के साथ एक अनोखे अंदाज में ढोल ताशों की थाप पर यामी की यहाँ पर एंट्री करवाई गई. तमाम फिल्म स्टार्स ने यहाँ पर समा बांध दिया, पूरी कास्ट यहाँ पर पहुंची हुई थी और मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के लिए एक अनोखा इवेंट किया. तो इस ग्रैंड इवेंट में जो ट्रेलर लॉन्च किया गया है उसकी झलक आपको दिखाते हैं।
3: भाभी आलतेम पाँव रखिए ना, हम भी तो देखें आपके शुभ चरणों के प्रिंट सीधे हैं या
4: पंटू। बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
5: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी। हाँ?
6: इसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।

0: बात कर रहे हैं, कुछ सोच ही कर रहे होंगे ना, क्या बिल्कुल घुइया है क्या हम?
1: गलत जना प्रभा बाप दस्तले
2: आयन ने असली रूप में
3: अरे यार तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई डायन।
0: भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अबे डीमन नहीं है, विशुद्ध भारतीय डायन है, हनुमान चालीसा पढ़ो।
4: ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है?
3: त्रेता युग में शक्ति को पाने के लिए एक राक्षस ने अपनी जान लगा दी। नाम तो सुना ही होगा, रावण।

0: आखिर तुम कौन हो बेटा?
1: वो सब छोड़ो मम्मी जी, आप सिर्फ मजे लो।
2: अरे मोहनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी। हाँ?
3: इसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
0: अरे यार,
4: संसार पे होगा।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: हिमाचल प्रदेश विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मंडी जिले में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल का निर्माण किया जा रहा है और इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर के स्थान पर बनाया जाएगा, जिससे मंडी का थालोट बाजार में क्षतिग्रस्त हुआ फोर लेन का हिस्सा अब नए रूप में नजर आने वाला है।
2: हिमाचल, इस राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सुंदर वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ जाता है, जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन ये प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा भी लिखने जा रहा है। दरअसल मंडी जिला के थलौट में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। कीतरपुर मनाली फोर लेन प्रोजेक्ट के तहत इस बॉक्स टनल का निर्माण होगा, जिसके निर्माण कार्य को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
3: टनल बन रही है हमारी, ये बॉक्स आरसीसी बॉक्स टनल है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टनल है, ये नेचुरल हिल में टनल नहीं बन रही, आर्टिफिशियली बॉक्स हम आरसीसी का बनाएंगे। प्लस इस बॉक्स को हम केबल एंकर से जो है बेड उसका एम्बेड करेंगे हिल साइड में, उसमें साइड में भी रहेगी और बॉटम में भी इसमें केबल एंकर्स रहेंगे, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले। प्लस स्लोप में भी 70 मीटर हाइट तक हम इसकी केबल एंकर करके स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बनने के बाद जो है पूरा ये जो 500 मीटर का सेक्शन है जो डैमेज हुआ है, ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए।
2: ये आर्टिफिशियल टनल 500 मीटर लंबी होगी। इसका निर्माण ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। इस आर्टिफिशियल टनल का ढांचा सामान्य गोलाकार टनल की बजाय स्क्वायर होगा। इसके निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर की जगह पर ही बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद थलौट में फोर लेन यातायात व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप मिलेगा। बॉक्स टनल तैयार होने के बाद कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को इसी रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि कुल्लू मनाली से मंडी की तरफ आने वाला यातायात थलौट की पुरानी टनल से गुजरेगा। फिलहाल यहां बनाई जा रही प्रदेश की पहली बॉक्स टनल से इस पूरे हिस्से में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: दिल्ली में यूपीएससी का शताब्दी समारोह भारत मंडपम में खास प्रदर्शनी का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में की शिरकत। एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत को अब तक मिले 3 मेडल, सेलिंग में आया सिल्वर, स्क्वैश और आर्चरी में ब्रॉन्ज। विमान क्रैश होने से बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक ने की तारीफ, प्रधानमंत्री मोदी ने की उनके जल्द ठीक होने की कामना। इस बार दिल्ली में दोगुना होगा दिवाली का जश्न, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री को दी मंजूरी, पटाखों को फोड़ने के समय को लेकर आएगा अगला आदेश। तीन महीने बाद रणथंभौर में फिर लौटा जंगल सफारी का रोमांच, विदेशी सैलानी भी ले रहे मजा, पर्यटकों ने किया टाइगर का दीदार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नई हैं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: एशियन गेम्स में भारत की अच्छी शुरुआत, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में जीता सिल्वर भारतीय कंपाउंड आर्चरी और महिला स्क्वॉश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला सेलिंग में पहला मेडल, सिल्वर से खुला खाता, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने किया कमाल। महिला स्क्वॉश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, तन्वी खन्ना, जोशना चिन्नप्पा, अनहत सिंह की टीम ने भी कमाल करके दिखाया। भारतीय कंपाउंड आर्चर में गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, 8वें स्थान पर पहुंचा भारत। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 22 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज मेडल शामिल कर लिए हैं अपनी मेडल टैली में, कुल मेडल की संख्या हुई 63।
4: गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहे के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, 12 दिनों में चढ़ाया गया कुल 6,11,96,500 रुपए का दान।

0: पंडाल में दान की गई चीजों में धनराशि के साथ सोने की ईंट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी शामिल। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। पूर्व बर्दवान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती।
1: मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी। पूजा पाठ के बाद नेशनल पार्क का शुभारंभ हुआ, जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे। दिल्ली के मैत्रेयी कॉलेज में परंपरा से प्रगति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम रेखा गुप्ता हुई इसमें शामिल। दिल्ली में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन हुआ, सीएम रेखा गुप्ता इसमें पहुंची। आंध्र प्रदेश में ओंगोल के 150 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया, ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू इसमें शामिल हुए।
0: भारतीय पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी की दुनिया मुरीद, इजराइल और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने की उनकी तारीफ। चोंगकिंग में 2026 हॉटपॉट फूड कार्निवल शुरू हुआ, 10 मीटर चौड़े विशाल हॉटस्पॉट में लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया। नेहरू में जगमगाती नावों ने 2026 लाल तेन बोटिंग शो की शुरुआत की, पत्थर के पुल रंगीन रोशनी ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया। पेरिस फैशन वीक के दौरान रनवे पर दिखा फैशन का जलवा, फेमस ब्रिटिश फैशन डिजाइनर स्टेला मैकार्टनी ने पेश की अपनी स्प्रिंग समर कलेक्शन। पेंटिंग्स वाले इस कलेक्शन से करीब 450 मिलियन डॉलर मिलने का अनुमान है, इसमें से 5 पेंटिंग्स लंदन में दिखाई गई।
1: फिल्म एंटनी में सनी देओल के साथ साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका आएंगी नजर, विलेन के किरदार में नजर आएंगे विजय वर्मा, अगले साल फिल्म होगी रिलीज। यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर जारी, एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर है ये फिल्म। करण जौहर ने किया ऐलान, 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा कॉफी विद करण का नवा सीजन, शो का आखिरी सीजन इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया इमोशनल। 17 साल के बाद आर बाल्की की फिल्म में आएंगी नजर विद्या बालन, सोशल मीडिया पर शेयर कर कैप्शन में लिखा नई शुरुआत न्यू तमिल फिल्म आर बाल्की के साथ। हनुमान अंश पर बरस रही सीताराम की कृपा, 55वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर की 410 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
0: तो बच्चे अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है,
1: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: तो विमान क्रैश होने से बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक ने जमकर तारीफ की है, पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।
1: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका की टक्कर है, श्रीलंका 170 रन के टारगेट को चेस करने जा रहा।
0: गणेशोत्सव के दौरान लालबाग चौराहे के दरबार में 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का चढ़ावा, 1 किलो की 24 कैरेट सोने की ईट और 18 कैरेट सोने की 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी शामिल।
1: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी सख्ती, आज से वैलिड पीयूसी नहीं होने पर फ्यूल देने पर रोक, पुरानी गाड़ियों की चेकिंग शुरू।
0: मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता, बागवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी, पूजा पाठ के बाद होगा इसका शुभारंभ।

0: भारत के इस पायलट ने जांबाजी दिखाई, को पायलट का बहादुरी से सामना किया जिससे प्लेन में सवार क्रू मेंबर समेत 180 यात्रियों की जान बच सकी। उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि को पायलट ने विमान को हाईजैक करने की कोशिश की जिसे यात्रियों की मदद से नाकाम तो कर दिया गया, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों की जान खतरे में आ गई थी। विमान को बाद में सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। विमान के भारतीय पायलट स्मित मच्छार की दिलेरी की वजह से सभी की जान बच गई। आज उनकी जांबाजी की ट्रंप नेतान्याहू समेत पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं।
1: करीब 34,000 फीट की आसमानी ऊंचाई पर 180 यात्रियों को लेकर दुबई से इजराइल जा रही फ्लाइट दुबई की फ्लाइट जब अचानक संकट में फंसी, एक भारतीय पायलट ने अपनी जाबाजी और बहादुरी से सबकी जान बचाकर हौसले की मिसाल कायम की। आज पूरी दुनिया इस भारतीय पायलट स्मित मच्छार के साहस की मुरीद बन बैठी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के पीएम नेतन्याहू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी दुनिया इस इंडियन पायलट की जाबाजी की सराहना कर रही है। घटना बुधवार सुबह की है जब 6:05 पर फ्लाइट नंबर FZ1073 ने दुबई से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी। विमान की कमान पायलट स्मित मच्छार और ओमानी को पायलट के हाथों में थी। फ्लाइट में 174 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे जिनमें मुख्य रूप से इजरायली नागरिक थे। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद फ्लाइट सऊदी अरब और जॉर्डन की सीमा के पास करीब 34,000 फीट की सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक कॉकपिट में चीख पुकार मची और पूरे विमान में हड़कंप मच गया। को पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर अचानक चाकू से हमला कर दिया था। इस हिंसक हमले में कैप्टन के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए। बताया जा रहा है कि कैप्टन पर हमला करने के बाद को पायलट ने विमान को क्रैश करने या नीचे गिराने की नियत से कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद फ्लाइट तेजी से नीचे आने लगी। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक विमान सिर्फ 1 मिनट के भीतर 33,000 फीट से घटकर सीधे 17,000 फीट पर आ गया। इस तेज गिरावट की वजह से विमान के पिछले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा और केबिन में यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छार ने हार नहीं मानी। उन्होंने सह पायलट का मुकाबला किया और किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा अनलॉक करने में कामयाब रहे। दरवाजा खुलते ही केबिन क्रू और 3 से 5 यात्री कॉकपिट के अंदर घुस गए। उन्होंने मिलकर हमलावर को पायलट को दबोच लिया और उसे बांधकर काबू में किया।
2: In this case, 180 lives were entrusted to Captain Smith Machar, and he did a tremendous job saving and preserving those lives. So, really incredibly proud of him. All of SpiceJet is proud of him, and of course, all of India is proud of him.
1: फ्लाइट में सवार एक इजरायली यात्री ने मीडिया को बताया कि क्रू ने उनसे मदद मांगी थी, जिसके बाद यात्रियों ने एक पायलट को काबू करने और उसे बांधने में मदद की।
3: मेरे कुछ सूत्रों के अनुसार ये मुहिम मालूम चला कि ये जो एक पैसेंजर थी महिला, वो टॉयलेट के पास खड़ी थी, जो टॉयलेट का फ्रंट डोर होता है, वो फ्रंट टॉयलेट का वो कॉकपिट के साथ होता है, तो उसकी बेटी अंदर वॉशरूम में थी, तो उसने बहुत जोर जोर की आवाज़ें और चीखें सुनी कॉकपिट के अंदर। तो उसने पीछे जाके कैबिन क्रू को इतला किया और वहाँ पे एक पायलट भी बैठा हुआ था जो कि सफ़र कर रहा था। तो इन लोगों ने आके, अभी किसने दरवाज़ा खोला या कॉकपिट में से कैप्टन ने खोला, और कैबिन क्रू के पास भी ये सुविधा है कि वो एमरजेंसी कोड डाल के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो उन्होंने जाके जब अंदर देखा तो काफ़ी खून बहा हुआ था दोनों पायलट का, और जो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ट्रीटमेंट थे।
1: इससे पहले विमान के मुड़ने और तेजी से नीचे आने के कुछ ही समय बाद आपातकालीन सिग्नल और बाद में हाईजैक की चेतावनी जारी की गई। बाद में विमान ने सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। इट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान ने सबसे पहले 7700 स्क्वॉक कोड भेजा था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य इमरजेंसी का संकेत होता है। इसके कुछ ही देर बाद विमान की तरफ से 7500 कोड भेजा गया। 7500 कोड का मतलब हाईजैकिंग या किसी तरह का गैर कानूनी हस्तक्षेप होता है। इसके बाद फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।

0: बुधवार सुबह करीब 9:45 पर उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं है। को पायलट को हिरासत में लेकर जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं। इस घटना और भारतीय पायलट की सूझबूझ और अदम्य साहस की वजह से पूरी दुनिया स्मित पच्छार की तारीफ कर रही है। भारत सरकार ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो स्मिथ मछुआर की पूरी दुनिया जो है वो मुरीद हो गई है, उनकी तारीफ कर रही है। और आपको बता दें कि स्मिथ के माता पिता मुंबई के चेंबूर के स्वास्तिक हाइट्स में रहते हैं। स्मिथ भी उन्हीं के साथ रहते थे और कुछ साल पहले ही दुबई काम के कारण शिफ्ट हुए थे। और इस घटना के बाद स्मिथ के माता पिता सऊदी के लिए रवाना हो गए हैं। गुड न्यूज टुडे ने उनके पड़ोसी डॉक्टर जुनैद शाह से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: स्मिथ मंचर ने एक साहसपूर्ण कार्य किया है, खुद घायल हुए लेकिन प्लेन को सेफली लैंडिंग कराया। हमारे साथ हैं उनके पड़ोसी डॉक्टर शाहजी। सर, क्या उनके परिवार से आपकी बात हुई इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद उनके माता पिता से बात हुई और वो इस वक्त कहाँ पे हैं?
3: सो उनके पेरेंट्स से मेरी बात तो हुई नहीं है आफ्टर द इंसिडेंट। दे आई थिंक लेफ्ट आफ्टर द इंसिडेंट।
2: बिल्कुल, तो पहले से ही नेक स्वभाव था, लोगों की मदद करने वाला स्वभाव था, ऐसा जो उनके दोस्त हैं जो काफ़ी सालों से उनको जानते हैं, डॉक्टर जिनीत शाह उनका कहना है। और यही वो स्वास्तिक हाइट्स बिल्डिंग है जहां पर स्मिथ जो है अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ साल पहले ही वो दुबई शिफ्ट हुए थे लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो इसी सोसाइटी में रहते थे, जिसके बाद जैसे ही कल उनको इस घटना के बारे में पता चला वो तुरंत सऊदी निकल गए स्मिथ के पास। और जो आखिरी बात डॉक्टर जिनीत की उनके माता पिता से हुई थी, तब उनको पता चला था कि जो स्मिथ है उस पर इलाज चल रहा है और उसको उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनकी हालत क्रिटिकल है। लेकिन भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
1: और इनफैक्ट पूरी दुनिया ही उनके सही सलामत होने की लगातार कामना कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी और साहस की सराहना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंभीर खतरे का सामना करने और खुद गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मछार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अदम्य साहस और अटूट संकल्प दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को कैप्टन पर फख्र है।
4: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय पायलट के हौसले और जाबाजी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत कई वर्ल्ड लीडर्स ने उनकी तारीफ की है। हर किसी की जुबान पर आज सिर्फ कैप्टन स्मिथ मछार के नाम की ही चर्चा है। तो आपको बता दें कि भारतीय पायलट की जो मुरीद है पूरी दुनिया हो गई है, उनके बहादुरी के सब कायल हो गए हैं। चाहे ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, सब उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट दुबई की उड़ान में हुए चाकूबाजी के मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के मुताबिक को पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बावजूद पायलट ने हिम्मत दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। ट्रंप ने उनकी इस कार्रवाई को बहादुरी भरा कदम बताया है।
5: And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
1: इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाई दुबई की उड़ान में हमले के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी की सराहना की है। नेतन्याहू ने कहा है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मछार ने हिम्मत नहीं हारी, हमलावर का सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों और क्रू को उसे काबू करने का मौका दिया। नेतन्याहू के मुताबिक पायलट की इस कार्रवाई से विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कैप्टन मछार के जल्द पूरी तरीके से स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्हें वाकई में सच्चा हीरो बताया है।
6: Citizens of Israel, this morning there was a very serious security incident on a flight from Dubai to Israel. Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और चलिए अब जरा खबरों के रुख को डाइवर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। एशियन गेम्स का जिक्र कर लेते हैं। भारत की दमदार शुरुआत आज भी रही है। आज भारत ने सुबह से लेकर अब तक 3 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो वहीं एथलेटिक्स इवेंट के आखिरी दिन रिले टीमें पदक की दौड़ में शामिल हुई। इसके अलावा कई खेलों में भारत के खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए समझा दें तो 12वें दिन भारत ने 3 मेडल्स जीते हैं। आज भारत ने पुरुषों की स्किप सेलिंग स्पर्धा, भारतीय कंपाउंड आर्चर और महिला स्क्वैश टीम ने मेडल जीता है। और देखिए, पुरुषों की स्किप सेलिंग स्पर्धा में भी सिल्वर मेडल आया है। भारतीय कंपाउंड आर्चर में गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं महिला स्क्वैश टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपको बता दें कि भारत ने अब तक 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं।
7: और देखिए, इसके साथ ही 63 मेडल्स के साथ भारत पदक तालिका पर 8वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: तो एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन करके लौटने वाले खिलाड़ियों का देश भर में भव्य स्वागत हो रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद रोहतक की स्टार क्रिकेटर शेफाली वर्मा भी अपने घर पहुंची तो परिवार और गांव ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शेफाली वर्मा के घर पहुंचते ही खुशी का माहौल जो है वो बन गया और इस दौरान जिला उपायुक्त ने फूलों का बुके देकर उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी और उनकी उपलब्धि की सराहना भी की। वहीं जापान के नागोया में भारत ने एक बार फिर से कबड्डी की ताकत का भी लोहा मनवाया है। एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को 40-34 से हरा के गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत में सोनीपत के खिलाड़ी आशु मलिक भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे। तो आशु मलिक के सोनीपत पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। चलिए क्रिकेट का रुख भी कर लेते हैं। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कल रनों की जबरदस्त बारिश हुई क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में दोनों ओवर से कुल 811 रन बने, चार शतक लगे, एक दोहरा शतक भी आया। इस जबरदस्त मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत तो हासिल की ही, रिकॉर्ड्स की झड़ी यहां पर लगा दी। चलिए क्रिकेट का रुख भी कर लेते हैं। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कल रनों की जबरदस्त बारिश हुई क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में दोनों ओवर से कुल 811 रन बने, चार शतक लगे, एक दोहरा शतक भी आया। इस जबरदस्त मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत तो हासिल की ही, रिकॉर्ड्स की झड़ी यहां पर लगा दी।
8: हिटमैन ने इस शानदार पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं शुभमन गिल दूसरे छोर पर डटे रहे, उन्होंने महज 133 गेंदों पर 223 रन की नॉट आउट पारी खेली और 26 चौके और 8 छक्के जमाए। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के आतिशी तेवर ऐसे थे कि गुवाहाटी की बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज पानी मांग रहे थे और टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से 43 ओवर और 3 गेंदों में 405 रन का विशाल लक्ष्य भेद दिया। खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद टीम इंडिया वनडे में ये कारनामा करने वाली दूसरी टीम बन गई है।
9: बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटेंस था मैच। हम लोग आए थे विराट कोहली के सेंचुरी के लिए और रोहित का भी बहुत ही बड़े हम लोग फैन है। जो भी हुआ, विराट का तो सेंचुरी नहीं हुआ लेकिन रोहित शर्मा का सेंचुरी हुआ, इसी के साथ शुभमन गिल का 200 हुआ। पूरा बहुत इंटेंस मैच था, बहुत अच्छा लगा मैच देख के हम लोग को।
10: शुभमन गिल का डबल सेंचुरी बहुत अच्छा लगा, ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा था, 255 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप गिल और रोहित शर्मा का, बहुत बढ़िया,
11: बहुत अच्छे ही खेला है। यही है, फिर अच्छा लगा आज का मैच।
8: इससे पहले भारत का सबसे सफल रन चेज 360 रन का था जो उसने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। जाहिर है इस महाविजय के नायक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने वनडे में अपना दूसरा दोहरा शतक जमाया। खास बात ये भी है कि 2022 के बाद से शुभमन गिल को रिकॉर्ड 10वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और ट्रेविस हेड जैसे दिग्गजों को पछाड़ा जिन्होंने 9 बार ये मुकाम हासिल किया। इसी महाविजय के साथ भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 14वीं वनडे सीरीज जीत हासिल की। बायलेटरल वनडे सीरीज में किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा वनडे जीतने का कीर्तिमान भी टीम इंडिया ने हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते कुछ और खबरों का यहाँ पे रुख कर लेते हैं। तो आज से दिल्ली में बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल भरवाना मुश्किल होगा। राजधानी में नो पीयूसी नो फ्यूल व्यवस्था लागू हो गई है। दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप पे लगे कैमरे वाहन के नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और परिवहन विभाग के डेटाबेस से पीयूसी की वैधता चेक करेंगे। अगर किसी वाहन का पीयूसी वैध नहीं हुआ तो पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट के जरिए इसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिर ऐसे वाहन को पेट्रोल डीजल देने से इनकार किया जा सकता है। हालांकि गाड़ी मालिक के पास मौके पर ही पीयूसी बनवाने का ऑप्शन भी होगा, वो पेट्रोल पंप पर मौजूद प्रदूषण जांच केंद्र से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
7: यानी आप दिल्ली में पेट्रोल डीजल भरवाने से पहले पीयूसी की वैधता बेहद अहम हो गई है। नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
12: अगर आप दिल्ली में हैं और आज आपको पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाना है तो पीयूसी आपको दिखाना पड़ेगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के पास जनपद पे इस पेट्रोल पंप पे हैं, जहां अभी रिफिलिंग हुई है। मैडम, आपने इनकी पीयूसी चेक की क्या?
13: नहीं चेक किया।
12: पीयूसी है आपके पास भाई साहब? आज नियम आपको पता चला कि आज से हर गाड़ी को पीयूसी दिखाना पड़ेगा तभी पेट्रोल डीजल रिफिल हो सकता है? नहीं पता, जानकारी नहीं है, लेकिन यही रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग ग्राउंड पे आए हैं कि आखिरकार सरकार ने नियम तो लागू कर दिया कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरा जाएगा जिसका पीयूसी है, लेकिन क्या ग्राउंड पे वो चेकिंग हो रही है? एक और बाइक वाले आए हैं, अब उनसे हमने क्योंकि कहा कि पीयूसी है कि नहीं, चेक किया कि नहीं, तो पहली बार में आपको जवाब सुनने में आया। सर, पीयूसी आज चेक नहीं कर रहे हैं आप लोग?
14: मैनेजर साहब
12: से बात करते हैं हम लोग। भाई साहब, आज से नियम चेंज हो गया, पीयूसी चेक करके ही पेट्रोल डीजल भरना है, चेकिंग हो रही है?
14: सर, अभी हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, बाकी जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है।

0: जब वो बोलता है तो उस गाड़ी को हम नहीं देते हैं
1: ओके
0: जब तक पोल्यूशन ना हो।
1: आप बता रहे हैं जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं?
0: काम करता है, उसमें लगा हुआ पोल्यूशन में
1: ओके।
0: जैसी गाड़ी आती है रोड से वो उसको कैच करती है और उसका नंबर बोलती है। अगर
1: गाड़ियां उससे मिस हो गई, वो
0: जो मिस हो गई तो हमारे पास आएगी नहीं वो, अब उसका हम क्या कह सकते हैं
1: ओके। क्योंकि अभी आपके स्टाफ को भी नहीं पता है कि पीयूसी चेक करना है,
0: आया ही नहीं है ना, कोई सर्कुलर ही नहीं आया,
1: सर्कुलर नहीं आया,
0: सर्कुलर तो आएगा, हमें बताया जाएगा तभी हम कर सकते हैं ना, ये अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते कुछ भी।
1: ये नाम है आपका सर?
0: दिनेश कुमार।
1: दिनेश कुमार जी, तो ये कह रहे हैं कि सर्कुलर नहीं आया है। सरकारी तंत्र के हिसाब से आज से दिल्ली में कम से कम जो 500 पेट्रोल पंप है जहां पे कैमरा इंस्टॉल्ड है कि किस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट है किसका नहीं है।
2: देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पहल को सराहा जाए। इसी मकसद के साथ गुड न्यूज टुडे का मंच ऐसी प्रेरणादायक रियल स्टोरीज को आपके सामने लाता रहा है। जीएनटी पर दिखाई गई एक ऐसी ही रिपोर्ट को हमने नोटिस किया, केबीसी ने, और धौलपुर जिले के समाजसेवी डॉक्टर आरएस गर्ग पहुंच गए अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर। दरअसल इस लाइमलाइट के केंद्र में है डॉक्टर गर्ग की दिव्यांग बच्ची मयूरी। कैसे मयूरी और उसके माता पिता के संघर्ष ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है, खुद के लिए नई पहचान बनाई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
3: मैं सबसे पहले गुड न्यूज टीडू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय को अपने मंच पर लाए और विद्यालय की सूचना, उन्होंने विद्यालय का भी प्रोग्राम रखा और विद्यालय को के विकास के लिए उन्होंने सारी बातें हमारी बताई। तो गुड न्यूज ने जो हमारे लिए जो कार्यक्रम किया वास्तव में प्रशंसनीय था, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
4: पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विशेष स्कूल खोल दिया। अब उनकी बेटी के साथ उसके जैसे और बहुत बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं।

0: ये वो किस्सा है जिसने संघर्ष के मायने बदल दिए, वो स्टोरी जिसने साबित किया कि अगर मजबूत इरादों के साथ मुश्किलों का सामना किया जाए तो नई राह नई दिशा तय होती है। कहानी राजस्थान के धौलपुर के समाज सेवी डॉक्टर आरएस गर्ग और उनकी पत्नी मधु गर्ग की नेक पहल की है, जिसे सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे ने इस दंपत्ति की कहानी को मंच दिया और इनका वो किस्सा बयां किया कि कैसे इस कपल ने दिव्यांग बेटी के इलाज के दौरान उसके जैसे दूसरे बच्चों के जीवन में रोशनी लाने की मुहिम छेड़ी और मयूरी विशेष विद्यालय शुरू कर करीब 400 बच्चों को नया जीवन दिया। इस निस्वार्थ नेक पहल को गुड न्यूज टुडे पर नोटिस कर इस दंपत्ति को अमिताभ बच्चन के शो KBC में बुलाया गया और वहां भी इस पहल के लिए अभिनय सराहना मिल रही है।
1: ऐसा अनुभव तो अनुकरणीय है, ऐसा हमें कभी सोचा भी नहीं था। और जब हमने जब उनके साथ उनके सामने हमने उनसे बातें करी, उन्होंने हमें हमसे सवाल करे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये सब उपलब्धि का कारण हमारी मयूरी थी और हमारा जो काम था वो था, परंतु ये अनुभव हमारा इतना प्रसन्न इतना अच्छा था जिसका मैं विवरण कर नहीं सकता हूँ।
0: इस साल 2000 की बात है जब डॉक्टर राधेश्याम गर्ग और उनकी पत्नी मधु गर्ग अपनी बेटी मयूरी के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी ने ख्याल आया कि क्यों ना बेटी के जैसे बाकी दिव्यांग बच्चों की राह आसान बनाई जाए और इस तरह मयूरी विशेष विद्यालय की नींव रखी गई। शुरुआत 6 स्पेशल चाइल्ड से हुई और अब तक ये संस्था 400 से ज्यादा बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ चुकी है।
1: अल्टीमेटली जब इलाज के दौरान भी ठीक नहीं हुई तब हमने सोचा कि ये विद्यालय खुलना चाहिए जिससे इन बच्चों के विकास कर सके। और हमारा उद्देश्य ये भी रहा कि हमें अपनी बेटी के लिए ही नहीं, जब हमने सोचा कि हम बेटी के लिए हम विद्यालय खोल रहे हैं तो हमने सोचा और बच्चों को भी लाभ मिले। हमें पता लगा कि ऐसे बच्चे एक जिले में काफी होते हैं, तो उन बच्चों को हमने बुलाने की कोशिश करी, बच्चे आए भी और उन बच्चों को सभी को मयूरी के साथ साथ दूसरे बच्चों के विकास करने की हमारे मन में बात आई, तो इस तरह से हमने विद्यालय खोलना जरूरी समझा।
2: ये आईडी स्पेशल बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को हम लोग ज्यादातर एक्टिविटी से पढ़ाते हैं और इनकी जैसे डेली रूटीन के जो इनके वर्क होते हैं वो इनको सिखाए जाते हैं स्कूल में ही, जैसे अपने शर्ट के बटन लगाना, अपने बाल कॉम करना, नहाना, सारी चीजें और ब्रश करना, किस तरीके से हमें ब्रश करनी है, अपने घर में जैसे हम लोग कोई काम, ये बच्चे खाना खाते हैं तो कैसे इनको बर्तन सिंक तक रखने हैं, ये सारी चीजें, मतलब बर्तनों को खाना पीना उठना बैठना ये सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं।
0: ये खास स्कूल दिव्यांग बच्चों का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। गर्ग दंपत्ति की नेक पहल और जज्बे को देश विदेश में पहचान मिल रही है। सबसे खास बात यह है कि इनकी कहानी से समाज को प्रेरणा मिल रही है कि मजबूत इरादों के साथ चुनौतियों को भी अवसर में ढाला जा सकता है। और गर्ग दंपत्ति ने अपने बेजोड़ जज्बे के दम पर मयूरी विशेष विद्यालय के जरिए ये करके दिखाया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: वैसे तो देखिए एशियन गेम से हर दिन एक ना एक गुड न्यूज आ ही रही है, अब एशियन गेम से एक और गुड न्यूज आ गई है, वो है क्रिकेट के मैदान से। न्यूज ये निकल कर सामने आई है कि क्रिकेट के मैदान में इंडियन टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने कमाल करके दिखाया है, श्रीलंका को हराया है, 124 रन से इन्होंने मात दी है और 3 अक्टूबर को होगा फिनाले जिसमें पाकिस्तान के साथ भिड़ंत यहां पर होगी। तो 3 अक्टूबर को ये फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के साथ इंडियन टीम खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। एशियन गेम्स के मैदान से ये शानदार और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है क्रिकेट के मैदान में। आपको बता दें भारत ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है, फाइनल में प्रवेश कर लिया है, श्रीलंका को हराया है इस टीम ने। शानदार प्रदर्शन लगातार ये टीम करती आ रही है, एक लय में ये टीम लगातार नजर आ रही है, टॉप ऑर्डर जो है वो भी लगातार लय में हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी गुड न्यूज ये है कि 124 रन से भारत ने श्रीलंका को मात दे दी है और 3 अक्टूबर के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आमने सामने होंगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखिए 45 रन पर ही ऑल आउट कर दिया है टीम इंडिया ने श्रीलंका की टीम को और ईशान किशन ने 80 रनों की शानदार पारी का योगदान टीम इंडिया के नाम किया। ईशान किशन ने ये मजेदार पारी के लिए है जिसकी बदौलत टीम इंडिया फाइनल में प्रवेश कर गई। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लालबाग चौराजा में करोड़ों का चढ़ावा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली में यूपीएससी का शताब्दी समारोह भारत मंडपम में खास प्रदर्शनी का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में की शिरकत। एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत को अब तक मिले 3 मेडल, सेलिंग में आया सिल्वर, स्क्वॉश और आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल। विमान क्रैश होने से बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक ने की जमकर तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की।
3: दिल्ली में दिवाली के जश्न की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण बिक्री की दी मंजूरी, पटाखों को फोड़ने के समय को लेकर भी आ सकते हैं निर्देश।
2: सीएम योगी ने शहीद की पत्नी का कीर्ति चक्र से किया सम्मान, बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर सुनील, पहली बार किसी पुलिसकर्मी को मिला है यह सम्मान।
3: तीन महीने बाद रणथंभौर में फिर लौटा जंगल सफारी का रोमांच, विदेशी सैलानी भी ले रहे मजा, पर्यटकों ने किया टाइगर का दीदार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: तो देखिए, गणेशोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है। ऐसे में हर साल बप्पा को अर्पित किया जाने वाला चढ़ावा सिर्फ भक्त की अपने आराध्य को लेकर भेंट नहीं होती, बल्कि उनके चरणों में समर्पित श्रद्धा होती है। खास तौर से मुंबई में लाल बादशाह राजा को चढ़ाया गया चढ़ावा तो हर साल सुर्खियों में रहता ही है, तो इस बार भी कुछ ऐसा हुआ कि लाल बादशाह राजा को देश और विदेश के श्रद्धालुओं से 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा आया। इसके अलावा लाखों करोड़ों के आभूषण और कीमती वस्तुओं की नीलामी लाल बादशाह राजा के प्रति सम्मान आशा को भी दर्शाती नजर आई।
1: करोड़ों भक्तों की आस्था से सजता है लालबाग के राजा का दरबार। यहाँ हर चढ़ावा बनता है विघ्नहर्ता के प्रति गहरे विश्वास और प्रेम का उपहार। कहते हैं जिस चढ़ावे में भक्त की सच्ची भावना होती है वही बप्पा के दरबार की सबसे अनमोल भेंट होती है। शायद यही सच्ची भावना इस साल भी मुंबई करों की अटूट आस्था का केंद्र लाल बागचा राजा को करोड़ों के चढ़ावे के रूप में नजर आई है। ये बेश कीमती चढ़ावा यकीनन आस्था की एक नई कहानी, एक नई तस्वीर को पेश कर रहा है। बता दें कि लाल बागचा राजा को देश और विदेश के श्रद्धालुओं से 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा इस साल प्राप्त हुआ है, जिनमें बप्पा के चरण स्पर्श की दान पेटी यानी चढ़ावे में 3,53,00,000 से ज्यादा रुपए जमा हुए थे। वहीं रंग पेटी में 2,42,00,000 से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया गया। विसर्जन पेटी में 16,14,000 से ज्यादा चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसके अलावा दर्शन के लिए लगी कतार की पेटियों में भी काफी रकम जमा होने की बात कही गई है। बता दें कि इस अपार नकदी में भारतीय करेंसी के साथ काफी डॉलर भी मिले हैं। चढ़ावे की ये रकम इस साल 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच भक्तों द्वारा अर्पित की गई है। जाहिर है लाल बागचा राजा के चरणों में अर्पित हर भेंट ही श्रद्धा और विश्वास की ही प्रतीक है। तभी तो इस साल आयोजित हुए भव्य गणेशोत्सव के दौरान लाल बागचा राजा को उनके भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया, जिनमें सोने चांदी के आभूषणों की भी नीलामी हुई। 30 सितंबर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हुई इस सार्वजनिक नीलामी में बप्पा के भक्तों ने नीलामी में रखी गई मूल्यवान वस्तुओं पर दिल खोलकर खर्च किया। बप्पा के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषणों की नीलामी के बीच 1 किलो वजन की 24 कैरेट सोने की ईंट का भी ऑक्शन हुआ। 24 कैरेट सोने की ईंट सबसे खास आकर्षणों में शामिल रही। एक अज्ञात भक्त द्वारा अर्पित इस सोने की ईंट की कीमत करीब 1,48,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं एक दूसरे अज्ञात भक्त ने 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी अर्पित की। इस गणेश प्रतिमा की कीमत करीब 15,65,000 रुपए है। यहां बता दें कि लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से हर साल भक्तों द्वारा अर्पित कीमती वस्तुओं की नीलामी की जाती रही है, जिसके तहत इस साल भी सभी आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं को लाल बागचा राजा के बेहद खूबसूरत पंडाल में करीने से सजाया भी गया। गणेश भक्तों के लिए की गई इस नीलामी में सोने के कई आभूषणों के साथ सोने और चांदी की कई वस्तुएं रही। इनमें मोदक, चांदी का एक दंत, चांदी की कई गदाएं, सोने और चांदी के बड़े बड़े नायाब हार थे। इसके अलावा मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी, सुंदर फोटो फ्रेम की अनुपम बनावट और सुंदरता भी हर भक्त का मन मोह ले रही थी। यही नहीं, बप्पा की सोने की मूर्ति, क्रिकेट का बैट और 2 बाइक भी इस विशेष नीलामी का आकर्षण का केंद्र बनी। बेशक बप्पा के चरणों में सच्ची श्रद्धा का चढ़ावा इस अपार धन दौलत से बढ़कर ही है, मगर फिर भी बीते कुछ सालों में भी भक्तों ने अपनी हैसियत के अनुसार अपने आराध्य के प्रति जैसा प्यार और सम्मान दिखाया उसमें श्रद्धा ही सर्वोपरि रही। साल 2025 में लगभग 5,65,00,000 नकद राशि बप्पा के चरणों में अर्पित की गई। इसमें सोने चांदी की नीलामी से भी करीब 1,65,00,000 की अतिरिक्त कमाई हुई थी। वहीं सोना 4 किलो से अधिक और चांदी लगभग 55 किलो अर्पित की गई। साल 2024 का गणेशोत्सव इस गणेश मंडल के लिए चढ़ावे के लिहाज से काफी बड़ा रहा। इसमें 6,25,00,000 की नकद राशि बप्पा के चरणों में अर्पित की गई, जिसमें विसर्जन के बाद तक की कुल जमा राशि भी शामिल थी। खास तौर से इस वर्ष उद्योगपति अनंत अंबानी द्वारा बप्पा को 20 किलो का सोने का मुकुट भी उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इस सोने के मुकुट की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ बताई गई थी। वहीं सोना लगभग 4.25 किलो अर्पित किया गया और चांदी करीब 64 किलो चढ़ाई गई। इससे पहले साल 2023 में भी भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। नकद राशि 5 करोड़ से ज्यादा थी। सोना लगभग 3 किलो और चांदी लगभग 51 किलो बप्पा के चरणों में अर्पित की गई। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मुंबई के लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना, चांदी, नकदी और दूसरी कीमती वस्तुओं का चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। ऐसे में यहां बप्पा के चरणों में रखा गया करोड़ों का चढ़ावा सिर्फ रकम या संपत्ति भर नहीं, बल्कि भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास की तस्वीर भी पेश करता रहा है। और बप्पा के चरणों में अर्पित ये चढ़ावा उनके हर भक्त को दिली सुकून देता आया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: कोलकाता की गलियों में दुर्गा पूजा की आहट साफ सुनाई देने लगी है। शहर का मशहूर कुमार टोली इलाका इन दिनों मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है, क्योंकि दुर्गा पूजा में अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा। ऐसे में कलाकार दिन रात मेहनत कर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए हैं।

0: कहीं मूर्ति को आकार दिया जा रहा है तो कहीं माँ दुर्गा की प्रतिमा पर कलाकार रंगों की आखिरी परत चढ़ा रहे हैं, कहीं चेहरे के भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं प्रतिमा को अंतिम रूप देने की जद्दोजहद चल रही है।
1: अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया।
0: दुर्गा पूजा में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और कोलकाता के कुमारतुली इलाके में कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को सजाने सवारने में जुटे हैं।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है ये दुर्गा पूजा, लेकिन अच्छा चल रहा है, कोई कमती नहीं चल रहा, अच्छा भी चल रहा है। मूर्ति उर्ति सब थोड़ा थोड़ा बिक गया, ऐसा नहीं टेंशन मत करना, और ग्राहक आते हैं ग्राहक जाते हैं, ऐसा होता है।
0: बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। इस महापर्व का इंतजार सभी पूरा साल करते हैं।
2: दो दिन तीन दिन से थोड़ा हम लोग का काज और फास्ट हो गया, जैसा मध्य चल रहा है ना मिडिल में, उससे फास्ट चल रहा है अभी काज।
0: पूरे बंगाल में अलग अलग शहरों में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं।

0: जहां इन तैयार हो रही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होगी। ऐसे में कुमारटुली के कलाकारों पर भी समय पर मां की प्रतिमा तैयार कर पंडालों तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है।
1: एक एक स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: यहाँ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी देवियों की मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं और उन्हें सजाया भी जा रहा है। इस काम में महिलाएं भी साथ निभा रही हैं। इन कलाकारों के हाथों से आकार पाई दुर्गा प्रतिमाएं अब बाजारों की रौनक बढ़ाएंगी। जैसे जैसे मूर्तियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
2: लगभग 10 साल से तो हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं।
3: यहीं से ले जा रहे हैं।
2: इसके आगे हम लोग लेते थे बागमारी से, उसके बाद हम लोग यहाँ 10 साल से ले जा रहे हैं।
3: कुमारटुली में ऐसा क्या खास है?
2: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
0: प्रतिमाओं को देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। बाजारों में बढ़ती चहल पहल से साफ है कि दुर्गा पूजा का उत्साह अब लोगों के बीच नजर आने लगा है।
4: सुना बहुत था मैम लोग से, बहुत सुना था तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा।
0: आलम ये है कि खरीदार ही नहीं बल्कि पर्यटक भी इस इलाके की गलियों की रौनक देखने पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले हर शख्स का मूर्तियों को आकार लेते देखने का अपना अलग अनुभव है। किसी के लिए कलाकारों की मेहनत को करीब से देखने का मौका है तो किसी के लिए दुर्गा पूजा की तैयारियों को महसूस करने का अनुभव। कुमारटुली की इन गलियों में कलाकारों की मेहनत अब अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही है। मिट्टी से आकार ले चुकी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जल्दी ही पंडालों की शोभा बढ़ाएंगी। इनके साथ ही बंगाल में भक्ति, उत्सव और उमंग का रंग भी पूरी तरह से चढ़ जाएगा। कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: हिमाचल प्रदेश विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मंडी जिले में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर स्थान पर बनाया जाएगा, जिससे मंडी का थलौट बाजार में क्षतिग्रस्त हुआ फोर लेन का हिस्सा अब नए रूप में नजर आएगा।
0: हिमाचल

0: इस राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सुंदर वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ जाता है, जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन ये प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा भी लिखने जा रहा है। दरअसल मंडी जिला के थलौट में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। कीतरपुर मनाली फोर लेन प्रोजेक्ट के तहत इस बॉक्स टनल का निर्माण होगा, जिसके निर्माण कार्य को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
1: टनल बन रही है हमारी, ये बॉक्स आरसीसी बॉक्स टनल है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टनल है, ये नेचुरल हिल में टनल नहीं बन रही है, आर्टिफिशियली बॉक्स हम आरसीसी का बनाएंगे। प्लस इस बॉक्स को हम केबल एंकर से जो है बेड उसका एम्बेड करेंगे हिल साइड में, उसमें साइड में भी रहेगी और बॉटम में भी इसमें केबल एंकर्स रहेंगे, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले। प्लस स्लोप में भी 70 मीटर हाइट तक हम इसकी केबल एंकर करके स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बनने के बाद जो है पूरा ये जो 500 मीटर का सेक्शन है जो डैमेज हुआ है, ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए।
0: ये आर्टिफिशियल टनल 500 मीटर लंबी होगी। इसका निर्माण ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। इस आर्टिफिशियल टनल का ढांचा सामान्य गोलाकार टनल की बजाय स्क्वायर होगा। इसके निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर की जगह पर ही बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद थलौट में फोर लेन यातायात व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप मिलेगा। बॉक्स टनल तैयार होने के बाद कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को इसी रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि कुल्लू मनाली से मंडी की तरफ आने वाला यातायात थलौट की पुरानी टनल से गुजरेगा। फिलहाल यहां बनाई जा रही प्रदेश की पहली बॉक्स टनल से इस पूरे हिस्से में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का,
3: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल मैच। एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत को अब तक मिले 3 मेडल्स, सेलिंग में आया सिल्वर मेडल, स्क्वॉश और आर्चरी में ब्रॉन्ज। दिल्ली में यूपीएससी का शताब्दी समारोह, भारत मंडपम में खास प्रदर्शनी का आयोजन, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। विमान क्रैश होने से बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की ट्रिप से लेकर नेतन्याहू तक ने तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली में दिवाली के जश्न की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री को मंजूरी दी, पटाखों को फोड़ने के समय को लेकर भी निर्देश आ सकते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: एशियन गेम्स में भारत की अच्छी शुरुआत, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल, भारतीय कंपाउंड आर्चर और महिला स्क्वॉश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला सेलिंग में पहला मेडल, सिल्वर से खुला खाता, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल ने किया कमाल। महिला स्क्वॉश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, तन्वी खन्ना, जोशना चुनप्पा, अनहद सिंह की टीम ने कमाल किया। भारतीय कंपाउंड आर्चर में गणेश मणि रत्नम तिरुमेरू ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, 8वें स्थान पर पहुंचा भारत। एशियन गेम्स में भारत ने श्रीलंका को 45 रनों पर किया ऑल आउट, 124 रनों से जीता मैच, फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत होंगे। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल मेडल्स की संख्या 63 हुई। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने गांव नौ तक पहुंची क्रिकेटर शेफाली वर्मा, हुआ जोरदार स्वागत। शेफाली के घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता, शेफाली बोली, एशियन गेम्स में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर रहना उनके लिए गर्व की बात है। एशियन गेम्स में रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद किरण पहल के घर पर रौनक देखने को मिली, देश के लिए गोल्ड जीतकर परिवार का भी नाम रोशन किया। सोनीपत में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल के घर बांटी जा रही है मिठाई, कंपाउंड आर्चरी की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न का माहौल है। गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेज, 2 विकेट खोकर 406 रनों का टारगेट आसानी से पीछे किया, 44 ओवर्स में जीता मैच। कैप्टन शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगाई सबसे तेज दोहरा शतक, शुभमन ने लगाया करियर का दूसरा दोहरा शतक। शुभमन गिल ने बनाए 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ियां, सीरीज में

Three back-to-back century. ओपनिंग विकेट के लिए कैप्टन शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। रोहित शर्मा ने भी खेली शतकीय पारी, 75 गेंदों में बनाए शानदार 101 रन। विराट कोहली ने खेली 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी, विराट ने अपनी पारी में जड़े 3 चौके और 1 छक्का। इससे पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 405 रन, वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों ने लगाई शतक। वेस्टइंडीज के लिए कैंपबेल, शाय होप और अमीर जंगू ने लगाया शतक, तो वहीं वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा और गुरनूर को मिले 2-2 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज रहे कुलदीप यादव। भारतीय पायलट स्मिथ मचार की दुनिया भर में बहादुरी की चर्चा, इजराइल और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने तारीफ की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाइट के यात्रियों से मुलाकात की, भारतीय पायलट को बताया असल हीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय की पायलट स्मिथ मचार की तारीफ की, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने स्मिथ को बताया हीरो। फ्लाइट के कैप्टन स्मिथ मचार की बहादुरी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान, 180 यात्रियों के लिए देवदूत बने। फ्लाई दुबई की फ्लाइट में कैप्टन स्मिथ मचार ने दिखाई बहादुरी, गंभीर चोट लगने के बावजूद विमान को संभाला। गणेश उत्सव के दौरान लालबाग चौराहे के दरबार में भक्तों ने दिया खोलकर दिल खोलकर दान, तो वहीं 12 दिनों में चढ़ाया गया कुल 6,11,96,500 रुपए का दान। चरण स्पर्श और मुख दर्शन की लाइनों में रखी दान पेटियों में 2,42,40,000 रुपए जमा हुए, जबकि विसर्जन के दौरान दान पेटी के जरिए 16,14,500 रुपए जमा हुए। पंडाल में दान की गई चीजों में धनराशि के साथ सोने की ईंट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी शामिल। इस साल एक अज्ञात भक्त ने लालबाग चौराहा को 1 किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईंट भेंट की, इस सोने की ईंट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है। वही बापा को 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भेंट की गई, जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए है। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज हुई, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। पूर्व वर्धमान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने और सवारने में जुटे हैं। पूर्व वर्धमान में मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने का भी काम तेज हो चुका है, अंतिम चरण में पंडाल की तैयारी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला लगा, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। तीन महीने के बाद आज से रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला, पहले दिन पहुंचे सैकड़ों देशी और विदेशी पर्यटक। तिलकमाला से पर्यटकों को किया गया स्वागत, राजस्थानी अंदाज में स्वागत के साथ लोक नृत्य और संगीत के माहौल को बनाया खास। रंगोली और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच सफारी, वाहनों को जंगल के लिए किया गया रवाना। रणथंभौर नेशनल पार्क में सैलानियों ने किया बाघ का दीदार, बाघ की अटखेलियों को देखकर सैलानी खासा रोमांचित नजर आए। रणथंभौर के पर्यटन सीजन के पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी सफारी के लिए पहुंचे, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को करीब से देखने का बच्चों में दिखा उत्साह।

जम्बोर के पर्यटन सीजन के पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी सफारी के लिए पहुंचे। प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को करीब से देखने का बच्चों में दिखा उत्साह। पर्यटकों के लिए 3 महीने के बाद खुला कान्हा टाइगर रिजर्व। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा तो वहीं गगन नारंग और ओलंपियन खिलाड़ी इला विनिल विला रिवन ने दिखाई हरी झंडी। ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने सैलानियों को दिलाई वन्यजीव और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण करने की शपथ। तीन महीने बाद आज से सरिस्का कुंभलगढ़ विश्वधारी मुकुंदरा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला। पहले दिन सैकड़ों पर्यटक पहुंचे। सफारी में पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े से पर्यटकों ने जंगल में प्रवेश किया। टाइगर को देखने के लिए सैलानियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सरिस्का में सफारी के लिए 35 से ज्यादा कंटेनर और जिप्सी तैनात। बयानवे दिन बाद फिर हुआ गुलजार। नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मढ़ई चूरना समेत सभी 10 गेट पर्यटकों के लिए खुले। फूलमाला और तिलक से हुआ सैलानियों का भव्य स्वागत। जानवरों के गेटअप में दिखा सफारी कर्मी। पहले दिन 154 पर्यटकों ने कराई ऑनलाइन बुकिंग। टाइगर देखने के को लेकर सैलानियों में दिखा खासा उत्साह। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी कश्मीर मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे हुए। दिल्ली के भारत मंडप में खास प्रदर्शनी लगाई गई। पीएम मोदी ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगा पर्यटकों का तांता। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू जंगल सफारी। पूजा पाठ के बाद नेशनल पार्क का शुभारंभ हुआ। जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। दिल्ली के मैत्री कॉलेज में परंपरा से प्रगति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। दिल्ली में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। आंध्र प्रदेश में ओंगोल के 150 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन। उड़ीसा के राज्यपाल हरी बाबू कंभम पति हुए शामिल। श्रीनगर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत 11वें मेगा हाई सर्जिकल कैंप के समापन समारोह। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। ऑपरेशन दृष्टि में शामिल डॉक्टर्स और जवानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एलजी ने सेना के समर्पण और सेवा भाव के लिए नेत्र चिकित्सा दल की सराहना की। ऑपरेशन दृष्टि के तहत सेना के डॉक्टर्स ने श्रीनगर और टंगधार में 364 आई सर्जरीज की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सरहदी जिले बाड़मेर और जोधपुर का दौरा किया। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए राज्य के विकास के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले 5 सालों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा साफ रही दिल्ली की आबोहवा। औसत AQI 102 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में आज से फ्यूल भराने के लिए वैध PUC जरूरी कर दिया गया है। CAQM ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर उठाया गया है कदम। स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर रहने वाला है। आज से व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के नियमों में बदलाव, जिसके तहत यूटिलिटी और सर्विस मैसेज के लिए कंपनियों पर लागू किया गया है चार्ज। आज से कंपनीज को

0: में पहले 1000 मैसेजेस के बाद ग्राहकों को भेजे जाने वाले सर्विस मैसेज पर देना होगा चार्ज। ग्राहक की तरफ से भेजे गए मैसेज पर कोई चार्ज नहीं होगा। दिल्ली में स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लगाई झाड़ू, लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। दिल्ली के कालंदी कुंज घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए पौधे, लोगों के साथ मिलकर लगाई गई झाड़ू। दिल्ली में स्वच्छता अभियान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लगाए पौधे, लोगों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत एक घंटा एक दिन के साथ श्रमदान पर कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ सफाई की। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाया झाड़ू, लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में परिचालन पर लगी रोक, लोगों से सतर्क होकर स्नान करने की अपील की गई। कोरना में लगातार बढ़ रहा है घाघरा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से 23 गांव में बाढ़, तो वहीं 33,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा, प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में तैनात की 174 नावें। फिल्म एंथनी में सनी देओल के साथ साउथ की एक्ट्रेस ज्योतिका आएंगी नजर, तो वहीं विलन के किरदार में नजर आएंगे विजय वर्मा, अगले साल फिल्म रिलीज होगी। यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर जारी, एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर है ये फिल्म। करण जौहर ने किया ऐलान, 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है कॉफी विद करण का नौवां सीजन, शो का आखिरी सीजन होगा ये। इंस्टा पर पोस्ट किया भावुक वीडियो। 17 साल बाद आर बल्कि की फिल्म में नजर आएंगी विद्या बालन, सोशल मीडिया पर शेयर कर कैप्शन में लिखा नई शुरुआत, न्यू तमिल फिल्म आर बल्कि के साथ। हनुमान अंश पर बरस रही है सीताराम की कृपा, 55वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर की 410 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: एशियन गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल मैच। एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत को अब तक मिले 3 मेडल, सेलिंग में आया सिल्वर मेडल, स्क्वॉश और आर्चरी में ब्रॉन्ज। दिल्ली में यूपीएससी का शताब्दी समारोह का आयोजन, भारत मंडप में खास प्रदर्शनी का आयोजन, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। विमान क्रैश होने से बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक ने तारीफ की, पीएम मोदी ने की उनके जल्द ठीक होने की कामना। दिल्ली में दिवाली के जश्न की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की मंजूरी दी, पटाखों को फोड़ने के समय को लेकर भी आ सकते हैं निर्देश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबर।
9: दोस्तों मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
10: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, प्यार के रंग में रंगेंगे अपराजिता और रक्षित, शुरू होगी दोनों की आशिकी।
11: तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
10: सीरियल वसुधा में शुरू होगा बंदूक ड्रामा, बिरजू पर फूटेगा सभी का गुस्सा। बढ़ेंगी अंतरा और प्रथम की नजदीकियां। दादी को मिलेगा राध्या को नीचा दिखाने का मौका।

शाहपुर में है थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान का सेट करेंगे करेंगे हम सेट की सेट, सितारों से खास मुलाकात और होंगी बातें दिल से, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा घर से भाग चुकी है और इसे लेकर अरमान और अभिरा काफी परेशान हैं और अपनी बेटी की तलाश में लगे हैं। ऐसे में वो मायरा को ढूंढने के लिए अनुभवी वकील का भी सहारा ले रहे हैं। चलते हैं सीरियल के सेट पर।
1: झोंका हवा का आज भी
2: बढ़ता अभिरा का डर,

कब मिलेगी मम्मी पापा को मायरा की खबर? और इसी तूफान के चलते अभीरा हो रही है परेशान, क्योंकि ना ही वो तेज हवाओं को रोक पा रही है और ना ही अपनी बेटी संग अपने रिश्ते को। तभी तो देखिए कैसे वो हो रही है परेशान। इतना ही नहीं, उसे तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा होने लगा है कि इसकी बेटी मायरा जरूर कोई गलत कदम उठाने वाली है। ऐसे में वो बस इंतजार कर रही है अपने अरमान के वापस आने का।

खैर अभीरा को जिस बात का डर था वही हुआ है, क्योंकि मायरा घर छोड़कर भाग गई है, वो भी कबीर के संग। ऐसे में अरमान ने भी अपनी सुध-बुध खो दी है, वो बेहद परेशान है और तो और उसने बातें करना भी छोड़ दिया है और अभीरा उसे समझने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, माधव भी आकर अभीरा और अरमान दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तो और यकीन दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मायरा का पता लगा ही लेंगे।

0: खैर माधव मायरा का पता जब लगाएंगे तब लगाएंगे। फिलहाल तो अरमान और अभिरा ने एक वकील भी कर लिया है और उससे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि वो वकील मायरा के मोबाइल को ट्रैक कर रहा है। ऐसे में वो वकील से इस बारे में बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन वकील भी इन्हें दे रहा है चेतावनी अपने रिश्तों को संवारने की। भाई वकील की बातों से तो अरमान और अभिरा की परेशानी और बढ़ गई है। इसी बीच वकील को आ जाता है नोटिफिकेशन मायरा के एड्रेस का। ऐसे में झटपट वो वकील निकल पड़ा है और साथ ही निकल पड़े हैं अरमान और अभिरा भी। देखना होगा क्या वो वाकई अपनी मायरा को ढूंढ लेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या अंतरा और दादी के षड्यंत्रों से बेहाल है और उसकी खुद को बेकसूर साबित करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। ऐसे में प्रथम देगा राध्या का साथ या फिर हो जाएगा उसके खिलाफ, चलिए देखते हैं।
0: अंतरा की केयर करता प्रथम। दादी को मिला नया मौका। दिखी राध्या की बेबसी। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में फिर एक बार ड्रामा शुरू हो गया है। असल में दादी ने प्रथम और अंतरा को मंदिर भेजा था और ऐसे में दोनों अच्छे से दर्शन कर घर लौटे और घर लौटते हुए अंतरा ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया चक्कर आने का। ऐसे में देखिए कैसे प्रथम अंतरा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आ रहा है। भाई ये सब अंतरा कर रही है राध्या को जलाने के लिए, लेकिन राध्या समझती है कि प्रथम अंतरा की नहीं बल्कि अंतरा के पेट में पल रहे बच्चे की केयर कर रहा है, इसलिए वो चुप है। वहीं दूसरी तरफ दादी और अंतरा भी मंदिर की बातें कर राध्या को जलाने की कोशिश में लगी है, लेकिन उल्टा राध्या तो अंतरा के लिए पानी लेकर आती है और उसकी केयर करती है।
2: अंतरा दर्शन तो ठीक से हो गए थे ना?
3: हाँ दादी, दर्शन भी हो गए थे और साथ में बाहर जाकर ना मेरा मूड भी अच्छा हो गया, पर प्रथम का तो जवाब ही नहीं है। उसने सब कुछ किया मेरे लिए और मेरे बच्चे के साथ साथ उसे मेरी भी बहुत परवाह है। और आपको पता है दादी, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ना उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और एक बार भी उसने मेरा हाथ भी ले छोड़ा। पूरे रास्ते उसने मेरी केयर की, मैं मेरा ख्याल रखने लगा। ख्याल तो रखेंगे ही ना प्रथम, आपकी कृपा में हमारा बच्चा जो है

0: लेकिन दादी वो कहाँ चुप रहने वाली है। राध्या को नीचा दिखाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती। तभी तो मंदिर से आया प्रसाद वो सभी घर वालों को दे रही है सिवाय राध्या के। राध्या प्रसाद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाती है लेकिन दादी उसे इग्नोर कर देती है। फिर भी राध्या कुछ नहीं कहती, चुप रहती है।
1: बाकी का प्रसाद
0: भाई, बात यही खत्म नहीं होती। जब राध्या वो चादर मांगती है जो उसने मंदिर में चढ़ाने के लिए दी थी, तब दादी का असली बवाल शुरू होता है। वो कह देती है कि बच्चे के लिए ये खास चादर का हक सिर्फ अंतरा को ही है, और ऐसे में राध्या को ये बात भी माननी पड़ती है। राध्या तो मजबूर है और चुप भी है, लेकिन कब तक राध्या चुप रहेगी ये देखना होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: रोज नए ट्विस्ट, रोज नए हंगामे, टेलीविजन की दुनिया में ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। आज किस सीरियल की कहानी में आया है कौन सा बड़ा ट्विस्ट, देखना मजेदार होगा। तो चलते हैं सीरियल्स की मजेदार दुनिया में।
3: समझो, वो लोग साथ रहे, दिमाग के एकदम चकमक है।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में अंकित ने दुआ को किडनैप तो कर लिया है, पर उसे ये नहीं पता है कि जो उसका साथ दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि धैर्य है। ऐसे में धैर्य बहरूपिया बना। अंकित का सहारा लेकर मन्नत और विक्रांत दोनों को ही सबक सिखाना चाहता है, उससे उनकी बेटी छीनना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंकित उसे जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अंकित को उस बहरूपिये का साथ सिर्फ यहीं तक का चाहिए था। लेकिन यहाँ पर धैर्य ने अपना खेल खेल दिया।
3: तुमने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारा कमीशन तुम्हारे पास पहुँच जाएगा।
4: तुमको लगता है मैं कमीशन के लिए आया हूँ? कतई बुड़बक हो यार, कतई बुड़बक।
3: एक मिनट, क्या कहा, फिर से बोलना।
4: अरे कुछ नहीं किया मियाँ, कुछ नहीं कहा। कहना क्या है, रहा क्या है कहने को। मैं तो कह रही हूँ भैया, फोन मिलाओ मैडम को। तुम्हारी बात हो जाए तो मेरी भी बात करा देना भैया, मेरी बात तो भी हाँ में ही भरेगी। लो कर लो, फोन कर लो, हेलो कर लो।
3: मन्नत जी और विक्रांत से बदला लेने के लिए मुझे इस कदर को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मुझे लौट रहना होगा।
0: भाई धैर्य तो कोशिश कर रहा है कि वो इस प्लानिंग में अंत तक रहे, क्योंकि वो मन्नत और विक्रांत से उनकी बेटी दुआ को छीनना जो चाहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मन्नत ने तय कर लिया है कि वो अपनी बेटी दुआ को बचा कर रहेगी, और इस बार तो मन्नत का साथ मल्ला और रोनी भी दे रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे मन्नत की आर्मी तैयार हो गई है। काले कपड़े पहनकर, आंखों में चश्मा चढ़ाकर ये आर्मी निकलने वाली है दुआ को बचाने के लिए पूरे जोश के साथ।

0: हुआ डरना मत बेटा, आपकी फैमिली आ रही है आपको बचाने।
1: भाई मन्नत ने तो अपना हौसला बढ़ा लिया है, और तो और उसकी मुलाकात अंकित से भी होगी जिसे वो सबक सिखाएगी, लेकिन इसी के साथ धैर्य का सच भी इनके सामने आएगा।
2: बेटे को, बेटे को, बेटे को, बेटे को।

0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा जी तोड़ मेहनत कर रही है इस कैफे को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने की और तो और जितने भी लोन चल रहे हैं उसको निपटाने की। इसलिए देखिए कैसे अनुपमा अकेली ही पूरे कैफे को संभाल रही है। ऐसे में अनुपमा को अचानक लग जाती है जिसके चलते बंकू उस पर नाराज होता है।
1: क्या हुआ दीदी? अरे लग गई। अरे आप दो मिनट के लिए आराम नहीं कर सकती ना आप? हाँ, सुबह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रेस लगा रखी है आपने। चाय भी खड़े खड़े पी, पांच मिनट बैठी आप, चलिए आइए।
2: अरे मैं कहाँ से आराम करूँ? मेरे हिस्से का सारा आराम तो नालायक तोसु महाराज ने कर लिया है ने। वो तो कुछ करता है नहीं।
1: अरे दीदी आराम।
2: ए तू ऐसे आंखें बड़ी कर करके घूर क्या रहा है? मैं डर जाऊंगी। अरे देख इस वक्त मुझे डबल ट्रिपल 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि लोन पास हो गया है तो मुझे इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले भरना है, उसमें जरा भी देरी नहीं हो सकती।
0: भाई अनुपमा का हौसला देते हुए बंकू अनुपमा का साथ तो दे रहा है लेकिन बंकू उसे डाउट हो गया है आरवी पर। ऐसे में वो अनुपमा को बताता भी है कि कहीं ना कहीं उसे दाल में काला नजर आ रहा है क्योंकि उसने आरवी को गोवा में देखा था। लेकिन अनुपमा बड़े ही प्यार से बंकू को समझाती है इससे पहले कि अनुपमा कुछ और कहती। वहाँ पर हो जाती है आरवी की एंट्री भी।
1: मुझे ऐसा लगा ये आरवी सर को ना मैंने गोवा में सलगोंडा में कहीं देखा है, मतलब ऐसे बहुत करीब से देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा।
2: तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तूने नहीं देखा है? देखा होगा, जरूर देखा होगा। देख जैसे देख विजय सर सालों पहले मेरे अनुज से मिले थे और ये बात बाद में निकली, वैसे ही बाद में पता चलेगा कि आरवी के साथ कोई रिश्ता है ना?
3: गुड मॉर्निंग मैम।
2: अरे बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी।
0: अब आरवी लव यू जिंदगी कैफे में आ तो गया है लेकिन यहाँ पर आकर उसे बार बार अपनी बहन का दर्द याद आ रहा है। देखना होगा कि आरवी अपनी बहन का बदला क्या अपने पापा से इस कैफे को मिटा कर लेगा।
4: सावी, तेरा नाम सावी से सड़ी कर दूंगा।
5: ये बात पेस्ट्री खाकर बोल पाया ना तो मैं खुद अपना नाम बदल दूंगी, और नहीं बोल पाया तो एक दिन मैं अपना कैफे खोलूंगी।
6: बंधन के मुटियाराया पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके।
0: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में शुरू हो गई है रज्जी और धीरज की शादी की रस्में। ऐसे में आज पूरा परिवार हल्दी की रस्म कर रहा है धीरज और रज्जी की, और जरा देखिए कैसे धीरज और रज्जी अपने पूरे परिवार संग बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

0: वही आखिरकार धीरज और रजी दोनों के प्यार की जीत हो रही है। पूरा परिवार इनकी हल्दी की रस्म में झूम झूम कर नाच रहा है और धीरज और रजी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ताल से ताल भी मिला रहे हैं और दीवाने भी हो रहे हैं। और इनकी खुशी देखकर महादेव खुश तो है लेकिन टेंशन में भी, क्योंकि सपना रघुवंशी की नज़र इसके पूरे परिवार पर जो है और ये बात महादेव बखूबी जानता है। तो वहीं सपना को ये बात पता चल गई है कि उस रात धीरज और रज्जी की गाड़ी जंगलों की ओर गई थी। ऐसे में सपना को हो गया है डाउट भी।
1: जंगल यही गाना होगा बॉडी को।
0: भाई महादेव खुश तो है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो दृश्यम के अजय देवगन बन चुके हैं, लेकिन सपना उसने भी हार नहीं मानी। देखना होगा क्या वो अपने बेटे की बॉडी का पता लगा पाएगी।
2: मैंने पूरे जंगल में सर्च पार्टी भेज दी है और हाँ, हर एक थाने से मैंने एडिशनल फोर्स ही मंगवा ली है।
3: इन सबको पता कहाँ चला है जो इतना भागते दौड़ते गए हैं उस तरफ?
2: हमें इस जंगल में टायरों के निशान और पैरों के निशान ढूंढने
4: हैं। बसी सर,
2: यस,
4: यहाँ देखिए क्या मिला है।
5: मैडम देखिए, ये टी शर्ट मिली है, मॉर्टी सर का तो नहीं?
6: आप जानते हैं मुंबई के अलावा भी सीरियल्स की शूटिंग कई और शहरों में होती है, और ऐसा ही एक सीरियल है थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान, जिसकी शूटिंग होती है कोल्हापुर में। आज सास बहू और बेटियां की टीम संग कोल्हापुर की सैर करा रहे हैं इस सीरियल के सितारे। तो चलिए करते हैं वैदेही अभिजीत और अनुप्रिया संग कोल्हापुर की सैर।

यह है कोल्हापुर जहाँ पर वैदेही के संग है अनुप्रिया और अभिजीत। देखिए अभिजीत कैसे फंसा हुआ है इन दोनों के बीच में, पर यहाँ पर तो आ गया है घर वाली बाहर वाली का ट्विस्ट।

0: लेकिन ट्विस्ट ये है कि थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान की शूटिंग मुंबई में नहीं होती है बल्कि होती है मुंबई से 8 घंटा दूर कोल्हापुर में, महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जो अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यहाँ की फिल्म सिटी में बना हुआ है थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान का सेट, और सबसे खास बात है कि इस सीरियल की शूटिंग रियल लोकेशंस में होती है और कलाकार यहीं पर इस फिल्म सिटी में ही रहते हैं। तो आज सीरियल की अनुप्रिया यानी अंकिता बहुगुणा हमें अपना हॉस्टल दिखाएंगी। जी हाँ, अनुप्रिया हॉस्टल में रहती हैं कोल्हापुर में, जहाँ के नजारे मुंबई से बहुत अलग हैं। और उनके साथ ही इसी हॉस्टल में वैदेही भी रहती हैं, अभिजीत भी रहता है और साथ साथ सीरियल के बाकी कलाकार। भाई यहाँ पर काम करते करते इन कलाकारों ने अपनी फैमिली सी बना ली है। ये सब मिलकर रहते हैं, शूटिंग करते हैं और मुंबई और अपने परिवार से दूर यहाँ पर दिन रात थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान की शूटिंग कर रही है। तो आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है कोल्हापुर, जहां हम दिखाएंगे कि वैदेही की जिंदगी में क्या है नया ट्विस्ट, अभिजीत कैसे फंसा हुआ है वैदेही और अनुप्रिया के बीच, और साथ साथ कैसा है पर्दे के पीछे आरती बिराजदार, अंकिता बहुगुणा और गौरव वाजपेयी का बॉन्ड। आज हमें गौरव वाजपेयी और अंकिता बहुगुणा फिल्म सिटी की सैर कराएंगे। तो देखेंगे पर्दे के पीछे कैसे होती है सीरियल की रियल लोकेशंस में शूटिंग, वैदेही का नया ट्विस्ट और साथ साथ इन सभी कलाकारों की लाइफ कोल्हापुर चित्र नगरी में। तो धीरे धीरे चलते हैं कोल्हापुर की इस फिल्म सिटी में।
1: ये देखिए खूबसूरत वादियां स्विट्जरलैंड की, और आज मैं आपको सास बहू और बेटियों में लेकर आई हूँ स्विट्जरलैंड, इंडिया के यानी कि कोल्हापुर में। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अंकिता बहुगुणा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हैं। सास बहू बेटिया थैंक यू सो मच, आप कई बार मेरे घर आए हैं, मुंबई के घर पे आए हैं, कई बार आप मुझे दर्शन के लिए लेके गए हैं और हमने बहुत सारी स्टोरी साथ में की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप फाइनली यहाँ भी आ गए जहाँ पे मैं रहती हूँ यानी कि कोल्हापुर में, यानी कि इंडिया का स्विट्जरलैंड। ये देखिए खूबसूरत वादियाँ, और अगर आप एक बार यहाँ आ जाएंगे ना तो आपको एकदम ऐसे सुकून मिलेगा। मतलब हमें मुंबई की लाइफ बहुत पसंद आती है बट कभी कभी ना थोड़ा सुकून वाली लाइफ भी जरूरी होती है, और वो सुकून वाली लाइफ जीने के लिए आपको इस तरह के लोकेशन में आना ही पड़ता है।
0: भाई अंकिता ने कोल्हापुर के इस हॉस्टल में अपना आशियाना बना लिया है, तो चलते हैं देखते हैं कि आखिर कैसे हॉस्टल लाइफ जी रही हैं अंकिता बहुगुणा, जो दरअसल हैं तो देहरादून की लेकिन मुंबई में कई सालों से काम कर रही हैं। इन्होंने पंड्या स्टोर से लेकर वसुधा जैसे शोज में काम किया है, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान की अनुप्रिया बन गई है और यहाँ कोल्हापुर में अपना आशियाना बसा लिया है।
1: तो बेसिकली ऑब्वियसली मैं यहाँ पे छुट्टियां मनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, अदरवाइज मुंबई को कौन छोड़ता है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सन नियो का शो जो कि है थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान। आई होप आप सब देख रहे हैं, और अगर नहीं देखते ना तो सन नियो पे 7:30 बजे मंडे टू सैटरडे जरूर देखिएगा। तो आज आप मेरे साथ ये भी देखने वाले हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि मुंबई में तो हम लोग अपने फ्लैट्स में रहते हैं, यहाँ पे भी फ्लैट्स में रहते हैं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ, आइए। सो ये है हमारा हॉस्टल। आप हॉस्टल से कंफ्यूज मत होना कि मैं वापस से अपने कॉलेज टाइम में चली गई हूँ और वहां पे वो स्टूडियस वाला जो माहौल होता था वो मैंने बहुत साल झेला है, लेकिन अब नहीं। ये हम लोगों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए हॉस्टल बनाया गया है कोल्हापुर फिल्म सिटी गवर्नमेंट ने, और हम लोगों को यहाँ पर लोकेट किया है। और हाँ, मतलब जिसे उधार कर ही आने पड़ते हैं, ये मेरा रूम है, थोड़ा मुंबई वाले कल्चर है यहाँ पे। और अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो आप इसको भी जानते होंगे कि लाइक मगर्स टॉलरेटेड ओनली विजर्ड्स आर अलाउड, सो या। और क्या है ना, हमारे हॉस्टल में ज़्यादा लोग नहीं है और इस वजह से सुबह सुबह जब कोई बेल बजाता है तो बहुत अनोइंग हो जाता है, इसलिए मैंने ना ये स्पेशली लगाया हुआ है कि बेल बजाने से पहले ज़रा सोच लो व्हाट व्हाई। So, आइए इसके साथ ही मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे हॉस्टल, मेरे कमरे, मेरे रूम में। यहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज तो नहीं है उस तरह का जिस तरह का मुंबई में मेरे अपार्टमेंट में सब कुछ है, पर हमको जो भी मिला है हमने उसी में अपना घर बना लिया है। और हर किसी को, हर आर्टिस्ट को यहाँ पे ये रूम मिला है, अपने अपने स्टाइल, अपने अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से सबने डिकोर किया, और मेरी पर्सनैलिटी आपको ये रूम देख के समझ आ जाएगा कि आई एम अ बोलावर। हर जगह आपको वो एलिमेंट दिखेंगे, पिंक कलर दिखेगा। सो एंड आई लव मिरर्स। मुंबई में भी जब आप लोग मेरे घर आए थे तो मेरी एक पूरी वॉल पे मिरर्स ही मिरर्स हैं, तो पूरी वॉल पे तो मैंने अभी तक मिरर नहीं लगाए हैं,
2: तो मैंने फिलहाल यहाँ पे तो मेरा लगा दिए हैं।
1: और ये देखिए, ये आई एम अ लकी गर्ल, आई बिलीव इन दैट। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले इसको ही देखती हूँ और मेरा मूड एकदम खुश हो जाता है, मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। और ये सब मैंने ना खुद से किया हुआ है, मैंने खुद से बनाया हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे DIY बहुत चलता है। ये क्या है ना, यहाँ पर ना उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है कि मैंने फोन किया इलेक्ट्रीशियन आ गया, प्लम्बर आ गया, कारपेंटर आ गया, तो यहाँ पे जो भी करना है खुद से करना पड़ता है, या कभी कभी प्रोडक्शन वाले भेजते हैं बट नॉट रेगुलरली। मुंबई जैसी फैसिलिटीज नहीं है कि आपको फेशियल करवाना है कि 5 मिनट में आ गया, तो हमको सब कुछ DIY करना पड़ता है। तो ये सब मैंने खुद से ही किया है विदाउट एनी हेल्प। यस, और ये भी DIY है जो कि मेरी मासी ने स्पेशली दिल्ली से बना के मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मासी देखो मैं नए घर में जा, मतलब नया रूम मुझे डेकोर करना है और पिंक कलर के फ्लावर्स चाहिए मुझे स्पेसिफिकली। मैं ऑनलाइन भी मंगा सकती थी, आजकल ये बहुत चल रहे हैं, पर मेरी मासी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती है। अगर आपको लेना होगा ना तो मुझे बताना, मैं आपको उनका ID बता दूंगी। तो वो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स उन्होंने बनाए हैं, रोजेज एंड ये कलियां हैं, और ये वाला फ्लावर लिली फ्लावर। प्लांट मैं अपने मुंबई के प्लांट्स को बहुत मिस करती हूँ, जो कि मेरी बैल्कनी में है, नॉट बैल्कनी तो नहीं है, वहाँ पे यहाँ पर है, वहाँ पे मतलब विंडोज होती हैं, उसमें मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं। वो एक महीना हो गया मुझे उनसे मिले हुए, तो मैं उन्हें मिस कर रही थी, तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं थोड़े से प्लांट्स यहाँ पे लगाऊँ। तो ये प्लांट मैं लेकर आई, और ये अगेन पिंक कलर का है, तो मेरे थीम के साथ भी जा रहा है, मेरे रूम के डेकोर के साथ भी जा रहा है, इसलिए इसको मैंने अंदर ही रखा है, मैंने इसे बाहर नहीं रखा, सो दैट मैं इसे देखूँ और एकदम खुश हो जाऊँ। चलिए और चीज़ें देखते हैं, पिंक बो एंड अ बटरफ्लाई। सो दिस इज माई बेडरूम, यू कैन से दिस इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट। मतलब आप इसको ऐसे सोचिए कि मुंबई में ये इसके भी मतलब 20,000 देने पड़ेंगे मंथली, ऐसा कुछ सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। ठीक है, हमें यहाँ पे फ्री में मिला हुआ है, मतलब फ्री में नहीं मिला हुआ है, हम काम कर रहे हैं, बट आप ये समझ लीजिए ये मेरा बेडरूम, ये मेरा बेडरूम एरिया। सो दिस इज माई बेडरूम एरिया एंड मीट मैरिलिन मनरो, माय फेवरेट ऑफ ऑल टाइम। मुंबई में भी इनके बहुत सारे पोस्टर्स मैंने लगा के रखे हैं। हाँ हाँ, मेरे DP में भी यही है, मेरे मुंबई के घर में भी मैरिलिन मिलेगी आपको, ऑड्रे हेपबर्न मिलेगी, ये जो जो मुझे पसंद है वो सब मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर भी उनका एक पोर्ट्रेट लगा दिया है। यस, दिस इज स्पेशली फॉर यू सास बहू एंड बेटिया, आपके स्वागत के लिए मैंने फ्लावर्स मंगाए हैं यहाँ पर, और ये मैंने आपके लिए किया है। एंड मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, वैसे तो बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं बट मुंबई में है, कुछ थोड़ी बहुत मैं लेकर आई हूँ जो कि यहाँ पे जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। एंड अगेन अनदर बो, एंड यू कैन सी फॉर माय पेन, इट इज माय पेन स्टैंड। और ये है मेरा डाइनिंग एरिया। सो जापानीज कल्चर में हमने मैं खाना खाती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बैठ के प्रणाम करके, ये देखिए कैंडल लाइट भी जला के, और ये मेरा डाइनिंग एरिया है, तो यहाँ पे खाना वाना रख के, अगर आप थोड़ी जल्दी आते तो अभी मैं आपके साथ लंच भी करती यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, बट ये मेरा एरिया है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर मैं बैठ के आराम से खाना खाती हूँ। मुझे थोड़ा सा ना होटल वाला भी फील चाहिए था अपने रूम में, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक कैटल ले ली जाए। जब हम सबसे पहले आई तो मैंने कैटल ही ली, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है और मैं हूँ पहाड़ी, और पहाड़ी लोग बिना चाय के अपने दिन की शुरुआत नहीं करते, शाम की शुरुआत नहीं करते। तो मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर गैस वैस नहीं है, तो पहले केटल ली सो दैट आई कैन मेक माई ओन टी, एंड इसको थोड़ा सा होटल वाला फील बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे अच्छे से सेट करके रखा है। एंड फिर मैंने ये इलेक्ट्रिक प्लेट भी ले ली, क्योंकि अभी क्या होता है कि वो कब तक आप पाउडर वाली चाय पियोगे, आई नीड टू मेक ओरिजिनल टी जिंजर डाल के और कॉफ़ी पीनी हो तो। और ये मेरा सारा टी एंड कॉफ़ी सेटअप है, कॉफ़ी टी जैगरी पाउडर और ये टी मसाला सब कुछ है, और थोड़ा बहुत अपने को इंस्पायर करने के लिए कुछ कोट्स भी हैं। ऑलवेज गिव अ लिटिल मोर देन यू प्रॉमिस। तो जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। और एक और है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, वी हैव टू कीप मूविंग। सो या, जैसे काम करने के लिए हमें मुंबई छोड़ के पहले तो काम करने के लिए देहरादून छोड़ के मैं मुंबई आई, और अब काम करने के लिए मैं मुंबई से कोल्हापुर आई, सो वी हैव टू कीप मूविंग। तो आप आपने मेरा किचन एरिया तो देख ही लिया, अब मैं आपको अपने लिविंग एरिया में लेके चलती हूँ. सो दिस इज माई सोफा. सो रूम में दो बेड थे तो मैंने कहा मुझे दो बेड की क्या जरूरत है, मैं तो अकेले रहने वाली हूँ. तो आई थॉट ऑफ दिस कि मैं इसको एक बेड सोफा बना देती हूँ और इसमें मैंने ढेर सारी पिलोज लगा दी हैं, साइड पिलोज लगा दी, और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के यू नो बिग बॉस देखती हूँ, या मुझे जो भी देखना होता है यहाँ पे बैठ के मैं मस्त वॉच करती हूँ, या मेरे कोई फ्रेंड्स आते हैं रूम में तो मैं उन्हें बोलती हूँ बैठिए मेरे सोफे में आइए. तो या दिस इज माई सोफा. और अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे मंदिर में, आइए मिलिए मेरे गणपति बप्पा से. छोटे से हैं, क्यूट से हैं, कार्डबोर्ड के हैं, बट अगेन DIY हैं, और जो भी हैं मतलब मुझे तो गणपति बप्पा बहुत पसंद है. और ये मैं जब फर्स्ट डे कोल्हापुर आई थी तो मैं महालक्ष्मी टेम्पल गई थी, वहां से मुझे ये मिला था टेम्पल से, तो मैंने इसको रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि महालक्ष्मी जी की ब्लेसिंग मेरे साथ रहेंगी तो कोल्हापुर में अच्छे से टाइम बीतेगा और अच्छे से हमारा शो बहुत बहुत अच्छा चलेगा. सो यादीज आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम महालक्ष्मी जी.

0: मेरा वार्डरोब एरिया जहाँ पर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। जैसे कि आज आप लोगों के लिए मैंने ये प्यारी सी लवली सी ड्रेस पहनी है वाइट कलर की। तो जब भी मुझे निकलना होता है यहाँ से कोल्हापुर के लिए, सेट पे भी जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है, तो सबसे पहले मैं अपने वार्डरोब एरिया में आती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या पहनूं। थोड़ा मैसी हो रहा है, मतलब मुंबई जैसे वार्डरोब की तरह तो नहीं है, बट जो भी है ठीक है। सो या दिस इज माय वार्डरोब एरिया। आई मेक श्योर कि हर चीज ढंग से हो, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि इसमें और ढंग से इसको अरेंज करने की जरूरत है, बट क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ हम लोगों का, 3 महीने हुए हैं। धीरे धीरे आई थिंक जैसे शो ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप लोग हमारा शो और ज्यादा पसंद करेंगे, वैसे वैसे हमारे यहाँ सेटलमेंट और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और कलेक्शन आते रहेंगे। जो मुंबई में पड़े हैं वो मैं लेते आती रहूंगी, रिसाइकिल करती रहूंगी। तो या दिस इज माई वार्डरोब। या दिस इज माई वैनिटी एरिया। तो सिर्फ हम मेकअप वहीं नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल, नॉट आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, बट स्टिल आपको कॉम करना होता है, आपको परफ्यूम लगाना होता है, तो वो सब आपको कॉम करना होता है, वो सारी चीज़ें मेरे यहाँ पर रहती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बस 5 मिनट और उसके बाद सबको ये दिखा देती हूँ। इसमें तो मेरा सामान है, छोटा मोटा मसाले वसाले।
1: वैसे अंकिता के इस हॉस्टल में खास है उनका ये बालकनी व्यू जो हरा भरा है और बिल्कुल स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है।
0: तो अब मैं जिस एरिया में आपको लेके जाने वाली हूँ ना, वो मेरा फेवरेट एरिया है, क्योंकि वहां जब मैं जाती हूँ और बैठती हूँ तो मुझे मेरा होम टाउन याद आता है, मेरा होम टाउन मुझे याद आ जाता है, जो कि है देहरादून। देहरादून की वादियाँ, उत्तराखंड की वादियाँ, मुझे हालांकि यहाँ पे उतना लेवल का नहीं है बट स्टिल जो भी है ना इनफ है। और यहाँ पर ना आपको पता है शाम को मोर भी आता है, जिसको मैं थोड़े से चावल डालती हूँ। एवरी डे एवरी इवनिंग व्हेनेवर आई एम फ्री मैं अपनी चाय लेके जाती हूँ, चाय पीती हूँ और मोर के दर्शन होते हैं। और जब बारिश होती है, अभी 2 दिन पहले ही मुझे रेनबो भी दिखा है, ब्यूटीफुल रेनबो। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी बालकनी में। ये नज़ारे आपको मुंबई में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिनी स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, यानी कि हमारे इंडिया के स्विट्जरलैंड कोल्हापुर में। ये हसीन वादियां, ट्रस्ट मी, मैं जब स्ट्रेस्ड होती हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या, ओके थोड़ी बोर हो रही होती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बस चाय बनाती हूँ, बैठती हूँ और आपको एक और पिटारा दिखाती हूँ अपना। ये मेरा स्नैक्स का पिटारा है। तो ये निकालती हूँ और चाय पीती हूँ और ये नज़ारा इंजॉय करती हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं, अभी तो धूप हो रही है बट जैसे जैसे ग्रेजुअली इवनिंग होगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, फोटोशूट के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए, मतलब कोई भी ओकेजन होता है वो यहाँ पर आते हैं। और मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब हर कोई कोई ना कोई रील बना रहा होता है, फोटोशूट चल रहा होता है। सनसेट यहाँ पर जाके बहुत ब्यूटीफुल है, इनफैक्ट मैं और जो मेरी मॉम प्ले करते हैं गीतिका जी, हम लोग भी वहाँ पर जाते हैं और सनसेट देखते हैं। लग रहा है ना बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा, क्योंकि ये है हमारा स्विट्जरलैंड। हम तो यही बिलीव करते हैं कि हम स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। तो मैं ऐसे अगर ये फ्रंट में आते हैं तो मैं उन्हें वहीं खाना दे देती हूँ, डॉग फूड भी रखा है मैंने, बट अगर मुझे जब भी यहाँ पर रोम अराउंड करते हुए डॉग दिखते हैं तो मैं ऊपर से ही उनको बिस्किट्स डाल देती हूँ। इट्स बीन लाइक 1 month मैं गई थी जब लास्ट मुंबई। एक्चुअली मुंबई में फ्रेंड्स हैं, मेरा खुद जो मेरा घर है वो मैंने पूरा विंटेज हाउस बना के रखा है, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ और अपने दोस्तों को भी मिस करती हूँ। दोस्तों से रेगुलरली नहीं मिलते बट जब भी मिलते हैं तो एक यू नो आप एनर्जाइज्ड हो जाते हो। और मुंबई में ना बहुत शोर है बट पता नहीं मज़ा आता है, मतलब अगर आप मुंबई में रहने लग जाओ तो फिर आपको कोई और सिटी इतनी आसानी से पसंद नहीं आती। आप कुछ दिन कहीं और रह सकते हो बट अल्टीमेटली आपको मुंबई ही चाहिए। तो आई डू मिस मुंबई एंड होपफुली जल्दी मैं वहाँ जाऊँ। नवरात्रि में तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ डांडिया खेलने के लिए, तो या होपफुली उससे पहले टाइम मिलेगा तो मैं पक्का जाऊंगी।

0: वैसे यहाँ पर अंकिता अकेली नहीं रहती, उनके और कलाकार भी रहते हैं, जैसे उनकी सीरियल की मम्मी जी गीतिका। तो गीतिका और अंकिता बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं।
1: तो अभी हम यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं ना, तो यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है जो कि है गीतिका जी, जो कि मेरा मेरी मॉम का रोल प्ले करती है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड क्योंकि हम लोग साथ में घूमते फिरते हैं और कोल्हापुर एक्सप्लोर करते हैं, और ये मेरी पड़ोसी भी है। तो चलिए मैं आपको अपने पड़ोसी से मिलाती हूँ। सी अनोइंग है ये बेल, इसीलिए मैंने वहां पर लगाया। हाय,
2: हेलो हेलो,
1: बहू एंड बेटिया।
2: हेलो हेलो,
1: बहू एंड बेटिया। तो ये है गीतिका जी, माय बेस्ट फ्रेंड कोल्हापुर में, मेरी एक्सप्लोरर पार्टनर। आज भी हम एक्सप्लोर करने वाले थे बट आप लोग आ रहे थे तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। हमने आपके लिए ये दिन रखा है और मैं आपको ना एक अब वो आपको लेके जाएंगी।
2: कम थोड़ा सा मैसी रूम है बट क्योंकि ये होटल रूम नहीं है, ये हॉस्टल रूम है, सो थोड़ा वही हॉस्टल काइंड, थोड़ी मैं भी मैसी हूँ। थोड़ा हमने इसको घर जैसा फील देने की कोशिश की है, मैंने थोड़े से प्लांट्स लगा लिए हैं और
1: सेम प्लांट हम लाए थे साथ में।
2: हाँ, ये हम लोग बहुत घूमते हैं साथ में।
1: हाँ,
2: तो हम जब भी कहीं जाते हैं,
1: अनदर पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, इंडिया का स्विट्जरलैंड। ये तो सच में स्विट्जरलैंड लगता है, देखिए इतना खूबसूरत लगता है।
2: आई नो, हम दोनों रोज बहुत घूमते हैं, बहुत गप्पे मारते हैं और दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स बहुत सिमिलर हैं, तो हम दोनों की बहुत बनती है, बहुत पटती है आपस में।
1: हाँ, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गई, मेरा मन नहीं लगता था डिस्टर्ब के बिना।
2: तो मैं ऐसे बहुत ज्यादा मिस मुंबई की लाइफ मिस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली मिस करती हूँ, मम्मा पापा माय हस्बैंड। तो बाकी तो अंकिता मेरे साथ है क्योंकि तो मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिल गई है, तो हम लोग साथ में बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं कोल्हापुर। तो मैं मुंबई ऐसे मिस नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ, मजे ले। हम यहाँ पे दो लोग रहते हैं, ये रूम हम दो लोग शेयर करते हैं। तो ये मेरी रूममेट का बेड है, वो मेरा बेड है। मैं कुछ पढ़ रही थी अभी, ये थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल जी, हिंदी लिटरेचर, ये अवार्ड विनिंग राइटर हैं। तो मैं थोड़ा पढ़ती रहती हूँ इस तरह का, और बहुत सारी चीजें हैं।
1: मतलब मैं आपको बता दूं कि ये ना बहुत तरह तरह के स्नैक्स बनाती है, मतलब ऐसे मतलब इनका कलेक्शन जो है ना स्नैक्स का वो बहुत है। तो बताइए क्या क्या है आपके पास।
2: नहीं, मैं ऐसे अभी तक बनाती नहीं क्योंकि मेरा कुकर नहीं आया है, तो बट ये वो प्री मिक्सेस हैं जो आप डायरेक्ट मल्टी कुकर में डाल के पानी डाल के कुक कर सकते हैं, तो वो चीजें हैं। ये तो ओट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं,
1: मेरा तो छोटा सा था
2: ये, एक है खिचड़ी मिक्स है ये, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। मेरी मम्मा मुझे कुछ कुछ हेल्दी चीजें बना के देती रहती है। ये है हाँ तिल के लड्डू, हाँ ये एक्चुअली मक्का और चावल ये दोनों का मिक्स खिचड़ी है ये। तो हाँ मैं कोशिश करती, मैं कर नहीं पाती, वैसे मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं। तो एक छोटी सी मिक्सी है मेरे पास, हमारे पास में प्रेस है, ये एक छोटा सा चॉपर है जो अभी मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, और एक छोटा जूसर भी है,
1: दुकान
2: है, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। और बस बाकी तो ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने किया है क्योंकि आई पर्सनली डोंट लाइक व्हाइट वॉल्स, तो मैं थोड़ा उसको लाइवली बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मजा आ रहा है, ये एक नया एक्सपीरियंस है। जनरली हम लोग मुंबई में एक ही सेट पे शूट करते हैं हमेशा, और घर से निकले सेट पे गए, सेट से निकले घर पे गए, तो बहुत एक नॉर्मल सी लाइफ रहती है। यहाँ कुछ एक्साइटमेंट है क्योंकि अब यहाँ पे खुद चीजें कुछ बनानी कर पड़ती हैं खाने के लिए। वैसे खाना आता है, टिफिन आता है हम लोगों का, ऐसा नहीं है, बट हम अपनी चॉइस से कभी कभी कुछ करते हैं कि आज टिफिन वाला नहीं खाते, आज कुछ और खाते हैं।

0: अरे मैं तो भूल ही गई, शूटिंग का टाइम हो गया है, लेट अभी कॉल टाइम से लेट हो गए, हम जाना है शूट करना है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ हम कैसे शूट करते हैं।
1: चलो बाय बाय
0: बाय।
2: अब बारी है मिलने के अनुप्रिया के पति देव अभिजीत यानी अभिनेता गौरव वाजपेयी से, जो अंकिता बहुगुणा के साथ ही हॉस्टल में रहते हैं, और अब दोनों मिलकर हमें कोल्हापुर की इस फिल्म सिटी को घुमाने वाले हैं।
0: तो चलिए अब मैं अपने दूसरे पड़ोसी से मिलाती हूँ, जो कि मेरी गोल्ड स्टार है हमारे शो के हीरो एंड विलेन
3: अभिजीत।
0: मिस्टर गौरव, लड़की मैं हूँ लेकिन टाइम ज्यादा ये लगाता है।
4: कोल्हापुर की मिर्ची मशहूर है तो तुम्हें वो,
0: हाँ, और इसे मिर्ची बहुत पसंद है, और मैं तो बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खा सकती, बट ये तो इसको जितनी मिर्ची दे दो उतने काम।
4: तीखा इंसान,
0: यस तीखा इंसान,
4: चलो
0: तो चले,
4: हाँ,
0: चलते हैं, आ चुका है,
4: यस।
0: अपने रूम्स लॉक करते हैं और यहाँ से सेट के लिए निकल जाते हैं। अगर 9 बजे का कॉल, 9 बजे की शिफ्ट होती है तो 8:30 तक पहुँच जाओ, और आप कितने बजे पहुँचते हैं, आपको लेट ही पहुँचते हैं?
4: नहीं नहीं मैं पहुँच जाता क्योंकि सामने ही हमारा सेट है।
0: सबसे अच्छी बात है कि हम बस निकलते हैं,
4: सेट आ जाता
0: है, बट आज थोड़ा दूर है,
4: मुंबई के शोर से दूर, थोड़ा पीसफुल शांति से मैं रहते हैं,
0: हाँ,
4: और अपना काम करते हैं, रात में आते सो जाते, फिर सुबह अपने सेट पर, सामने ही हमारा सेट। ब्रेक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं सेट हूँ यहाँ पर, एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, आप देख सकते हैं शाम में ठंड होती है, तो बट यस मुंबई इज होम, तो यस समटाइम्स आई मिस। लोग कम है यहाँ पर क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है फिल्म सिटी, यहाँ पर कुछ एक दो शूट्स होते हैं, हमारी यूनिट होती है तो जब पैकअप होता है तो शाम को आपको यहाँ पर भीड़ दिखेगी, यूजली कम ही होता है।
2: तो अंकित और अभिजीत रेडी हैं कोल्हापुर फिल्म सिटी घुमाने के लिए, जो इनके सीरियल थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान का सेट भी है, तो देखेंगे कि कहां कहां इनके सीरियल की शूटिंग होती है।
4: जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर अनु का घर है, अनु हाउस,
0: ये मेरा घर है, मेरा बंगलो। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब यहाँ पे शूट होता है, बस निकले और पहुंच गए। मुंबई में ये लग्जरी नहीं है, मुंबई में आपको 2 घंटा लग जाता है ट्रैफिक में,
4: जस्ट लाइक 2 मिनट्स अवे। तो ये अनु हाउस है, थैंक्स, जितना भी ड्रामा होता है वो सब यही होता है।
0: और ये महादेव,
4: ये महादेव हाउस है जहाँ पर हमारी शादी हुई थी मेरी और वैदेही की,
0: बहुत ब्यूटीफुल है। और ये यहाँ पर हमारे फोटो शूट या फिर कोई,
4: ये क्रोमा स्टूडियो है,
0: क्रोमा होता है,
5: पूरा एरिया
0: हम यहाँ के राजा हैं, हम लोगों का शो है,
4: हमारे शो मतलब हमारा ही शो है, पर ये पुलिस स्टेशन है,
0: स्टेशन भी है यहाँ का,
4: और आप अगर सामने से व्यू देखेंगे शाम में तो बहुत कमाल दिखता है,
0: एकदम लाल लाल हॉलीवुड।
4: और रेलवे स्टेशन है,
0: वो मेरा फेवरेट एरिया है,
4: तो वहाँ पे जितना ट्रेन का सीक्वेंस होता है, रेलवे स्टेशन पर है, नहीं ट्रेन नहीं है पर प्लेटफॉर्म से,
0: अच्छा कोर्ट भी है वहाँ पे, मैंने कोर्ट भी
4: है, वो शहर देख सकते हैं आप कोल्हापुर सिटी,
0: बारिश होती तो और ब्यूटीफुल लगता है, और सुंदर लगता है,
4: शुद्ध हवा। इधर अभिजीत हाउस है जो मेरा घर दिखाया है, वाड़ा
5: ये वाला,
4: यस आगे दादा बोले ना वाड़ा पे, इधर आगे मेरा वाला घर जो है अभिजीत हाउस, हाँ ये तो अभी बंद पड़ा है, यहाँ पर फिल्म और दूसरे शोज का शूट होता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अभिजीत हाउस है, यहाँ पर मैं और वैदेही शादी करके आते हैं। ओके सो ये देख सकते हैं आप, ये अभिजीत का घर है, बहुत बड़ा है, अभी इस वक्त यहाँ शूट नहीं है तो लॉक है, बट अंदर यहाँ पर 15 से 20 रूम्स हैं और ह्यूज सेट है, तो आपको जो शो में रियल फील मिलता है बिकॉज ऑफ रियल लोकेशन, इट्स नॉट अ सेट, इट्स लाइक प्रॉपर रूम्स और सब कुछ वैसा बना हुआ है, बट ये हाँ आपको काफ़ी हेरिटेज फीलिंग देता है, और 3 महीने से हम ये पूरे फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं।
0: फॉर माय ब्लॉग
4: आप आके देख सकते हैं, ये कुआं हमने बनाया हुआ है छोटा सा, इसमें हम पानी भर देते हैं। लोकेशन है राजा रामपुरी, तो उसको हमने चीट करके ऐसा यहाँ पर

0: इसी के जस्ट आप वो देखेंगे, वो मंदिर है, बहुत बड़ा फिल्म सिटी का मंदिर है। हाँ ये खुला हुआ होगा।
1: अंकित और अभिजीत ने हमें दिखाया वो मंदिर जहाँ पर उनके सबसे ज्यादा सीन शूट हुए हैं। इस मंदिर में उनकी ढेर सारी शूटिंग की यादें हैं। शूटिंग तो नहीं है, लेकिन अपने इस मंदिर में उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया।
0: हम यहाँ खुल के कहीं पर भी शूट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक सीक्वेंस है जहाँ मैं अनु को क्रेन पर प्रपोज करता हूँ, हमने एक्चुअली सड़क के बीच में गाड़ियां जा रही थी और क्रेन पर चढ़कर मैंने उसे प्रपोज किया था। तो ये मंदिर है बहुत बड़ा, वो हमारे फिल्म सिटी से भी बड़ा, जो मुंबई का फिल्म सिटी उससे भी बड़ा मंदिर है। हाँ चूंकि शूट आज बाहर हो रहा है, आउटडोर हो रहा है, तो
2: इस मंदिर में तुमने शूट किया है?
0: हाँ हाँ, मेरा मेरी जो दूसरी शादी होती है पौधे के साथ वो यहीं पर होती है।
3: तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है।
0: और यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो सामने कितना अच्छा।

0: अब बारी है शूटिंग देखने की। तो भाई सीरियल की हीरोइन वैदेही यानी आरती बिराजदार आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन शूट कर रही हैं। अभिजीत ने आरती को फंसा दिया है एक नए लफड़े में और कॉलेज का ट्रिप वैदेही की जिंदगी में नया तूफान लेने वाला है। तो देखते हैं कि शूटिंग कैसे चल रही है। और शूटिंग देखने पहुंच गया अंकिता और गौरव भी।
1: जो मेरी पहली पत्नी वैदेही है वो भी आपको वही मिलेगी। मजे नहीं आ रहे, फंसा हुआ हूँ। अभिजीत की पूरी जिंदगी से पूरा जो ट्रैक है वो भागम दौड़ में निकल रहा है। कहीं इसको उसके बारे में पता ना चले और उसको इसके बारे में पता ना चले।

0: पैदाई के स्ट्रगल यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रहे, आप देख सकते हैं।
1: आज तक का सीन है तो हम लोग कॉलेज में जाके सीन करते हैं, अगर हॉस्पिटल का सीन है तो ये हॉस्पिटल में जाके सीन करते हैं, अगर ऑफिस का सीन है तो हम रियल ऑफिस में जाके सीन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चार्म है कोल्हापुर में शूट करने का कि हम बिल्कुल फील आ जाते हैं कि यू नो यहाँ पर आकर ही फील आ रहा है कि अभी कॉलेज स्टूडेंट
0: हमें जैसी भी लोकेशन चाहिए सब मिल जाता है।
1: हाँ, और फुटबॉल खेलना है तो सामने फुटबॉल फील्ड में भी जाएंगे।
0: ये हमारी छोटी सी यूनिट, वो देखिए वैदेही खड़ी है, उसका स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभिजीत उसको बराबर स्ट्रगल करा रहा है। तो ये कहाँ गई वैदेही, कहाँ गई? ये हमारे सेकंड यूनिट के डायरेक्टर हैं और हम सब बड़े प्यार से शो करते हैं, बड़ी मेहनत से शो करते हैं। वैदेही कहाँ गई?
2: वैदेही भाग गई।
0: अच्छा, वैदेही भाग गई है हमें देखते हुए, दूसरी बीवी आ गई इसलिए भाग गई वो। वैदेही ट्रैक के हिसाब से अभी भी धक्के खा रही है।
3: बारी है शूटिंग देखने की, तो भाई सीरियल की हीरोइन वैदेही यानी आरती बिराजदार आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन शूट कर रही हैं। अभिजीत ने आरती को फंसा दिया एक नए लफड़े में और कॉलेज का ट्रिप वैदेही की जिंदगी में नया तूफान लेने वाला है, तो देखते हैं कि शूटिंग कैसे चल रही है।
0: ये हमारे गर्म मिजाज डायरेक्टर, और जल्दी थोड़ा टेम्पर सर का कभी आया होता नहीं, वैसे तो बड़े कूल इंसान है हमारे सर।
1: ये लोकेशन का ये प्रॉब्लम होता है कि लाइट वाइट ऊपर से क्या होता है, लोगों को हम रोक नहीं सकते, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स तो आएंगे जाएंगे बट फिर वो कंटिन्यू की मैच नहीं होगी, इसलिए फिर यू नो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बादल आ गए थैंकफुली।

0: दोनों नहीं मिली।
1: स्वीट स्वीट घर वाली। भाई पर्दे के पीछे के ये पल हैं जो आपको सीरियल में नहीं दिखेंगे, लेकिन हम कोल्हापुर के इस सीरियल के सेट से ये पल आपके लिए लेकर आए हैं।
2: सवालिया सुना था, जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो।
1: इसके बाद वैद्य ही ने अपनी शूटिंग पूरी की।

0: और सारे कलाकार पहुंच गए अपने हॉस्टल में क्योंकि इन्हें अगले दिन की शूटिंग करनी है।
1: अब तो मन लग गया है कोल्हापुर में, हर जैसा फील होता है, और मुंबई भी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कुछ ही घंटों में मुंबई भी पहुंच जाते, तो यार प्रीटी मच हैप्पी।
2: अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और हमें एक दो साल जितने भी चले थे हो, दो तीन साल
1: बहुत लंबा चले,
2: तो हमें इतना है कि ये एक्सपीरियंस हमें लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा, तो जो भी है उसको एंजॉय करो, उस टाइम को अच्छे से वो एक्सपीरियंस को लो, तो इसीलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। हम दर्शकों से सबसे पहले तो ये कहेंगे प्लीज हमारा शो देखिए, हमारा शो बहुत ही खूबसूरत, आप देखेंगे ना तो विजुअली आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग एकदम लाइव लोकेशन में जाके शूट करते हैं, जिस जो कि मुंबई में पॉसिबल नहीं है, तो आपको वो डिफरेंस देखने में मिलेगा, और स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुल है,
1: और उसके साथ साथ हमारा शो बहुत सारे मैसेजेस देता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाता है और सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो हम ये कहेंगे कि हम बहुत मेहनत से बहुत लगन से शो कर रहे हैं, और इतनी दूर आकर यहाँ पर अपने परिवार से अपने शहर से आप सबके लिए, आप सबको प्यार देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए हम यहाँ पर हैं, तो हमारा शो देखें, अपना ढेर सारा प्यार दें, बस यही कहना चाहूँ।
2: थैंक यू, साथ बहुएं बेटियाँ हमारे साथ बने रहिए,
0: बाय बाय
2: बाय।
0: ये था थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान का सेट, जिसकी शूटिंग होती है कोल्हापुर में, और आज सास बहु बेटियां खास कोल्हापुर से आपके लिए शूटिंग के नजारे और पर्दे के पीछे के नजारे लेके आए, कैसे कलाकार यहां पर अपने परिवार से दूर रहते हैं, शूटिंग करते हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं फोर्स बैचलरहुड के साथ।
3: सीरियल तुम देना साथ मेरा में देखने को मिला रक्षित अपराजिता का उपले वाला रोमांस, और इस रोमांस के पीछे छिपी है अपराजिता की खुशी, क्योंकि उसकी सास उसे बड़ी बहू के रूप में स्वीकारने को तैयार हो गई है। अब ये सच में होने जा रहा है या फिर इसके पीछे बड़ी चाल है, चलिए देखते हैं।

0: रक्षित अपराजिता का तबेले वाला रोमांस
1: तुम्हारे लिए
0: करीब आते मियां और बीवी। रक्षित और अपराजिता की खुशी
1: तुम्हारे लिए
0: के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता की खुशी सातवें आसमान पर है, क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसे घर की बड़ी बहू का दर्जा जो दे दिया है। ऐसे में अपराजिता खुश होकर रक्षित के पास अपने कमरे में पहुंच गई है और रक्षित उसकी खुशी देखते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता उसे दे देती है धक्का और साथ ही बताती है अपने खुश होने की वजह भी। असल में रक्षित की माँ घर में पूजा करवाना चाहती है, वो भी अपराजिता के शुद्ध होने की, जिस बात से अपराजिता अनजान है। उसे तो लगता है कि इस घर में पूजा है और ये पूजा घर की बड़ी बहू ही करेगी। ऐसे में उसे इस घर में शुद्धता बनाए रखने के लिए अपने पति से दूर रहना होगा और यही आदेश वो रक्षित को भी सुनाती है और दूरियां कायम रखने को कहती है। हालांकि रक्षित इस बात को लेकर परेशानी भी जताता है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपराजिता की खुशी में बेहद खुश नजर आ रहा है। लेकिन इस पूजा के लिए अपराजिता को कई सारे नियमों का पालन और करना होगा, जिसके चलते अपराजिता और रक्षित दोनों पहुंच जाते हैं एक तबेले में, जहां पर घुसते ही बढ़ जाती है रक्षित की परेशानी, क्योंकि उसे वहां की बदबू पसंद नहीं आ रही। और तो और अंदर जाते ही उसका पैर गाय के गोबर के ऊपर पड़ जो गया है, जिसके चलते उसके मुंह से चीख निकल जाती है और अपराजिता रक्षित को संभालने की कोशिश कर रही है और उसे समझा रही है कि ये पूजा कितनी मायने रखती है। ऐसे में रक्षित इस तबेले में रुकने के लिए तैयार हो जाता है।
2: Come on, Rakshit.
3: गौमाता जी, आज आपका धन बनेगा हमारा साधन।
0: खैर, पूजा के अनुसार अपराजिता को उपले अपने हाथों से बनाने होंगे। ऐसे में उपले बनाने के लिए अपराजिता ने अपनी कमर कस ली है और बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी गाय के गोबर से। ये देखकर रक्षित हैरान है और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता तो है, लेकिन उसे हिचकिचाहट हो रही है और ये बात अपराजिता बखूबी समझ रही है। इसलिए देखिए कैसे उसने बड़े प्यार से रक्षित को ये काम करने से मना कर दिया और अपना वीडियो बनाने का आदेश दे दिया।
4: बता देना, वरना उपले तुम्हारे माथे पर लग जाएंगे। उपलता हुआ माफ।
0: वही रक्षित एक से बढ़कर एक एंगल से अपराजिता को शूट कर रहा है, लेकिन अचानक उसे अपराजिता की भक्ति देखकर उसके करीब जाने का एहसास होता है और अपनी सारी हिचकिचाहट को दूर करके वो अपराजिता के साथ बैठकर उपले बना रहा है और यही उपले बनाते हुए दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ रही हैं। आंखों ही आंखों वाला रोमांस हो रहा है और तो और ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा का डायलॉग इनके दिलों से निकल रहा है।

0: खैर, जिस प्यार से बढ़ चढ़कर अपराजिता इस पूजा में हिस्सा ले रही है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ उसकी सासू माँ क्या खेल खेल रही है। वैसे जल्द ही अपराजिता के सामने सच का खुलासा होगा और वो करेगी अपने सासू माँ से बगावत, जिसके चलते अपराजिता को तो सजा मिलेगी ही, लेकिन रक्षित अपराजिता के साथ खड़ा होगा और यही दोनों का साथ देखना काफी दिलचस्प होगा।
1: क्या फर्क पड़ गया अपने और रूढ़िवादी सोच रखने वालों में जो सिर्फ औरतों पे उंगली उठाते हैं? मुझे ये बताइए, अगर आपकी बेटी होती कहती उससे कि वो अपवित्र है, कि वो चलती फिरती बनौती है, किसी की झूठन है, बदतमीज, दोबारा किसी के हाथ की मार नहीं खाऊंगी।
2: जिस घर में मेरी अप्पू की इज्जत नहीं, वो मेरा घर है। मैं और अप्पू ये घर छोड़कर जा रहे हैं।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल वसुधा में देखने को मिला चंद्रिका का रौद्र अवतार, जहां बिरजू को मारने के लिए चंद्रिका ने बंदूक उठा ली है। अब ये एक सपना है या फिर हकीकत, देखने के लिए चलते हैं वसुधा के सेट पर।
0: बिरजू पर भड़का देव का गुस्सा। चंद्रिका ने दिखाया बंदूक का। फिर से मिला चौहान परिवार को श्राप। जी टीवी के सीरियल वसुधा में लाजवंती जल्द से जल्द दुर्जू को तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन उसी वक्त भड़कता हुआ देव पहुंच जाता है दुर्जू पर अपना गुस्सा उतारने के लिए, और सभी घर वाले देव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देव उन पर भड़का क्यों है। भाई चंद्रिका तो ये सुनकर हैरान रह गई और वहाँ से चली गई, लेकिन देव उसका गुस्सा इतना भड़का कि वो बिरजू पर हाथ तक उठाने लगा और बिरजू को सबक सिखाने लगा। और उसी बीच जब देव बिरजू को मार रहा था, वहाँ पर आ जाती है चंद्रिका, जो देव को रोक तो लेती है, लेकिन खुद हाथ में थामे हुए बंदूक जो तान देती है सीधा बिरजू के ऊपर।

0: अब ये बंदूक ड्रामा सपना था या हकीकत, ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो लाजवंती घर की साज सजावट में तैयारी कर रही है, क्योंकि घर में उसकी बेटी फूल को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ऐसे में वसुधा और देव दोनों पहुंच जाते हैं लाजवंती के सामने और लाजवंती खुश होकर वसुधा को रीजन बताती है।
1: बहुत बड़ी वजह है, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू हो रहा है। फूल देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हारे को खुशी ना है तो हट जा हमारे सामने से और हमारे को और तैयारी करने दे, और दोबारा अपनी मनु शक्ल लेके हमारे सामने मत आ जाना।
0: भाई लाजवंती को तो यही लगता है कि वसुधा यानी कि गौरी चौहान परिवार का ही साथ दे रही है, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली तो जाती है। लेकिन चंद्रिका अपने पूरे परिवार के सामने वहाँ पहुँचकर लाजवंती को आश्वासन दे रही है कि वो फूल के लिए जो घर में लड़के वाले आने वाले हैं, वो उनकी सेवा खुशामत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
2: मैं इन लड़के वालों की जीवरी ना करने वाली।
3: हम बस इतना चाहते हैं कि आज से हम पुरानी बातें भूल जाएं और इनके साथ अच्छे से रहें। इसके लिए आज हमें बहुत तैयार है,
0: क्योंकि फूल उनके लिए बेटी समान है। हालांकि सारिका चिढ़ रही है और वो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देखना होगा क्या इस दौरान कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा या फिर जो सपना देखा गया है वो हकीकत में बदल जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आमी गौतम की नई फिल्म नई नवेली को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बीती शाम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस इवेंट में जहां यामी गौतम और पूरी कास्ट ने फिल्म को लेकर कई दिलचस्प बातें मीडिया संग शेयर की, तो वहीं नाच गाने और मस्ती के साथ स्टेज पर मनोरंजन का तड़का भी लगा।

0: मेरी मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दिया।
1: मोहिनी मोहलेगी सबका दिल।
2: छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
3: समझ आ रहा कुछ है? कितना सद्गुण संपन्न को कैसे हो सकता है, सोचो ना यार।
4: तो घर के बाहर हुआ था दादी।
5: नायन ने असली रूप में
1: क्या है मोहिनी के डायन होने का सच?
6: अरे यार।
1: जी हाँ, जल्द आने वाली है नई फिल्म जिसका नाम है नई नवेली। एक ऐसी दुल्हनिया यानी कि मोहिनी चौमस्ती परिवार में दुल्हन बनकर आएगी, अपने चमत्कारों से सबका दिल जीतेगी, घर में सब कुछ अच्छा अच्छा करेगी, लेकिन बाहर है उसका अलग ही रूप।
7: सोने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
0: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दिया।
2: उसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
1: करेगी वो खात्मा, लेकिन अब मोहिनी डायन है या कुछ और, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये नई नवेली दुल्हन सबके दिल में बसी है।
4: जो अच्छी अच्छी बातें हुई ना दादी।
1: भाई ये फिल्म रिलीज होने वाली है 16 अक्टूबर को। ऐसे में बीती शाम हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू नजर आई। वैसे इस शाम की खास होस्ट है सुगंधा मिश्रा, जिसने कॉमेडी से लगा दिया तड़का।
8: देखो यार, व्हाट इज दिस यार, मतलब ये देखो, डायन मेरे साथ है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दिलीप जरूर मेरे साथ है। और दिलीप तो सुन गया, पहली रसोई वसोई तो ही करना, लेकिन मुंह दिखाई के पेमेंट मैं ही लूंगी, समझा के नहीं। एंड मम्मी जी, प्रणाम मम्मी जी, पैरे पौना देखिए, आई रिस्पेक्ट मदर्स एंड लेडीज फीमेल्स अलॉट। माँ ही सब कुछ होती है, पितृ सिर्फ दोष होता है।
9: ये तो फारा जी, मैंने इमेजिन किया था ऐसी होंगी, लेकिन सबको चाहिए बहू भाग्यश्री जैसी, मासूम, सुशील, है ना, जो हर बात पे बस हाँ हाँ बोलती रहे। अगर रात को 2 बजे भी सासू माँ बोले बहू जरा चाय बना दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, तो आगे से बोले
10: नहीं नहीं मम्मी जी, होता है होता है, शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ही।
9: बहू तेरे गहने ना मैंने तेरे ननद को दे दिए, सॉरी। हाँ
10: नो ना मम्मी जी, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: तो भाई सुगंधा की कॉमेडी तो आपने देख ली, अब मिलते हैं यामी गौतम यानी कि मोहिनी से और साथ ही बाकी पूरी अवस्थी फैमिली से, और जानते हैं कि नई नवेली दुल्हनिया के आने से क्या ये खुश है या परेशान।
9: मतलब कैसे ऐसे आप डाइजेस्ट कैसे कर लेती हैं? आपका ट्रेनर कुछ कहता नहीं?
11: सुगंधा, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई विश मैं आपकी जितनी स्पॉन्टेनियस होती इन सब सवाल जवाब और बैंटर में, बट मैं नहीं हूँ, तो आई जस्ट कम टू द पॉइंट जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और सिर्फ इतना कह सकती हूँ, आई एम अ पर्सन ऑफ वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स, आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन नोन फॉर माय कम्युनिकेशन स्किल्स दैट मच,
9: बट
11: आई जस्ट लाइक टू से इट, मेरे मुझ जैसे एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है जब इतने वरिष्ठ, इतने अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव हेड्स फेथ दिखाएं, कॉन्फिडेंस दिखाएं कि इस तरह की फिल्म कर सकते हैं। और खासकर आज के दौर में जहाँ पर मैं इस चीज़ को एक अच्छा चैलेंज मानती हूँ कि हमें नहीं पता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, हमें नहीं पता कौन सी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, वो सब बात की बातें हैं, पर फिल्म करने में मज़ा आएगा कि नहीं, कुछ सीखेंगे कि नहीं। रोज़ आप घंटों काम करते हैं, 20-20 घंटे हम लोग काम करते हैं, बट काम काम की तरह ना लगे और लगे कि कुछ मज़ा आ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, एंड आई थिंक दैट्स द मार्क ऑफ अ ग्रेट टीम। सो थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू सो मच बालाजी सर, हिमांशु, एवरीबडी हूज यू नो मेड दिस हैपन, टू माई एंटायर फैमिली द अवस्थीज हु आर नॉट लुकिंग लाइक अवस्थीज टूडे बिकॉज मोहिनी इज एंटर्ड देयर लाइफ, सो दे लुकिंग फुल ऑल डिजाइनर ऑल, बट थैंक यू सो मच। और मुझे पता है आप लोग ओपन हाउस की वेट कर रहे हैं,
1: तो भाई हो जाइए तैयार ये अनोखी कहानी देखने के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
12: ग्लैमर, गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा,
6: मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको दिखाते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें एक साथ।
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। जल्द आने वाला है पति पत्नी और पंगा का नया सीजन। ऐसे में सामने आया है ये नया प्रोमो, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।
12: मैं थोड़ा जल्दी सोच लेती हूँ, जल्दी बोलती हूँ।
13: मतलब आपका कहना है कि वो जल्दी नहीं सोचते?
12: मतलब ही टेक्स लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड आई एम वेरी फास्ट फास्ट फास्ट।
14: जब हमारी शादी हुई थी ना तब बोला था कि मैंने वो लड़का चुना है जो मुझे सुनता है।
13: ये तो बोलने दो।
1: इसी के साथ ये सभी जोड़ियां सेट के बाहर नजर आई, जैसे कि मनोज सुरभि, राहुल दिशा, अर्जुन नेहा, दीपिका रोहित, शबीर कांची, दिव्यांका और विवेक। वैसे आज तो ये सभी ढोल की ताल पर नाच रहे हैं। इतना ही नहीं, मुनावर खुद ढोल बजा रहे हैं।

0: सभी हो जाइए तैयार पति पत्नी की कॉमेडी और इनके पंगे देखने के लिए। सोनी टीवी ने अनाउंस किया है अपना आने वाला नया शो जिसका नाम है नीम करोली बाबा। देख लीजिए इसकी खास झलक।
1: जिंदगी से जुड़ी चमत्कार
0: जल्द आने वाला है कॉफी विद करण और करण जोहर ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये होगा कॉफी विद करण का फाइनल सीजन। आइए जानते हैं करण से इनका क्या कहना है।
2: With a kind of a heavy heart, I have to say that this will be my very last season of Coffee with Karan. There will be trolls, there will be comments, there will be posts, and I'm ready to take that on. But within all of that and beneath all of that, I know there is still abundant love for this cup of coffee. So join me in my last season of Coffee with Karan and have that one last cup of coffee with me. Cheers.
0: सोनी सबके सीरियल क्योंकि पापा कहते हैं में हो गई है साची तिवारी की एंट्री, यानी कि पवन के लाइफ में हो गई है सिमरन की एंट्री। अब शुरू होगी लव स्टोरी, देख लीजिए ये खास झलक।
3: दिल्ली से फ्लैट बुकिंग, मैंने पूरे एडवांस 1,00,000 रुपए दिए हैं।
4: मैंने तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ।
3: मैंने 1,00,000 रुपए दिए, यहाँ दिल्ली से मुंबई आई हूँ मैं।
4: बहुत हो गया मजा, ना ही मैंने तुम्हें कोई फ्लैट दिखाया और ना ही मैंने तुमसे कोई पैसे लिए।
3: यू स्कैमर,
4: प्रूफ है तुम्हारे पास?
3: अभी देना मैंने प्रूफ। तुम्हारे फोन पे मेरा ही नंबर फ्लैश कर रहा है। फासा, फासा।
0: सामने आए हैं पेरिस फैशन वीक के बिहाइंड द सीन नजारे जहां पर ऐश्वर्या राय बैकस्टेज हो रही हैं तैयार। सामने आई है ये तस्वीरें।

शर्मन जोशी नजर आएंगे उनकी आने वाली नई फिल्म, जो कि होगी बंगाली फिल्म, जिसकी शूटिंग दार्जिलिंग में शुरू हो चुकी है। सामने आए हैं शूटिंग के ये नज़ारे।

करण पा को 17 साल पूरे हो चुके हैं और 17 सालों बाद फिर एक बार साथ काम करते नजर आएंगे विद्या बालन और आर बाल्की उनकी आने वाली नई तमिल फिल्म में, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।

गौरव खन्ना ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है, तो क्या वो हिंट दे रहे हैं कि अनुपमा में अनुज कपाड़िया की री एंट्री होगी? खैर, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है।

0: नजर डाल लीजिए खतरों के खिलाड़ी के इस फिनाले वाले प्रोमो पर, जहां पर फरहाना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है और हो गई है इमोशनल।
1: इसमें मुझे लगा नहीं था कि मैं टॉप 5 तक आऊंगी, और मेरे लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है।
2: Honestly, I'll tell you something. इस शो ने मुझे बहुत सारा एप्रिसिएशन दिया है, बहुत सारी रिस्पेक्ट दिया है, जो मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला।
0: करण वोहरा और हिमांशी पराशर की बन गई है जोड़ी। ये दोनों साथ साथ नजर आएंगे स्टोरी टीवी के रोमांटिक शो में।

0: देख लीजिए बिग बॉस का ये नया प्रोमो, जहां खाने को लेकर माही और मैरी कॉम में झगड़ा हो गया है।
1: मेरी माँ की कसम, मेरे को खाना खाते हुए शर्म आती है, मेरी हलक से खाना नहीं उतरता। किचन पॉलिटिक्स बहुत चलती है, मैंने देखा है। मैंने मैरी जी के मुँह से बहुत बार ही सुना है, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको तो मैं और दूंगी। मेरी तो रोटी पे कभी घी भी नहीं लगा।
2: ऐसे मत बोलो माई जी, ज्यादा है तो मैंने ज्यादा दिया है।
1: आप चिल्लाओ मत एक तो।
2: अरे यार ऐसे लोग कैसे,
1: ऐसे लोग क्या होता है, अपनी लैंग्वेज थोड़ी सुधारो।
2: इसके पीछे भी मेरे बुराई कर रहे हैं और अभी बोल रहा चिल्लाओ मत।
0: इसी के साथ खबरें ये भी है कि होने वाला है मिडविक एविक्शन, जिसमें रितु तिवारी घर से बेघर हो जाएंगी, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालेदार खबरें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल। कैप्टन स्मिथ को इसराइल करेगा सम्मानित, इसराइल के राजदूत ने दी इसके बारे में जानकारी, मुंबई में स्मिथ के घर के बाहर जश्न। मुंबई के लालबाग से राजा को मिले करोड़ों रुपए के दान की नीलामी, दान में मिले सोने की ईंट बाइक और 6 करोड़ कैश, गणेश उत्सव के दौरान भक्तों ने दिया दान। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, और एक गुड न्यूज आपके लिए हम लेकर के हासिल हैं। आपको बता दें कि जापान में चल रहे एशियन गेम्स से एक शानदार खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है, और शानदार खबर यह है कि आखिरी मिनट में अभिषेक के गोल की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स के पुरुष हॉकी टीम के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उनका जो मुकाबला है वो मलेशिया और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में विजेता से होने वाला है। 59 मिनट तक स्कोर 3-3 से बराबर था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुकाबला था और ऐसे में अभिषेक ने बॉल को डिफ्लेक्ट करके गोल के अंदर पहुंचा दिया और भारत फाइनल में पहुंच गया। तो आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारत जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, शानदार प्रदर्शन भारत की ओर से और लगातार मेडल ही आ रहे हैं भारत की झोली में। और मेडल टैली की बात करें तो भारत ने अब तक 63 मेडल जीत लिए हैं जिसमें 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
8: एशियन गेम्स में भारत की अच्छी शुरुआत, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में जीता सिल्वर भारतीय कंपाउंड आर्चर और महिला स्क्वैश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला सेलिंग में पहला मेडल, सिल्वर से खुला खाता। पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल ने किया कमाल। महिला स्क्वैश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनहद सिंह की टीम ने किया कमाल। भारतीय कंपाउंड आर्चर में गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, 8वें स्थान पर पहुंचा भारत। एशियन गेम्स में भारत ने श्रीलंका को 45 रनों पर किया ऑल आउट, 124 रनों से जीता मुकाबला, फाइनल पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीत लिए हैं, कुल मेडल की संख्या हुई 63। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने गांव रोहतक पहुंचे क्रिकेटर शेफाली वर्मा, उनका हुआ भव्य और जोरदार स्वागत। शेफाली के घर पे लगा बधाई देने वालों का तांता, शेफाली बोली एशियन गेम्स में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर रहना उनके लिए गर्व की बात। एशिया खेलों में रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद किरण पहल के घर रौनक, देश के लिए गोल्ड जीतकर परिवार का भी नाम किया रोशन। सोनीपत में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल के घर बांटी जा रही मिठाई, कंपाउंड आर्चरी की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न का माहौल। भारतीय पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी की दुनिया मुरीद, इसराइल और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने की उनकी चमकी तारीफ। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्लाइट के यात्रियों से की मुलाकात, भारतीय पायलट को बताया असली हीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार की जमकर तारीफ की, ट्रंप ने स्मिथ को बताया हीरो। फ्लाइट कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान, 180 यात्रियों के लिए बने देवदूत। फ्लाई दुबई की फ्लाइट में कैप्टन स्मिथ मछार ने दिखाई बहादुरी, गंभीर चोट लगने के बावजूद विमान को संभाला। गणेश उत्सव के दौरान लालबाग चौराहा के दरबार में भक्तों ने दिल खोल कर किया दान, 12 दिनों में चढ़ाया गया कुल 6,11,96,500 रुपए का दान। चरण स्पर्श और मुख दर्शन की लाइनों में रखी दान पेटियों में 2,42,40,000 रुपए जमा हुए, जबकि विसर्जन के दौरान दान पेटी के जरिए 16,14,500 रुपए जमा हुए। पंडाल में दान की गई चीजों में धनराशि के साथ सोने के ईट, गहने, बाइक, चांदी और सोने के आभूषण जैसे सामान भी शामिल। इस साल एक अज्ञात भक्त ने लालबाग चौराहा को 1 किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईट भेंट की, इस सोने की ईट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है। वहीं बप्पा को 18 कैरेट सोने से बने 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भेंट की गई, जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए है। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। पूर्व बर्दवान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। पूर्व बर्दवान में मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने का भी काम जो है वो तेजी में है। अंतिम चरण में पंडाल की तैयारियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। भजन कीर्तन पे झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। तीन महीने बाद आज से रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला, पहले दिन पहुंचे सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक। तिलक माला से पर्यटकों का किया गया स्वागत, राजस्थानी अंदाज में स्वागत के साथ लोक नृत्य और संगीत ने माहौल को बनाया खास। रंगोली और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच सफारी वाहनों को जंगल के लिए किया गया रवाना। रणथंभौर नेशनल पार्क में सैलानियों ने किया बाघ का दीदार, बाघ की अटखेलियों को देखकर सैलानी खास रोमांचित नजर आए। रणथंभौर के पर्यटन सीजन के पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी सफारी के लिए पहुंचे, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को करीब से देखने का बच्चों में दिखा काफी उत्साह। पर्यटकों के लिए तीन महीने बाद खुला कान्हा टाइगर रिजर्व, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गगन नारंग एवं ओलंपियन खिलाड़ी इनावेलिन वेना रेवीन ने दिखाई हरी झंडी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने सैलानियों को दिलाई वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण करने की शपथ। तीन महीने बाद आज से सरिस्का कुंभलगढ़ विषधारी मुकुंदरा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला, पहले दिन पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। सफारी में पर्यटकों का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों से पर्यटकों ने जंगल में किया प्रवेश। टाइगर देखने के लिए सैलानियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, सरिस्का में सफारी के लिए 35 से ज्यादा कंटेनर और जेसीबी तैनात। मानवीय दिन बाद फिर गुलजार हुआ नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मड़ई चूर्ण समेत सभी 10 गेट पर्यटकों के लिए खुले।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण

0: हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल। कैप्टन स्मिथ को इजराइल करेगा सम्मानित, इजराइल के राजदूत ने दी इसके बारे में जानकारी। मुंबई में स्मिथ के घर के बाहर जश्न का माहौल। मुंबई के लालबाग चौराहे को मिले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की नीलामी, दान में मिली सोने की ईंट, 106 करोड़ रुपए कैश, गणेश उत्सव के दौरान भक्तों ने दिया दान। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। पितरों को याद करने, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देने का समय है पितृपक्ष। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। पितृपक्ष वो समय है जब पितरों के लिए किया गया दान आपके लिए महाकल्याणकारी बन सकता है। आज आप जानेंगे कौन सी है वो चीजें जिनका दान करने से आपका भाग्य बदल सकता है, पितरों की महाकृपा मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं पितरों की कैसे करें सेवा और क्या करें दान।

0: दान से मिलती है पितरों को शांति। पितृपक्ष में किया दान दूर करेगा आपके जीवन से अशांति। पितृपक्ष में दान से होगी आपके पितरों की मुक्ति। पाप संताप होंगे दूर, पितरों की होगी सद्गति। महालय पक्ष में किए दान से दूर होंगे सारे विकार। श्राद्ध और तर्पण से खुलेगा मोक्ष का द्वार। पितृपक्ष में पूर्वजों का करें सत्कार। खुशियों से भर जाएगा आपका संसार। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि पूर्वजों का सीधा आशीर्वाद मिल सके। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों से आशीर्वाद भी मिलता है। पितृपक्ष को समर्पित अपनी खास पेशकश में हम नित्य ही आपको पितरों के सत्कार की परंपरा को आपके सामने रखते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में पितरों की कृपा पाने के 7 दान आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं वो 7 दान कौन से हैं जो दूर कर सकते हैं पितृदोष और चमका सकते हैं आपका भाग्य। जानकार बताते हैं कि पितृपक्ष के दौरान चांदी की किसी वस्तु का दान करना अच्छा होता है। मान्यता ये है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। माना जाता है कि चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और इसी वजह से पितृपक्ष में चांदी, चावल, दूध का दान करने से पितर खुश हो जाते हैं।
1: रजत खंड, रजत दान करने मात्र से प्रेतत्व उनसे दूर हो जाते हैं। कोई भी यम का दोष नहीं लगता, यम उनके पूर्वजों को छोड़ देते हैं। देखते हैं कि नहीं, इसके कुल से कोई रजत खंड दान किया। यदि जो स्वर्ण खंड कोई दान करता है, सोने का दान करता है, तो उनके कोई भी पितर प्रेतत्व योनि को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रेतत्व योनि से मुक्त होने के लिए सोने का दान किया जाता है।
0: कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध के दौरान तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता ये है कि अगर पितृपक्ष में किसी और चीज का दान करना संभव ना हो तो काले तिल जरूर दान करने चाहिए। कहा जाता है कि काला तिल संकट और विपदाओं से रक्षा करता है।
1: जितने भी प्रकार के काला तिल जितने आप हाथ में लेकर के और अपने पूर्वजों के नाम का देते हैं, जितने तिल आपके हाथ से गिरते हैं उतने प्रकार के हमारे यम के भी बहुत सारे दूत होते हैं। आपके पूर्वज सहित उस सारे दूत तृप्त हो जाते हैं और आपके पितृ को कष्ट को हर लेते हैं, वो कष्ट नहीं होने देते और यम प्रसन्न होते, इसलिए तिल का दान अति आवश्यक।
0: गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहती है। मान्यता ये है कि गुड़ का दान करने से घर का कलेश दूर होता है। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना गया है। मान्यता ये है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर ये दोनों नहीं हो तो फिर किसी भी अनाज का दान कर सकते हैं।
1: चावल अन्न हो गया, अन्न का मतलब है कि भोजन। आप चावल देते हैं, अन्न का दान करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। अब जैसे गया जी में श्राद्ध करते हैं या किसी माध्यम से करते हैं या कभी कोई किन्हीं की अंत्येष्टि श्राद्ध से संबंधित भी जब होते हैं तो उसमें भी अन्न का दान करते हैं। वो रास्ते के लिए भोजन और अन्नदान महादान, वो जो क्षुधा तृषा है उस भूख को मिटाने का काम अन्न करती है, इसलिए चावल ही अन्न का दान कहा गया।
0: मान्यता ये है कि अगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मन के मुताबिक ही फल मिलता है। कहते हैं कि जिसका नमक खाओ उसके प्रति सदैव ऋणी रहो। इसीलिए कहा यह भी जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। माना जाता है कि नमक का दान उत्तम दान माना गया है। इसके बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता।
1: अन्न का दान उनके तृण तृषा को मिटाने के लिए, नमक का दान, एक नमक से बहुत बड़ी जुड़ी होती है, आत्मीय जुड़ी होती है। नमक के बगैर हम नहीं रह पाते हैं, तो वहां भी पितरों की उस तरह की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उनके लिए नमक का भी दान करते हैं, जल का दान करते हैं। जल से उनकी तृप्ति होती है, तृषा शांत होती है, इसलिए जल का भी दान हम करते हैं।
0: माना यह भी जाता है कि जूते चप्पल का दान करने से आने वाली विपत्ति से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। पितृपक्ष में दान करेगा कल्याण। पितृपक्ष में जूते और चप्पल का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना जाता है। गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय की घी का दान करना फलदायी माना गया है। गाय के दान से पितृ खुश हो जाते हैं, जिसे परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो ये है वो सात दान जो चमका सकते हैं आपका भाग्य, खोल सकते हैं आपकी बंद किस्मत का ताला, क्योंकि पितृपक्ष में किया गया दान आपको पितरों की महाकृपा दिला सकता है। पितृपक्ष में जरूर करें सात चीजों का दान, जिससे दूर हो जाएंगी सारी परेशानियां और खत्म हो जाएगी पितृदोष की भी छाया। तो श्रद्धा अनुसार दान कीजिए, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और महापुण्य फलों की प्राप्ति होगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में किन चीजों के दान से बचना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया दान पितरों की मुक्ति और मोक्ष के मार्ग खोल सकता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में दान का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इससे कुंडली के तमाम दोष भी नष्ट हो जाते हैं।

0: श्राद्ध को हिंदू धर्म में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम बताया गया है। पितृपक्ष में कुटुंब के लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करते हैं। मान्यता ये है कि दान से पितरों को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष की बाधा का भी नाश हो जाता है। जानकार बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में दान का मकसद सिर्फ पुण्य पाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से ईश्वर के संग पूर्वजों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन व्यक्ति को दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए।
1: देखिए, दान की महिमा का ऐसा उल्लेख है कि दान की एक तरह से कहा गया है कि कोई सीमा नहीं होती है, श्रद्धा मापनोति इति श्राद्धम। तो पितृपक्ष इसको कहते हैं कि पितरों का पक्ष है। जो भी ज्ञात अज्ञात नाम के पितर, जिनके लिए कभी आप दान नहीं करते, कभी आप जल नहीं देते, उनको आप इस महोत्सव में, पितृपक्ष महोत्सव में, आप अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए अन्न और जल का दान करें।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने का अद्भुत उपाय है किसी को किया गया दान। दान की महिमा तो धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। अभी हमने आपको पितृपक्ष के साथ दान के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन किसके दान से बचना चाहिए आपको बताते हैं वो दान जो आपको नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के वर्जित दान, बासी भोजन का दान। दान किया जाने वाला खाना कभी भी बासी नहीं होना चाहिए, इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। ये दान पितरों को स्वीकार्य नहीं होता। पितृपक्ष के वर्जित दान, पुराने कपड़ों का दान। आपको कभी भी पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। हमेशा आप नए वस्त्रों का दान करें। काले रंग के कपड़ों का दान करने से हमेशा बचना चाहिए। पितृपक्ष के वर्जित दान, लोहे की चीजों का दान। लोहे की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में पितृदोष लग सकता है। इसकी जगह आप पीतल या फिर तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। नुकीली या धारदार चीजें, धारदार या नुकीली चीजें जैसे कि कैंची या फिर चाकू का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का ये दान आपके पुण्य प्रभाव को नष्ट कर सकता है। इस कार्य से पितृ भी नाराज हो जाते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पितृपक्ष में आप अपने ज्ञात अज्ञात पितरों की अवभगत करके जीवन में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांग सकते हैं। माना जाता है कि हमारे पूर्वज सदा ही अपने कुल का भला चाहते हैं। पितृपक्ष में विधिवत उनका स्वागत करके हम पितरों की तरफ से आने वाली बाधा को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर पितर होंगे नाराज तो हर काम में पड़ेगी बाधा।
1: जब ये शरीर हमारा जो है ये अपना नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का देन है। जब हमारे पूर्वज गुजर गए तो सबसे पहले समझे कि पिंड से प्रारंभ हुआ, माँ के गर्भ में सबसे पहले पिंड की निर्माण हुई, और मरने के बाद वही पितर कामना करते हैं कि हमारे कोई कुल से ऐसा उत्पन्न हो जो पिंड दे। तो पिंड से संबंधित है, इसलिए दान और पिंड दान, पिंड से प्रारंभ हुआ, पिंड पे जाकर के समापन हो जाती है, इसलिए सर्वोत्तम पिंड दान।
0: तो इस श्राद्ध पक्ष में बहुत जरूरी है कि पितरों की नाराजगी को दूर करें। और श्राद्ध ही वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों की कृपा पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो आखिर क्या है पितृपक्ष का पौराणिक महत्व, ये भी जान लेते हैं। अग्नि पुराण के मुताबिक जब कन्या राशि पर सूर्य पहुंचते हैं तब महालय पक्ष में पितरों को बहुत तेज भूख लगती है और धर्मराज के निर्देश से पृथ्वी पर अपने घर जाते हैं। अपनी संतान के द्वारा दिया गया श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हुए पितृ अमावस्या तिथि के दिन वापस आ जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोग पितृपक्ष को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में दान करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष में दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा फल देता है। और पितृपक्ष में तो दान को सबसे उत्तम माना ही गया है। ज्योतिष कहते हैं कि पितृपक्ष में दान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और पूर्वजों की महाकृपा प्राप्त होती है। कहते हैं जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा लौटाता भी है, क्योंकि दान से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और पितृपक्ष में तो दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दान से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में।

0: माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि महालय पक्ष के इन दिनों में पितृ पूजन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। तो आखिर क्या है पितृपक्ष में दान के नियम, वो भी आपको बताते हैं। पितृपक्ष में कैसे करें दान? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। जानकार बताते हैं कि यदि आप श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं तो इससे प्रसन्न होकर पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त संस्कार करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए।
1: कामम क्रोधम तथा लोभम मद मोहस्य अहंकारकम। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार की त्याग करना चाहिए। कहा गया है एक शाम भोजन करने की चीज है, जमीन पे शयन करने की चीज है। तो श्रद्धा से अपने पूर्वजों के निमित्त अल्पाहार रह करके फलाहार रह करके भी आप पिंडदान कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें और यदि जो संभव हो सके तो खड़ दोष उसको कहते हैं, कामम क्रोधम तथा लोभम मद मोहस्य अहंकारकम, ये सब दोषों का त्याग करना चाहिए। ये सबसे सावधानियां बरतना चाहिए।
0: पितृपक्ष में बरतें सावधानियां। इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतब वेला में पितरों को तर्पण दें और इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करें। जहाँ तक संभव हो दूध का प्रयोग कम ही करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भगवद गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या फिर दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो इन उपायों को अपनाकर आप भी पूर्ण मनोयोग से करें अपने पितरों का सुमिरन और करें उन्हें प्रसन्न, जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो और आप पर बनी रहे आपके पूर्वजों की कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कुछ दिनों बाद शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक, उसकी खूबसूरती और भव्यता देखने लायक रहती है। दुर्गा पूजा यहाँ पर बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक होने के साथ साथ बंगाली समाज की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और भाईचारे को भी दर्शाती आई है। यही कारण है, यही वजह है कि बंगाल में दुर्गा पूजा एक त्योहार से बढ़कर लोगों की भावनाओं और जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए ऐसे में आपको दिखाते हैं राज्य के पूर्व बर्धवान में कैसी चल रही है दुर्गा पूजा की तैयारियां।

0: बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है। शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा बंगाल माँ दुर्गा के स्वागत में ऐसे सज उठता है मानो स्वयं देवी अपने मायके आई हों। माँ जगदम्बा को ही समर्पित भव्य पंडाल, आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं, ढाक के गूंज, धुनुची नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाज इस उत्सव को एक अनूठी पहचान देते आए हैं। कुछ ऐसी ही छटा इस साल भी बिखेरने की तैयारियां हो रही हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान की हैं, जहां भव्य पंडालों को बनाने का काम शुरू हो गया है। मां की मूर्तियों को भी दिन रात की मेहनत के साथ आकार दिया जा रहा है, उनमें रंग भरा जा रहा है। ऐसे में पूर्व बर्दवान में प्रसिद्ध लालटू स्मृति संघ के इस निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल की थीम इस बार बालाजी पर आधारित है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर मिट्टी के कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई बहुत व्यस्त है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो पूर्ण जो इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। त्रिकुटी बालाजी जो मंदिर है बालाजी का, उसी का चीज है।
2: अच्छा, तो इस्तेमाल किया जा रहा है
1: इसमें, आपको देखिए वो प्लाई भी है, सनपैक भी है, प्लाईवुड भी है और वो सब तो उन लोग को कोई जो दरकार पड़ता है उसी से मिलते, फाइबर भी है, ये भी है।
2: कब तक ये तैयार हो जाने का?
1: मेरा ख्याल से तो हम लोग जो इनका काज का स्पीड बहुत बढ़िया है, देखिए ना कितना पूरा बना दिया। तो महालय का दिन ये लोग कर रहे थे।
0: पंडाल बनाने वालों के साथ ही मूर्ति कारीगरों के बीच भी कुछ ऐसा ही उत्साह दिख रहा है। मूर्तियां बनाने के काम में भले ही कुछ रुकावटें आ रही हैं, लेकिन बिना थके बिना रुके तेजी से काम जारी है। उद्देश्य है कि महालया से पहले मूर्तियां केवल बर्दवान ही नहीं बल्कि शहर से बाहर दूसरे शहरों के पंडालों तक पहुँचाई जाए।
3: बहुत जोर से
2: रात दिन काम कर
3: रहा, रात दिन एकदम 1:30-2 बजे तक काम चल रहा है। दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है,
2: बर्दवान का है या फिर बाहर
3: ना, थोड़ा ये इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
0: फिलहाल तो पूर्व बर्दवान शहर में बड़े बजट वाले सभी पूजा पंडालों में अभी से जबरदस्त हलचल है। पंडालों को भव्य बनाने की तैयारियां दिन रात हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये पंडाल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और भाईचारे को भी अभिव्यक्त करते आए हैं। तो पंडाल में सजी धजी माँ की पारंपरिक भव्यता और सजावट का प्रदर्शन करती अनुपम प्रतिमाएं तो अलौकिकता का अनुभव देती ही आई हैं। निश्चित तौर पर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि ये जीवन का उत्सव है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान से सुजाता मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कोलकाता की गलियों में भी दुर्गा पूजा की आहट साफ सुनाई देने लगी है। शहर का मशहूर कुमारटोली इलाका इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, क्योंकि दुर्गा पूजा में अब ज्यादा वक्त देखे बचा नहीं है। ऐसे में जो कलाकार हैं वो दिन रात मेहनत कर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं।

0: कहीं मूर्ति को आकार दिया जा रहा है तो कहीं माँ दुर्गा की प्रतिमा पर कलाकार रंगों की आखिरी परत चढ़ा रहे हैं, कहीं चेहरे के भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं प्रतिमा को अंतिम रूप देने की जद्दोजहद चल रही है।
1: अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया।
0: दुर्गा पूजा में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और कोलकाता के कुमारतुली इलाके में कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को सजाने सवारने में जुटे हैं।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है ये दुर्गा पूजा, लेकिन अच्छा चल रहा है, कोई कमती नहीं चल रहा, अच्छा भी चल रहा है। मूर्ति उर्ति सब थोड़ा थोड़ा बिक गया, ऐसा नहीं टेंशन मत करना, और ग्राहक आते हैं ग्राहक जाते हैं, ऐसा होता है।
0: बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। इस महापर्व का इंतजार सभी पूरा साल करते हैं।
2: दो दिन तीन दिन से थोड़ा हम लोग का काज और फास्ट हो गया, जैसा मध्य चल रहा है ना, मिडिल में उससे फास्ट चल रहा है अभी काज।
0: पूरे बंगाल में अलग अलग शहरों में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं जहां इन तैयार हो रही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होगी। ऐसे में कुमारटुली के कलाकारों पर भी समय पर माँ की प्रतिमा तैयार कर पंडालों तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है।
2: एक एक स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ऐसा करके होता, कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा है, ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: यहाँ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी देवियों की मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं और उन्हें सजाया भी जा रहा है। इस काम में महिलाएं भी साथ निभा रही हैं। इन कलाकारों के हाथों से आकार पाई दुर्गा प्रतिमाएं अब बाजारों की रौनक बढ़ाएंगी। जैसे जैसे मूर्तियों की डिमांड बढ़ती जा रही है कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
3: लगभग 10 साल से तो हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं,
4: यहीं से ले जा रहे हैं।
3: इसके आगे हम लोग लेते थे बागमारी से, उसके बाद हम लोग यहाँ 10 साल से ले जा रहे हैं।
4: कुमारटुली में ऐसा क्या खास है?
3: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है, वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है, बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग, आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
0: प्रतिमाओं को देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। बाजारों में बढ़ती चहल पहल से साफ है कि दुर्गा पूजा का उत्साह अब लोगों के बीच नजर आने लगा है।
5: सुना बहुत था मैम लोग से, बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा।
0: आलम ये है कि खरीदार ही नहीं बल्कि पर्यटक भी इस इलाके की गलियों की रौनक देखने पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले हर शख्स का मूर्तियों को आकार लेते देखने का अपना अलग अनुभव है। किसी के लिए कलाकारों की मेहनत को करीब से देखने का मौका है तो किसी के लिए दुर्गा पूजा की तैयारियों को महसूस करने का अनुभव। कुमारटुली की इन गलियों में कलाकारों की मेहनत अब अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही है। मिट्टी से आकार ले चुकी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जल्दी ही पंडालों की शोभा बढ़ाएंगी। इनके साथ ही बंगाल में भक्ति उत्सव और उमंग का रंग भी पूरी तरह से चढ़ जाएगा। कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रन से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला। कैप्टन स्मिथ मचार को इजराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में हो रही है स्मिथ की तारीफ। मुंबई के लालबाग चौराहा को मिले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की नीलामी, दान में मिली सोने की ईंट, बाइक्स और 6 करोड़ कैश, गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने दिया दान। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, 10 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे कपाट।

चारों ओर एक ही आवाज, शाबाश भारतीय जांबाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। चर्चा जिसी को लेकर करेंगे, ये वो भारतीय जांबाज है जिसने दुनिया को एक और 9/11 से बचा लिया। इनकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू तक कर रहे हैं। ये नाम है पायलट स्मिथ मच्छा। इनकी वजह से विमान में सवार 174 यात्री आज बिल्कुल सही सलामत हैं, उनकी जान बच पाई है। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट को उड़ा रहे भारतीय पायलट पर कॉकपिट पर हमला हुआ। पायलट इसमें बुरी तरह से घायल हो गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खून से लथपथ होते हुए भी मौके पर सूझबूझ दिखाई और न सिर्फ हमलावर का मुकाबला किया बल्कि कॉकपिट का दरवाजा खोलकर दूसरे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को भी कॉकपिट में घुसने में मदद की। इसके बाद एक प्लम्बर, एक डेंटिस्ट और आम यात्रियों ने मिलकर सिचुएशन को संभाला और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हो पाई। वैसे 9/11 के बाद बता दें कि पूरी दुनिया में एयरपोर्ट और विमान सुरक्षा को लेकर नियम बहुत ज्यादा सख्त किए गए हैं, लेकिन कोई सुरक्षा के लिए मौजूद चीजों को ही अगर हथियार बना ले तो फिर ये कौन सोच सकता है? ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी सामने आ सकती है। यही पर काम आती है पायलट की प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दिखाई भी है। यूं तो पायलट और विमान में सवार स्टाफ को हर आपात स्थिति से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पर आम लोग ऐसी स्थिति में क्या करें ये कोई नहीं बताता है। तो आज हम आपको अपने इस शो में बताएंगे कि अगर हवाई यात्रा के दौरान कभी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट होंगे जिनसे आगे हम चर्चा करेंगे।

0: तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और पूरी दुनिया कैप्टन स्मिथ की मुरीद हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है और यहां तक कि इसराइल ने तो कैप्टन स्मिथ मचार को सम्मानित करने का फैसला भी कर लिया है। गुजरात सरकार की तरफ से भी इनको सम्मानित किया जाएगा, लेकिन आज इनके सम्मान के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। हम और आप हर कोई हर दिन किसी ना किसी काम से फ्लाइट में सफर करता है, हम हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हमें किस तरह अलर्ट होना चाहिए, कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर सकता है, इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो वाकया उन 17 मिनटों का है जिसमें पूरी घटना घटी। भारतीय पायलट ने विमान हमला नाकाम किया। मामला फ्लाइट दुबई की फ्लाइट का है और ये फ्लाइट यूएई के दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। चलती फ्लाइट में पायलट स्मिथ ने बहादुरी दिखाई। ओमान के को पायलट ने पहले पायलट स्मिथ पर हमला किया। हमले के बीच ओमानी पायलट ने विमान से क्रैश करवाने की कोशिश की। ऐसे में पायलट स्मिथ ने दूसरे पायलट को विमान क्रैश करवाने से रोका। स्मिथ ने गंभीर घायल होने के बावजूद तुरंत कॉकपिट का दरवाजा खोला। विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। विमान 34,000 फीट से अचानक 14,000 फीट नीचे आ जाता है। फिर विमान को उन दो पायलट्स ने संभाला जो कि ड्यूटी पर नहीं थे। एक आम यात्री की तरह दूसरे यात्रियों के साथ मिलकर वो यात्रा कर रहे थे। हमलावर ओमानी पायलट को पकड़कर उन्होंने दबोचा, जिसके बाद सऊदी अरब में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और साथ ही साथ घायल भारतीय पायलट को भी वहां अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसे ही ये मामला सामने आया, दुनिया भर में स्मिथ की तारीफ होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्मिथ पर दुनिया को नाज है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय पायलट की तारीफ की, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्मिथ को हीरो बताया है। अब दुनिया भर में भारतीय पायलट की चर्चा हो रही है। सभी की जुबान पर पायलट स्मिथ का ही नाम है। उनके और यात्रियों की सूझबूझ से एक और 9/11 टल गया। यकीनन ये शानदार है।
1: घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
0: तो चारों ओर बस स्मिथ की ही चर्चा हो रही है, कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की चर्चा हो रही है। उन्हें गुजरात सरकार ने विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान देने का ऐलान किया है। तो भारतीय पायलट के हौसले और जांबाजी की दुनिया भर में भी तारीफ हो रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू समेत दुनिया भर के नेताओं और हस्तियों ने स्मिथ की तारीफ की। हर किसी की जुबान पर आज सिर्फ कैप्टन स्मिथ मछार का ही नाम है, उन्हीं की चर्चा है। इजरायली ब्लमर यानिव

0: साहस दिखाया और खून से लथपथ होने के बावजूद वो बाहर निकले। उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने, जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया और उसके बाद फिर वो पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ सीवीआर और एफडीआर के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सहयोगी मनीष बिदूड़ी के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली।
1: तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर वंदना सिंह चेयरपर्सन है एविएशन कार्गो फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इंडिया की। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। विपुल सक्सेना जी एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं और सुरेश गोयल जी फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वंदना आप ही से करना चाहूंगी। देखिए हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन पहली नजर में क्या कुछ सामने आता है इस पूरी खबर को अगर हम देखें, ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए पायलट को और क्या जो, क्योंकि आज कैप्टन स्मिथ की हर जगह तारीफ भी हो रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर?
2: पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही गंभीर इंसिडेंट हुआ है। रादर आई वुड से दिस वाज अटेम्प्ट टू मर्डर। मैं इसको ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन या मैं इसको ब्रॉल भी नहीं बोलूंगी। इट इज अ क्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर जहां पे को पायलट हैज ट्राइड टू पिक अप द क्रैश एक्स फ्रॉम बिहाइंड द कैप्टन एंड हैज एक्चुअली स्टैब्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड। सो दिस हैज बीन अ मिरेकल ऑफ ऑल सॉर्ट्स कि उन्होंने पूरी हिम्मत दिखा के, पूरा साहस दिखा के, लास्ट ब्रेथ तक फाइट करके उन्होंने दरवाजा खोला एंड ही कॉल्ड फॉर हेल्प। बट जो देखा जा रहा है कि ये एक नया चैप्टर खुलने वाला है टुवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड रैम्पिंग अप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं। आप देखेंगी मैम कि हर हफ्ते या हर अगले हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है, वेदर इट्स अ बॉम्ब थ्रेट इन द लेबोरेटरी, वेदर इट्स एयरक्राफ्ट डाइविंग बाय 3,000 feet, वेदर इट इज समथिंग और द अदर, वेदर इट इज टू डू विद द मशीन और द इंजन, कुछ ना कुछ चल रहा है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके लिए मेरा मानना है कि जिस तरीके से फ्रिस्किंग होती है पैसेंजर्स की, जिस तरीके से हमारे को कहा जाता है कि आप पावर बैंक हैंड बैगेज में रखेंगे, केबिन बैगेज में ये रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते, पायलट हैव टू बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, द साइके एंड द मेंटल हेल्थ हैज टू बी चेक, नॉट कि ये एनुअली कर रहे हैं और आप टिक मार्क कर रहे हैं जी आप ठीक है मैं ठीक हूँ। ये नहीं हो सकता कि बस लाइसेंस रखना है तो ये ऐसे चल रहा है। रैंडम साइके इवैल्यूएशन होने बाय एन इंडिपेंडेंट बोर्ड, नॉट बाय एन एयरपोर्ट और एयरलाइन डॉक्टर, तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कह रही हूं अगर बस में सीसीटीवी कैमरा हो सकता है तो अब कॉकपिट में एक वीडियो कैमरा क्यों नहीं हो सकता है? दैट विल मेक थिंग्स इवन मोर इजियर। अभी हम AI-171 का फाइनल रिपोर्ट के लिए अभी तक रुके हुए हैं, पर उसमें अगर वीडियो कैमरा होता तो क्या चीजें आसान नहीं होती? सो देर आर वेज टू रैम्प अप सिक्योरिटी। वी हैव टू लुक एट द साइकी ऑफ द पायलट, मेंटल वेलबींग, फटीग, स्ट्रेस लेवल, डीकोड द एंटायर यू नो स्ट्रेस एनालिटिक्स ऑफ द पायलट, ये सब देखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये नया चैप्टर खुल चुका है। एंड लाइक इज़राइल सेड, नो पायलट विल बी अलाउड विदाउट आईडी चेक, सो यू गॉट टू ऑटो ब्लॉक pilots coming from war-torn nations or something like that has to be done. And in this, digital intelligence can help us. So, ये चीजें अब करनी जरूरी हैं because हम understand करना है that we are living in troubled times. Geopolitical tensions are real. किसको क्या ट्रिगर कर रहा है, किसको क्या मोटिवेट कर रहा है, वी कैन नॉट से। ओवर टू यू मैम।
1: ठीक है, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए यहां से एक नई बहस छिड़ गई है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, यकीनन सुरक्षा को लेकर अब जितने भी मानदंड है उस पर दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन ये अपने आप में सर एक बहुत बड़ा मामला है, शायद पहला, अपने आप में करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, पहला मामला होगा जबकि को पायलट ही हमला कर देता है। सर किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई, हम और आप भी, आए दिन सफर करते हैं प्लेन से, हर पैसेंजर के दिल में भी इसको लेकर अब खौफ होगा, लोगों के मन में डर होगा कि क्या हम सेफ हैं या नहीं है, क्या पायलट और को पायलट कहीं अगर वापस से इस तरह की सिचुएशन आ जाती तो क्या होगा, किस तरह की सर पहली बात ट्रेनिंग दी जाती है इनको और क्या क्या नियम कायदे हैं इसके?
3: जय हिंद, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने कि जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, किस प्रकार का होता है। तो बहुत ही नपा तुला और क्या जरूरत है उसकी उसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इतना सारे वेरिएबल्स हैं कॉकपिट में। आप खुद देख, आपने जैसे विजुअल्स चल रहे हैं देखा आपने कि कितने सारे कंट्रोल्स हैं, हर एक पर एक साथ निगाह रखना लगभग मानवीय सीमा के परे है। तो आदमी को कुछ दिमागी तौर पर एकदम स्वस्थ होना आवश्यक है, शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना आवश्यक है, ये तो पहली आवश्यकता है जिसके प्री मेडिकल प्री फ्लाइट मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडियन एयरफोर्स में ये बिल्कुल नियमित रूप से होता है। और जहां तक बात है कि इस ट्रेनिंग में क्या वो महत्वपूर्ण हिस्से इंक्लूड होते हैं जो कि सेंसिटिव है अपने नेचर में, निश्चित रूप से हर कंटीजेंसी का सामना करने के लिए जो कहा जाता है कि पहले मेंटेन कूल एंड assess the situation and see what can be done, क्योंकि आपका resources सीमित हैं, आप हवा में हैं और जब hijack जैसी या unlawful interference जैसी जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि unruly passengers की घटनाएं तो आपने अखबारों में काफ़ी सुनी होंगी, लगभग सप्ताह 10 दिन में एक बार कोई ऐसी खबरें आती हैं कि unruly passenger on board है। तो handling ये जो cabin crew है वो सांस में जो pilot है उनका ध्यान रहे कि 9-11 के बाद जो WTC की घटना हुई थी कि कुछ कड़े नियम बनाए गए थे कि कॉकपिट में हर आदमी नहीं जा सके, उसमें संभावनाएं थी कि हाईजैकर्स जो हैं या अनलॉफुल इंटरफ्रेंस जो है वो केबिन की जो है जो जहां यात्रीगण बैठते हैं वहां पर जो होंगे, लेकिन उसके लिए यह तय किया गया कि कॉकपिट का जो है दरवाजा बंद रखा जाएगा। अब दरवाजा देखिए इस स्थिति में जिसका मैं जिक्र करूंगा, जिसमें कि कैप्टन स्मिथ ने अपनी समर्पण और जो धैर्य और साहस का नमूना पेश किया वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन को सलाम है, सभी जो ऑपरेशनल पर्सन होंगे वो उसको उसकी तारीफ करेंगे और पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है, निश्चित रूप काबिल तारीफ है ये। तो उस परिस्थिति में किस प्रकार से जब जहाज इतना तेजी से नीचे जा रहा है, यात्रियों पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि वो लगभग जहाज सीधा जा रहा है, उसकी जो डाइव है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, वो किस तरफ लक्ष्य कर रहा है पता नहीं। तो एक जहाज जो कि बिल्कुल नियमित रूप से ठीक चल रहा है और ऑल ऑफ सडन जो है 2-2.5 घंटे के बाद इसमें एब्रप्टली जो चीजें बदलने लगती हैं, बहुत तेजी से नीचे आता है और इतना तेजी से नीचे आती है जो असामान्य है, यात्री इस तेजी से बदलते हुए आयाम के लिए तैयार मानसिक रूप से नहीं होते। तो निश्चित रूप से उनका डिस्टर्बेंस होना जरूरी है। महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग में हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी पैसेंजर्स को किसी प्रकार का भी जो है स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और इसीलिए जो है केबिन क्रू का व्यवहार और उनको यात्रियों को शांत करने का जिम्मेदारी भी केबिन क्रू को दी जाती है और इसके लिए वो प्रशिक्षित किया जाता है। महत्वपूर्ण ये है जब कॉकपिट बंद है और हमलावर केबिन में न होके कॉकपिट में ही है, ऐसे हालात में जो नियम बनाए गए हैं, जर्मन विंग्स जो घटना हुई थी उसमें तो अंदर से बंद करके पायलट ने जो है सुसाइड किया, हम ऐसा पता है। उसके बाद ये तय हुआ था कि एक तीसरा आदमी भी रहेगा साथ में जो कि चीजों को देखेगा, क्योंकि पायलट जो है कई बार जो है अपने सीट से उठते हैं लंबी दूरी की यात्रा होती तो, और क्योंकि एक पोजिशन में बैठे रहना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे, लेकिन उनका पालन होता है नहीं होता है, हालांकि मार्शल ऑन बोर्ड का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका पालन भी होगा कि नहीं होगा मुश्किल। अब मैं स्पेशली जो आखिरी पार्ट आपने कहा जो यात्रीगणों को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए यात्रा जरूर करेंगे इसमें कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी चेक्स और कड़े किए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न उठता है कि जो पायलट ओमानी पायलट था वो कैसे जहाज उड़ा रहा था, जबकि ये नियम है इनके बीच में इसराइल में जो भी जहाज ऑपरेट करते हैं उनका पायलट जो है ऐसे मुल्क से नहीं हो सकता जिसके साथ इसराइल का दोस्ताना संबंध नहीं है। तो वो ओमानी पायलट कैसे कॉकपिट में आया, नंबर वन। नंबर टू, चाकू या धारीदार जो तेज रिसोर्स जो चाकू कहा जा रहा है या एक्स कह रहे हैं, एक्स तो खैर कॉकपिट में ऑलरेडी होता है लेकिन उससे इस प्रकार के घाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो जो भी उसमें जो जितना भी जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो वार्तालाप हुआ, कुछ जो चीजें आ रही हैं वो बताती हैं कि काफी तनावपूर्ण समय था और यानी ने जिस प्रकार से बहादुरी से दरवाजा खोलने के बाद जब खुला, इसमें भी कैप्टन स्मिथ की बहादुरी रही कि उन्होंने बटन प्रेस करके कॉकपिट का दरवाजा खोला और उनको आने दिया, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, डॉक्टर आके उन्होंने चोट लगी थी मिस्टर स्मिथ को, उसको भी काबू करने का प्रयास किया, तो बताता है कि सबने जो है प्रयास किया कि चीजें जो हैं और मानवीय स्तर पर न जाएं। ये अपने पूरा जो टीम है ये प्रशंसा योग्य है और उनका सम्मान होना जो है
1: सबसे इम्पोर्टेंट पाने जी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इम्पोर्टेंट। डॉक्टर वंदना ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, यकीनन इसको लेकर भी क्या नियम बदलते नहीं, क्या अंदर उन्होंने कहा है कि एक सीसीटीवी की वहां पर भी ज्यादा जरूरत है, डीके पांडे जी भी बता रहे हैं, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं विपुल सक्सेना जी। जल्दी से दो सवाल छोटे से, क्योंकि मुझे फिर सुरेश जी के पास भी जाना है और ब्रेक भी लेना है। सर पहली बात, क्या कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद होता है, बाहर से कोई नहीं खोल सकता?
4: यस, ये रूल आता आफ्टर 9/11 रूल चेंज हुआ था कि कॉकपिट का दरवाजा केवल अंदर से ही खोला जा सकता है।
1: ठीक है, दूसरा सर जल्दी से, मैं आपके पास डिटेल के लिए आगे आऊंगी, लेकिन दोनों पायलट के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाता है या नहीं किया जाता?
4: सीआरएम की पॉलिसीज होती है हर एयरलाइंस में, रेगुलेटर जो है उन्होंने सीआरएम की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है और उसके थ्रू क्रू मैनेजमेंट एंड क्रू शेड्यूलिंग की जाती है, पर वो एक बहुत ही ब्रॉड फैक्टर है इस केस में। इस केस में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भाई पायलट की मेंटल स्टेट क्या थी, देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स जहां से इन चीजों को आई थिंक प्रीएम्प्ट किया जा सकता था, क्योंकि जब भी कोई पायलट इस तरह के मिशन पर डाला जाता है तो ये नहीं कि उसको रात को बोला सुबह उसने एक्शन कर दिया, इट मस्ट हैव बीन प्लान्ड फॉर लास्ट 6 months और 7 months, so he must be doing some kind of practice, some kind of mental preparedness, and he must be going through a lot of stress which must be affecting his health. So there are maybe if things were monitored, there are a lot of indicators which could have been given prediction about this pilot's behavior pattern through his medical parameters like BP, like heart rates, and even FRMS reporting, and even there's something called FOCA, flight operations quality assurance test, which every airline does. So when somebody is going through this kind of mission, they do try to do certain things which are extreme maneuvers of the aircraft to see how far the aircraft is safe. So all these things this guy must have tried on simulator and also during the flying. So I think if these factors were deeply analyze about this pilot, I think things would have been predicted well in advance. But we don't have this system. We have system of, tick box. Okay, FOCA हमने मैंने monitor कर लिया जी, FRMS देख लिया जी, medical report fitness ठीक है।
1: आम भाषा में अगर सर मैं कहूँ तो डॉक्टर वंदना की बात है कि खाना पूर्ति की जाती है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी क्यों नहीं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत की जाती
4: है। कि एयरलाइंस को और रेगुलेटर को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एनालिसिस का इंटरवेंशन डालना जरूरी है, ताकि इस तरह के ट्रेंड्स को जो है आप डीप एट कॉग्निटिव लेवल उनको स्टडी किया जाना चाहिए कि कोई पायलट है उसकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है सिमुलेटर पे या फोका में तो क्यों आ रही है, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, पर्सनल रीजन होना चाहिए, कोई और स्ट्रेस होना चाहिए, या उसका फटीग लेवल बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है। तो जब तक उसको आप कॉग्निटिव लेवल पर तो उसको स्टडी नहीं करेंगे इस तरह की चीज हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे।
1: बिल्कुल, अब सुरेश जी आपको इंक्लूड करूंगी। सर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर। पहली बात, जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट देश का पायलट वो विमान उड़ा नहीं सकता। सर क्या रोस्टर पहले से नहीं बनता, क्या ये इमरजेंसी ड्यूटी थी, ये भी आप हमें हमारे दर्शकों के लिए समझाइएगा। और दूसरी बात, इस तरह की सिचुएशन अपने आप में पहली बार आई है। तीनों एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि पायलट्स को और जो स्टाफ होता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन शायद ये ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी कि आपका जो साथी, आपका जो को पायलट है वो ही आपके लिए दुश्मन साबित हो सकता है। इसके बाद ये कितना बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए? सर दोनों सवालों का जवाब
5: जी। मैं शुरू करूंगा, पहले तो स्मिथ बच्चर को मैं सलाम करूंगा कि उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई जिसकी वजह से तकरीबन 2000 पैसेंजर उनकी जान बची, बहुत बड़ा उन्होंने कमाल किया। ये दूसरी चीज, इसको जो कल इंसिडेंट हुआ उसको देख करके मेरे को 1999 में, आपको याद होगा इजिप्ट एयर 990 वो भी अटलांटिक के ऊपर जब फ्लाई कर रही थी वहां पर भी एक जो को पायलट था इजिप्ट का था वो, उसने भी ऐसा ही हादसा किया था, कंट्रोल लेकर के डाइव करके और पूरी फ्लाइट वो जो है डूब गई थी पानी में। ये तो मैं ये कहूंगा कि जैसा कि बाकी सबने कहा है, ये धीरे धीरे करके इस तरह के इंसिडेंट पहले से काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो अब खाली पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के अलावा जो एयरक्राफ्ट के जो एयर क्रू है, एयर क्रू की स्क्रीनिंग, उनकी सिक्योरिटी कि कोई नाइफ वगैरह साथ में लेकर के ना जाए, कोई वेपन वगैरह साथ में ना हो, मेंटल मेकअप के बारे में बात की गई है, कि ये सब खाना पूर्ति नहीं है। एक तरह से रिग्रेस चेकअप हमेशा हर एक फ्लाइट से पहले होना चाहिए, मेंटल मेकअप के लिए पीरियोडिकली एटलीस्ट 3 मंथ्स होना चाहिए ये, ताकि वो बाकी जो पूरा एयरक्राफ्ट और जो पैसेंजर है खतरे में ना हो। आपने कहा कि ये जो क्रू में जो थे एक एनिमी कंट्री का, शायद आपने लफ्ज का इस्तेमाल किया था, ओमान मैं समझता हूँ किसी भी हालत में, अभी किसी भी हालत में वो इजराइल के लिए एनिमी कंट्री के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये
1: ठीक है,
5: ओमान एज अ गल्फ कंट्री कोऑपरेशन भी है, सब कुछ है, और वहां से ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ है। तो मैं खाली नेशनैलिटी की वजह से इस सिलसिले में, और जिस तरह से कि अगर मैं कहूँ इवन स्मिथ मच्छर और ये वो दुबई में रहते थे उस टाइम पर, ये तो ये कहना कि वो इंडियन नेशनैलिटी के ही है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, उनकी लॉयल्टी उस टाइम पर एयरलाइंस के लिए होती है या जहां पर रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इस सब के बाद सबसे ज्यादा जरूरत बहुत ज्यादा रिग्रस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की है, ये एयरक्राफ्ट क्रू के लिए भी जैसे कि पैसेंजर्स के लिए होता है, और दूसरा मेंटल बैकअप के लिए। इसके साथ में जो वंदना सिंह ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए, और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के अंदर जहां पैसेंजर होते हैं एक ऐसा होना चाहिए हु कैन कीप ऑन मॉनिटरिंग कि वहां पर क्या कॉकपिट में क्या चल रहा है, ये ताकि अगर कहीं इंटरवेंशन की जरूरत हो और उस आदमी के पास कॉकपिट में एक्सेस करने की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इंटरवीन कर सके।
1: जी सर, मैं लौटूंगी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: चारों ओर एक ही आवाज, शाबाश जांबाज। चर्चा आज कैप्टन स्मिथ मचार की हो रही है, जिनकी तारीफें हर तरफ से हो रही है। लेकिन यहां पर ये पूरा इंसिडेंस, ये पूरा वाक्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन में हम लोग आते हैं तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, नियम क्या कहते हैं। इन सबको लेकर खास मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर वंदना सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि अपने अपने पहली जवाब में यही कहा कि बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई चीजें खाना पूर्ति होती है, लाइक चाहे मेंटल हेल्थ की यहां पर बात कर ली जाए या फिजिकल हेल्थ की बात कर ली जाए, केवल टिक लगाने तक ही वो सीमित रह जाता है। और आपकी इस बात को हमारे तमाम पैनलिस्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर मैम ये भी होता है कि कांदार हाईजैक के बाद स्काई मार्शल की चर्चा हुई थी कि उनको भेजा जाएगा, ये भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं अभी तक।
1: Absolutely, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। This is one more point I wanted to add. After Kandahar, also after 9/11, ये mandatory हो गया था that flight marshals or what we call air marshals have to be on board any international equipment, any international flight. They are fully armed and they are trained. ये trained होते हैं for combat. They are trained to take on such situations. Such situations can happen from the passengers itself, like you just said, Kandahar. It is a clear case how a few passengers in the guise of passengers, a few terrorists did the hijack. So air marshals are very, very important. And these flight marshals, as we call, they are fully trained and they are fully equipped to handle such a situation. तो ये जो आजकल रैंडम हो गया था, इसको बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने कहा, शुरू से ही कहा, वी ऑल नो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर वेरी हाई, वॉर्स आर नॉट एंडिंग, वेदर इट इज रशिया यूक्रेन वॉर, देर इज नो एंड टू इट, वेदर इट इज करंट वेस्ट एशिया बायलैटरल ट्राइलैटरल वॉर दैट्स गोइंग ऑन, देर इज नो एंड टू इट, हाउ मेनी मोर नेशंस आर बीइंग ड्रॉन इनटू इट। आप ये देखिए मैम कि अगर आज ये हादसा कल हो गया होता एंड दिस एयरक्राफ्ट वुड हैव क्रैश्ड लाइक अ 9/11, इट वुड हैव क्रैश्ड इन इजरायली एयर टेरिटरी, बिकॉज ये नहीं भूलिए दैट 6 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 6 मिनट्स इनटू द फ्लाइट, दे वर जस्ट एट द टॉप ऑफ डिसेंट ओवर इजराइल। सो एम कुड हैव बीन नॉट जस्ट टू किल ऑल दीज पैसेंजर्स, एम वॉज ऑल्सो अ सुसाइड मिशन 9/11 टाइप, to get into the Israeli territory and also cause more harm and cause more casualty. Jab ye sab chal raha hai, then more precaution has to be taken. That is why I am saying mandatory video camera has to be inside, flight marshals have to be there, crew resource management is a must, it has to be ramped up. Ki kaise handle karna hai, how can you, jaise you curtail an unruly passenger, how can you curtail danger from inside? Plus, maine kaha, ICAO rule doesn't allow as yet, ICAO rule 1 and Annex 6 doesn't allow as yet, but we must ban nationalities flying with from 2 war-torn nations or something like that.
0: Jee.
1: Try and understand what if there was some... We are talking nationalities and this is a talk that's going on to understand this, this could have been horrendous, what if there was somebody else inside? What if there was somebody from Iran and Israel paired? What if it was Indian or Pakistani? We have to think all that. It auto block karna padega, pattern study karna padega, एंड साइके को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा विद थ्रू प्रॉपर टेस्टिंग, अनलेस दे गो थ्रू रिग्रेस टेस्टिंग दे शुड बी नॉट अलाउड टू फ्लाई। सो वी हैव थ्रेट आउटसाइड ऑल्सो, वी हैव थ्रेट इनसाइड ऑल्सो, एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉल एविएशन टू बी द सेफेस्ट मोड ऑफ फ्लाइंग, देन प्लीज हमें ये स्टेप्स रैम्प अप करना जरूरी है एट दिस पॉइंट।
0: बिल्कुल सूरज जी, इसी पर, क्योंकि देखिए यही बात हो रही थी, डॉक्टर वंदना ने भी इसी बात को लेकर आशंका जताई कि अगर ये पूरा इंसिडेंट हो जाता, और हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि ठीक है तनावग्रस्त तो दोनों है ही है।
2: क्या सवाल
0: सुरेश गोयल जी? नहीं नहीं, सुरेश गोयल जी से मेरा सवाल है, मैं आती हूँ डीके पांडे जी आपके पास।
3: जी जी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया,
2: दोबारा कहेंगे
0: सर डॉक्टर
2: सवाल का?
0: अनुराधा, डॉक्टर वंदना जिस तरीके से अपनी बात रख रही है, उन्होंने कहा कि देखिए इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अब मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो क्या हम उतने तैयार हैं?
2: देखिए, कोई भी तैयारी 100% तो पूरी कभी नहीं होती। आप कितना भी कर लीजिए, आप तैयारी पूरी करती हैं, उसके बाद में कोई इंसिडेंट होता है, इवेल्युएशन होता है, और फिर पता लगता है कि हाँ ये भी करना चाहिए था। लेकिन अभी तक की जितनी भी असेसमेंट रही है, जो सिचुएशन रही है, उसके मुताबिक मैक्सिमम जितनी आप सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले सकते लीजिए। इसके अलावा एक बार फ्लाइट एयरबॉर्न है, जब एक ट्रेजेक्ट्री पर है फ्लाइट, तो उसके बाद ज्यादातर जो जो जो फ्लाइट क्रू है, पायलट से उनके हाथ में जहाज है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। इसलिए उनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, उनका मेंटल साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जहां तक ये बात हो रही है कि दुश्मन नेशन हो या राइवल नेशन हो, वॉर टॉर्न नेशन हो, सही है कि जो अगर दो दो नेशन से वॉर भी दीचे दर उनके वहां पर अगर होंगे दोनों के कैबिन में, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये तो पहले ही, जहां तक मैं जानता हूँ, ये तो पहले ही ध्यान रखा जाता है कि जो पायलट और को पायलट हो वो एक तरह से डायरेक्ट टीम, कि वो एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाएंगी, तो वो तो ध्यान रखते हैं। लेकिन अब ये मैंने इजिप्शियन एयर का मैंने एक रेफरेंस दिया था 1999 में, किसको किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि वो जो एयर पायलट था, तो को पायलट, उसका मेंटल मेकअप क्या है। वही सवाल वहां पर हुआ था ये, और वही सवाल यहाँ पर दोबारा हो रहा है कि किसी ने क्या जो ओमानिस को पायलट है उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल चेक किया था कि क्या वजह थी ये? वो नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे जरूरी चीज ये है कि बिफोर एवरी फ्लाइट पायलट्स की स्क्रीनिंग पूरी हो, उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट पूरा ठीक से चेक हुआ हो। जी
0: बिल्कुल, इसी को लेकर बात लगातार हो रही है। अब ग्रुप कैप्टन बीके पांडे हमारे साथ मौजूद है। सर, एक कॉमन मैन, एक आम यात्री जो जानना चाहता है, समझना चाहता है, सर एक कोड भेजा उन्होंने, कोड भेजा गया अलर्ट 770। मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए ये कोड भेजना कितना जरूरी होता है और किस तरीके से ये कोड एक अलर्ट के तौर पर काम करता है। क्या पैसेंजर्स को इस बात के बारे में सूचित किया जाता है या नहीं?
3: बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि दर्शकों से उत्सुकता होगी कि वो कल से सुन रहे हैं कि 7500 क्या है। ये देखिए, ये एक तरीका है उन एजेंसीज को फोरवार्न करने का कि कुछ हो रहा है हवा में, क्योंकि तीन तरह के जो है, तीन डायमेंशन है इसके। एक तो जो है जो हवा में ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक ग्राउंड पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, और तीसरा जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस है, जो कि अगर कोई देश में कोई खतरा इसके माध्यम से हवा के एयर स्पेस में पनप रहा हो तो उसको कैसे किया जाए। और आपने ये भी सुना होगा कि इजरायली एयरफोर्स के जो है वो इंटरसेप्टर्स भी स्क्रैम्बल किए गए थे। ये जो हमारे देश में ये नियम है कि ऐसे समय जबकि हम नहीं देख समझ पा रहे हैं कि जहाज क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, तो इंटरसेप्टर स्क्रैम्बल किए जाते हैं, को एक सेफ डिस्टेंस रखा जाता है ताकि जो हाईजैक है, हाईजैकर्स है, वो भयभीत ना हो और ऐसा काम ना करें जिससे कि जो जहाज को साथ में यात्री जो बोर्ड पर है उनको कोई खतरा हो। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ये हमेशा कहा जाता है कि जो यात्रियों की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। अब जो 7500 कोड दिया गया वो सीधा सा बताता है सारी एजेंसीज को, इसमें देखिए कुछ अनाउंस नहीं कर रहा पायलट, केवल एक बटन दबा रहा है। जब 7500 आता है ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, एक यंत्र है जो कि भेजता है रेस, जो कि सब रिसीवर्स के पास जाते हैं ग्राउंड पर, और वो जो है उनको मालूम पड़ता है 750 इंडिकेशन है कि भाई अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब कुछ एक अनियमित कार्रवाई हो रही है कॉकपिट में या जहाज में। अब वो कॉकपिट में जहाज में ये इसका अंतर नहीं किया जाता। उसके बाद 7700 में होता है कि भाई जहाज खतरे में है और उसको जो है उसको जरूरत है किसी हेल्प की। लेकिन मैं इसके पहले एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ दूं कि इसके आने के बाद जो है एजेंसियां जो है एक सीमा तक ही कुछ कर सकती हैं। अब जैसे एयर ट्रैफिक सर्विसेज है वो एक सीमा तक कुछ काम कर सकती है कि भाई जहाज कहाँ जा रहा है उनको चौकन्ना कर दें, फोरवार्न कर दें एजेंसीज को, ताकि वो जो भी सिक्योरिटी स्टेप्स हैं या ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है उसके लिए तैयारी करना है और वो सारे रिसोर्सेज रनवे पर आ जाए जाए, और जो भी अगर कोई जहाज गलती से टकरा रहा है तो आग लगे उसको बुझाने का वगैरह वगैरह जो चीजें, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको अडेयर किया जाए। तो अब एक और बार बार जो प्रश्न आ रहा है कि भाई ये जो पायलट का देश का संबंध होने वाली बात, ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है? उसका मुख्य कारण ये है कि थोड़ी देर पहले ही ये घोषणा की है नाटो कंट्रीज और वेस्ट ने कि जितने भी ईरानी एयरलाइंस के जहाज हैं उनको कहीं उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में ये कदम हो सकता है, इस कारण से ये बात की जा रही है कि शायद ये ओमानी पायलट जो है वो इस विरोध में कि भाई एक तो कर रहे हैं आप, उनके समर्थन ईरान के समर्थन में इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस पूरी घटना में ईरान का भी हाथ हो। अब बहुत जल्दी से मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो कॉकपिट, ये जो दरवाजे होते हैं कॉकपिट के, वो रोकते हैं बाहरी जो है खतरे से, लेकिन आवश्यकता है कि हम दरवाजे जो है वो बाहरी और अंतर्गत दोनों करें। तो अगर फ्लाइट बिहेवियर के साथ इन डोर्स को कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर एब्रप्ट जहाज उड़ रहा है तो ये दरवाजा अपने आप खुल जाए, तो ये निश्चित रूप से वो जो टाइम बर्बाद हुआ,
0: सर वक्त की कमी है, जल्दी से एक छोटा सा सवाल आम नागरिक, क्योंकि देखिए यहां पर हम उस प्लमर की तारीफ भी करेंगे, उस डेंटिस्ट की तारीफ भी करेंगे, एक आम नागरिक अगर वो यात्रा कर रहा है ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? सर 30 सेकंड में जल्दी से जवाब, क्योंकि यहां पर क्रेडिट उनको भी उतना ही जाता है।
3: निश्चित रूप से देखिए उनको उनको सबसे पहली बात है कि वो ये किसी भय में आतंकित ना हो, वो शांत बैठने का प्रयास करें। निश्चित रूप से अगर शांति बनाए रखेंगे तो जो क्रू है और जो जो लड़ रहे हैं विपरीत परिस्थितियों से उनका मनोबल नहीं टूटेगा, वरना भयभीत हो जाते हैं कि भाई यात्री चिल्ला रहे हैं और ये दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि चोट भी लग जाए, क्योंकि जहाज जब बहुत तेजी से दाएं बाएं मुड़ रहा है तो उसमें यात्री जो है वो हिलना डुलना आपस टकराना का या गिरने का संभावना रहती है, तो उससे चोट लग सकती है। तो चीजें जो पहले जो भयानक है वो भयानक रूप स्तर पर पहुंच सकती हैं। तो शांति बनाए रखें, जो नियम बताए, जो आपको आदेश दिए जा रहे हैं केबिन क्रू द्वारा, उनका सम्मान करें और विश्वास करें कि आपको जो बेहतर से बेहतर जो जो भी सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, जो आपके सुविधा दी जा सकती है, उसके लिए पूरा पूरा जो तंत्र है हवा में वो प्रयास कर रहा है और आप सुरक्षित हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर दूसरा सोचते हैं तो पैनिक करेंगे,
0: सिचुएशन और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, वक्त सर अभी इतना ही है, वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जहां एक तरफ हमारे भारतीय पायलट की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हम और आप हर रोज सफर करते हैं, तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है और इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को,
0: हमारी कोशिश रहती है कि अगर समाज में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उस पहल को सराहा जाए, और इसी मकसद से गुड न्यूज टुडे का मंच ऐसी प्रेरणादायक रियल स्टोरीज को आपके सामने लाता है। और जीएनटी पर दिखाई गई एक ऐसी ही रिपोर्ट को नोटिस किया केबीसी ने, और धौलपुर जिले के समाज सेवी डॉक्टर आर एस गर्ग पहुंच गए अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर। दरअसल इस लाइमलाइट के केंद्र में है डॉक्टर गर्ग की दिव्यांग बच्ची मयूरी। तो कैसे मयूरी और उसके माता पिता के संघर्ष ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है, खुद के लिए नई पहचान बनाई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
6: मैं सबसे पहले गुड न्यूज टीडू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय को अपने मंच पर लाए और विद्यालय की सूचना, उन्होंने विद्यालय का भी प्रोग्राम रखा और विद्यालय को के विकास के लिए उन्होंने ये सारी बातें हमारी बताई। तो गुड न्यूज ने जो हमारे लिए जो कार्यक्रम किया वास्तव में प्रशंसनीय था, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
7: पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विशेष स्कूल खोल दिया। अब उनकी बेटी के साथ उसके जैसे और बहुत बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं।
8: ये वो किस्सा है जिसने संघर्ष के मायने बदल दिए, वो स्टोरी जिसने साबित किया कि अगर मजबूत इरादों के साथ मुश्किलों का सामना किया जाए तो नई राह नई दिशा तय होती है। कहानी राजस्थान के धौलपुर के समाज सेवी डॉक्टर आर एस गर्ग और उनकी पत्नी मधु गर्ग की नेक पहल की है, जिसे सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे ने इस दंपत्ति की कहानी को मंच दिया और इनका वो किस्सा बयां किया कि कैसे इस कपल ने दिव्यांग बेटी के इलाज के दौरान उसके जैसे दूसरे बच्चों के जीवन में रोशनी लाने की मुहिम छेड़ी और मयूरी विशेष विद्यालय शुरू कर करीब 400 बच्चों को नया जीवन दिया। इस निस्वार्थ नेक पहल को गुड न्यूज टुडे पर नोटिस कर इस दंपत्ति को अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में बुलाया गया और वहां भी इस पहल के लिए अभिनय सराहना मिल रही है।
6: ऐसा अनुभव तो अनुकरणीय है, ऐसा हमें कभी सोचा भी नहीं था। और जब हमने जब उनके साथ उनके सामने हमने उनसे बातें करी, उन्होंने हमें हमसे सवाल करे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये सब उपलब्धि का कारण हमारी मयूरी थी और हमारा जो काम था वो था, परंतु ये अनुभव हमारा इतना अच्छा था जिसका मैं विवरण कर नहीं सकता हूँ।
8: इस साल 2000 की बात है जब डॉक्टर राधेश्याम गर्ग और उनकी पत्नी मधु गर्ग अपनी बेटी मयूरी के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी ने ख्याल आया कि क्यों ना बेटी के जैसे बाकी दिव्यांग बच्चों की राह आसान बनाई जाए और इस तरह मयूरी विशेष विद्यालय की नींव रखी गई। शुरुआत 6 स्पेशल चाइल्ड से हुई और अब तक ये संस्था 400 से ज्यादा बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ चुकी है।
6: जब इलाज के दौरान भी ठीक नहीं हुई तब हमने सोचा कि ये विद्यालय खुलना चाहिए जिससे इन बच्चों के विकास कर सके। और हमारा उद्देश्य ये भी रहा कि हमें अपनी बेटी के लिए ही नहीं, जब हमने सोचा कि हमने बेटी के लिए हम विद्यालय खोल रहे हैं तो हमने सोचा कि और बच्चों को भी लाभ मिले। हमें पता लगा कि ऐसे बच्चे एक जिले में काफी होते हैं तो उन बच्चों को हमने बुलाने की कोशिश करी, बच्चे आए भी और हम बच्चों को सभी को मयूरी के साथ साथ दूसरे बच्चों के विकास करने की हमारे मन में बात आई तो इस तरह से हमने विद्यालय खोलना जरूरी समझा।
9: आईडी स्पेशल बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को हम लोग ज्यादातर एक्टिविटी से पढ़ाते हैं और इनकी जैसे डेली रूटीन के जो इनके वर्क होते हैं वो इनको सिखाए जाते हैं स्कूल में ही, जैसे अपने शर्ट के बटन लगाना, अपने बाल कॉम करना, नहाना, सारी और ब्रश करना, किस तरीके से हमें ब्रश करनी है, अपने घर में जैसे हम लोग कोई काम, ये बच्चे खाना खाते हैं तो कैसे इनको बर्तन सिंक तक रखने हैं, ये सारी चीजें, मतलब बर्तनों को खाना पीना उठना बैठना ये सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं।
8: ये खास स्कूल दिव्यांग बच्चों का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। गर्ग दंपत्ति की नेक पहल और जज्बे को देश विदेश में पहचान मिल रही है। सबसे खास बात यह है कि इनकी कहानी से समाज को प्रेरणा मिल रही है कि मजबूत इरादों के साथ चुनौतियों को भी अवसर में ढाला जा सकता है। और गर्ग दंपत्ति ने अपने बेजोड़ जज्बे के दम पर मयूरी विशेष विद्यालय के जरिए ये करके दिखाया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस हिंदुस्तानी की जिसने आसमान में जांबाजी की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। कैप्टन स्मिथ मछार की बात करेंगे, जिन्होंने फ्लाई दुबई के यात्रियों की जान बचाई और 9/11 जैसा बड़ा खतरा टाल दिया। पूरी कहानी आगे।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए मुंबई में स्मिथ मछार के घर पर किस तरह का माहौल है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। स्मिथ मछार की बहादुरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, स्मिथ के अदम्य साहस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, और इजराइल के पीएम ने किस तरह से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम में गणेश उत्सव की बात होगी। दरअसल गणेश उत्सव संपन्न हो गया है, लेकिन आज भी मुंबई के लालबाग राजा की चर्चा हो रही है। देखिए उनके भक्त और श्रद्धालुओं ने उन्हें चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे भी। और देश और विदेश के श्रद्धालुओं ने कितने करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी।
6: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए इसके बाद बात खेलों की दुनिया से आई गुड न्यूज की भी करेंगे। जापान में चल रहे एशियन गेम्स में आज के पदक वीरों की चर्चा करेंगे, बताएंगे आज भारत की झोली में कितने मेडल्स आए हैं। साथ ही बात वनडे क्रिकेट में उस ऐतिहासिक जीत की भी होगी जिसे भारत ने 406 रन बनाकर हासिल कर लिया है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
8: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
6: एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस में क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रन से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल। कैप्टन स्मिथ मछार को इजराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में हो रहे स्मिथ की तारीफ। काशी में पालित स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान, स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटुकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी सरकार करेगी दीप करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। मुंबई के लालबाग चौराहा को मिले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की नीलामी। दान में मिली सोने की ईंट, बाइक्स और 6 करोड़ कैश। गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने दिया दान। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा। अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
6: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत आसमान के हीरो की खबर से ही हम करेंगे। देखिए, जब आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर मौत सामने खड़ी हो, जब कॉकपिट के भीतर अपनों ने ही पीठ पर खंजर घोंप दिया हो, तब एक सच्चे भारतीय ने दिखाया कि आसमान के असली जाबाज कौन होते हैं। हवा में मौत के साय के बीच फ्लाई दुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार ने जो अदम्य साहस और बहादुरी दिखाई, आज उसकी गूंज पूरी दुनिया में है।
1: जी हाँ, दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जब को पायलट ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, शरीर लहूलुहान था और विमान तेजी से नीचे गोता लगा रहा था। ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले पल में भी कैप्टन स्मिथ मछार ने हार नहीं मानी। खून से लथपथ होने के बावजूद उन्होंने जिस फौलादी जिगर और सूझबूझ का परिचय दिया है, उसने 174 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी बचा ली और 9/11 जैसी आसमानी त्रासदी को टाल दिया। आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारतीय कैप्टन की जांबाजी को सलाम कर रहे हैं। उनकी बहादुरी के किस्से हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। मुंबई में उनके घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर कोई यही कह रहा है, हमें कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है।
10: हंसते मुस्कुराते चेहरे, अपनों से मिलते लोग, खुशी, राहत और सुकून की ये तस्वीरें आज शायद देखने को नहीं मिलती अगर वक्त पर कैप्टन स्मिथ मछार ने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई होती। हंसी, खुशी और कोलाहल की ये तस्वीरें इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। ये वही यात्री हैं जो फ्लाई दुबई की उस फ्लाइट में सवार थे जिसे आसमान में ही एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ मिनटों का फासला रह गया था, तब भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार ने अदम्य साहस दिखाया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हालात को संभाला और विमान में सवार सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज दुनिया उनके साहस को सलाम कर रही है।
9: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
10: तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कैप्टन स्मिथ मछार ने एक और 9/11 होने से बचा लिया। बयान की गंभीरता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान में उस वक्त हालात कितने खतरनाक रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि दुबई से इसराइल के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में पूरा विमान संकट में घिर गया। घटना बुधवार सुबह की है जब 6:05 पर फ्लाइट नंबर FZ1073 ने दुबई से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी। विमान की कमान पायलट स्मिथ मच्छार और ओमानी को पायलट के हाथों में थी। फ्लाइट में 174 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें मुख्य रूप से इजरायली नागरिक थे। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद फ्लाइट सऊदी अरब और जॉर्डन की सीमा के पास करीब 34,000 फीट की सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक कॉकपिट में चीख पुकार मची और पूरे विमान में हड़कंप मच गया। को पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में कैप्टन के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए। बताया जा रहा है कि कैप्टन पर हमला करने के बाद को पायलट ने विमान को क्रैश करने या नीचे गिराने की नियत से कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद फ्लाइट तेजी से नीचे आने लगा। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक विमान सिर्फ 1 मिनट के भीतर 33,000 फीट से घटकर सीधे 17,000 फीट पर आ गया। इस तेज गिरावट की वजह से विमान के पिछले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा और केबिन में यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने हार नहीं मानी। उन्होंने सह पायलट का मुकाबला किया और किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा अनलॉक करने में कामयाब रहे। दरवाजा खुलते ही केबिन क्रू और 3 से 5 यात्री कॉकपिट के अंदर घुस गए। उन्होंने मिलकर हमलावर को पायलट को दबोच लिया और उसे बांध कर काबू में किया।
11: मेरे कुछ सूत्रों के अनुसार ये हमें मालूम चला कि ये जो एक पैसेंजर थी महिला, वो टॉयलेट के पास खड़ी थी। जो टॉयलेट का फ्रंट डोर होता है, वो फ्रंट टॉयलेट का, वो कॉकपिट के साथ होता है। तो उसकी बेटी अंदर वॉशरूम में थी, तो उसने बहुत जोर जोर की आवाज़ें और चीखें सुनी कॉकपिट के अंदर। उसने पीछे जाके कैबिन क्रू को इतला किया और वहाँ पे एक पायलट भी बैठा हुआ था जो कि सफ़र कर रहा था। तो इन लोगों ने आके, अभी किसने दरवाज़ा खोला या कॉकपिट में से कैप्टन ने खोला, और कैबिन क्रू के पास भी ये सुविधा है कि वो इमरजेंसी कोड डाल के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो उन्होंने जाके जब अंदर देखा तो काफ़ी खून बहा हुआ था दोनों पायलट का, और जो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ट्रीटमेंट थे।
10: हमलावर को पायलट को काबू किए जाने के बाद फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुका एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया। बुधवार सुबह करीब 9:45 पर उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं है। को पायलट को हिरासत में लेकर जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं। आज पूरी दुनिया पायलट स्मिथ मच्छार की सूझबूझ और अदम्य साहस की तारीफ कर रही है। भारत सरकार ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। स्मिथ मच्छार की बहादुरी की कहानी आज हर किसी की जुबान पर है। मुंबई में आज उनके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। हर कोई उनके अदम्य साहस की तारीफ करता नजर आया।
12: हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। 174 लोगों की जान बचाई, कॉकपिट खोला और अपने प्राणों को जान को बाजी पर लगाकर इतने लोगों की जान बचाई। ये हमें बहुत प्राउड है, ये हमारे तिरंगा है। इनकी मान सम्मान को आगे बढ़ाए, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं।
10: मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: सफर हम सभी करते हैं, एक छोटा सा टर्बुलेंस होता है, हालत खराब हो जाती है. और यहाँ पर देखिए, दोनों पायलट के बीच में इस तरह से अंदर जंग चल रही हो और बंद हो वो दरवाजा, केबिन का दरवाजा, यूजुअली कॉकपिट बंद ही रहता है, वो बंद हो और बाहर किसी को पता नहीं कहाँ, और 17,000 की फीट की तक आप आ गए, 34,000 से 17,000, क्या हालत हुई होगी आप इमेजिन करिए, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के.
1: लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ना आपने अपनी बात की, हम सब लोगों ने सफर किया है, हवाई सफर. आपने टर्बुलेंस की बात की, टर्बुलेंस आता है हम डर जाते, घबरा जाते हैं. यहाँ पर ना हमें उस डेंटिस्ट की, उस प्लमर की, बहादुरी की भी दाद देनी होगी. देखिये, वो प्लमर है, उसने कहाँ से देखा, वो यूट्यूब पे, एक कैनेडा में एक यूट्यूब चैनल चलता है मेडे, मेडे में दिखाया जाता है कि कैसे अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, वो उसके दिमाग में रह गई बात. और वो प्लमर जाके सीधा कॉकपिट में उसने विमान को संभाला सबसे पहले. डेंटिस्ट जो वहां पर था, उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड सूझबूझ के साथ कैसे उस पायलट की फर्स्ट एड की. तो यात्री होने के नाते भी मुझे लगता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है. ऐसे समय में हम पैनिक करने के बजाय थोड़ी सी अगर सूझबूझ अपनाई जाए तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता.
0: बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने टीम के साथ टीम बनाकर एक काम किया था, क्योंकि आपको फर्स्ट एड भी देना था, आपको प्लेन भी संभालना था. ऑफ ड्यूटी पायलट्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने लैंडिंग कराई थी. 30 सेकंड के अंदर 16-17 फीट नीचे आ जाता है विमान. तो ऐसे में लोगों का पैनिक होना भी बनता है, जायज सी बात है.
2: Exactly.
0: लेकिन सिचुएशन को जिस तरीके से कैप्टन ने संभाला, अब उन्हें द हीरो कहा जा रहा है. भारत में ही नहीं,
1: इजरायली सरकार सम्मानित करेगी, गुजरात सरकार उन्हें सम्मानित करेगी.
3: बिल्कुल, और ट्रंप भी उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं. और आपको बता दें कि फ्लाई दुबई के विमान में हवा में मौत को मात देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी अब सरहदों की पाबंदियां पार कर चुकी है. आसमान में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाले इस भारतीय कैप्टन के मुरीद पूरी दुनिया के दिग्गज बन गए हैं.
0: बिल्कुल, देखिए, एक भारतीय की जाबाजी और पूरी दुनिया में गूंजता हिंदुस्तान का नाम. प्रधानमंत्री मोदी ने स्मित मच्छार को हीरो बताया. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके असाधारण साहस को सलाम किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें हीरो बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की. यानी आसमान में दिखाई गई एक भारतीय की जाबाजी की चर्चा दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और यरूशलम तक हो रही है.
4: आसमान में जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ चंद सेकंड का फासला हो, जब खुद की सांसें खतरे में हो, तब इंसान क्या करता है? डरता है, पीछे हटता है, या फिर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद मौत से भिड़ जाता है? कैप्टन स्मित मच्छार ने तीसरा रास्ता चुना. फ्लाई दुबई की कमान संभालने वाले कैप्टन स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल थे, खून से लथपथ थे, लेकिन हौसला नहीं टूटा. उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, मदद के लिए रास्ता बनाया और देखते ही देखते 9/11 जैसी एक बड़ी मुसीबत टाल दी. आज दुनिया उसी भारतीय पायलट को सलाम कर रही है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक, दुनिया के बड़े नेताओं की जुबान पर आज एक ही नाम है, कैप्टन स्मित मच्छार. पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार को हीरो बताते हुए कहा कि भारत को उन पर गर्व है.
5: हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है. आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है. मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें.
6: It seems, I can relate the story, but you couple it probably.
4: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पायलट बेहद गंभीर हालत में था, लेकिन इसके बावजूद उसमें कॉकपिट का दरवाजा खोलने की हिम्मत और सूझबूझ थी. यानी जब शरीर जवाब दे रहा था तब भी दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया. ट्रंप ने कैप्टन स्मित मच्छार को हीरो बताया.
6: Co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to amazing.

0: to, in a way, he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
1: और फिर आती है उस देश के प्रधानमंत्री की आवाज, जिसके नागरिक इस विमान में सवार थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को ट्रू हीरो यानी सच्चा नायक बताया। नेतन्याहू ने कहा कि चाकू से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने मुकाबला किया, डटे रहे, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्री और क्रू को हमलावर को काबू करने का मौका दिया। नेतन्याहू ने कहा कि कैप्टन मच्छार ने 174 लोगों की जान बचाई और उन्हें उनकी असाधारण बहादुरी के लिए सलाम किया।
2: Citizens of Israel, this morning there was a very serious security incident on a flight from Dubai to Israel. Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए ये हिम्मत अचानक पैदा नहीं हुई। वो एक अनुभवी पायलट है। मुंबई के रहने वाले स्मिथ मच्छार ने स्पाइसजेट के साथ करीब 11 साल काम किया। इसके बाद 2022 में फ्लाई दुबई से जुड़े। उनके पास करीब 9,750 घंटे की उड़ान का अनुभव बताया जाता है और बोइंग 737 विमानों को उड़ाने का लंबा अनुभव उनके खाते में है। यानी आसमान में मुश्किल से निपटने की ट्रेनिंग और अनुभव का उस दिन असली इम्तिहान था और मच्छार ने उस इम्तिहान में अपनी सूझबूझ और साहस को दिखाया। आज कैप्टन स्मिथ मच्छार अस्पताल में है। गंभीर चोटों के बाद उनका इलाज चल रहा है। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के बाहर मुंबई से इसराइल तक, भारत से अमेरिका तक, हर तरफ उनके लिए दुआएं हैं, हर तरफ उनकी बहादुरी की चर्चा है।
3: और 174 लोगों की जान बचाई है, तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान मिले।
1: जिस विमान में बैठे 174 लोगों के लिए सफर जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन सकता था, उसी सफर में एक भारतीय पायलट ने अपनी दिलेरी से एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो कैप्टन स्मिथ मच्छार के नाम की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। स्मिथ के माता पिता मुंबई में ही रहते हैं, जबकि स्मिथ कुछ साल पहले दुबई शिफ्ट हो गए थे। उनकी जांबाजी की खबर मिलते ही मुंबई में उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी।
5: आपको बता दें, हर किसी की जुबा पर सिर्फ स्मिथ की बहादुरी के ही किस्से थे। सोसाइटी के लोगों को भी स्मिथ की जांबाजी पर गर्व है। स्मिथ की सोसाइटी में आज सुबह से चल रही गहमा गहमी के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश।
6: हम इस वक्त स्वास्तिक बिल्डिंग में हैं, जहां पर पायलट स्मिथ अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन कुछ सालों से दुबई में रहते थे, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो यहीं पर रहते थे। हमारे साथ हैं बिल्डिंग के चेयरमैन मकवाना जी और उनके पिता के मित्र लक्ष्मीकांत जोशी जी, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, पहले तो आपसे जानेंगे, परिवार को आप कैसे जानते हैं और स्मिथ को कैसे जानते हैं और कैसा स्वभाव था स्मिथ?
7: मैं और उपेन भाई पहले से ही एक बाजू बाजू में रहते थे, घाटकोपर में। यहाँ भी लाने वाला भी मैं यही हूँ, मैं ही हूँ उनको। तो हम लोग बहुत पुराना दोस्त थे, लंगोटिया जैसे हम बोलते हैं, एकदम छोटे से तभी से दोस्त थे हम लोग।
6: स्मिथ का नेचर कैसा था? आप उसको
8: स्माइली, एकदम अच्छा, एकदम सीधा, दूसरों को मदद करने वाला। जब कभी देखेगा हाय हेलो करेगा। उसने कहा भाई,
7: भाग के आ जाता है हमारे पास, कुछ भी काम बोलो कर देता है, कुछ भी, एकदम नेचर वाइज एकदम बेस्ट।
8: दुबई में ही रहता है।
7: मिसेज भी ऐसी है स्मिथ की और इनके पिता मामा दोनों एकदम नेचर वाइज सब एकदम
8: में आता रहता है यहाँ।
6: आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी स्मिथ से? और
8: मई जून में आया था बेटी को छोड़ने के लिए, बीवी को छोड़ने के लिए छुट्टियों में।
7: उनका ब्रदर रहता है इधर ही, दूसरा बड़ा ब्रदर है, इधर ही रहते हैं।
6: कल परिवार से बात हुई आपकी इस घटना के बाद? उनके माता पिता से आपकी बात हुई और क्या बात?
7: घर पे ही थे हम लोग उनके, बस सांत्वन दिया, बैठा दिया। बस
6: अच्छा,
8: हम लोगों ने गाड़ी में बिठा दिया उनको,
7: दुबई वाले पहुंची गए होंगे।
6: उन्होंने बताया स्मिथ से क्या बात हुई उनकी या क्या?
8: किसी को बात
7: नहीं हुआ है उनका, कुछ भी बात नहीं। उनको भी थोड़ा मालूम, आधा मालूम नहीं, उनको भी इवनिंग को मालूम पड़ा माँ बाप को।
6: कैसे देखते हैं स्मिथ के इस हीरोइक एक्ट को आप?
8: बहुत ही अच्छी बात है, पहले उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। हमको सबसे ज्यादा खुशी उसकी तबीयत की है, वो तबीयत उसकी ठीक हुई हम लोग खुश, और बाद में उसका गर्व मनाएंगे हम लोग, हम भी उसका सत्कार करेंगे।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात लाल बाग चौराहे के खजाने की।

0: देखिए, गणेश उत्सव हाल ही में संपन्न हुआ, ऐसे में हर साल बप्पा को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा सिर्फ भक्त की अपने आराध्य को लेकर भेंट नहीं, बल्कि उनके चरणों में समर्पित उनके श्रद्धा और भक्ति है। खासतौर से मुंबई में लालबाग चौराहा को चढ़ाया गया चढ़ावा तो हर साल ही सुर्खियां बटोरता ही रहता है, और इस साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए इस बार भी लालबाग के राजा को देश और विदेश के श्रद्धालुओं से 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा चढ़ाया गया है। इसके अलावा लाखों करोड़ों के आभूषण और कीमती वस्तुओं की नीलामी भी लालबाग के राजा के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाती नजर आ रही है।

0: करोड़ों भक्तों की आस्था से सजता है लालबाग के राजा का दरबार। यहाँ हर चढ़ावा बनता है विघ्नहर्ता के प्रति गहरे विश्वास और प्रेम का उपहार। कहते हैं जिस चढ़ावे में भक्त की सच्ची भावना होती है वही बप्पा के दरबार की सबसे अनमोल भेंट होती है। शायद यही सच्ची भावना इस साल भी मुंबई करों की अटूट आस्था का केंद्र लाल बागचा राजा को करोड़ों के चढ़ावे के रूप में नजर आई है। ये बेशकीमती चढ़ावा यकीनन आस्था की एक नई कहानी, एक नई तस्वीर को पेश कर रहा है। बता दें कि लाल बागचा राजा को देश और विदेश के श्रद्धालुओं से 6,11,00,000 रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा इस साल प्राप्त हुआ है, जिनमें बप्पा के चरण स्पर्श की दान पेटी यानी चढ़ावे में 3,53,00,000 से ज्यादा रुपए जमा हुए थे। वहीं रंग पेटी में 2,42,00,000 से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया गया। विसर्जन पेटी में 16,14,000 से ज्यादा चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसके अलावा दर्शन के लिए लगी कतार की पेटियों में भी काफी रकम जमा होने की बात कही गई है। बता दें कि इस अपार नकदी में भारतीय करेंसी के साथ काफी डॉलर भी मिले हैं। चढ़ावे की ये रकम इस साल 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच भक्तों द्वारा अर्पित की गई है। जाहिर है लाल बागचा राजा के चरणों में अर्पित हर भेंट ही श्रद्धा और विश्वास की ही प्रतीक है। तभी तो इस साल आयोजित हुए भव्य गणेशोत्सव के दौरान लाल बागचा राजा को उनके भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया, जिनमें सोने चांदी के आभूषणों की भी नीलामी हुई। 30 सितंबर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हुई इस सार्वजनिक नीलामी में बप्पा के भक्तों ने नीलामी में रखी गई मूल्यवान वस्तुओं पर दिल खोलकर खर्च किया। बप्पा के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषणों की नीलामी के बीच 1 किलो वजन की 24 कैरेट सोने की ईंट का भी ऑक्शन हुआ। 24 कैरेट सोने की ईंट सबसे खास आकर्षणों में शामिल रही। एक अज्ञात भक्त द्वारा अर्पित इस सोने की ईंट की कीमत करीब 1,48,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं एक दूसरे अज्ञात भक्त ने 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम वजनी गणेश प्रतिमा भी अर्पित की। इस गणेश प्रतिमा की कीमत करीब 15,65,000 रुपए है। यहां बता दें कि लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से हर साल भक्तों द्वारा अर्पित कीमती वस्तुओं की नीलामी की जाती रही है, जिसके तहत इस साल भी सभी आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं को लाल बागचा राजा के बेहद खूबसूरत पंडाल में करीने से सजाया भी गया। गणेश भक्तों के लिए की गई इस नीलामी में सोने के कई आभूषणों के साथ सोने और चांदी की कई वस्तुएं रही। इनमें मोदक, चांदी का एक दंत, चांदी की कई गदाएं, सोने और चांदी के बड़े बड़े नायाब हार थे। इसके अलावा मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी, सुंदर फोटो फ्रेम की अनुपम बनावट और सुंदरता भी हर भक्त का मन मोह ले रही थी। यही नहीं, बप्पा की सोने की मूर्ति, क्रिकेट का बैट और 2 बाइक भी इस विशेष नीलामी का आकर्षण का केंद्र बने। बेशक बप्पा के चरणों में सच्ची श्रद्धा का चढ़ावा इस अपार धन दौलत से बढ़कर ही है, मगर फिर भी बीते कुछ सालों में भी भक्तों ने अपनी हैसियत के अनुसार अपने आराध्य के प्रति जैसा प्यार और सम्मान दिखाया उसमें श्रद्धा ही सर्वोपरि रही। साल 2025 में लगभग 5,65,00,000 नकद राशि बप्पा के चरणों में अर्पित की गई। इसमें सोने चांदी की नीलामी से भी करीब 1,65,00,000 की अतिरिक्त कमाई हुई थी। वहीं सोना 4 किलो से अधिक और चांदी लगभग 55 किलो अर्पित की गई। साल 2024 का गणेशोत्सव इस गणेश मंडल के लिए चढ़ावे के लहाज से काफी बड़ा रहा। इसमें 6,25,00,000 की नकद राशि बप्पा के चरणों में अर्पित की गई, जिसमें विसर्जन के बाद तक की कुल जमा राशि भी शामिल थी। खास तौर से इस वर्ष उद्योगपति अनंत अंबानी द्वारा बप्पा को 20 किलो का सोने का मुकुट भी उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इस सोने के मुकुट की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ बताई गई थी। वहीं सोना लगभग 4.25 किलो अर्पित किया गया और चांदी करीब 64 किलो चढ़ाई गई। इससे पहले साल 2023 में भी भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। नकद राशि 5 करोड़ से ज्यादा थी। सोना लगभग 3 किलो और चांदी लगभग 51 किलो बप्पा के चरणों में अर्पित की गई। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मुंबई के लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना, चांदी, नकदी और दूसरी कीमती वस्तुओं का चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। ऐसे में यहां बप्पा के चरणों में रखा गया करोड़ों का चढ़ावा सिर्फ रकम या संपत्ति भर नहीं, बल्कि भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास की तस्वीर भी पेश करता रहा है। और बप्पा के चरणों में अर्पित ये चढ़ावा उनके हर भक्त को दिली सुकून देता आया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। देश के कोने कोने में नवरात्र पर्व की रौनक अभी से ही दिखने लगी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक माँ की प्रतिमाओं का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपको बता दें मुंबई में अलग अलग थीम पर माँ की मूर्तियों को सजाने की तैयारी चल रही है। क्या खास है इस बार मुंबई की दुर्गा पूजा में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे।
2: 11 अक्टूबर से पूरा देश नवरात्रि उत्सव में मग्न हो जाएगा। ऐसे में मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार जिस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है। लेकिन क्या कुछ अपडेट है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मूर्तिकार राजू शिंदे इस समय हमारे साथ हैं। फाइनली गणपति जो है वो बहुत ही अच्छे से बीत गया और अब नवरात्र उत्सव शुरू हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है मूर्ति का काम और क्या कुछ मांग रहे हैं लोग?
3: इस साल का गणेशोत्सव बहुत अच्छा गया और जैसे गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्र का काम चालू हो गया। एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है। 10 दिन में हमें काफ़ी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं, तो अभी काफ़ी कम समय बचा है। गणपति विसर्जन से लेके नवरात्रि तक 15 दिन का काम है और अभी 10 दिन बचे हुए नवरात्रि में, तो काम चल रहा है जोरों में।
2: अच्छा, मतलब जो बड़े बड़े मंडल हैं उन लोगों ने अपने ऑर्डर देने शुरू कर दिया और घर गुरुते भी यही बन रहे होंगे?
3: हाँ, यही बन रहा है सर।
2: अच्छा, इस बार क्या डिमांड है राजू भाई, क्या मांग रहे हैं लोग, किस तरह की देवी, किस तरह का अवतार होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए?
3: इस साल ज़्यादा अष्टपूजा देवी बहुत ज़्यादा है।
2: अष्टपूजा। अच्छा, ओके, तो क्या हाइट का भी इसमें सिलसिला है, क्योंकि गणपति में तो 30 फीट 40 फीट बड़े आसानी से, देवी को लेकर के भी इस तरह की ऊंची मूर्तियों का बनाने का काम है?
3: मुंबई ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है और वो ट्रेंड अभी देवी में भी चालू हो गया है।
2: अच्छा, अगर जैसे हमने लाल बाग के राजा, गणेश गल्ली, तेजुका, चिंतामणि नाम सुना है, देवी के अगर मंडलों की बात करें तो कितना प्रेशर है यहाँ पे, कौन से वो बड़े मंडल हैं जो बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं जिसकी मूर्ति आप बनाते हैं?
3: कई सारे मंडल है, मंडलों का नाम नहीं ले सकता, बट मुंबई के गिनीचुने मंडल यहाँ पे है, बहुत सारे नामांतर मंडल यहाँ पे है, उनका मूर्तियों काम चल रहा है।
2: अच्छा, लोगों ने ट्रैवली वगैरह सब रखना यहाँ शुरू कर दिया?
3: यस, ट्रॉली आने शुरू हो गई है।
2: अच्छा, क्या इस बार भी जैसे गणपति समय के पहले ही लोग लेके गए थे, वैसे माता को भी ले जाएंगे?
3: हाँ, 3 से 4 तारीख से आगमन शुरू हो जाएंगे।
1: तो चलिए, हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एशियन गेम्स में आज के पदक वीरों से कराएंगे आपकी मुलाकात।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल। कैप्टन स्मिथ मछार को इजराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में हो रही स्मिथ की तारीफ। काशी में पायलट स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान, स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। उत्तर प्रदेश सरकार करेगी नींव करौली बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास, फिरोजाबाद जिले में टूडला के पास बाबा का जन्म स्थान, साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था उनका जन्म। मुंबई के लालबाग चौराहा को मिले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की नीलामी, दान में मिले सोने की ईंट, 2206 करोड़ कैश, गणेश उत्सव के दौरान भक्तों ने दिया दान। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट।
3: बात खेलों की दुनिया से आई गुड न्यूज की कर लेते हैं। जापान में चल रहे एशियन गेम्स में आज भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी है। स्क्वैश में भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सेलिंग में पुरुषों की स्किप इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं आर्चरी में गणेश मणि ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल।
4: बिल्कुल, आपको बता दें, वहीं क्रिकेट की अगर बात करें तो भारत ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में 124 रनों से हराकर 3 अक्टूबर को होने वाले गोल्ड मेडल मैच के लिए फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वहीं हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से मात दी। गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला अब 3 अक्टूबर को होगा।
5: एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का दबदबा कायम है। प्रतियोगिता के 12वें दिन भारतीय तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया। भारतीय खिलाड़ियों ने आर्चरी, स्क्वैश और सेलिंग में अपना लोहा मनवाते हुए देश को मेडल दिलवाया। 12वें दिन तीरंदाजी में भारतीय टीम का जलवा देखने को मिला। आर्चरी के कंपाउंड मुकाबले में गणेश मणि ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। निशानेबाजी के बाद स्क्वैश में भारत का दम देखने को मिला। स्क्वैश सिंगल्स में अनुभवी सौरव घोषाल ने फाइनल तक का सफर तय किया और देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा पुरुषों की स्कीफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की जोड़ी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल को अपने नाम कर लिया। ये मौजूदा एशियाई खेलों की सीलिंग स्पर्धा में भारत का पहला पदक है। इसके अलावा बैडमिंटन में भी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। HS प्रणॉय ने पुरुष एकल में सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। एशियन गेम्स क्रिकेट में भी भारत का जलवा देखने को मिला। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रन से मात देकर फाइनल में जगह पक्की कर दी। अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के 12वें दिन इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय दल एशियन गेम्स में अपने अब तक के सबसे बड़े मेडल टैली की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड टुडे।
1: और अब बात वनडे में भारत की ऐतिहासिक जीत की। तो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कल रनों की जबरदस्त बारिश हुई। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में दोनों ओर से कुल 811 रन बनाए चार शतक और एक दोहरा शतक भी आया और इस जबरदस्त मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी।
6: बिल्कुल देखिए, वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने 405 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था। इससे पहले भारत कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। इस महाविजय के नायक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने वनडे में अपना दूसरा दोहरा शतक जमाया।
7: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 8 विकेट से मिली जीत सिर्फ जीत नहीं, महाविजय है। एक ऐसी महाजीत जिसका स्वाद टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट इतिहास के 52 साल में पहली बार चखा है। बुधवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रनों की बरसात हुई। सीरीज बचाने के लिए वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने 405 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मेहमान टीम की ओर से एक दो नहीं तीन तीन शतक आए। पहले जॉन कैंपबेल, फिर शाई होप और उसके बाद आमिर जांगू ने भी शतक लगाया। इससे पहले भारत कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सका था। जाहिर है चुनौती कड़ी थी, इसलिए मोर्चा संभाला खुद कप्तान शुभमन गिल ने। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी हुई। इसी तूफानी पार्टनरशिप के दम पर भारत ने महज 26 ओवर में 250 का आंकड़ा पार कर लिया। रोहित शर्मा 75 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हुए। हिटमैन ने इस शानदार पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं शुभमन गिल दूसरे छोर पर डटे रहे, उन्होंने महज 133 गेंदों पर 223 रन की नॉट आउट पारी खेली और 26 चौके और 8 छक्के जमाए। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के आतिशी तेवर ऐसे थे कि गुवाहाटी की बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज पानी मांग रहे थे और टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से 43 ओवर और 3 गेंदों में 405 रन का विशाल लक्ष्य भेद दिया। खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद टीम इंडिया वनडे में ये कारनामा करने वाली दूसरी टीम बन गई है।
8: बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटेंस था मैच। हम लोग आए थे विराट कोहली के सेंचुरी के लिए और रोहित का भी बहुत ही बड़े हम लोग फैन है। जो भी हुआ, विराट का तो सेंचुरी नहीं हुआ लेकिन रोहित शर्मा का सेंचुरी हुआ, इसी के साथ शुभमन गिल का 200 हुआ। पूरा बहुत इंटेंस मैच था, बहुत अच्छा लगा मैच देख के हम लोग को।
9: शुभमन गिल का डबल सेंचुरी बहुत अच्छा लगा, ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा था। 255 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप गिल और रोहित शर्मा का बहुत बढ़िया,
10: बहुत अच्छे ही खेला है, यही है, फिर अच्छा लगा आज का मैच।
7: इससे पहले भारत का सबसे सफल रन चेज 360 रन का था, जो उसने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। जाहिर है इस महाविजय के नायक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने वनडे में अपना दूसरा दोहरा शतक जमाया। खास बात ये भी है कि 2022 के बाद से शुभमन गिल को रिकॉर्ड 10वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और ट्रेविस हेड जैसे दिग्गजों को पछाड़ा, जिन्होंने 9 बार ये मुकाम हासिल किया। इसी महाविजय के साथ भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 14वीं वनडे सीरीज जीत हासिल की। बायलेटरल वनडे सीरीज में किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा वनडे जीतने का कीर्तिमान भी टीम इंडिया ने हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार यामी की नई नवेली की पहली झलक आपको दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: तो भाई यामी गौतम की नई नवेली का ट्रेलर रिलीज हुआ है,
6: बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। यामी ने कुछ अलग हटके किया है क्योंकि वो सीरियस रोल्स हमेशा करती हुई नजर आती है, लेकिन इसमें कॉमेडी हॉरर जैसा नजर आ रहा है, फैमिली ड्रामा है और बहुत ज्यादा देखिए इसमें नजर भी आ रहा है कि फैमिली के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है और फिर कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है।
4: मैंने तो मुझे बस इसी का डायलॉग याद है, भाभी चुड़ैल है भाभी चुड़ैल है, वो ये बोलता रहता है, बस वही मुझे ध्यान आता है और इसे थप्पड़ पड़ता है तेज का कि भाभी कैसे चुड़ैल हो सकती है। एंड बाकी फिर यामी गौतम का आना दिखाता है एंट्री और वो मुझे वो मधुलिका वाली याद आ जाती है, विद्या बालन
1: बीच में हाँ। वो जो ताला दिख रहा है ना हाँ। उससे मुझे वही याद आ रहा है कि भूल भुलैया जैसी भूल थोड़ी स्त्री जैसी है, आपने देखी है?
6: थोड़ी थोड़ी आपको स्टोरी लाइन वैसी नजर आएगी लेकिन कुछ थोड़ा सा हटके है क्योंकि यामी गौतम की अपनी एक्टिंग है और वो फैमिली ड्रामा एक नजर आएगा तो वो एक अलग हटके जॉनर है।
3: तो एक बार फिर से एक ऐसी कहानी दस्तक देने जा रही है जिसमें रोमांस रिश्ते और ड्रामा भी है और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इवेंट में सितारों का ग्लैमरस अंदाज भी दिखा, खूब मस्ती हुई लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा यामी गौतम की हुई।

0: लॉन्च का अंदाज नई नवेली दुल्हन का, ढोल ताशे गाजे बाजे के साथ दुल्हन के लिबास में यामी गौतम की धमाकेदार एंट्री। बॉलीवुड की फिल्मों के ज्वेलर लॉन्च इवेंट को नई नई तरकीबों से ग्रैंड बनाना आज के जमाने का शिगुफा बन चुका है। लेकिन जिस निराले अंदाज में यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, वो किसी नजीर से कम नहीं। बुधवार को मुंबई में हुए इस इवेंट में यामी गौतम ने पारंपरिक अंदाज के साथ किसी नई नवेली दुल्हन की तरह मोटर बग्घी पर धमाकेदार एंट्री की, तो उनका स्वागत भी दुल्हन की तरह ही गाजे बाजे के साथ हुआ। यामी गौतम के साथ को एक्टर आदिनाथ कोठारे, प्रोड्यूसर आनंद एल राय और फिल्म की पूरी टीम रेड कार्पेट पर नजर आई। इवेंट के दौरान मंच की कमान कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने संभाली और अपने चिर परिचित अंदाज में स्टार कास्ट के साथ मिलकर बातचीत की। नई नवेली दुल्हन एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें यामी गौतम मोहिनी का किरदार निभा रही है। शादी के बाद जब वो ससुराल आती है तो कोई उसे डायन समझता है, तो कोई असीम शक्तियों की मालकिन जो अपनी अदृश्य शक्तियों से घर वालों की रक्षा करती नजर आती है।
1: पंडू, बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
2: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी।
3: इसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
0: यामी गौतम इस फिल्म में अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली है। नई नवेली के ट्रेलर को देखकर सवाल उठता है कि भाभी सच में डायन है या फिर छुपा है कोई ऐसा राज जो पूरी कहानी बदल देगा।
4: क्या बिल्कुल घुइया है क्या हम?
5: जो अच्छी अच्छी बातें हुई ना दादी, ये सब तो घर के अंदर हुई ना। असली खून खराबा तो घर के बाहर हुआ था दादी।
0: इस रात से पर्दा उठेगा 16 अक्टूबर को यानी दशहरे के मौके पर, जब नई नवेली सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अरे यार, तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना। लो आ गई डायन।
7: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: देखिये देश में मॉनसून की विदाई के साथ ही जंगलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। करीब 3 महीनों तक सैलानियों से दूर रहे देश के ज्यादातर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अब फिर से खुल गए हैं। जंगल सफारी पर जाने वाले लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
7: बिल्कुल, लोग बहुत खुश हैं और राजस्थान के रणथंभौर से लेकर सरिस्का तक और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से लेकर बांधवगढ़ तक हर जगह जंगल सफारी का नया सीजन जो है वो शुरू हो गया है। कहीं सैलानियों को पहले ही दिन बाघ के दीदार हुआ, तो कहीं जंगल के दूसरे वन्य जीवों को करीब से देखने की उम्मीद में पर्यटक सफारी पर निकल पड़े हैं।

0: लंबे इंतजार के बाद जंगलों में फिर रौनक लौट आई है। मानसून की विदाई के साथ देश की ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे सैलानियों के लिए खुल गए हैं। कहीं जंगल सफारी का रोमांच है तो कहीं वन्य जीवों की एक झलक पाने की बेकरारी, यानी जंगल फिर गुलजार है। और जंगल की इसी रौनक के बीच राजस्थान की सवाई माधोपुर से आई तस्वीरें रोमांच बढ़ाने वाली है। रणथंभौर घूमने पहुंचे सैलानियों को सफारी की पहली ही पारी में बाघ के दीदार हो गए। जंगल के बीच बाघ को अठखेलिया करते देख सैलानियों का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसी ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया तो कोई बस टकटकी लगाए जंगल के राजा को निहारता रहा। नए सीजन के पहले दिन राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन हुआ और फिर उन्हें जंगल सफारी के लिए रवाना किया गया। लंबे इंतजार के बाद जंगल में लौटे इस रोमांच को लेकर सैलानियों में भी खासा उत्साह नजर आया।
1: इच्छा तो है कि टाइगर साइटिंग हो, काफी नाम सुना है इस जोन का, तो उसी उम्मीद के साथ आए हैं।
2: सुबह ऑनलाइन कराई थी,
1: ऑनलाइन हमने बुकिंग कराई थी और नेट पे काफी थोड़ी रिसर्च भी करी थी, तो बताया गया था कि ये जोन काफी फेमस है टाइगर साइटिंग के लिए। तो इत्तेफाक से पहली आज पहला दिन है, तो हमें पता नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पहले दिन कब होगा, लेकिन पहला दिन है तो उम्मीद है कि कुछ होना चाहिए, साइटिंग होनी चाहिए।
0: मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी मॉनसून ब्रेक के बाद जंगल सफारी फिर शुरू हो गई है। गेट खुलते ही सैलानी जंगल की पगडंडियों पर निकल पड़े हैं।
3: बांधवगढ़ में मैं आ रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से, और बांधवगढ़ का मेरा जो पहला बाघ मैंने देखा था बिल्कुल देखा था, और लगभग 15-20 साल से रेगुलर आ रहा हूँ।
4: हर साल यहाँ पर आते हैं, एवरी सीजन आते हैं। बांधवगढ़ में जो आपकी टाइगर की साइटिंग है बहुत अच्छी होती है, टाइगर आपको मिलता है काफी देर तक, उसको देखने को भी मिलता है, टाइगर का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। पहले समय पता भी चल जाता है कि कहाँ आने वाला है टाइगर, दैट्स वी चूज द बांधवगढ़।
0: इसी तरह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी जंगल का सन्नाटा टूटने लगा है। सतपुरा टाइगर रिजर्व में 3 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर चहलकदमी शुरू हो गई है। गेट खुलते ही जंगल सफारी के लिए सैलानियों की कतार लग गई। यहां पहुंचे सैलानियों का गुलाब का फूल देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन स्वागत की खुशी के साथ हर किसी की नजरें जंगल की पगडंडियों पर टिकी है। इंतजार है तो बस उस पल का, जब घने जंगल के बीच टाइगर या किसी दूसरे वन्य जीव की एक झलक दिखाई दे जाए। अलवर से हिमांशु शर्मा, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कोई न्यूज टुडे।
5: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
10: शारदीय नवरात्रि को लेकर झांसी में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण पिछले 34 साल से बंगाल से आए कारीगर बना रहे हैं प्रतिमाएं। बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों में भारी डिमांड। यूपी सरकार करेगी नेब करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रही है स्मिथ की तारीफ। काशी में पायलट स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान। स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। पाकिस्तान को दी 4-3 से मात। कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मैंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका को 124 रन से हराया। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की।
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तानी की वीरता और साहस की, वो साहस जिसके दम पर आज 170 से ज्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत के एक लाल की वो वीरता जिसके बूते आज दर्जनों परिवार उजड़ने से बच गए। संभवतः ऐसे ही वीरों के लिए भारत के एक और लाल ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और वाकई हिंदुस्तान के इस जांबाज बेटे ने कांटों में नहीं बल्कि जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में राह बनाकर दिखा दी जिंदगी के लिए। देखिए, फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव जा रहे विमान में ओमान की पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला कर दिया। विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश कराना हो सकता है। हालांकि हमले को असली मकसद अभी तक जांच के दायरे में है और फिर निकल के आएगा कि आखिर सही मकसद था क्या। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की असाधारण वीरता ने टाल दिया।

0: when we are up there and if something happens, you know, who's going to save you?
1: कोई डेढ़ साल पहले कैप्टन स्मिथ मछार ने ये सवाल पूछा था, When you are up there, who is going to save you?
0: When we are up there and if something happens, you know, who's going to save you?
1: तब किसे मालूम था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब कैप्टन स्मिथ खुद ही वो सेवियर, वो रक्षक बन जाएंगे, वो रक्षक जो आसमान में खुद लहूलुहान होकर भी दर्जनों फ्लाइट पैसेंजर्स को अपने हौसले के दम पर सुरक्षित जमीन पर उतार लाएगा।
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? You'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
1: उड़ान के दौरान फ्लाइट के कैप्टन और क्रू पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कैप्टन स्मिथ ने ये बात कही थी। आज उसी भरोसे को कैप्टन स्मिथ ने कई गुना पक्का कर दिया है। अपने साहस और हौसले से कैप्टन स्मिथ ने वो कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कैप्टन स्मिथ के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
2: And this young man just acts with incredible heroism and saves the day. Along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ मछार ने घायल होते हुए भी आसमान में वो हिम्मत दिखाई जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाला जा सका। स्मिथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और क्रू सबकी जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। कैप्टन की हालत गंभीर थी, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। यात्री उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछार सच्चे मायने में एक नायक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने उसका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछार ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। वे सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और नेतन्याहू ही क्यों, बल्कि कैप्टन स्मिथ ने जो किया है उसके बाद सारा इजराइल उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। इजरायली टीवी कमेंटेटर इनाओ अविज़मेर ने कैप्टन स्मिथ को वो शानदार हीरो बताया है जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचाया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को धन्यवाद दिया है।
4: तो I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. And he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he's in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
1: स्मिथ की बहादुरी से 150 से ज्यादा इसराइलियों की जान बची है। सो इसराइली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्मिथ की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं।
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
1: आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मिथ मछार का फिलहाल सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है। स्मिथ की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: दुनिया उसके साहस को सलाम कर रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मचार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में आज विशेष महापूजा की गई। टेल अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम करके 170 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मचार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना जारी और अविरल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। देश के साथ गुड न्यूज टुडे की भी यही कामना है कि इस जामाज युवा को भगवान शिव अपनी कृपा से जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे। भारतीय पायलट स्मिथ मचार को आज दुनिया सलाम कर रही है, देश में भी उनके लिए आज सराहना और शुभकामनाएं लगातार संदेश से गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्टन स्मिथ को अद्भुत साहस और दिलेरी को सलाम किया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं पर यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ मचार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
1: कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
0: तो कैप्टन की तारीफ चारों ओर हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई की टेल अवीव जा रही फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और कब कितने मुश्किल हालात से गुजरकर कैप्टन स्मिथ ने ये कारनामा करके दिखाया। ये मामला कल यानी 30 सितंबर का है भारतीय समय के अनुसार। अगर हम देखें तो, अगर समझने की कोशिश करें, सुबह 8:35 पर दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 टेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। सुबह 10:51 पर अचानक विमान की ऊंचाई में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में विमान करीब 14,000 फीट नीचे आ जाता है। इसी दौरान कॉकपिट में बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ओमानी को पायलट भारतीय कप्तान स्मिथ मचार पर चाकू से हमला कर देता है। कप्तान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यात्रियों में से यानिव, हायुन और दूसरे यात्री कॉकपिट में पहुंचते हैं और हमलावर को काबू कर लेते हैं। विमान में मौजूद डॉक्टर श्वेता

0: विमान सऊदी अरब के तबुक एटीसी से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। दोपहर 12:15 पर विमान तबुक में सुरक्षित उतर जाता है। इसके बाद आरोपी को पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और 9:04 पर यात्रियों को लेकर रिप्लेसमेंट फ्लाइट टेल अवीव पहुंचती है। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, उस कॉकपिट में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे हुई, ये आपको समझा सके इसके लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली के द्वारका में मौजूद चार्ली फॉक्सटॉट एकेडमी पहुंचे। जीएनटी संवाददाता ने सिमुलेटर के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कॉकपिट के अंदर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं।
1: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है। इस वक्त
2: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं।
1: जी
2: जी,
1: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा?
2: So, उन्होंने यहां से ऑल्टीट्यूड चेंज कर लिया होगा। सपोज आई हैव चेंज्ड इट टू 20,000 और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
1: नीचे जाना
2: स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहां से डिसेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हम यहां से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया और फिर यहां से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा,
1: नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया?
2: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
1: जी।
2: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूं तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा, स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूं तो और ज्यादा स्पीड से
1: किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं अभी वहां रफ्तार बढ़
2: वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है अभी
1: जी।
2: मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट की रेट से बढ़ रहा है,
1: तो ये
2: और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी
1: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी।
2: ये देखो अभी 27,200, 100 कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंड कर रहे हैं,
1: और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने का, कई बार ऊपर नीचे
2: ऊपर नीचे हुआ। हाँ जी,
1: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
2: उस वक्त? यही है, कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट कैप्टन जो है, फर्स्ट ऑफिसर, उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, उसको चेंज करके फिर से उसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करने की कोशिश कर,
1: लगातार कई बार ये दोनों के
2: बीच में लड़ाई हो रही है
1: जी। फिजिकल अटैक के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
2: नहीं, वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में।
1: चाकू
2: छोटा सा भी नहीं है, वो पूरा
1: ब्लेड
2: की होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
1: कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी शार्क ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
1: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
2: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
1: और वो किस काम के लिए?
2: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
1: ओके, तो मतलब इस बहस के बाद, मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है, इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा, वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा, और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है। एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है

0: जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर। ये एक पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। पूरा खेल अंदर क्या हुआ वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे फ्लाइट रिकॉर्डर्स।
1: तो आज दुनिया जो है कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर रही है। इसी बीच आपको बताते चलें कि इतिहास में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पायलट की असाधारण सूझबूझ, शांत दिमाग, बेहतरीन कौशल और दिलेरी ने बड़े हादसों को टाल दिया, दर्जनों लोगों की जान बचाई, निश्चित तबाही को बड़ी कामयाबी या चमत्कार में तब्दील कर दिया। देखिए ऐसा ही एक घटना 15 जनवरी 2009 को घटी थी जब यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की ऐतिहासिक लैंडिंग हडसन नदी पर करवाई गई थी। एयरबस A320 विमान ने न्यूयॉर्क के ला ग्वाडिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियाई गीस पक्षियों का एक पूरा झुंड विमान के दोनों इंजनों से टकरा गया। इसके कारण दोनों इंजनों ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। विमान बिना किसी इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि विमान के कैप्टन चेस्ली और फर्स्ट ऑफिसर जेफ के पास किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लौटने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं बचा था। तब कैप्टन सली ने तुरंत भांप लिया कि अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो विमान शहर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान की वाटर लैंडिंग यानी पानी पर लैंडिंग का बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने विमान को पानी की सतह पर इतनी सटीकता से उतारा कि विमान के टुकड़े नहीं हुए। हादसे के चंद मिनटों के भीतर ही नावों और रेस्क्यू टीमों की मदद से विमान में सवार सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये आधुनिक विमान इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और साहसिक लैंडिंग मानी जाती है। इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 से जुड़ा हादसा। यह घटना विमानन इतिहास में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। 19 जुलाई 1989 को DC-10 विमान अमेरिका के डेनवर से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ान भरा था। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसकी टेल में लगे इंजन का पंखा फट गया। इस धमाके से विमान के सभी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। एरोनॉटिक्स के नियमों के अनुसार अगर हम देखें तो बिना हाइड्रोलिक के विमान के पंखों यानी फ्लैप्स को हिलाना नामुमकिन हो जाता है, जिसका मतलब यह था कि विमान पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो चुका था और उसका क्रैश होना तय था। कैप्टन अल हैंस और उनके क्रू ने हार नहीं मानी। विमान में एक यात्री के रूप में सफर कर रहे ट्रेनर पायलट डेनिस फिच भी मदद के लिए कॉकपिट में आ गए। इस टीम ने एक अनोखा तरीका निकाला, उन्होंने विमान को मोड़ने और उसकी ऊंचाई नियंत्रित करने के लिए केवल बचे हुए 2 इंजनों की थ्रॉटल पावर का इस्तेमाल किया और वे किसी तरह विमान को आयोवा से सू सिटी एयरपोर्ट तक का ले जाने में कामयाब रहे। लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वो पलट गया जिससे उसमें आग लग गई, लेकिन क्रू की इस सूझबूझ के बिना विमान सीधे शहर या जमीन पर टकरा जाता। जिनकी इस बहादुरी की बदौलत विमान में सवार 296 लोगों में से 185 लोगों की जान बच भी गई। करते हैं उस विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि एक विमान हवा में एक कन्वर्टेबल कार की तरह खुल गया था। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि एक बोइंग 737 विमान अमेरिका के हवाई द्वीप के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेटल फेटिक के कारण अचानक विमान की कॉकपिट के ठीक पीछे की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ गया। तेज हवा के दबाव के कारण यात्रियों के सिर के ऊपर का हिस्सा सीधे आसमान में खुला था। हवा का बहाव बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां के दबाव में बाहर बह गई थी। तब कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विमान तेज हवा के दबाव में बीच से 2 टुकड़ों में टूट सकता था। इसके अलावा यात्रियों और क्रू के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पायलटों ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की, विमान को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि इतनी भीषण तबाही और कॉकपिट के पीछे का वो हिस्सा पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद पायलटों ने सूझबूझ से विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया और इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा विमान में सवार बाकी सभी 94 यात्री और क्रू सुरक्षित बच गए। तो बहादुर के इन किस्सों के बीच ही फ्लाई दुबई हादसे से जुड़ी एक खबर है कि इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्ज़ोग ने फ्लाई दुबई फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले 4 इसराइली नागरिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी देने का ऐलान कर दिया है। उसमें देखिए सबसे ज्यादा चर्चा यानिव हायून की है जो पेशे से प्लमर हैं। वहीं पर चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में घुसे हमलावर को चोक होल्ड में लिया और नीचे गिरते विमान के कंट्रोल्स को संभाल कर उसे सीधा किया। यानी वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो विमान उड़ाने के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन टेलीविजन पर आए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने सीखा था कि जब विमान नीचे गिर रहा हो तो स्टीयरिंग लीवर्स या योक को पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचकर ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए यानिव की बहादुरी और सूझबूझ की चिंता आज हर कोई कर रहा है। यानिव के अलावा ज़्विका मैंस को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ज़्विका मैंस ने यानिव हायून के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर ओमान मूल के को पायलट को दबोचने और उसे पूरी तरीके से काबू करने में मदद की थी। इसके अलावा हमलावर को काबू करने में मदद करने वाले 2 और यात्री असाफ रजवन और डॉक्टर शोटा को भी यह सम्मान दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए वुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: शारदीय नवरात्रि को लेकर झांसी में माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण पिछले 34 साल से बंगाल से आए कारीगर बना रहे हैं प्रतिमाएं। बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों में भारी डिमांड। यूपी सरकार करेगी नीब करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्मस्थल। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इजराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रही है स्मिथ की तारीफ। काशी में पायलट स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान। स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटकू ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात। कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मैंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: कैप्टन स्मिथ को इजराइल करेगा सम्मानित, इजराइल की राजदूत ने दी जानकारी। मुंबई में स्मिथ मच्छार के घर के बाहर लगा बधाई देने वालों का तांता, हाथों में कैप्टन की फोटो लेकर लोगों ने मनाया जश्न। कैप्टन मच्छार के घर के बाहर लगा लोगों का तांता, लोगों ने खुशी से कहा हमें कैप्टन स्मिथ पर गर्व है। कैप्टन मच्छार की जल्द स्वास्थ्य ठीक होने की कामना करने के साथ वाराणसी में पूजा अर्चना। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में पहुंचे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की बहादुरी की दुनिया मुरीद, इजराइल और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने तारीफ की। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्लाइट के यात्रियों से की मुलाकात, भारतीय पायलट को बताया असली हीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की तारीफ की, ट्रंप ने स्मिथ को बताया हीरो। फ्लाइट कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान, 180 यात्रियों के लिए बने देवदूत। फ्लाइट दुबई की फ्लाइट में कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दिखाई बहादुरी, गंभीर चोट लगने के बावजूद विमान को संभाला। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 के अंतर से हरा दिया, फाइनल में जगह पक्की। अब 3 अक्टूबर को मलेशिया और साउथ कोरिया की टीम के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल्स मुकाबले में विजेता टीम से फाइनल मुकाबला खेलेगा भारत। सेप कटकराव में भारत ने पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप ए के मुकाबले में वियतनाम को 2-0 से हराया। एशियाई गेम्स के सेमीफाइनल्स में मैन्स स्क्वैश में भारत की ब्रॉन्ज गोल्ड के लिए जगह पक्की। एशियन गेम्स मैन्स क्रिकेट फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हरा दिया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच। मुंबई के लालबाग चौराहा को मिली करोड़ों रुपए के दान और कीमती आभूषणों की सौगात। दान में बप्पा को मिली 1 किलो 24 कैरेट सोने की ईंट जिसकी कीमत करीब 1,48,00,000। बप्पा को दान में मिली बाइक की भी हुई नीलामी, सोने की बप्पा की 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भी भेंट की गई जिसमें कीमत 15,65,000। नीलामी में सोने के कई आभूषण, मोदक, चांदी की कदा, क्रिकेट बैट भी शामिल है। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अलग अलग समाज कल्याण के कामों में किया जाएगा। अंतिम चरण में हेमकुंड साहिब यात्रा, 10 दिन शेष, अभी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बीच अब तक का लगभग 3,60,000 श्रद्धालु पहुंचे। 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं हेमकुंड साहिब के कपाट, अगले 9 दिनों में भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। सीकर दौरे पर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाकाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ तेज, बाबा के भक्तों की सुविधा का ख्याल। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। पूर्व वर्धमान में कलाकार दिनरात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हुए। पूर्व वर्धमान में मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने का भी काम तेज, अंतिम चरण में पंडाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई प्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र हुआ शुरू, पहले ही दिन 50 जिप्सी पहुंचे सैलानी। फूलों से सजा पन्ना टाइगर रिजर्व, सैलानियों का भी फूल देखकर स्वागत, पहनाई गई फूल मालाएं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का रोमांच शुरू, विधिवत पूजा और रिबन काटकर पर्यटन सीजन का शुभारंभ हुआ। जंगल सफारी के पहले ही दिन सैलानियों ने किया बाघों के पूरे परिवार का दीदार, पर्यटकों में दी खुशी। तीन महीने बाद आज से रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला। पहले ही दिन पहुंचे सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक। तिलक माला से पर्यटकों का किया गया स्वागत। राजस्थानी अंदाज में स्वागत के साथ लोक नृत्य और संगीत ने माहौल को बनाया खास। रंगोली और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच सफारी वाहनों को जंगल के लिए किया गया रवाना। रणथंभौर नेशनल पार्क में सैलानियों ने किया बाघ का दीदार। बाघ की अठकेलियों को देखकर सैलानी खास रोमांचित नजर आए। रणथंभौर के पर्यटन सीजन के पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी सफारी के लिए पहुंचे। पर्यटकों के लिए तीन महीने बाद खुल गया कान्हा टाइगर रिजर्व। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गगन नारंग और ओलंपियन खिलाड़ी एलाफेनिल वेलारेनवीन ने भी दिखाई हरी झंडी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने सैलानियों को दिलाई वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण करने की शपथ। तीन महीने बाद आज से सरिस्का कुंभलगढ़ विषधारी मुकुंदरा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला। सफारी में पर्यटकों का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों से पर्यटकों ने जंगल में प्रवेश किया। टाइगर देखने के लिए सैलानियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सरिस्का में सफारी के लिए 35 से ज्यादा कंटेनर और जिप्सी तैनात। मध्य प्रदेश को मरिया में लगा पर्यटकों का तांता। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फिर से शुरू हुई जंगल सफारी। पूजा पाठ के बाद नेशनल पार्क का शुभारंभ। जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। 92 दिन बाद फिर हुआ गुलजार। नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फूलमाला और तिलक से हुए सैलानियों का भव्य स्वागत। जानवरों के गेटअप में दिखा सफारी करने। पहले दिन 154 पर्यटकों ने कराई ऑनलाइन बुकिंग। दिल्ली में दिवाली के जश्न की तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की बिक्री की दी मंजूरी। पटाखों को फोड़ने के समय को लेकर भी अभी आ सकते हैं निर्देश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ADCP स्वतंत्र कुमार सिंह, ACP कुलदीप कुमार समेत 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले 87 इंटरसेप्टर वाहन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शामिल हुए। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों ने चलाया स्वच्छता अभियान। रायपुर में स्टेशन मास्टर की तत्परता से बची महिला की जान। चलती ट्रेन के सामने कूदने जा रही थी महिला। बिहार के छपरा में बाढ़ प्रभावित 22 पंचायतों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साथ ही पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। दिल्ली NCR में आज से ईंधन भराने के लिए वैध PUC जरूरी है। CAQM ने दिए सख्त निर्देश। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने को लेकर उठाया गया कदम। स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी प्रदूषण पर कंट्रोल की कोशिश। दिल्ली की तर्ज पर अपनाया गया नो सर्टिफिकेट नो फ्यूल फॉर्मूला। दिल्ली में स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लगाई झाड़ू। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए पौधे। दिल्ली में स्वच्छता अभियान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लगाए पौधे। लोगों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत एक घंटा एक दिन के एक साथ क्षमता। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाई झाड़ू। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जल स्तर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाव परिचालन पर लगी रोक। गोंडा में लगातार बढ़ रहा है घाघरा नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से 23 गांव में बाढ़, 33,000 लोग प्रभावित। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। पटना में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी, कई घाट पानी में जलमग्न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मरीन ड्राइव पहुंचकर बाढ़ का जायजा लिया। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। सरदार सरोवर डैम पर सातवीं बार 138.68 मीटर पहुंचा जलस्तर। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना हुआ रिलीज, 16 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक रिलीज। फिल्म प्रेम कीटाणु की एडवांस बुकिंग शुरू, कल फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कल रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 3, रिलीज से पहले ही कमा डाले करीब 20 करोड़। फिल्म स्त्री 3 की टली रिलीज डेट 2027 के बदले 2028 में होगी। फिल्म एंटनी में सनी देओल के साथ साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका आएंगी नजर। यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर हुआ रिलीज, एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर। करण जौहर ने किया ऐलान, 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कॉफी विद करण का नौवां सीजन। 17 साल बाद पालकी की फिल्म में आएंगी नजर विद्या बालन। हनुमान अंश पर बरस रही है सीता राम की कृपा, 55वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 410 करोड़ से ज्यादा की कमाई। पेरिस फैशन वीक के दौरान रनवे पर दिखा फैशन का जलवा, फेमस ब्रिटिश फैशन डिजाइनर स्टेला ने पेश की अपनी कलेक्शन। मैकार्टनी की ये नई फैशन कलेक्शन ओशन इंस्पायर्ड थीम पर आयोजित। मॉडल्स लोराइज ट्राउजर, बड़े बबल हेम वाले टॉप, हल्के पारदर्शी ब्लेजर में नजर आए। मॉडल्स के हाथ में पारदर्शी हैंडबैग, जो लेदर के बजाय अंगूर के बचे हुए हिस्सों से तैयार किए जाते हैं। मैकार्टनी का ब्रांड लेदर का इस्तेमाल ना करने पर जोर देता है। चोंकिंग में 2026 हॉटपॉट फूड कार्निवल हुआ शुरू, 10 मीटर चौड़े विशाल हॉटपॉट में लोगों ने सीधा साथ खाना खाया। चोंकिंग में नदी किनारे 270 से ज्यादा हॉटपॉट टेबल लगाई गई। वैसियासी यांगत्से रिवर ब्रिज पर 10 मीटर का विशाल हॉटपॉट लगाया गया, नजारा देखकर लोगों ने मंत्रमुग्ध। फूड कार्निवल में दसियों हजार लोगों ने मिलकर हॉटपॉट का मजा लूटा। सर्विस कंजप्शन सीजन के तहत खास आयोजन किया गया, नदी किनारे 1.2 किलोमीटर लंबी जहाज पर हॉटपॉट फेस्टिवल। नहरों में जगमगाती नावों ने 2026 लैंटन बोटिंग शो की शुरुआत कर दी। जियांगसू के प्राचीन जल शहर में लालटेन से सजी नावें, नहरों से गुजरी रोशनी और पानी का नजारा अद्भुत। जोंगजुआंग में नावें पानी पर चली और लालटेन लहरों पर चमकती रही। कार्यक्रम में स्थानीय विरासत और पारंपरिक लालटेन कला का खास अंदाज में पेश। झोजुआंग में अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए अंदाज में पेश किया, लैंटन बोटिंग शो ने यहां सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: योगी राज में हिंदुओं पर बढ़े हमले, यूपी में हिंदू लड़के पर हमले का सच क्या, तूफान में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जहाज बेकाबू, उम्र छोटी लेकिन सोच और संस्कार बड़े, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: हिमाचल प्रदेश विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मंडी जिले में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर के स्थान पर बनाया जाएगा, जिससे मंडी का थलौट बाजार में क्षतिग्रस्त हुआ 4 लेन का हिस्सा अब नए रूप में नजर आएगा।
9: हिमाचल, इस राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सुंदर वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ जाता है, जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन ये प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा भी लिखने जा रहा है। दरअसल मंडी जिला के थलौट में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। कीतरपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत इस बॉक्स टनल का निर्माण होगा, जिसके निर्माण कार्य को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
10: टनल बन रही है हमारी, ये बॉक्स RCC बॉक्स टनल है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टनल है। ये नेचुरल हिल में टनल नहीं बन रही है, आर्टिफिशियली बॉक्स हम आरसीसी का बनाएंगे, प्लस इस बॉक्स को हम केबल एंकर से जो है बेड उसका एम्बेड करेंगे हिल साइड में, उसमें साइड में भी रहेगी और बॉटम में भी इसमें केबल एंकर्स रहेंगे जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले, प्लस स्लोप में भी 70 मीटर हाइट तक हम इसकी केबल एंकर करके स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बनने के बाद जो है पूरा ये जो 500 मीटर का सेक्शन है जो डैमेज हुआ है ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए।
9: ये आर्टिफिशियल टनल 500 मीटर लंबी होगी, इसका निर्माण ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। इस आर्टिफिशियल टनल का ढांचा सामान्य गोलाकार टनल की बजाय स्क्वायर होगा। इसके निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर की जगह पर ही बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद थलौट में 4 लेन यातायात व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप मिलेगा। बॉक्स टनल तैयार होने के बाद कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को इसी रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि कुल्लू मनाली से मंडी की तरफ आने वाला यातायात थलौट की पुरानी टनल से गुजरेगा। फिलहाल यहां बनाई जा रही प्रदेश की पहली बॉक्स टनल से इस पूरे हिस्से में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र को लेकर झांसी में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण पिछले 34 साल से बंगाल से आए कारीगर बना रहे मूर्तियां, बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों में भारी डिमांड। यूपी सरकार करेगी डीप करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास, फिरोजाबाद जिले में टुंडला के पास है बाबा का जन्मस्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मछार को इसराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में हो रही स्मिथ की तारीफ। काशी में पालित स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान, स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना, पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटुकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात, कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रन से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और फिर शहर शहर गली गली मां दुर्गा पधारेंगी और भक्तों को आशीर्वाद देंगी। मां के आगमन के लिए तैयारी की जा रही है, कोलकाता से लेकर मुंबई तक कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी। आपको बता दें कि कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई तक नवरात्रि की धूमधाम से तैयारी की जा रही है, कलाकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो पंडालों में साज सज्जा का काम जोरों पर है।

0: दिल्ली हो, मुंबई हो या कोलकाता, हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं आकार ले रही हैं, तो कहीं गलियों से लेकर बाजारों तक उत्सव की रौनक दिखाई देने लगी है। शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि उत्सव 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और माँ के स्वागत के लिए देश के कोने कोने में तैयारियां अंतिम चरण में है। मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर देवी माँ की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं।
1: 11 अक्टूबर से पूरा देश नवरात्रि उत्सव में मग्न हो जाएगा। ऐसे में मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार जिस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है।
2: इस साल का गणेशोत्सव बहुत अच्छा गया और जैसे गणेशोत्सव गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्रि का काम चालू हो गया एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है। 10 दिन में हमें काफी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं।
0: मुंबई में नवरात्रि उत्सव की रौनक अलग ही होती है। माया नगरी में माँ दुर्गा की भक्ति के साथ सितारों के खूबसूरत रंग भी नजर आते हैं। हर साल बॉलीवुड सितारे भी नवरात्रि और दुर्गा पूजा के आयोजनों में शामिल होते हैं और माँ के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं। वैसे तो नवरात्र उत्सव का रंग पूरे देश में चढ़ता है, लेकिन इसके सबसे भव्य और दिव्य रंग अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ हर गली हर मोहल्ले में माँ के भव्य पंडाल सजते हैं, जिसके लिए अब तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भी माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। इस बार बर्दवान शहर में श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत की धार्मिक और स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ तिरुपति की थीम पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। पंडाल को तिरुपति मंदिर की शैली में सजाने के लिए कारीगर बारीकी से काम कर रहे हैं।
3: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो पूर्ण जो इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोग देर से स्टार्ट किया क्योंकि ये जगह थोड़ा देर से हम लोग लिए हैं, तो हम लोग का आशा है जो महालय का दिन इसका कंप्लीट हो जाएगा।
0: कोलकाता में भी माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां रफ्तार पकड़ चुकी है। कुम्हार टोली की गलियों में इन दिनों हर तरफ माँ दुर्गा की प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। कारीगर दिन रात मेहनत कर मिट्टी की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। किसी प्रतिमा पर मिट्टी की आखिरी परत चढ़ाई जा रही है, तो कहीं चेहरे के भाव और आँखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माँ के मुकुट से लेकर आभूषण और श्रृंगार तक हर काम में कारीगर अपनी कला और हुनर की पूरी छाप छोड़ रहे हैं।
4: एक एक स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 में 50 भी बना रहा ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो हैं, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है।
5: हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 माने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया है। ठीक है,
0: कोलकाता के लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहाँ बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। दुर्गा पूजा बंगाली कला परंपरा और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी ऐसी है मानो पूरा शहर एक साथ माँ के आगमन के लिए सज धज कर तैयार हो रहा हो। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, पूर्व बर्दवान से सुजाता मेहरा और कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: ओडिशा के पुरी में मौजूद मशहूर श्री गुंडिचा मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है। ये मंदिर वर्ष 2020 से ही बंद था और यहां पर भक्तों का आना जाना भी बंद था, लेकिन मंदिर के खुल जाने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है 6 साल बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला श्री गुंडिचा मंदिर। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में मशहूर श्री गुंडिचा मंदिर एक बार फिर से श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। कोविड 19 महामारी के दौरान ये मंदिर 6 साल तक बंद रहा था, लेकिन मंदिर के फिर से खुलने के बाद दर्शन का इंतजार कर रहे श्रद्धालु बेहद खुश हैं। इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ का जन्मस्थान माना जाता है, लिहाजा दरवाजा खुलते ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जिससे कि मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बन गया। आम लोगों को प्रवेश देने से पहले मंदिर में पारंपरिक प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों के व्यवस्थित प्रवेश के लिए भी प्रशासन ने पूरे उपाय किए। मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस ने आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर के फिर से खुलने के बाद शुरुआती 3 दिनों तक एंट्री फ्री रहेगी। इसके बाद 10 रुपए का जनरल एंट्री टिकट लागू किया जाएगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। 6 साल बाद मंदिर के फिर से खुलने से श्रद्धालुओं के साथ साथ सेवादारों में भी काफी खुशी है। आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन की सुविधा फिर से शुरू होने की पूरी के माहौल में नया उत्साह आ गया। और दिल्ली में सड़कों को पार करने के लिए कई जगहों पर सबवे बने हुए हैं, लेकिन आम तौर पर अधिकतर सबवे की स्थिति खराब ही होती है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा सबवे है जो न केवल बहुत करीने से सजा और सवरा है, बल्कि उसमें जिंदगी जीने की सीख भी दी गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। घुमंतू प्रजातियों ने संवारा दिल्ली का खूबसूरत सबवे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में है दिल्ली का सबसे सुंदर सबवे। एक नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर ने 5 घुमंतू जातियों के साथ मिलकर इस सबवे को बनाया है। इस सबवे को नोमैडिक हार्ट कहते हैं। ऊपर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, तो उसके सामने एक खूबसूरत सबवे की झलक दिखाई देती है। हनुमान मंदिर के सामने बना ये सबवे दिल्ली का सबसे सुंदर सबवे है और इसे पूरी खूबसूरती से सजाया है फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट मीनाक्षी विनय राय ने। इस साफ सुथरे सबवे में जिंदगी के कई खूबसूरत कोट्स लिखे हैं जो कि यात्रियों को रोमांचित करते हैं। मीनाक्षी ने इस सबवे की खूबसूरती तो कुछ घुमंतू प्रजातियों के सहयोग से संवारा। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट।

0: ऊपर एक मुख्य सड़क और उसके नीचे बनाया गया एक रास्ता। इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्य सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए किया जाता है। इसे सबवे कहते हैं। दिल्ली में आपको बहुत सारे सबवे मिलेंगे, लेकिन अमूमन किसी भी सबवे से आप गुजरेंगे तो वहाँ गंदगी होगी, वहाँ बदबू आएगी, वहाँ पर आपको नशे करते हुए लोग मिल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली का एक ऐसा सबवे दिखाने जा रहा हूँ जो कि जीवन और जीवन की खूबसूरती का एक मिसाल बन चुका है। ये कैसे किया मैम?
1: ये इसका श्रेय जाता है घुमंतु जातियों को और भारत सरकार को, जिन्होंने ये पहल की कि इस तरह के जो अंडरपासेस हैं, जिनकी ऊर्जा बड़ी आक्रामक होती है, उनको संस्कृति से जोड़ा जाए। और इसमें जीवन डालने का काम केवल और केवल घुमंतु जाति कर सकती थी, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ और कुछ से कुछ नहीं, इसको जितनी सहजता से घुमंतु जातियां इस सिद्धांत को जी पाती हैं, वो उनकी बदौलत हम ये प्रोजेक्ट कर पाए।
0: कैसे एक ऐसी जगह को जहां पर लोग गुजरना बहुत मुश्किल से वहां से गुजर पाते थे, उस जगह में इतना जीवन डाल देना कि आप जब आए तो यहां रुक जाएं, कभी कभी तो बैठकर सब कुछ पढ़कर समझकर निकलने की कोशिश करते हैं लोग। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस स्टोरी के बाद सरकार अगर इस बात को समझे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आम लोग कुछ वो कलाकार इस बात को समझे कि वो भी बिना किसी से कुछ मांगे, कुछ शिकायत किए, अपने हिस्से का कुछ काम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं, उसका बेहतरीन एग्जांपल ये सबवे हो सकता है।
2: और दिल्ली में आज से अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पंप्स पर, पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगी। दरअसल आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर विशेष कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान की शुरुआत, आपको बता दें कि अब से यानी कि आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। और हमारे संवाददाता अंशुल सिंह ने इसकी रिपोर्ट की है, देखिए उनकी रिपोर्ट।
3: दिल्ली में एक बार फिर से वो समय आ गया है जब दिल्ली में तापमान गिरता है और पोल्यूशन बढ़ता है। इस बार कुछ प्री एक्टिव मेजर्स लिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जिसमें से एक मेजर ये है नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नो फ्यूल। इसके तहत अगर आपकी गाड़ी के पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिल्ली में तेल नहीं दिया जाएगा। इस वक्त मैं एक ऐसे ही पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ जहाँ ये सिस्टम इस वक्त एक्टिव है, और ये सिस्टम काम कैसे करता है ये आपको बताएंगे। दरअसल आप देखें यहाँ पे ये कैमरेज लगे हुए हैं, ये कैमरा जो है ये सीधा परिवहन ऐप जो है या जो वेबसाइट है उसके सर्वर से कनेक्टेड है। इन कैमरेज के तहत जैसे ही कोई भी गाड़ी इस पेट्रोल पंप पर पहुंचती है जिसके पास एक वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी के नंबर के साथ अनाउंसमेंट होती है, और ये बताया जाता है कि इस गाड़ी में जो है फ्यूल या पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है और इसको जो है फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली एक चालान भी कट सकता है जो करीब 10,000 रुपए तक का हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके लिए कुछ समय मिलता है, और अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्हीं पेट्रोल पंप्स पे आप देखें तो कुछ इस तरीके से जो है ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने वाले जो कियोस्क हैं वो भी लगे हुए हैं लगातार। और जैसे ही ये पता लगता है कि अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा, और आपने उसके बाद भी अपने गाड़ी का पोल्यूशन फिट चेक नहीं कराया तो करीब 10,000 रुपए तक का जो फाइन है ये आएगा। दिल्ली सरकार की ये जो योजना है ये सुनिश्चित करने के लिए है कि दिल्ली की सड़कों पे कम से कम ऐसी गाड़ियां चले जिनके पास जो ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं या जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्चुअली में नहीं।
2: कभी हाथों में हथियार लेकर जंगलों में सक्रिय रहने वाले बस्तर संभाग के 8 पूर्व नक्सलियों ने अब किताब और कलम के जरिए नई राह चुनी है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा देने वाले इन सभी पूर्व नक्सलियों ने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है पूर्व नक्सलियों ने 10वीं की परीक्षा में लहराया परचम। जी हां, आपको बता दें कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच सामने आई पूर्व नक्सलियों की सफलता की ये कहानी आत्मसमर्पण के बाद इनके मुख्यधारा में लौटने का एक विशेष पहलू दर्शाती है। जंगल में संगठन के लिए काम करने वाले इन लोगों ने अब शिक्षा को अपने भविष्य का रास्ता बनाने की कोशिश शुरू की है।

कभी हाथों में हथियार लेकर जंगलों में सक्रिय रहने वाले बस्तर के नक्सलियों ने अपने हाथों में किताबें और कलम थाम लिया है। इन पूर्व नक्सलियों ने सरेंडर करने के बाद शिक्षा को अपना हथियार बनाने का फैसला किया और 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी। इस परीक्षा को नक्सलियों ने सफलतापूर्वक पास कर लिया है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से बस्तर के 8 पूर्व नक्सली भी परीक्षा में शामिल हुए थे। जंगल में नक्सल संगठन के लिए काम करने वाले इन लोगों ने शिक्षा के जरिए अपने भविष्य का रास्ता बनाने की कोशिश की है। इन लोगों ने सरेंडर करने के बाद गंभीरता से पढ़ाई की

0: गीता संगठन में रहते हुए घायल नक्सलियों का इलाज करती थी। जंगल में रहते हुए उन्होंने घायलों के उपचार, टांके लगाने, इंजेक्शन लगाने और दवाइयां देने जैसे चिकित्सा संबंधी जानकारी हासिल की थी। अब 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली गीता आगे की पढ़ाई कर नर्स बनने का सपना देख रही है।
1: अभी जो भी हम लोग पढ़ रही हो तो एक नौकरी के लिए नहीं, एक ज्ञान तो पढ़ाई का ज्ञान भी मिल सकता है। हमें तो नौकरी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाई का ज्ञान भी होना चाहिए। वो ज्ञान के लिए हम तो स्कूल छोड़े लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़े। अभी तक भी संगठन में भी हम लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही थे, यानी ज्ञान हासिल करने के लिए। यहाँ आने से भी हम लोग आत्मसमर्पण किए लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़ी।
0: तेलंगाना के रहने वाले भास्कर की कहानी भी बस्तर के नक्सली आंदोलन के लंबे इतिहास से जुड़ी है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने वाले भास्कर बस्तर में लंबे समय तक सक्रिय रहे। जंगल में रहते हुए भास्कर ने हिंदी भाषा और किताबों से दोस्ती कर ली। बस्तर में रहने के दौरान उन्होंने हिंदी सीखी और आत्मसमर्पण के बाद इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए उसने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की।
2: पढ़ाई का महत्व हम लोग जानते हैं, पार्टी में रहते ही जानते थे। हम मैं घर में रहते समय भी 10th पढ़े थे। फिर आगे के लिए, भविष्य के लिए तो जरूरी पढ़ाई है, इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है करके मुझे सोचा है तो मैं 10th।
0: आत्मसमर्पित नक्सलियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने में बस्तर पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। परीक्षा पास करने के बाद छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3: नक्सल पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास केंद्रों में विभिन्न विधाओं के तहत उनको प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है और इनमें से कुछ लोगों ने 10वीं का ओपन स्कूल का एग्जाम दिया था और ये बड़े हर्ष का विषय है कि 8 नक्सलियों ने 10वीं की एग्जाम पास की है।
0: ये नक्सली शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के जरिए अपने जीवन की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास प्रक्रिया के तहत उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। धर्मेंद्र महापात्र, बस्तर, छत्तीसगढ़, गुड न्यूज टुडे।
4: हिमाचल प्रदेश विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मंडी जिले में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल का निर्माण किया जा रहा है। 200 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस टनल के बनने से आना जाना और आसान हो जाएगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। मंडी में बन रही 200 करोड़ की पहली बॉक्स टनल, जी हां, 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर के स्थान पर बॉक्स टनल को बनाया जाएगा, जिससे कि मंडी के थलौट बाजार में क्षतिग्रस्त हुए 4 लेन का हिस्सा अब नए रूप में नजर आएगा।
5: हिमाचल, इस राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सुंदर वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ जाता है जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन ये प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा भी लिखने जा रहा है। दरअसल मंडी जिला के थलौट में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। कीतरपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत इस बॉक्स टनल का निर्माण होगा, जिसके निर्माण कार्य को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
6: टनल बन रही है हमारी, ये बॉक्स RCC बॉक्स टनल है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टनल है, ये नेचुरल हिल में टनल नहीं बन रही, आर्टिफिशियली बॉक्स हम RCC का बनाएंगे। प्लस इस बॉक्स को हम केबल एंकर से जो है बेड उसका एम्बेड करेंगे हिल साइड में, उसमें साइड में भी रहेगी और बॉटम में भी इसमें केबल एंकर्स रहेंगे जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले। प्लस स्लोप में भी 70 मीटर हाइट तक हम इसकी केबल एंकर करके स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बनने के बाद जो है पूरा ये जो 500 मीटर का सेक्शन है जो डैमेज हुआ है ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए।
5: ये आर्टिफिशियल टनल 500 मीटर लंबी होगी। इसका निर्माण ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। इस आर्टिफिशियल टनल का ढांचा सामान्य गोलाकार टनल की बजाय स्क्वायर होगा। इसके निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर की जगह पर ही बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद थलौट में 4 लेन यातायात व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप मिलेगा। बॉक्स टनल तैयार होने के बाद कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को इसी रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि कुल्लू मनाली से मंडी की तरफ आने वाला यातायात

0: थलौट की पुरानी टनल से गुजरेगा। फिलहाल यहां बनाई जा रही प्रदेश की पहली बॉक्स टनल से इस पूरे हिस्से में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मॉनसून की विदाई के साथ ही देश के ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे सैलानियों के लिए खुल गए हैं। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए नया पर्यटन सत्र रोमांच और उत्साह लेकर आया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। मॉनसून के बाद देश के टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जंगल के रोमांच की शुरुआत हो गई है। राजस्थान के रणथंभौर में भी नए पर्यटन सत्र का शानदार आगाज हो गया है। 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब सैलानी जंगल की सैर पर निकले तो पहले ही दिन उन्हें वो दिख गया जिसका इंतजार हर वन जीव प्रेमी को होता है।
2: जंगलों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। हरे भरे जंगलों में वन्य जीवों की चहलकदमी के साथ अब सैलानियों की हलचल भी है। मॉनसून खत्म होने के बाद जंगल सफारी के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं। जंगल का सबसे खूंखार शिकारी टाइगर अपनी एक झलक से सैलानियों की धड़कने बढ़ा रहा है और सैलानियों की आंखें तलाश रही है जंगल के उस सबसे खास मेहमान को जिसकी एक झलक पूरी सफारी को यादगार बना देती है। राजस्थान के रणथंभौर में भी नए पर्यटन सत्र का शानदार आगाज हो गया है और 3 महीने के लंबे वक्त के बाद जब सैलानी जंगल की सैर पर निकल रहे हैं तो पहले ही दिन पहली ही पारी में पर्यटकों को वो देखने के लिए मिला जिसका उन्हें इंतजार था। रणथंभौर के जोन नंबर 3 में जोगी महल के पास टाइगर सफारी के दौरान सैलानियों को बाघ RBT 2505 का दीदार हुआ। जंगल के बीच बाघ की मौजूदगी ने सफारी का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया। जंगल के बीच बाघ को अटखेलियां करते देख सैलानियों का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसी ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया तो कोई बस टकटकी लगाए जंगल के राजा को निहारता रहा। सीजन के पहले दिन राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी सैलानियों से गुलजार हो गया है। पहले दिन सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया, फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन हुआ और फिर उन्हें जंगल सफारी के लिए रवाना किया गया। लंबे इंतजार के बाद जंगल में लौटे इस रोमांच को देखने के लिए सैलानियों में उत्साह है, उमंग है और उल्लास है।
3: 1 अक्टूबर से सिरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद्रा सहित राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व व बर्ड सेंचुरी पर्यटकों के लिए खुल चुके हैं। ऐसे में पहले दिन यहां पर्यटकों का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया और लोगों को मिठाई बांटी गई। मैं इस समय सिरिस्का क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर पहले चरण की जो सफारी है वो पूरी हो चुकी है। पहले चरण में भी यहाँ पर कई वन्य जीव और टाइगर यहाँ पर पर्यटकों को दिखे।
2: जंगल सफारी के लिए पर्यटकों की पहली पसंद राजस्थान है। राजस्थान में पर्यटन सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से होती है। 3 महीने मॉनसून सीजन के दौरान सभी टाइगर रिजर्व बर्ड सेंचुरी अन्य फॉरेस्ट को बंद कर दिया जाता है। बारिश के दौरान जंगल में रास्ते खराब हो जाते हैं, साथ ही वन्य जीव मॉनसून सीजन के दौरान प्रजनन किया करते हैं। ऐसे में अक्टूबर में जंगल सफारी का रोमांच एक बार फिर शुरू किया जाता है।
4: तो इसका का जो 3 महीने के बाद जो ओपनिंग हुआ है ये काफ़ी उत्साहजनक है और 1 महीने की पूरी सफारी जो है बुक हो चुकी है, एडवांस बुकिंग लगातार जारी है।
2: राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी जंगल सफारी के लिए लोग पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी मॉनसून ब्रेक के बाद जंगल सफारी फिर शुरू हो गई है। गेट खुलते ही सैलानी जंगल की पगडंडियों पर निकल पड़े हैं।
5: बांधवगढ़ में जो आपकी टाइगर की साइटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। टाइगर आपको मिलता है काफी देर तक, उसको देखने को भी मिलता है, टाइगर का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है।
2: मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर कान्हा के घने जंगल सैलानियों की चहल पहल से गुलजार हो उठे हैं। जंगल सफारी के साथ साथ यहां कई पर्यटकों के लिए आयोजन किए जा रहे हैं।
6: पर्यटक सीजन जो आरंभ होता है वो ये वाइल्ड लाइफ वीक का भी आरम्भ होता है, तो ये 1 सप्ताह चलने वाला जो कार्यक्रम है इसमें हम लोग अलग अलग थीम्स पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, इको विकास समितियों के साथ हमारे संवाद होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वन एवं वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए आगे आए।
2: इसी तरह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी जंगल का सन्नाटा अब टूटने लगा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर चहलकदमी शुरू हो गई है। गेट खुलते ही जंगल सफारी के लिए सैलानियों की कतार लग गई। यहाँ पहुँचे सैलानियों का गुलाब का फूल देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अलवर से हिमांशु शर्मा, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
8: योगी राज में हिंदुओं पर बढ़े हमले, यूपी में हिंदू लड़के पर हमले का सच क्या, तूफान में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जहाज बेकाबू, उम्र छोटी लेकिन सोच और संस्कार बड़े, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: विराजने वाली है माँ दुर्गा, जगत जननी के आह्वान के लिए भक्त तैयार। लालबाग चौराजा के खजाने की नीलामी, सबवे जहां सजता है अनोखा बाजार। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
15: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र को लेकर झांसी में माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण। पिछले 34 साल से बंगाल से आए कारीगर बना रहे मूर्तियां, बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों में भारी डिमांड। यूपी सरकार करेगी नीप करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टुंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मचार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की तारीफ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है जहां एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या है वायरल तस्वीर और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: क्या योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या योगी राज में सरेराह हिंदुओं पर हमला हो रहा है? योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा सख्त रवैया अख्तियार करती रही है। ऐसे में एक वीडियो के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये वीडियो और खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
3: पहले एक शख्स की कुछ लोगों के साथ बहस होती है और फिर देखते ही देखते माहौल एकदम बदल जाता है। इस्लामिक टोपी लगाए और मास्क लगाए एक व्यक्ति शख्स पर हमला कर देता है। शख्स भागता है और उसके पीछे दो लोग धारदार हथियार लेकर दौड़ने लगते हैं। वीडियो को धार्मिक रंग देकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इसे शेयर करते दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो यूपी का है, लेकिन किस जगह और किस कारण से हुआ इसका पता नहीं। जो तलवार फरसा लेकर एक अकेले हिंदू पर झुंड बनाकर टूट पड़े। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुँचना चाहिए। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: साल चुनाव होने और इसी को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है और इन सब के बीच इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरने वालों का नया हथियार उनको मिल गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा से सख्त दिखने की कोशिश करती रही है और इस वीडियो के जरिए उसी छवि पर हमले की कोशिश की गई है। इस वीडियो के जरिए इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू युवक पर सरेआम हमला किया, एक खास नैरेटिव फैलाया जाने लग गया और चुनावी माहौल में ऐसा होना मकसद साफ साफ समझ में आ रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसके लिए योगी सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्हें लग रहा है कि योगी के होते उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके जरिए योगी सरकार को घेर भी रहे हैं। इसीलिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो किसी गली का है और इसके पीछे एक मस्जिद भी दिख रही है। रेड टी शर्ट और जीन्स पहने एक युवक का पहले कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होती है और उसके बाद कुछ लोग युवक को धारदार हथियार से मारने के लिए दौड़ते हैं और अचानक हुए हमले से युवक घबरा जाता है। वो तेजी से मस्जिद की तरफ भागने लगता है और पीछे कुछ लोग हथियार लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट फ्रेम में हमें मस्जिद के बोर्ड पर बांग्ला में कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। हमने भाषा एक्सपर्ट से इसके बारे में भी पूछा तो सामने आया कि बोर्ड पर कुरानुल करीम फजल मदरसा लिखा हुआ था। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये उत्तर प्रदेश के कुरानुल करीम फाजिल मदरसा है, लेकिन लगातार खोजबीन के बाद भी हमें इस नाम का कोई भी मदरसा यूपी में नहीं मिला और ये जानकर हमें शक हुआ कि वीडियो कहीं किसी और जगह का तो नहीं है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात थी कि इस वक्त यूपी में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे वक्त में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो का आना और सोशल मीडिया पर ही इसका वायरल हो जाना बहुत ही अजीब लग रहा था। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई। वीडियो में सिर्फ बांग्ला ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई बांग्ला बोलता नहीं है, तो ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो यूपी का है तो फिर इसमें सिर्फ बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है। यूपी सरकार का ये स्ट्रांग पहलू है। अगर यूपी का ये मामला है तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया। हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं हो रही।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें ये मार्च 2026 के कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया पोस्ट में मिला। एक न्यूज आउटलेट के 11 मार्च के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ढाका में एक मदरसे पर हमले के दौरान का है। बेहतर क्वालिटी वाले इस वीडियो में मदरसे के गेट पर इसका नाम भी नजर आता है, कुरानुल करीम फाजिल मदरसा। ये मदरसा बांग्लादेश के सावर उपजिला के आशुलिया में है। हमें गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मिल गई। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद एक बांग्लादेश न्यूज चैनल के फेसबुक अकाउंट पर 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में आशुलिया स्थित दारुल इहसान मदरसे पर हमले और तोड़फोड़ की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हमलावरों और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के बीच समानता साफ साफ देखने को मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें 9 मार्च की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ मदरसे में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 से 60 लोगों ने मदरसे पर हमला किया था। मदरसा संचालकों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे की जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश का है और वहाँ एक मदरसे पर हुए हमले से जुड़ा ये वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: बात करते हैं एक और वायरल हो रही खबर की। दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। इस वीडियो की हमने पड़ताल की।
5: सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान से कहर ढाया। खासतौर पर लगातार बारिश के कारण यूपी में कई लोग मारे गए और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण तूफान के बीच किसी एयरपोर्ट में गोल गोल घूमते हवाई जहाज को देखा जा सकता है। इस दौरान वीडियो में ये भी दिख रहा है कि घूमते हुए जहाज वहां मौजूद ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट से टकरा रहा है। पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है, जहां अर्नब चक्रवात की वजह से ये घटना घटित हुई। ये वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लोग बिना सोचे समझे इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: इसे उठा चक्रवात अर्नब देश के 14 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश, कहीं बाढ़ की वजह से हालात खराब है और कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। दावा यह किया जा रहा है कि यह गुजरात के अहमदाबाद का वीडियो है, जहां पर अर्नब चक्रवात के चलते एक हवाई जहाज बेकाबू होकर घूमने लगा। ये वीडियो हमारे सामने भी आया और वीडियो में दो बातें गौर करने वाली थी। पहला तो ये कि बारिश और तूफान के बीच प्लेन गोल गोल घूम रहा है और दूसरा ये कि वीडियो में सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसका ये अर्थ हो सकता है कि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और इसीलिए सायरन बजाया गया हो। जांच के दौरान हमारा ध्यान वीडियो के ऑडियो पर गया और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी अटपटी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें घूमते हुए जहाज पर लिखे गए टेक्स्ट अटपटे से नजर आए। इसके अलावा भागते हुए ग्राउंड स्टाफ की गति सामान्य नहीं थी। वीडियो में एक ग्राउंड स्टाफ प्लेन से टकराता है लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अक्सर ऐसा दृश्य एडिटेड वीडियो में ही मौजूद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर देखने की कोई खबर सामने नहीं आई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखी, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। रनवे पर फिसलन होने से प्लेन गोल गोल नहीं घूमता बल्कि वो अपनी दिशा से भटककर सीधा या फिर तिरछा फिसल सकता है, क्योंकि बारिश, बर्फ या पानी जमा होने के कारण रनवे और पहियों के बीच ग्रिप कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
5: जब ये वीडियो तेजी से चर्चा में आया, फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर दिखने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। पड़ताल के लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर इसमें विमान पर अटपटे से शब्द लिखे हैं। इसके बाद पुष्टि के लिए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.3% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित AI जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि एयरपोर्ट पर घूमते हुए हवाई जहाज का ये वायरल वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। इसका गुजरात के अहमदाबाद या अर्नब चक्रवात से कोई वास्ता नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
6: विराजने वाली है माँ दुर्गा, जगत जननी के आह्वान के लिए भक्त तैयार। लालबाग चौराजा के खजाने की नीलामी। सबवे जहाँ सजता है अनोखा बाजार। लिखे अच्छी खबर, सच्ची खबर, व्रतार्थ।
7: How dare you, Google?
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, और आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। दूसरों की मदद करने का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा सड़क किनारे सामान बेच रहे जरूरतमंद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें खाने की चीजें दे रहा है। बच्चे की मासूमियत और दूसरों की मदद करने का ये छोटा सा प्रयास लोगों का दिल जीत रहा है। उम्र छोटी है लेकिन सोच और संस्कार देखकर लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: बेटी को जंक फूड से बचाने के लिए पिता का ये जुगाड़ इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पिता ने लैपटॉप और माउस से बेटी के पेट का नकली अल्ट्रासाउंड किया, स्क्रीन पर पेट में कीड़े दिखाने का नाटक किया। ये देखकर बच्ची बहुत डर गई, रोते हुए माँ के पास भागी और कभी जंक फूड ना खाने की कसम खा ली। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने इसे बच्चे को जागरूक करने का स्मार्ट तरीका बताया, तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे डराने से बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ेगा।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
0: पेरेंट्स के लिए ये सोचना भी मुश्किल होता है कि बेटी कभी शादी ही नहीं करेगी, मगर एक बेटी ने जब शादी ना करने की बात पापा के सामने रखी तो उन्होंने जवाब में उसे आत्मविश्वास से भर दिया, समझा दिया कि शादी तुम्हारी चॉइस है, पूछ नहीं।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
2: मैं तेरे लिए इतनी मजबूती का मकान बनवा दूंगा, अगर उसमें 10 किराएदार रहेंगे तो जिंदगी भर तू पूजा कर उसका किराया।
1: अच्छा, मतलब ये मेरा फ्यूचर प्लान है, तो अगर बिना
2: फ्यूचर के मेरे न होने के बाद तुझे कौन देखेगा। आजकल कोई भाई बहन, भाई को बहन नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखता और भाई भाई को नहीं देखता, तो तेरा मैं अपने जीते जी इतना बना जाऊंगा कि तू आराम से सकून की रोटी खा।
1: तो आपको दिक्कत नहीं होती ना, सोसाइटी या रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे कि गुप्ता जी आपकी बेटी ने तो शादी नहीं करी।
2: अरे मैं तो उनसे पूछूंगा, मायावती ने नहीं करी तो तुम उनसे क्यों सवाल करते हो, हमसे क्यों सवाल करते हो।
0: हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को लुभा।

0: कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देख रहे होंगे। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरी तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से।
1: हो गए 3-2, 3-2 हो गए।
0: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे, तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चालान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से ये जादू नहीं बच पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना है ही नहीं। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए? बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा, कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वो ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
1: 3-2 हो गए मुझे देख के वहाँ। बहुत बढ़िया, ये लगाओ स्ट्रिप हेलमेट के, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं लग जाएगी, इतना भी लगाओ, इसे लगवाओ, इससे जरूरी है। दो ही बैठो यार, एक आदमी को ऑटो में बैठा दो, ऑटो वाले का फायदा हो जाए, अपने भी सुरक्षित रहो, ठीक है।
0: इस महिला के कारनामे को देखकर लोग दंग है। महिला ने इतने बड़े खतरनाक मगरमच्छ को ऐसे उठाया हुआ है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या फिर पालतू कुत्ता हो। ये हैरान करने वाला वीडियो कैलिफोर्निया के मशहूर द रेप्टाइल जू का है। वीडियो में जो महिला नजर आ रही है उनका नाम है जूलियट ब्रूअर और वो मशहूर रेप्टाइल एक्सपर्ट जे ब्रूअर की बेटी है। जिस विशाल मगरमच्छ को जूलियट ने गोद में उठाया हुआ है उसका नाम डार्थ है। वो सालों से इस मगरमच्छ की देखभाल कर रही है। दोनों के बीच ऐसा भरोसा और प्यार है कि जब जूलियट उसे उठाती है तो खतरनाक मगरमच्छ भी बिल्कुल शांत रहता है। भले ही वीडियो में जूलियट और मगरमच्छ की दोस्ती देखकर ये आसान लग रहा हो, लेकिन जूलियट खुद मानती है कि डार्थ एक जंगली जानवर है। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एक्सपर्ट की देखरेख के ऐसा खतरनाक स्टंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सिलेक्शन करना हो तो कोई इन बंदर भाइयों से सीखे, क्योंकि पसंद का मामला हो तो ये भी किसी से कम नहीं है। वीडियो में मंदिर में चढ़े प्रसाद के बीच बंदर अपनी अपनी पसंद के फल चुनते नजर आ रहे हैं। किसी को केला पसंद आया तो किसी ने सेब उठा लिया, जो फल पसंद नहीं आया उसे वहीं पर छोड़ दिया, यानी प्रसाद में भी अपनी चॉइस बिल्कुल साफ है। बंदरों की ये चालाकी और शरारत देखकर लोग खूब हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो को जमकर वायरल भी कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आज बात सबसे पहले माँ दुर्गा की करेंगे। जगत जननी के आह्वान के लिए भक्त कितने तैयार हैं दिखाएंगे। लालबाग चराजा के खजाने की नीलामी भी दिखाएंगे। गणेशोत्सव के दौरान मन्नतों के राजा को कितना चढ़ावा चढ़ा ये भी बताएंगे। और एक ऐसे सबवे लिए चलेंगे जहां सजता है अनोखा बाजार, दिल्ली में घुमंतू जनजातियों का नोमैडिक हार्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: शारदीय नवरात्र को लेकर झांसी में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण। पिछले 34 साल से बंगाल से आए कारीगर बना रहे मूर्तियां। बुंदेलखंड सहित आसपास के जिलों में भारी डिमांड। यूपी सरकार करेगी नीप करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टुंडला के पास है बाबा का जन्मस्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मछार को इजराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार भी देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रही प्रशंसा। काशी में पायलट स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान। स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटुकोक ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को दी 4-3 से मात। कप्तान हरमनप्रीत बने जीत के हीरो। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रन से हराया। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात, सबसे पहले जगत जननी की जो जल्दी ही विराजने वाली हैं। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के आह्वान के लिए भक्त तैयार हैं। माता रानी के स्वागत के लिए जगह जगह चल रही तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मां की भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार पूर्ण करने में जुटे हैं तो कारीगर पंडालों के निर्माण में लगे हैं। पूर्वी बर्धमान से लेकर मुंबई तक में मां दुर्गा को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: भक्ति और कला का अद्वितीय उत्सव, आस्था भक्ति और एकता की भावना से जुड़ा अद्भुत पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। माता रानी के आवाहन के लिए भक्त तैयार हैं। माँ का दरबार सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को तेज गति से आकार देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं को 11 अक्टूबर की प्रतीक्षा है, जब माता रानी विराजेंगी और अपना आशीष देना शुरू करेंगी। पूरे वातावरण में अगले 9 दिनों तक माँ के जयकारे गूंजते रहेंगे। मंदिरों से लेकर पंडालों तक में हर दिन उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और भक्त अलग अलग छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले माता की उपासना के पर्व नवरात्र को पश्चिम बंगाल और पूर्वी में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है। इसलिए वहां तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान की हैं, जहां दुर्गा पूजा के लिए इसी तरह जगह जगह पंडाल बनाने का काम चल रहा है। कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु उन्हें निहार कर माँ की भक्ति में डूब जाए। यहाँ जो माता का दरबार सज रहा है, ये लालटू स्मृति संघ का है, जो अपने आकर्षक थीम और बड़े बजट के लिए जाना जाता है। इस वर्ष यहाँ बालाजी की थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसलिए कारीगर तेजी से काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो पूर्ण इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोग देर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जगह थोड़ा देर से हम लोग लिए हैं। तो हम लोग का आशा है जो महालय का दिन इसका कंप्लीट हो जाएगा।
2: ये थीम क्या है इसका?
1: त्रिकुटि बालाजी, जो मंदिर है बालाजी का, उसी का थीम है।
0: मूर्तिकार तेजी से देवी माँ की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं, साथ ही मूर्तियों के रंग रोगन का काम भी चल रहा है। मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ी हुई है, वो मिट्टी को गूंथ कर अलग अलग आकार की मूर्तियां गढ़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी अब इन्हें महंगी मिल रही है, लगभग 2 गुना दाम पर, लेकिन सवाल माता रानी का है तो ये मूर्तियों को समय से तैयार करने में पूरे मन से लगे हुए हैं।
3: आगे तो 80-100 रुपया में मिल जाते थे, अभी तो 150-200 रुपया हो गया, डबल हो गया, लेकिन ठीक समय में मिलता नहीं है। बनाना तो पड़ेगा, दिक्कत है तो तब भी बनाना पड़ेगा। वो सब खर्चा ये प्रतिमा के अंदर तो लग जाएगा ना, प्रतिमा के दाम बढ़ जाएगा, लेकिन पार्टी तो नाराज हो जाता है।
2: इस बार आप लोगों को बनाने के लिए ऑर्डर मिला है?
3: दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है।
2: बर्धमान का है या फिर बाहर?
3: थोड़ा ये इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
2: कितने कारीगर काम कर रहे हैं?
3: 6-7 जो है।
0: पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह तस्वीरें मुंबई के परेल इलाके की है, जहां गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र की तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ये परेल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां मूर्तिकार तेजी से हाथ चलाते हुए माता की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं। कोई मूर्तियों के लिए ढांचा तैयार कर रहा है, कोई प्रतिमाओं को रगड़कर उसे चिकना बनाने में जुटा है, तो कोई प्राइमर या लेप लगा रहा है। गणेश उत्सव के ठीक बाद नवरात्र का समय आ चुका है, इसलिए मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे हैं।
4: मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार किस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है मूर्ति का काम और क्या कुछ मांग रहे हैं लोग?
5: इस साल का गणेशोत्सव बहुत अच्छा गया, और जैसे गणेशोत्सव गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्र का काम चालू हो गया। एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है, एक 10 दिन में हमें काफी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं।
6: क्या डिमांड है राजू भाई, क्या मांग रहे हैं लोग, किस तरह की देवी, किस तरह का अवतार होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए?
5: इस साल ज्यादा अष्टपूजा देवी बहुत ज्यादा है, मुंबई ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है और वो ट्रेंड अभी देवी में चालू हो गया है।
6: गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से बीता है और अब नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। कई ऐसे कारखाने हैं जहां पर देवियों को बनाने का काम शुरू हो रहा है, उनको आकार देने का काम शुरू हो रहा है।
0: जहां जहां माता रानी की प्रतिमाएं बनती हैं, वहां अधिकतर ऑर्डर मिल चुके हैं और मूर्तिकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो तेजी से मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी डिलीवरी समय पर की जा सके, जिससे भक्त भी भारतीय संस्कृति से जुड़े इस उत्सव का हिस्सा बन सके। पूर्व बर्धमान से सुजाता मेहरा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: आगे बढ़ते बात लालबाग चौराजा की। गणेश उत्सव में भक्तों ने मन्नतों के राजा को खूब चढ़ावा चढ़ाया। गणेश चतुर्थी से लेकर गणपति विसर्जन तक के इस चढ़ावे में नकदी समेत सोने चांदी के कीमती सामान भी बप्पा को अर्पित किए गए हैं। इस वर्ष लालबाग के राजा के दरबार में 6 करोड़ से अधिक का चढ़ावा दान पेटियों में आया है। महंगे सामानों की नीलामी भी की गई, जिसमें भक्तों ने बहुत ही उत्साह दिखाया।

0: बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक लाल बागचा राजा की महिमा अपरंपार है। भक्तों का उनमें गहरा विश्वास है। लाल बागचा राजा मन्नतों के राजा है। हर वर्ष गणेश उत्सव में लाखों श्रद्धालु उनके दरबार में मन्नतों की झोली फैलाए पहुंचते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ आम से लेकर खास भक्त तक बप्पा के सामने शीश झुकाते हैं। इस विश्वास के साथ कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसी आस्था ने लाल बागचा राजा को भक्तों के बीच मन्नतों के राजा की पहचान दिलाई है। भक्तों की आस्था के साथ यहाँ चढ़ावे का आंकड़ा भी करोड़ों में पहुँचता है। इस वर्ष भी भक्तों ने लालबाग के राजा का दरबार सजने से लेकर उनकी विदाई तक चढ़ावे के रूप में अपनी गहरी आस्था दिखाई है। सोने चांदी और अन्य कीमती सामान जो चढ़ावे में आए उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान देश और विदेश के श्रद्धालुओं से लाल बागचा राजा को 6,11,96,500 रुपए नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ, जिनमें बाबा के चरण स्पर्श की दान पेटी में 3,53,42,000 रुपए जमा हुए। वहीं रंग पेटी में 2,42,40,000 रुपए, जबकि विसर्जन पेटी में 16,14,500 रुपए का चढ़ावा आया। इसके अलावा दर्शन के लिए लगी कतार की पेटियों में भी काफी रकम जमा होने की बात कही गई है। इस नकदी में भारतीय करेंसी के साथ काफी डॉलर भी मिले हैं। गणेश उत्सव के दौरान लाल बागचा राजा को उनके भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया, जिनमें नकदी के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी अर्पित किए गए। नीलामी के लिए रखे गए सामान में लाल बागचा राजा को 1 किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईंट शामिल रही, जिसे एक अज्ञात भक्त ने भेंट की। सोने की इस ईंट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है। वहीं इस वर्ष एक और अज्ञात भक्त ने मन्नतों के राजा को 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भेंट की, जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए है।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में और गणेश उत्सव के दरमियान श्रद्धालुओं ने दिल खोल करके बप्पा को चढ़ावा चढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक 6,11,96,500 रुपए की नकद राशि आई है। लगभग 3 तरह की पेटियां लालबाग के राजा के रास्ते में रखी होती हैं। पहले तो जब श्रद्धालु चलते हुए आते हैं वो एक पेटी होती है, और इस समय मैं जिस मंच में मौजूद हूँ, ये राजा का दरबार है, राजा का मंच है, यहाँ पर एक पेटी होती है और विसर्जन के समय भी एक पेटी रखी जाती है। इन्हीं में जो राशियां डाली गई हैं, जो भी चढ़ाया है श्रद्धालुओं ने, उन सभी को जुटा करके आंकड़ा सामने आया है।
0: इन सब के अलावा नीलामी में सोने के कई आभूषणों के साथ सोने और चांदी की कई वस्तुएं शामिल रही। इनमें मोदक, चांदी का एक दंत, चांदी की कई गदाएं, सोने चांदी के कीमती हार, मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी, सुंदर फोटो फ्रेम भी शामिल रहे। यही नहीं, बाप्पा की सोने की मूर्ति, क्रिकेट के बैट और 2 बाइक भी इस विशेष नीलामी की मुख्य आकर्षणों में शामिल रहे।
1: बप्पा का विसर्जन हो चुका है और परंपरा के अनुसार हर साल श्रद्धालु गणपति बप्पा को, लालबाग के राजा को, जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनमें सारी चीजें होती हैं, उनकी नीलामी की जाती है और कल वो संपन्न हुई है। जानकारी के मुताबिक 1 किलो का गोल्ड जो है वो भी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिका है। परंपरा के अनुसार जो भी बप्पा को श्रद्धालु लोग चढ़ाते हैं और विसर्जन के बाद में नीलामी होती है, लालबाग के राजा को जो भी चीजें चढ़ाई गई होती हैं, दिल खोल करके मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और बप्पा को चढ़ाई हुई चीजें मुंह मांगी कीमत पर अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा लालबाग के राजा का आशीर्वाद होता है।
0: हर वर्ष लाल बाग के राजा के दरबार में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नकदी समेत सोना, चांदी और दूसरे कीमती सामानों का चढ़ावा अर्पित करते हैं। उनके चरणों में रखा गया करोड़ों रुपए का चढ़ावा सिर्फ रकम या संपत्ति भर नहीं बल्कि भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास की तस्वीर भी पेश करता है। लालबाग के राजा को चढ़ावे में मिली नकदी और आभूषणों की नीलामी से प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों

0: धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करते हैं दिल्ली के एक ऐसे सबवे की जो आम लोगों की सोच से थोड़ा सा हटकर है। आमतौर पर दिल्ली में सबवे को इस्तेमाल करने वाले लोग उसके रखरखाव को लेकर खुश नहीं होते, उनमें हल्का अंधेरा होता है, गंदगी बदबू की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हालांकि दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद ये सबवे जरा सा हटके है। उसके अंदर से गुजरने वाला रास्ता साफ सुथरा है, दीवारें हस्तशिल्प से सजी हुई हैं, घुमंत जनजातियों के सहयोग से इसको तैयार करने वाली फिल्म निर्देशक ने इसका नोमैडिक हार्ट नाम रखा है और करीब 26 वर्षों से इसकी देखभाल वही कर रहे हैं।

0: तेज रफ्तार वाली सड़कों को आसानी से पार करने के लिए बनाए जाते हैं सबवे या अंडरपास, लेकिन दिल्ली का कोई सबवे इतना साफ सुथरा, विचारशील और कलात्मक दिख सकता है? कुछ देर के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का इलाका बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद ये सबवे या अंडरपास अनोखा है। नोमैडिक हार्ट नाम का ये पैदल रास्ता सबसे अनूठी और खूबसूरत अंडरपास बाजारों में गिना जाता है। आमतौर पर दिल्ली में मौजूद ज्यादातर सबवे अपनी बदहाली, गंदगी, अंधेरा और असुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वो असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों और बेघर लोगों का डेरा भी बन जाते हैं। हालांकि हनुमान मंदिर का ये सबवे उनसे काफी अलग है। इस सबवे की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको बेहद साफ सुथरा रास्ता और खूबसूरती से सजाई गई दीवारें दिखेंगी। दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकारी आपको यहाँ बार बार आने का न्योता देंगी।
1: ऊपर एक मुख्य सड़क और उसके नीचे बनाया गया एक रास्ता। इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्य सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए किया जाता है। इसे सबवे कहते हैं। दिल्ली में आपको बहुत सारे सबवे मिलेंगे, लेकिन अमूमन किसी भी सबवे से आप गुजरेंगे तो वहाँ गंदगी होगी, वहाँ बदबू आएगी, वहाँ पर आपको नशे करते हुए लोग मिल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली का एक ऐसा सबवे दिखाने जा रहा हूँ जो कि जीवन और जीवन की खूबसूरती का एक मिसाल बन चुका है। शानदार बात यह भी कि सबवे को 16 साल से इसकी खूबसूरती को मेंटेन भी किया जा रहा है। आपको आज ये सबवे भी दिखाएंगे और मिलवाएंगे उन खास लोगों से भी जो इस काम में लगे हुए हैं।
0: नोमैडिक हार्ट नाम के इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यहाँ मिलने वाले हस्तशिल्प हैं, जो अलग अलग जनजातियों से जुड़े हैं।
2: इसका श्रेय जाता है घुमंतु जातियों को और भारत सरकार को, जिन्होंने ये पहल की कि इस तरह के जो अंडरपासेस हैं, जिनकी ऊर्जा बड़ी आक्रामक होती है, उनको संस्कृति से जोड़ा जाए और इसमें जीवन डालने का काम केवल और केवल घुमंतु जाति कर सकती थी, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ और कुछ से कुछ नहीं, इसको जितनी सहजता से घुमंतु जातियाँ इस सिद्धांत को जी पाती हैं, वो उनकी बदौलत हम ये प्रोजेक्ट कर पाए जिसे नोमैडिक हार्ट कहते हैं। हनुमान मंदिर के नीचे सबवे में जब आप आएंगे तो आपको ये नोमैडिक हार्ट मिलेगा और इसमें स्वयं आप स्वयं से संवाद कर सकेंगे। यहाँ पर कोई सेल्स पर्सन तो नहीं होता जो आपको कुछ चीज़ें बताए, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ ठहर कर स्वयं से संवाद किया जाता है, लोग करते हैं, और इसकी ऊर्जा में एक शांति है जिसको अनुभव करते हैं और आकर बोलते भी हैं। तो विनय जी और मैंने दोनों ने सरकार के साथ और घुमंतु जातियों के साथ मिलकर इस नोमैडिक हार्ट को क्यूरेट किया और आज NDMC की एक बेहतरीन स्पेसेस में से ये है।
0: राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक मशहूर घुमंतु जनजाति कालबेलिया की तरफ से बांस से बने कलाकृतियां देखिए। बंजारा समुदाय से जुड़ी कढ़ाई और पारंपरिक कला की पहचान रखने वाला पोंचू भी गजब है। ऐतिहासिक रूप से जंगलों में रहने, शिकार करने और प्रकृति के करीब रहने वाली बावरिया जाति के पास जड़ी बूटियों, शहद और औषधीय पौधों का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है, जिसकी मिसाल इस खास सबवे में दिखती है।
2: देखिए, जैसे ये बांस का काम कालबेलिया जाति जो है बांस का काम करती थी। अब कालबेलिया जातियों को भी नहीं पता, इनके जो बुजुर्ग थे वो बांस का काम करते थे और ये रच पट्टी बनाया करते थे और ये हथ

0: पंखे बनाया करते थे जो अब कालबेलिया से बीन तक रह गए हैं। तो उनकी जो विशेषताएं थी उनकी संस्कृति की वो सब यहाँ पर हैं। तो बंजारन जो है ये पोंचू बनाते हैं, इसको प्रेम पोंचू भी बोलते हैं।
1: प्रेम पोंचू
0: तो ये जो है गूंथती है, चिपकाती नहीं है। और ये गवर्नमेंट ने भी काफी बार सपोर्ट किया, इस प्रोजेक्ट को। और ये पायल हमारे संस्कृति में और एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो अच्छे से कोट्स रच देते हैं।
1: अब आप देखिए कि यहाँ पर आप कुछ चीजें भी आप देख रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर बिकती हैं औषधि के रूप में, लेकिन ये औषधि ऐसे ही नहीं है, ये औषधि भी उन्हीं कम्युनिटी से आती है, उन्हीं बंजारा जातियों से आती हैं, घुमंतू लोगों से आती हैं।
0: ये जो नीपोड है ये बावरिया समुदाय, क्योंकि वो गैदरर्स हैं, तो बिरछा फली जो है उनकी भेड़ बकरियां भी खाती हैं, वो भी खाते हैं सीजन में। और इसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं हम, और ये ऋतु आहार है उनका, और इससे कार्टिलेज बनता है घुटनों में और लोग ठीक होते हैं और सर्जरी से बच जाते हैं, जो अपने आप में एक हमें लगता है कि ऋतु आहार के रूप में बहुत अच्छी चीज है, लोगों को जाननी चाहिए, खानी भी चाहिए।
2: अलग अलग जनजातियों की तरफ से बनाई गई ज्वेलरी, कपड़े, बैग, होम डेकोर, पेंटिंग्स, लोक वाद्य यंत्र और कई तरह के पारंपरिक सामान यहाँ दिखते हैं। सब्वे की दीवारों ने जिंदगी के कई गहरे संदेश और खूबसूरत विचार समेटा हुआ है।
1: ये कोर्स में मैं बहुत बार फंस चुका हूँ, और फिर से एक बार मैं कोर्स में आपको ले जाता हूँ। जो मैंने कहा था कि आप यहाँ आएंगे तो रुकेंगे, ठहरेंगे, ये देखिए, मन फ्रेम में बस तुम हो, ये समझना पढ़ लेना कितना अच्छा है। वेटिंग टू बी विद यू, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जब आप रुकते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद घर पे बैठकर, मन की सुलझने गई उलझ ऐसा तो ना सोचो।
0: ये हमारे ये तो
1: जीवन का सार हो गया,
0: कोट लिखा। अब ये हमारी एक फीचर फिल्म है अनमिले, उसका एक उसके एक गीत का मुखड़ा बन गया है अब ये।
2: इस सब्वे में जनजातियों से जुड़ा लोक संगीत भी बजता है, जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो करता ही है, सुकून भी देता है। यही कारण है कि जो लोग इस अंडरपास से गुजरते हैं वो ठहर कर सभी वस्तुओं को निहारते हैं और इन्हें खरीद भी लेते हैं। बड़ी बात ये ही है कि इस सब्वे को साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त तैयार किया गया था। पिछले 15-16 सालों में इसने नए प्रतिमान भी गढ़े हैं और नई पहचान भी बनाई है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। ज्यादातर महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है अपने विवाह के लिए और अपने वैवाहिक जीवन के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पतिवार व्रत की महिमा क्या है और इसको रखने के नियम क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:15 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 3:40 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व क्या है? देखिए, हर दिन का संबंध होरा के अनुसार एक ग्रह से होता है। उस दिन उससे संबंधित ग्रह की पूजा करके और उपवास रख करके आप उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो मुख्यतः श्री हरि यानी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा आपको मिल सकती है। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि की पूजा करते हैं तो श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती है और बृहस्पति देव की कृपा से संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत अगर नियम से रखा जाए, अगर समझ करके रखा जाए, तो ये व्रत हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में प्रदान करता है। बृहस्पतिवार के व्रत पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, अतिथि का आगमन होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना लाभकारी होगा, कौन से लोग अगर ये व्रत रखें तो उन्हें बहुत फायदा होगा। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर हो, ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, उनको भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, संतान प्राप्ति की या संतान सुख की, उनको भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनको पेट की या मोटापे की कोई भी समस्या हो, ऐसे लोगों को भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। बालिकाओं के, महिलाओं के जीवन का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है बृहस्पति, इसीलिए महिलाओं के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना हर प्रकार से अच्छा होता है, उनको फायदा और लाभ पहुंचा देता है। बृहस्पतिवार के व्रत पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग हैं, रिश्तों में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत रखने का तरीका क्या है, कैसे रखना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं आज बृहस्पतिवार का व्रत रखूंगा या रखूंगी। इसके बाद जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद अगर घर में केले का पौधा है तो केले के पौधे में जल अर्पित करिए। बृहस्पति देव के मंत्रों का इसके बाद जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। अगर आप चाहें तो बृहस्पति व्रत की कथा कह सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो दिन में केवल जल और फल खाकर उपवास रखें। शाम के समय पुनः बृहस्पति देव की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें। अब ये जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। जहां तक हो सके जल और फल ग्रहण करके आपको उपवास रखना चाहिए। अगर एक समय आपको आहार ग्रहण करना है तो नमक का सेवन नहीं करेंगे। सूर्यास्त के पहले मीठी पीली चीज का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप या घर में कोई भी बृहस्पतिवार का व्रत रखता है तो घर में पवित्रता बनाए रखें। सामान्यतः इस दिन घर में मांस मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में आपके सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है, इसीलिए सामान्यतः अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके घर वाले या पुरोहित ऐसी सलाह देते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारा विवाह जल्दी होगा। लेकिन बृहस्पतिवार का व्रत रखने से हर बालिका का विवाह जल्दी नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति महत्वपूर्ण है और शुभ फल नहीं दे पा रहा है, अगर ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है, हर कन्या का नहीं। इसी तरह से अगर कोई महिला है, उसके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, और अगर वो महिला बृहस्पतिवार का व्रत रखती है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन हर महिला के वैवाहिक जीवन में नहीं, जिस महिला के जीवन में बृहस्पति के गड़बड़ होने की वजह से विवाह होने में दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी महिला बृहस्पतिवार का व्रत रखे तो उसके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन में बीमारियों से बचना चाहते हैं, बड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो हर अमावस्या को निर्धन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तु का दान करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार

0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बॉलीवुड में एक बार फिर एक ऐसी कहानी दस्तक देने जा रही जिसमें रोमांस, रिश्ते और ड्रामा
2: काजे बाजे के साथ दुल्हन के लिबास में यामी गौतम की धमाकेदार एंट्री। बॉलीवुड की फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को नई नई तरकीबों से ग्रैंड बनाना आज के जमाने का शिगुफा बन चुका है। लेकिन जिस निराले अंदाज में यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया वो किसी नजीर से कम नहीं। बुधवार को मुंबई में हुए इस इवेंट में यामी गौतम ने पारंपरिक अंदाज के साथ किसी नई नवेली दुल्हन की तरह मोटर बग्घी पर धमाकेदार एंट्री की, तो उनका स्वागत भी दुल्हन की तरह ही गाजे बाजे के साथ हुआ। यामी गौतम के साथ को एक्टर आदिनाथ कोठारे, प्रोड्यूसर आनंद एल राय और फिल्म की पूरी टीम रेड कार्पेट पर नजर आई। इवेंट के दौरान मंच की कमान कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने संभाली और अपने चिर परिचित अंदाज में स्टार कास्ट के साथ मिलकर बातचीत की। नई नवेली दुल्हन एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें यामी गौतम मोहिनी का किरदार निभा रही है। शादी के बाद जब वो ससुराल आती है तो कोई उसे डायन समझता है, तो कोई असीम शक्तियों की मालकिन जो अपने अदृश्य शक्तियों से घर वालों की रक्षा करती नजर आती है।
3: पंडू, बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
4: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी।
5: उसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द आया।
2: यामी गौतम इस फिल्म में अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली है। नई नवेली के ट्रेलर को देखकर सवाल उठता है कि भाभी सच में डायन है या फिर छुपा है कोई ऐसा राज जो पूरी कहानी बदल देगा।
6: क्या बिल्कुल गुनिया है क्या हम?
7: जो अच्छी अच्छी बातें हुई ना दादी, ये सब तो घर के अंदर हुई ना। असली खून खराबा तो घर के बाहर हुआ था दादी।
2: इस रात से पर्दा उठेगा 16 अक्टूबर को यानी दशहरे के मौके पर, जब नई नवेली सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अरे यार,
9: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबर।
11: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
11: देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारी। कल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स स्टूडेंट ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में की तैयार। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25 फीसदी धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी डीप

0: बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टुंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मछार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रहे स्मिथ की तारीफ। काशी में पालित स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान। स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटुकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गणेशोत्सव पर लाल बागचा राजा को मिले उपहारों की भी है।
1: मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं लाल बागचा राजा और अब गणेशोत्सव के बाद उन्हें चढ़ावे में मिली चीजों की चर्चा है। ये सोने की ईंट, सोने चांदी के मोदक, हार, मुकुट, वीणा और आभूषण सब बाप्पा को भक्तों की ओर से भेंट में मिले हैं। सबसे खास तो ये है गदा, क्रिकेट बैट और मोटरसाइकिलें। मानो बाप्पा भगवान नहीं उनके परिवार के सदस्य हों जिन्हें जो सबसे प्यारा है अपने प्यारे गणपति को भेंट कर दिया। वैसे विघ्नहर्ता को बस इतनी ही भेंट नहीं मिली है, 6,11,00,000 से ज्यादा तो नकद मिला है। ये तो उन्हें मिले दान में से बस 85 खास चीजें हैं जिन्हें नीलामी के लिए रखा गया था। जैसा कि लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हर साल गणेशोत्सव के बाद करता है और इस नीलामी से लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को 3,22,00,000 की आमदनी हुई। 1 किलोग्राम के 24 कैरेट सोने की ईंट 1,55,00,000 में बिकी। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अलग अलग समाज कल्याण के कामों में किया जाता है। वो दौर अब शायद पीछे छूट रहा है जब बच्चे सवालों के फेर में नहीं पड़ते थे। अब बच्चे अपना हक जानते भी हैं और उसे मांगते भी हैं। ये तस्वीर देखिए यूपी के हमीरपुर से आई है। जिलाधिकारी अशोक कुमार कुरारा इलाके के पतारा गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय निरीक्षण के लिए आए थे। जांच पड़ताल कर भी ली। क्लासरूम में बच्चों ने उनके हर सवाल का जवाब भी दिया। जिलाधिकारी का काम लगभग पूरा हो गया था। वो आश्वस्त होकर गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि बच्चों ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। उन्हें रोक कर अपनी समस्याएं बतानी शुरू की। स्कूल में मारपीट की, पढ़ाई न होने और मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत की। जिलाधिकारी ने न सिर्फ उनकी शिकायतें सुनी बल्कि नए सिरे से तत्काल जांच के निर्देश भी दे दिए। बच्चों की शिकायतों में कितना सच है ये तो जांच का विषय है, लेकिन डीएम के सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखना और एक अधिकारी के तौर पर डीएम का बच्चों की शिकायतों पर ध्यान देना दोनों ही सुखद है। ये सुखद तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर से आई है। कभी हाथों में हथियार लेकर जंगलों में सक्रिय रहने वाले बस्तर संभाग के 8 पूर्व नक्सलियों ने अब किताब और कलम के जरिए नई राह चुनी है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से इन्होंने इस साल 10वीं की परीक्षा दी और उसमें सफलता भी हासिल कर ली। जिंदगी की नई राह पर चले इन पूर्व नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे भास्कर भी शामिल हैं। इनमें गीता नारोटी भी हैं, जो संगठन में रहते हुए घायल नक्सलियों का इलाज करती थी। अब 35 की उम्र में 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की तो नर्स बनने का सपना भी आंखों में सज गया है। भास्कर भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। जंगल में भी उनकी किताबों से दोस्ती थी और अब वो इसी दोस्ती को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। आगे पढ़ाई के जरिए अपने गाँव और समाज में शिक्षा की अलग जगाना चाहते हैं। ये जुगाड़ की नाव है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। असल में चर्चा नाव की नहीं एक पिता की हो रही है। पिता जिसने ये जुगाड़ की नाव बनाई है सिर्फ इसलिए कि बच्चे का स्कूल ना छूटे। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, अभाव जीवन में बना रहेगा, लेकिन बच्चे के भविष्य निर्माण का ये समय लौट कर नहीं आएगा। सो खुद ये जुगाड़ वाली नाव बना डाली। नाव चल रही है, पीछे बच्चा नाव चलाने वाले को कसकर थामे हुए है। वीडियो मुस्करा कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टेशन पर खड़ी ये महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसके सामने आकर आत्महत्या कर सके। आसपास खड़ी ये दोनों उसके बच्चे हैं जो उसे लगातार रोक रहे थे, लेकिन जब उसने बच्चों की नहीं सुनी और ट्रेन बेहद करीब आने लगी तो बच्चे पीछे हट गए और असहाय नजरों से मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक शख्स आता दिखा। बच्चों ने फौरन उन्हें इशारा किया और इशारा पाते ही शख्स ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन आने से पहले ही उस महिला को खींच लिया। घटना रायपुर के उरकुरा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है और उस महिला की जान बचाने वाले शख्स और कोई नहीं, वहां के स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय थे। अब बच्चों की सूझबूझ और स्टेशन मास्टर की तत्परता, दोनों की खूब चर्चा है।
0: और अब बात करते हैं फ्लाई दुबई के हीरो पायलट स्मिथ मछार की। फ्लाई दुबई के विमान में हवा में मौत को मात देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पूरी दुनिया की आंखों का तारा बन गए। आसमान में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाले इस भारतीय कैप्टन की पूरी दुनिया के दिग्गज मुरीद बन गए। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मिथ मछार को हीरो बताया, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके असाधारण साहस को सलाम किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें हीरो बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की। अब कैप्टन स्मिथ की जाबाजी की चर्चा दिल्ली से वॉशिंगटन और यरूशलम तक हो रही है। फिलहाल घटना में घायल कैप्टन स्मिथ का सऊदी अरब के तबुक में इलाज चल रहा था और अब उन्हें आगे के इलाज के लिए सऊदी अरब से अबू धाबी एयरलिफ्ट किया गया है।

0: पूरा खून से लथपथ हुआ तो भी उसके एक ही माइंड में था कि सब जन को बचाना है। वो जबरदस्त, ऐसा तो ये पिक्चर में देखते हैं, रियल लाइफ में हीरो है, हीरो है, हीरो ही रहेगा, उसको हर घाट को पर वाले नहीं, पूरे वर्ल्ड उसको स्वागत करे।
1: लाइक ऑल द स्ट्रेंथ टू हिम, आई एम रियली प्रेइंग लाइक भगवान करके वो उनका उनको ऑल द शक्ति मिले।
2: हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई, कॉकपिट खोला और अपने प्राणों को जान को बाजी पर लगाकर इतने लोगों की जान बचाई, ये हमें बहुत प्राउड है।
3: बिल्कुल सही सुना आपने, हमें गर्व है, वो हीरो है, हीरो ही रहेगा। कैप्टन स्मिथ मछार सैकड़ों यात्रियों की जान बचाकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हीरो हो गए हैं।
4: When we are up there and if something happens, you know, who's going to save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life.
3: करीब एक साल पहले कैप्टन स्मिथ ने एक इंटरव्यू में ये कहा था और आज उनके वही शब्द सच साबित हुए।
5: हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
3: आज चारों तरफ जाबाज हिंदुस्तानी पायलट का गुणगान हो रहा है, आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। स्मिथ के दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है। भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन अजार ने खुले दिल से कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है।
6: नई दिल्ली हो या जेरूसलम या विश्व के और भाग, चर्चा इस समय उस फ्लाई दुबई विमान की और कैप्टन स्मिथ मछार की हो रही है जिन्होंने 180 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर जीवित बचा लिया। इस समय इसराइल के भारत में राजदूत एम्बेसडर रूवेन अजार मेरे साथ हैं। कैप्टन मछार की जो कैप्टन स्मिथ की जो वीरता है, हिज वैलर, इसराइल उसे किस रूप में देखता है? हाउ डज इसराइल सी दैट वैलर?
7: धन्यवाद सवंत। This is really extraordinary courage, bravery, perseverance of Captain Smith Machar, who has shown that despite the attack, despite the pain of being stabbed, he managed to open the door of the cab.
3: ये तस्वीरें इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। ये वही यात्री हैं जो फ्लाई दुबई की उस फ्लाइट में सवार थे जिसे आसमान में ही एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तब भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जो साहस दिखाया उसके बाद तो वो दुनिया के लिए रियल हीरो बन गए। फ्लाइट नंबर FZ1073 में खुद घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ ने विमान को बचाने में अहम भूमिका निभाई और कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ मिलकर विमान में सवार कुल 174 यात्रियों की जान बचाई। स्मिथ ने वो कारनामा किया है जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाल दिया।
8: And an Israeli passenger, a civilian, I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day. Along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
3: प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक और 9/11 होने से बचा लिया। इस बयान की गंभीरता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान में उस वक्त हालात कितने खतरनाक रहे होंगे।
9: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया। और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
3: अब आपको बताते हैं कि दुबई से इसराइल के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में पूरा विमान संकट में घिर गया। घटना बुधवार सुबह की है, जब 6:05 पर फ्लाइट नंबर FZ1073 ने दुबई से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी। विमान की कमान पायलट स्मिथ और ओमान के को पायलट के हाथ में थी। पायलट में 174 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें मुख्य रूप से इजरायली नागरिक थे। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद फ्लाइट सऊदी अरब और जॉर्डन की सीमा के पास करीब 34,000 फीट की सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक कॉकपिट में चीख पुकार मची और विमान में हड़कंप मच गया। ओमान के कोपायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ पर अचानक चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में कैप्टन के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वे लहूलुहान हो गए। बताया जा रहा है कि कैप्टन पर हमला करने के बाद कोपायलट ने विमान को क्रैश कराने या नीचे गिराने की नीयत से कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे आने लगा। फ्लाइट ट्रेडर 24 के डेटा के मुताबिक विमान सिर्फ 1 मिनट के भीतर 33,000 फीट से घटकर सीधे 17,000 फीट पर आ गया। इस तेज गिरावट की वजह से विमान के पिछले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा और केबिन में यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई।
10: मेरे कुछ सूत्रों के अनुसार ये हमें मालूम चला कि ये जो एक पैसेंजर थी महिला, वो टॉयलेट के पास खड़ी थी, जो टॉयलेट का फ्रंट डोर होता है, वो फ्रंट टॉयलेट का वो कॉकपिट के साथ होता है, तो उसकी बेटी अंदर वॉशरूम में थी, तो उसने बहुत जोर जोर की आवाज़ें और चीखें सुनी कॉकपिट के अंदर। तो उसने पीछे जाके कैबिन क्रू को इतला किया और वहाँ पे एक पायलट भी बैठा हुआ था जो कि सफ़र कर रहा था। तो इन लोगों ने आके, अभी किसने दरवाज़ा खोला या कॉकपिट में से कैप्टन ने खोला, और कैबिन क्रू के पास भी ये सुविधा है कि वो इमरजेंसी कोड डाल के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो उन्होंने जाके जब अंदर देखा तो काफ़ी खून बहा हुआ था दोनों पायलट का, और जो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ट्रीटमेंट थे।
3: गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने को पायलट से डटकर मुकाबला किया और किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। दरवाजा खुलते ही केबिन क्रू और 3 से 5 यात्री कॉकपिट के अंदर घुस गए। उन्होंने मिलकर हमलावर को पायलट को दबोच लिया और बांध कर काबू में किया।
11: अभूतपूर्व ब्रेवरी, साहस दिखाया और खून से लथपथ होने के बावजूद वो बाहर निकले। उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने, जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया और उसके बाद फिर को पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ CVR और FDR के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा।
3: अब आपको बताते हैं कि पायलट जब फ्लाइट उड़ाते हैं तो उन्हें कई जरूरी नियम को फॉलो करना होता है, यानी कॉकपिट में एक पायलट क्या कर सकता है और उसे क्या नहीं करना है।
11: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूँ जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं। ये देखिए, इस वक्त हम मिड एयर हैं और जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 30,000 फीट पर हम हैं। और इसके बाद हम आपको जो एरिया दिखाने वाले हैं वो इस पूरी रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, ट्रांसपॉन्डर जी। और ट्रांसपॉन्डर आप समझिए, पहले योक, थ्रस्ट लिवर और उसके साथ साथ ट्रांसपॉन्डर। यहां पे कई सारे कंट्रोल्स हैं एयरक्राफ्ट के, बोइंग का ये 737 एयरक्राफ्ट है, ठीक ऐसा ही वो हवाई जहाज का कंट्रोल

0: कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और ये एफडीआर है, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है जो ऑन रहता है। तो सीवीआर और एफडीआर ये दो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं।
1: हमलावर को पायलट को काबू में किए जाने के बाद फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया। बुधवार सुबह करीब 9:45 पर उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं है। को पायलट को हिरासत में लेकर जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं। वहीं पूरी दुनिया पायलट स्मिथ की सूझबूझ और अदम्य साहस की तारीफ कर रही है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।
2: हीरो पायलट स्मिथ मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। आपको बता दें कि जो तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर की है, जहां सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर मां कालका मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में वेद पाठी बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान बटुकों ने अपने हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी ले रखी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पायलट स्मिथ मछार के शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और मानवता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के सम्मान और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामनाओं के लिए काशी विश्वनाथ धाम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 1,00,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। आपको बता दें कि कैप्टन स्मिथ मछार ने घायल होने के बावजूद भी अपना नियंत्रण पायलट से नहीं खोया। लहूलुहान होने के बावजूद भी स्मिथ ने हिम्मत नहीं हारी और फ्लाइट में सवार तमाम सवारी की जान बचाने में वो कामयाब रहे।
3: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मछार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मछार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं। वाराणसी के इस पतालपुरी मठ में अभी हमारी मौजूदगी है, तमाम वेद पाठी छात्र यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, उनके प्राणों की रक्षा की कामना कर रहे हैं। हम जानते हैं पातालपुरी मठ के जो पीठाधीश्वर हैं बालक देवाचार्य जी, उनसे कि कितना बड़ा ये साहस का परिचय भारतीय मूल के एक पायलट ने दिया है और इसके लिए काशी से किस तरह का संदेश जा रहा है।
4: देखिए, निश्चित रूप से 72 पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है बहुत बड़ा कार्य किया है। 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको स्वास्थ्य लाभ हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
2: दिल्ली एनसीआर में आज से नो यूसीसी नो फ्यूल का नियम लागू हो गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से दिल्ली एनसीआर में नो यूसीसी नो फ्यूल का नियम लागू कर दिया गया है। यानी अगर आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUCC नहीं है तो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दी जाएगी। पहले दिन पेट्रोल पंपों पर इसका असर दिखाई दिया, हालांकि कई वाहन चालकों को अभी इस नियम की पूरी जानकारी नहीं है, तो वहीं ज्यादातर लोग इसे प्रदूषण के खिलाफ अच्छा कदम बता रहे हैं। पीएम मोदी ने आज भारत मंडपम में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने UPSC शताब्दी स्मारक सिक्का, एक विशेष स्मारक डाक टिकट और भारत में UPSC और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन किया। पीएम यहां मुख्य अतिथि के तौर

0: तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने यूपी में सड़क सुरक्षा और यातायात निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए 87 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें 25 चार पहिया और 62 दो पहिया हाईटेक वाहन शामिल हैं। ये सभी लेजर स्पीड गन और 360 डिग्री कैमरों से लैस हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अंतिम चरण में है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। अब मात्र 10 दिन की यात्रा शेष रह गई है। ऐसे में कड़ाके की ठंड और बीते दिनों की बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालु बड़ी तादाद में हेमकुंड साहिब पहुँच रहे हैं। अब तक लगभग 360,000 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। कैप्टन स्मिथ मछार का नाम आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उनके साहस को दुनिया सलाम कर रही है। ऐसे में भारत में भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और मानस कुमार साहू ने भी खास अंदाज में उन्हें सलाम किया है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है।
1: और अब बात टाइगर सफारी की। मॉनसून की विदाई के साथ ही देश के ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जंगल के रोमांच की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के रणथंबोर और सरिस्का से लेकर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, मंडला और नर्मदापुरम टाइगर रिजर्व तक पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। वही महाराष्ट्र में चंद्रपुर के ताडोबा भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब सैलानी जंगल की सैर पर निकले तो पहले ही दिन उन्हें जंगल के राजा का दीदार हो गया।

0: वाइल्ड लाइफ और जंगल सफारी के दीवानों के लिए आज से देश भर के नेशनल पार्क, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के दरवाजे खोल दिए गए। बारिश के 3 महीने बाद जंगल एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। जंगल का राजा टाइगर अपनी एक झलक से सैलानियों का रोमांच बढ़ा रहा है और सैलानियों की आंखें भी उस खास मेहमान को तलाश रही हैं, जिसकी एक झलक पूरे टूर को यादगार बना देती है। राजस्थान के रणथंभौर में पर्यटन के नए सत्र का शानदार आगाज हो गया है और 3 महीने के लंबे वक्त के बाद सैलानी जंगल की सैर पर निकल रहे हैं। तो पहले ही दिन, पहले ही पारी में पर्यटकों को वो देखने को मिला जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। रणथंभौर के जोन नंबर 3 में जोगी महल के पास टाइगर सफारी के दौरान सैलानियों को बाघ RBT 2505 का दीदार हुआ। जंगल के बीच बाघ की मौजूदगी ने सफारी का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया। जंगल के बीच बाघ को अटखेलियां करते देख सैलानियों का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसी ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया तो कोई बस टकटकी लगाए जंगल के राजा को निहारता रहा। टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा पर्यटकों का दबाव रणथंभौर में रहता है। यहाँ सफारी को लेकर पर्यटकों में पहले से काफी उत्साह रहता है। नए सीजन के पहले दिन राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी सैलानियों से गुलजार हो गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व खुलने पर सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया, फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन हुआ, फिर उन्हें जंगल सफारी के लिए रवाना किया गया।
1: अगर आप सरिस्का रणथंभौर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की साबित हो सकती है। दरअसल 1 अक्टूबर से सरिस्का रणथंभौर मुकुंद्रा सहित राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व व बर्ड सेंचुरी पर्यटकों के लिए खुल चुके हैं। ऐसे में पहले दिन यहां पर्यटकों का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया और लोगों को मिठाई बांटी गई। मैं इस समय सरिस्का क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर पहले चरण की जो सफारी है वो पूरी हो चुकी है। पहले चरण में भी यहाँ पर कई वन्य जीव और टाइगर यहाँ पर पर्यटकों को दिखे, तो अब दूसरे जो चरण की जो सफारी है उसकी तैयारी वो चल रही है। यहाँ पर बुकिंग काउंटर पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं पर्यटक, और उसके बाद यहाँ अपना टिकट लेकर सफारी के लिए अंदर जंगल में जाएंगे।
0: लंबे इंतजार के बाद जंगल में लौटे इस रोमांच को देखने के लिए सैलानियों में उत्साह है, उमंग है और उल्लास है। सरिस्का NCR के नजदीक होने के कारण यहाँ पूरे साल देशी और विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम से सरिस्का पहुँचने में करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। यही वजह है कि सरिस्का पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है।
2: इच्छा तो है कि टाइगर साइटिंग हो, काफी नाम सुना है इस जोन का, तो उसी उम्मीद के साथ आए हैं।
3: सुबह आए, ऑनलाइन करवाई थी,
2: ऑनलाइन हमने बुकिंग कराई थी और नेट पे काफी थोड़ी रिसर्च भी करी थी, तो बताया गया था कि ये जोन काफी फेमस है टाइगर साइटिंग के लिए। तो इत्तेफाक से पहली आज पहला दिन है, तो हमें पता नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पहले दिन कब होगा, लेकिन पहला दिन है तो उम्मीद है कि कुछ होना चाहिए, साइटिंग होनी चाहिए।
0: यहाँ आने वाले पर्यटकों को टाइगर साइटिंग का भी इंतजार रहता है। सरिस्का में कुल 56 टाइगर बताए गए हैं, इनमें 28 मेल और फीमेल टाइगर, जिनमें 28 शावक भी शामिल हैं।
4: सरिस्का का जो 3 महीने के बाद जो ओपनिंग हुआ है ये काफी उत्साहजनक है, और 1 महीने की पूरी सफारी जो है बुक हो चुकी है, एडवांस बुकिंग लगातार जारी है, और आज के समय में मतलब सरिस्का में हमारे 56 टाइगर्स हैं, जिसमें 28 मेल और फीमेल हैं और 28 करीब यहाँ पर बच्चे हैं, तो कुल 56 टाइगर्स हैं सरिस्का में। इसमें जो हमारी टूरिस्ट के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने लगातार सुधार करने की कोशिश की है, जैसे कि जो टॉयलेट्स हैं, जो पार्किंग एरिया है जहाँ पर आते हैं उनको बैठने की सुविधा है, वो हमने की है।
0: राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी जंगल सफारी के लिए लोग पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी मॉनसून ब्रेक के बाद जंगल सफारी फिर शुरू हो गई है। गेट खुलते ही सैलानी जंगल की पगडंडियों पर निकल पड़े हैं।
5: बांधवगढ़ में मैं आ रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से, और बांधवगढ़ का मेरा जो पहला भाग मैंने देखा था बीटू देखा था, और लगभग 15-20 साल से रेगुलर आ रहा हूँ।
6: हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, एवरी सीजन आते हैं। बांधवगढ़ में जो आपकी टाइगर की साइटिंग है वो बहुत अच्छी होती है, टाइगर आपको मिलता है काफी देर तक, उसको देखने को भी मिलता है, टाइगर का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, पहले समय पता भी चल जाता है कि कहाँ आने वाला है टाइगर।
0: सफारी शुरू होने से पहले पार्क प्रबंधन ने सेंटर पॉइंट की सड़कों सहित पर्यटकों से जुड़े सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है। इस बार सफारी की शुरुआत जंगली हाथियों के मूवमेंट के बीच हुई है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए गाइड और वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
7: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने सितंबर महीने में लगभग एक माह तक सभी गाइड्स को इस विषय में लगातार प्रशिक्षण दिया है कि हाथियों वाले क्षेत्र में किस प्रकार से वन भ्रमण करना है। उनको हिदायत दी गई कि हाथियों के वाले क्षेत्र में पर्यटकों को बिल्कुल ही सामने से न ले जाए, जबकि रुके और हाथियों को पहले जाने का रास्ता दें, सजग रहें, सचेत रहें। साथ ही हमारी जो टीम है जो हाथियों के मूवमेंट पर नज़र रखती है, अगर किसी क्षेत्र में हाथियों का मूवमेंट होगा तो वो इस तरह के पर्यटन वाहनों को पहले से ही सचेत करेगी।
0: मॉनसून सीजन के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के सभी गेट खोल दिए गए हैं। रिजर्व के गेट खुलते ही फूल मालाओं से सैलानियों का स्वागत किया गया। इसके बाद जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर गेट से प्रवेश देकर सफारी के लिए रवाना किया गया। पहले दिन ही पर्यटकों में जंगल सफारी और वन्य जीवों के दीदार को लेकर खासा उत्साह नजर आया। बता दें कि पन्ना कभी बाघों की संख्या में भारी गिरावट के कारण चर्चा में आया था। इसके बाद यहां बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाया गया। दूसरे टाइगर रिजर्व से बाघ और बाघिन लाकर पन्ना में बसाए गए। इसके बाद बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और पन्ना को बाघ संरक्षण की सफल कहानियों में शामिल किया जाने लगा। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर कान्हा के घने जंगल सैलानियों की चहल पहल से गुलजार हो उठे हैं। जंगल सफारी के साथ साथ यहां पर्यटकों के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं।
8: पर्यटक सीजन जो आरम्भ होता है वो ये वाइल्ड लाइफ वीक का भी आरंभ होता है, तो ये एक सप्ताह चलने वाला जो कार्यक्रम है इसमें हम लोग अलग अलग थीम्स पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, इको विकास समितियों के साथ हमारे संवाद होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए आगे आए।
0: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी जंगल का सन्नाटा अब टूटने लगा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तीन महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर चहलकदमी शुरू हो गई है। गेट खुलते ही जंगल सफारी के लिए सैलानियों की कतार लग गई। यहां पहुंचे सैलानियों का गुलाब का फूल देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बाघों की दहाड़, हरे भरे जंगल का नजारा और वन्य जीवों की मधुर आवाज का अनुभव लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक ताड़ोबा पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एक बार फिर जंगल सफारी का रोमांच देखने को मिल रहा है। फूल से स्वागत कर जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर सफारी के लिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रेणु श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश के पन्ना से दिलीप शर्मा, नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी, मंडला से आनंद प्रकाश चौधरी, राजस्थान के रणथंभौर से राहुल राज, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
9: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। गुरुवार 1 अक्टूबर को सेंसेक्स 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 198 अंक फिसला, ये गिरकर 22,422 पर आ गया। गुरुवार 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई। रुपया कमजोर होने और ग्लोबल मार्केट में मजबूती के कारण सोना 500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,49,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई, चांदी 5,000 रुपए लुढ़की। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,27,000 रुपए पर आ गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 37 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 96.31 रुपए हो गई।
9: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारी। कल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स स्टूडेंट ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक 80 स्टूडेंट और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार की। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नीप करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टुंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मछार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रही स्मिथ की तारीफ। काशी में पाल स्मिथ के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान। स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना। पातालपुरी मठ में वेद पाठी बटुकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। न्यूज पथ में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
11: दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेंद को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर है। बॉल आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है, कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है, पर ये एक्सरसाइज है इतना मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, सनातन परंपरा, कला और संस्कृति का अनूठा संगम भी है। नवरात्र शुरू होने वाला है, देवी का आगमन बस होने ही वाला है। उससे पहले कलाकार के भावों की अभिव्यक्ति देखिए। माँ के स्वागत की ये तैयारी लोगों का दिल छू रही है। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज न कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब यही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी। देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो। हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था। अब ये तो वही जाने। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ जड़ हो या चेतन, हर किसी को सम्मान मिलता है और ये परंपरा प्यार, मूल्यों और उदाहरणों के जरिए आगे बढ़ती है। यहाँ देखिए एक बेटी अपने पिता से कैसे सीख रही है अन्न का सम्मान करना, मंदिर में खाना कैसे खाना है, कैसे सम्मान जताना है और कैसे संस्कारों को आगे ले जाना है। वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
9: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों की। दिवाली आने से पहले पटाखों पर रोक को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बुधवार को पटाखों पर रोक को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संतुलित रास्ता निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि वो पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी के पक्ष में नहीं है, लेकिन 24 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों को परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा समाधान निकालेगा जिसमें पटाखे चलाने के लिए तय समय होगा और यह भी तय किया जाएगा कि किस तरह के पटाखे को जलाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट जनरेशन के ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले लड़ी या फिर ऐसे पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा था जो एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं और एक के बाद एक तेजी से फूटते हैं। पुरानी लड़ियों में एक सेकंड के अंदर 25 गूंथे हुए पटाखे फूट सकते थे, जबकि अब नई पीढ़ी के जो ग्रीन पटाखे होते हैं उसमें ये संख्या 25 से कम करके 5 कर दी गई। इसका मतलब ये है कि नए पटाखों के फूटने की रफ्तार कम होगी और इन पटाखों से होने वाला प्रदूषण और धुआं भी कम होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वैज्ञानिक तरीके से बने और मानकों का पालन करने वाले लड़ी पटाखों को अनुमति दी जा सकती है। नई पीढ़ी के इन ग्रीन पटाखों को तय फॉर्मुलेशन, उत्सर्जन, आवाज और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कम मात्रा में बेरियम सॉल्ट और नाइट्रेट और नए फॉर्मुलेशन से पारंपरिक पटाखों की तुलना में पीएम 10 और पीएम 2.5 के उत्सर्जन में 45 से 60 प्रतिशत तक कमी देखी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटाखों के बेरियम की जांच, डेसिबल लेवल तय करने और फायर टेस्ट के लिए समय भी दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि दिवाली पर कौन से पटाखे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस मामले में अब 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। दिवाली पर पटाखे जलाने का मुद्दा प्रदूषण के साथ सही जन भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
12: आस्था एक अलग विषय है और आदमी का जो स्वास्थ्य है वो एक अलग विषय है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी बिल्कुल सराहना करता हूं और उसका तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है उनका धन्यवाद अदा करता हूं। देखिए जिस तरीके से दिवाली का पर्व है, आप खुशियाँ मनाइए। देखिए सबके त्यौहार हैं और सबके अपने अपने त्यौहार हैं, सब अपने अपने तरीके से खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन खुशियाँ का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करें। दिवाली पर हर साल जिस तरीके से पटाखे फोड़े जाते हैं उससे दिवाली, विशेषकर जो दिवाली का दिन होता है और जो रात होती है, उस रात पर प्रदूषण का स्तर इस तरह से खतरनाक हो जाता है कि लोग सांस तक नहीं ले पाते। सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तमाम बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाती है। तो दिवाली जो है वो एक आस्था का पर्व है और खुशियों का पर्व है। आप खुशियां मनाइए, तमाम सारे तरीके खुशियां मनाने के, सिर्फ एक ये तरीका नहीं है कि आप पटाखे फोड़ कर ही दिवाली मनाएं। आप एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दें, मिठाइयां बांटें, लेकिन जिस तरीके से ये पटाखे फोड़े जाते हैं और लोगों का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये इसको चीज को मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बिल्कुल उचित है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ये निर्णय बहुत पहले ही आ जाना चाहिए।
13: देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि आस्था को ठेस ना पहुंचे और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने एक कहते बिंदु पर उन्होंने केंद्रित किया है कि पटाखे जलाएं, ग्रीन पटाखे जलाएं, पर जनता है और उसका स्नेह दिखता है कि जनता जब दिवाली मनाती है तो फिर दिवाली अपने तरीके से मनाती है, वो चाहे कैसे भी पटाखे हों। अब मार्केट में अगर ग्रीन पटाखे बिकेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी खूब जलेंगे और जलाए जाएंगे, और अगर उस मार्केट में ग्रीन पटाखे के अलावा अन्य कोई भी पटाखा बिक रहा होगा तो वो भी जलेंगे।
14: देखिए बिल्कुल सही बात है, पहले जिस प्रकार से पटाखे फोड़े जाते थे, एक तो दुनिया भर की पोल्यूशन होती थी और इतना शोर होता था उस चीज़ पे कि जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, कोई बीमार व्यक्ति हैं, जिनको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता। अब ग्रीन पटाखा जलेगा, एक तो पॉल्यूशन से लोग कम पॉल्यूशन होगा, कम आवाज़ करेगी और लोग हेल्दी भी रहेंगे, चीज़ से ज़्यादा मतलब हार्मफुल नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सही आदेश है और आस्था को लेकर अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है और लोग जुड़ेंगे इस चीज से।
15: ग्रीन पटाखों की अनुमति से ये कहा जाए कि थोड़ी सी अनुमति देने से हो सकता है कि दूसरे तरह के पटाखे फोड़े जाए। इससे पहले भी साबेरी में बहुत सारे पटाखे पकड़े गए हैं जो नियमों के विपरीत थे। तो कहीं ना कहीं मेरा तो यही मानना है कि जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई भी इसका पालन विशेष रूप से नहीं कर पाएगा और इसमें नियमों का उल्लंघन होगा। तो मैं मानता हूं कि पटाखों का ना ही प्रयोग हो, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी बहुत दिक्कतें होती है और इसका हानिकारक।
9: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम ने ब्रोंज मेडल जीता। सेलिंग में पुरुषों के स्कर्फ इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर दिया। वहीं आर्चरी में गणेश मणि ने ब्रोंज मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया। तो क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में 124 रनों से हराकर 3 अक्टूबर को होने वाले गोल्ड मेडल मैच के लिए फाइनल में जगह बना ली।
16: एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का दबदबा कायम है। प्रतियोगिता के 12वें दिन भारतीय तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया। भारतीय खिलाड़ियों ने आर्चरी, स्क्वैश और सेलिंग में अपना लोहा मनवाते हुए देश को मेडल दिलवाया। 12वें दिन तीरंदाजी में भारतीय टीम का जलवा देखने को मिला।
17: आर्चरी के कंपाउंड मुकाबले में गणेश मलनी ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया, तो वहीं रेसलिंग में नितेश सिवाच ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा पुरुषों की स्केफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और कोरिसिंकल नोबल की जोड़ी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। स्क्वैश में भी भारत का दम देखने को मिला। भारतीय पुरुष और महिला दोनों स्क्वैश टीमों ने सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक जीता। इसके अलावा बैडमिंटन में भी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। एचएस प्रणॉय ने पुरुष एकल में सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। एशियन गेम्स क्रिकेट में भी भारत का जलवा देखने को मिला। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रन से मात देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के 12वें दिन इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय दल एशियन गेम्स में अपने अब तक के सबसे बड़े मेडल टैली की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
0: एक्टर राजकुमार राव की नई फिल्म प्रहार का ट्रेलर जारी होने के बाद अब इसका पहला गाना मेरे रहते भी रिलीज हो गया है। इसका जोशीला संगीत और एक एक शब्द मन को भावनाओं से भर देने वाला है। गाने को मुख्य किरदारों राजकुमार और वामिका गब्बी पर फिल्माया गया है। साथ में फिल्म के विषय से जुड़े खौफनाक दृश्यों को भी दिखाया गया है। ये फिल्म 26/11 मुंबई हमले के बाद की कानूनी लड़ाई पर आधारित है, जिसमें राजकुमार राव वकील उज्ज्वल निकम का किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति अभिनेता जहीर इकबाल फिल्म तू है मेरी किरण में साथ नजर आएंगे। फिल्म का पहला पोस्टर जारी हुआ है। ये फिल्म रोमांटिक थ्रिलर होगी। फिल्म के फर्स्ट लुक में सोनाक्षी एक टेबल पर लैपटॉप पर काम करती दिखाई दे रही हैं, वहीं उनके पास बैठे जहीर उन्हें घूर रहे हैं। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्ट्रेस यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म दशहरा के मौके पर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें एक आदर्श बहू, एक अतरंगी परिवार और एक ऐसे राज की कहानी है जो घर की दहलीज पार कर कोसों दूर तक जाती है। बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी मेरठ पर आधारित है।
18: मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द आया।
9: कुछ दिनों बाद शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक, उसकी खूबसूरती और भव्यता देखते ही बनती है। दुर्गा पूजा यहां बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होने के साथ साथ बंगाली समाज की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और भाईचारे को भी दर्शाती आई है।

0: बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है। शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा बंगाल माँ दुर्गा के स्वागत में ऐसे सज उठता है मानो स्वयं देवी अपने मायके आई हों। माँ जगदम्बा को ही समर्पित भव्य पंडाल, आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं, ढाक की गूंज, धुनुची नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाज इस उत्सव को एक अनूठी पहचान देते आए हैं। कुछ ऐसी ही छटा इस साल भी बिखेरने की तैयारियां हो रही हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान की हैं, जहां भव्य पंडालों को बनाने का काम शुरू हो गया है। मां की मूर्तियों को भी दिन रात की मेहनत के साथ आकार दिया जा रहा है, उनमें रंग भरा जा रहा है। ऐसे में पूर्व बर्दवान में प्रसिद्ध लालटू स्मृति संघ के इस निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल की थीम इस बार बालाजी पर आधारित है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर मिट्टी के कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई बहुत व्यस्त है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो पूर्ण जो इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुति बालाजी जो मंदिर है बालाजी का, उसी का चीज है।
2: अच्छा, तो इस्तेमाल किया जा रहा है
1: इसमें, आपको देखिए वो प्लाई भी है, सनपैक भी है, प्लाईवुड भी है और वो सब तो उनको कोई जो दरकार पड़ता है उसी से मिलते, फाइबर भी है, ये भी है।
2: कब तक ये तैयार हो जाने का?
1: मेरा ख्याल से तो हम जो इनका काज का स्पीड बहुत बढ़िया है, देखिए ना कितना पूरा बना दिया। तो महालय का दिन ये लोग कर रहे हैं।
0: पंडाल बनाने वालों के साथ ही मूर्ति कारीगरों के बीच भी कुछ ऐसा ही उत्साह दिख रहा है। मूर्तियां बनाने के काम में भले ही कुछ रुकावटें आ रही हैं, लेकिन बिना थके बिना रुके तेजी से काम जारी है। उद्देश्य है कि महालया से पहले मूर्तियां केवल बर्दवान ही नहीं बल्कि शहर से बाहर दूसरे शहरों के पंडालों तक पहुंचाई जाएं।
3: बहुत जोर से
2: रात दिन काम कर
3: रहा, रात दिन एकदम 1:30-2 बजे तक काम चल रहा है। दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है,
2: बर्दवान का है या फिर बाहर
3: ना, थोड़ा इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
0: फिलहाल तो पूर्व बर्दवान शहर में बड़े बजट वाले सभी पूजा पंडालों में अभी से जबरदस्त हलचल है। पंडालों को भव्य बनाने की तैयारियां दिन रात हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये पंडाल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और भाईचारे को भी अभिव्यक्त करते आए हैं। तो पंडाल में सजी दजी माँ की पारंपरिक भव्यता और सजावट का प्रदर्शन करती अनुपम प्रतिमाएं तो अलौकिकता का अनुभव देती ही आई हैं। निश्चित तौर पर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि ये जीवन का उत्सव है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान से सुजाता मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: ब्रेक प्लाजा में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
4: आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में किया बदलाव, खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
8: आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब बैटिंग के दौरान अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर समय बर्बाद करता है तो फील्डिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। इसके अलावा पुरुष, महिला और जूनियर क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली गेंद के साइज और वजन की अलग अलग सीमा भी तय की गई है। नए नियम आज से या इसके बाद शुरू होने वाली इंटरनेशनल सीरीज पर लागू होंगे। जो सीरीज पहले से चल रही है उनमें पुराने नियम ही रहेंगे। वैभव सूर्यवंशी को टाइम मैगजीन ने 2026 के टॉप 100 राइजिंग स्टार्स की लिस्ट में जगह दी है। लिस्ट में जिन 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है इनमें वैभव एकमात्र क्रिकेटर हैं। ये अमेरिकी मैगजीन हर साल अलग अलग फील्ड के टॉप युवा अचीवर्स के लिए टाइम 100 नेक्स्ट नाम की लिस्ट जारी करता है। 15 साल के बल्लेबाज सूर्यवंशी लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय हैं, साथ ही वे लिस्ट में सबसे कम उम्र के सदस्य भी हैं। जापान के आईटी नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। अब गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना मलेशिया से होगा।
4: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीमें। देशभर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां, कल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही हैं गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली, 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में किया तैयार।

0: हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नींव करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रही है स्मिथ की तारीफ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की, जिसमें देश की बेटियों ने अपनी चमक दिखाई है। देश के लिए न सिर्फ गोल्ड बल्कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अपनी प्रतिभा से दुनिया को हैरान कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की बेटियों ने जापान के आइची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेल में अपना परचम लहरा दिया। चाहे वो शॉटगन क्वीन नीरू ढांडा हो या फिर हरियाणा की गोल्डन गर्ल किरण, आज सभी की जुबान पर इनका नाम है। जहां दौड़ में बेटियों ने नए कीर्तिमान बनाए, वहीं पर तीर चलाने में भी उन्होंने कमाल करके दिखाया। टीम इवेंट हो या फिर व्यक्तिगत मुकाबले, बेटियों ने अपने हुनर और अपनी लगन से पदक जीतकर एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया है और साबित कर दिया है कि खेल के आसमान पर उनका दबदबा कायम है। आज आपको ऐसी तमाम गोल्डन बेटियों की जीत और उनके संघर्ष की तमाम कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं जापान में इतिहास रचने वाली नीरू ढांडा से। हरियाणा की इस शॉटगन क्वीन ने शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास अपने नाम कर लिया। न सिर्फ एक बल्कि नीरू ने 2 गोल्ड अपने नाम किए हैं और 1 सिल्वर पदक भी हासिल किया है। जिंदगी के तमाम संघर्ष और उतार चढ़ाव के बावजूद इस मकाम को हासिल करके नीरू ने देश की बेटियों के सामने एक मिसाल पेश की है। इसी तरह का कारनामा सोनीपत की किरण पहल का भी है, जिन्होंने देश के लिए 1 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता है। इन बेटियों की जीत से खुशी तो है ही, गर्व भी है। रिपोर्ट देखिए।

0: एक ओर जीत की खुशी और दूसरी ओर खुशी के आंसू। जापान और चीन के बीच का फासला इस एक लम्हे में जैसे सिमट गया। परदेश में एक बेटी ने जो कीर्तिमान रचा है उस पर पूरा देश झूम रहा है, पर जो गर्व इस माँ को है उसे बयान नहीं किया जा सकता।
1: बहुत बहुत खुशी हुई मेरा जी। मेरी बेटी इतनी उच्च पहुंचा थी मैं, लेकिन बहुत खुशी हुई। ना तू खुश रहो बेटी।
2: ना बेटी, किस्मत तो तेरी थी, तू एक मेरा घर में सोना जामी थी, लक्ष्मी जामी थी। मेरे तो चाहे तेरे जैसी चार बेटी और दे देता परमात्मा, मेरे बहुत खुशी थी। मैं बेटी चाहे चार और दे दी उनकी, बहुत खुश हो जाती। मैं बेटी चार बेटी और हो जाती तो मेरा ऐसी ऐसी। और मैं तो उनको लड़की लड़कियों से चार गुना आगे है। मेरी बेटी जैसी बेटी सबका जामो। एक बेटी नहीं जामी थी, एक हीरा जामी थी। बेटी नहीं जामी थी, हीरा जामी थी। तुम्हारी बुआ जादो भी इस घर में हीरा जामी थी और तू भी हीरा जामी है।
0: एशियन गेम्स में भारत की निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीत कर इतिहास रच दिया। नीरू एशियन गेम्स की इंडिविजुअल ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फाइनल में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाकर उन्होंने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही नीरू, आशी और मनीषा की तिकड़ी ने टीम मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। नीरू ढांडा और कायनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम का गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा बुलंद कर दिया।
3: मैं समझती हूँ सर अपने आप को कि कम एज में स्ट्रगल दे दिया भगवान ने और अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, आगे और लंबी लाइफ है अपना अच्छे वो करने के लिए। सर अच्छा लगा, मतलब शुरू में ही मेरे को स्ट्रगल मिल गया और मैं अपने ऊपर काम कर पाई, इससे अच्छी चीज क्या होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गेम्स का मेडल मेडल करता है और इसके लिए खिलाड़ी बहुत ही मेहनत करता है। एशियन गेम्स से ओलंपिक गेम्स से ये गोल रहते हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के, तो भी धीरे धीरे अपने गोल अचीव कर रहे हैं सर और अच्छा लग रहा है, खुद पे प्राउड फील कर पा रही हूँ कहीं यहाँ पे।
0: मौजूदा एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड जीतकर नीरू ने देश का जो मान बढ़ाया है उसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने नीरू की सटीकता और संयम की सराहना करते हुए लिखा कि देश गौरवान्वित है। जीन की ये बेटी नीरू भारतीय सेना में नायब सूबेदार है, लेकिन निशानेबाजी में ये मकाम एक लंबे संघर्ष की कहानी है। नीरू की शुरुआत किसी महंगी शूटिंग रेंज या फिर लाखों रुपए की विदेशी बंदूक से नहीं हुई। किसान पिता के पास एक साधारण दुनाली बंदूक थी जिससे टिन के डिब्बे पर नीरू बचपन से ही निशाना लगाया करती थी। हालांकि ट्रैप शूटिंग के लिए महंगे उपकरण, कारतूस, प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज और अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन नीरू ढांडा ने शुरुआत में उधार की बंदूक से शूटिंग की प्रैक्टिस की। बाद में नीरू सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई। एक निशानेबाज के रूप में उनके आगे बढ़ने में भारतीय सेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बरसों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है। देश विदेश हर जगह नीरू की ही चर्चा है।
4: सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ। अपने देश के लिए गोल्ड जीता है और नेशनल एंथम अपने देश का बजना मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। मेडल मेरी माँ को डेडिकेट करती हूँ सर, और मेरे कोच को डेडिकेट करती हूँ और पूरे इंडिया को डेडिकेट करती हूँ। प्रिपरेशन हम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो प्रिपरेशन वैसे ही हम करते हैं, थोड़ा बैड वेदर में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल था। पर रहता है थोड़ा कंडीशन हर एक कंट्री का अलग रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया एंड देन गोल्ड आया सर।
0: सिर्फ नीरू का संघर्ष रंग नहीं लाया बल्कि इस माँ की तपस्या भी सफल हुई जो बेटी के फाइनल मुकाबले को टीवी पर नहीं देख सकी बल्कि उसी समय परिवार के लिए राशन की दुकान से गेहूं लेने गई थी और उनके हाथों में बीपीएल राशन कार्ड था।
2: कैसा रहा? बहुत अच्छी बात, बधाई हो दिल से। आज देख ले कह रही थी मेरी बेटी, बोला माँ छिकले की मीडिया पर बात कर खूब मीडिया आएगी अपने घर, चिंता मत कर।
0: दिलचस्प बात यह है कि मुकाबले के 10 दिन पहले नीरू फ्लू की वजह से भारत में अस्पताल में भर्ती थी और जब जापान पहुंची तो तैयारी के लिए वक्त ही नहीं मिला, लेकिन मुकाबले में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में कमाल ही कर दिया। एशियन गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, नीरू की ये उपलब्धि, ये कीर्तिमान बेमिसाल है। लेकिन नीरू के साथ ही और भी बेटियां हैं जिन्होंने जापान में देश का मान बढ़ाया है। सोनीपत के इस घर में खुशियों की कोई सीमा नहीं। बेटी ने वो कर दिखाया कि पूरा परिवार गदगद है। ये घर है एथलीट किरण पहल का, जिन्होंने एशियन गेम्स के रिले इवेंट में गोल्ड और टीम इवेंट में सिल्वर जीत कर इतिहास रचा। बेटी से फोन पर बात करते हुए माँ की आंखें खुशी से डबडबा गई। एक साथ संघर्ष की न जाने कितनी कहानियां याद आ गई। एक गांव से शुरू हुआ किरण का सफर आसान नहीं था। पहले तो लड़कों के साथ खेलने और बात करने पर ही मनाही थी, लेकिन अपनी जिद के साथ किरण मैदान में लौटी। न कोई सपोर्ट, न संसाधन, था तो सिर्फ जुनून।
5: बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, खुशी का और नहीं है इतना। गोल्ड मेडल जीत का मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत वो होया है गांव का, हम रोशन कर। बहुत संघर्ष करा है, संघर्ष तो उसके पास पता है जूते भी नहीं थे, उसके पास कोई भी साधन नहीं था, हमारे पास पैदल चल चल कर वो कर उसने इतना संघर्ष कर के आज इतनी दूर तक पहुंच गई है। उसकी आपकी लगन थी खुद की, एक मैं तो खेल में वो करना चाहूँ, खेल करूंगी, तो खेल करना चाहो तो भाई कर लो। वो उसका सपना था पूरा कि मैं दूर तक पहुंचूं, बढ़िया का नाम रोशन करूं। बहुत जोर जोर से स्वागत करेंगे उसका हम, उसके इंतजार में।
0: ऐसे भी हालात बने कि पिता की बीमारी के दौरान प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी, लेकिन उसी दौरान वायदा किया कि ओलंपिक में मेडल जीत कर दिखाएंगी। पिता के निधन के बाद ये वायदा ही किरण के लिए प्रेरणा बना और नतीजा एशियन गेम्स में सामने आया।
6: बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ही प्यारा खुशी हो रही है, पूरे भारत हरियाणा का नाम रोशन किया उसने और आने के उसका इंतजार हो रहा है कब वो आएगी। अभी उसकी वीडियो कॉल पे उससे बात हुई थी तो उसकी टिकट आने के बाद पता चल जाएगी आज आएगी या कल आएगी, तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। परिवार को सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि टीवी पे देखें, हालांकि काम उनको पता ही था, पहले टाइम का थोड़ा इशू था कि 6 बजे का था पर 5:35 सर्जरी थी, मैंने अकेले ने देखी और जब जैसे गोल्ड जीता मैंने बम फोड़े तो सबको पता चला कि हाँ टीम का गोल्ड मेडल लगाया है और उसने जीत की है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए परिवार ने बहुत संघर्ष किया है, उस टाइम पे कभी उसके पास जूते भी नहीं होते थे खेल के जाने के लिए खेल में, तो आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उसने गोल्ड जीत के हमारा गांव का नाम और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है।
0: हरियाणा की इस गोल्डन गर्ल ने वो मुकाम हासिल किया है जिस पर किसी भी माँ बाप को गर्व होगा। दादी माँ और बहन के साथ पूरा परिवार आज किरण की कामयाबी पर नाज कर रहा है। गर्व इसलिए भी है क्योंकि इस बेटी ने अपनी मंजिल पाने के लिए जर्नल स्टोर पर 4,000 रुपए महीने की नौकरी तक की है।
7: तो उसका यही था कि भाई गोल्ड लेके आना है, हालांकि उसको इंडिविजुअल में लेके आना था पर किसी वजह से नहीं हो पाया, भाई हर बार नई बॉडी साथ देती है, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया था कि कुछ ना लेके आने से तो कुछ लेके आना ही बेटर होता है और कोई बात नहीं, नाम तो इंडिया का ही होना है, हमारे गांव का होना है, हमारा खुद का होना है, मेडल तो मेडल होता है हर सूरत में। तो उसने फिर रिले में अपनी जी जान लगा के और रिले में उसने गोल्ड मेडल जीता है।
0: किरण को निराशा भी मिली जब पेरिस 2024 ओलंपिक में वो पदक हासिल नहीं कर पाई, लेकिन किरण ने हौसला नहीं छोड़ा और अगली स्पर्धा पर ध्यान दिया और आज एशियन गेम्स में गोल्ड के साथ उन्होंने एक सपना पूरा कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: एशियन गेम्स की टीम मुकाबलों में बेटियों ने कमाल करके दिखाया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है जहां पर 2 अक्टूबर को उसका सामना चीन से होने जा रहा है। भारत ने सेमीफाइनल्स में दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल मैच का टिकट कटाया है, लेकिन इससे पहले दौड़ और तीरंदाजी में बेटियों ने देश को खुश होने का मौका दिया। इसके साथ ही कबड्डी में गोल्ड जीतकर कीर्तिमान रच दिया। रिपोर्ट देखिए।

0: देश की सरजमीन पर स्वागत है बेटियों का, जिन्होंने जापान में देश का मान बढ़ा दिया, दिलो जान से खेली और गोल्ड अपने नाम किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कदम थिरक रहे हैं और दिल झूम रहा है, और हो भी क्यों ना, बेटियों ने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। ये तस्वीर धर्मशाला की है। हिमाचल की बेटी पुष्पा राणा जब भारतीय महिला कबड्डी टीम के साथ आईं, तो उनका भरपूर स्वागत हुआ।
1: शायद ही मैं इस खुशी को शब्दों में बयां कर पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे कबड्डी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और इस चीज का सपना हम लोग लिटरली मतलब 4 साल से हम कंटिन्यू इस चीज की मेहनत कर रहे थे, और ये वाला सपना मेरा इसलिए भी पूरा ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एज अ कैप्टन टीम में लीड कर रही थी और मेरे परिवार वालों का, मेरे मम्मी पापा का बहुत टाइम से ये वेटिंग में भी थे कि शायद कब मिले तो अभी जब मुझे कैप्टनसी मिली और मेरी कैप्टनसी में गोल्ड मेडल आया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। लिटरली मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें मैंने खुद भी परफॉर्म करना था, लेकिन मैंने इसमें ज्यादा प्रायोरिटी चुनी कि मैं खुद बैक फुट पे रह के अपनी टीम को जो है आगे करूँ, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग

0: जैसे ईरान के साथ हमारा जो है सेमीफाइनल मैच हुआ था और फाइनल मैच हुआ था, उससे पहले पुल का मैच था, तो लिटरली हमारा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट गोल पे था और उन टीम पे था कि क्या करना है।
1: पिता के स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची ने वहीं कबड्डी के शुरुआती दाव पेच सीखे थे। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पुष्पा राणा एक दिन भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान बढ़ाएंगी। पर सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की पुष्पा राणा ने अपने संघर्ष, प्रतिभा और मेहनत से ये मकाम हासिल किया। एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को 37-34 से हरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
2: अपनी राय भी शेयर की मुझसे, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया।
3: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है आपको?
2: वो मुझे वर्ल्ड कप में मिला था और एशियन गेम्स में हमारी टीम गोल्ड आई, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे मिला वो मेरी टीम का सपोर्ट की वजह से मिला कि उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया।
1: अब जरा यूपी के सहारनपुर में इस परिवार की खुशी देखिए। खुशी इस बात की है कि बेटी प्राची ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीतकर पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। प्राची ने एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में तीसरा नंबर हासिल किया और ब्रॉन्ज जीता।
4: ये अभी उसका सिल्वर थर्ड मेडल है उसका, और वो जापान में खेलने लिए गई हुई थी, वहाँ पे उसका तीसरा नंबर पड़ा है जी। ये 400 मीटर की थी, 400 मीटर की रेस थी, वहाँ पे उसका थर्ड मेडल पड़ा उसका, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हमें क्या मतलब पूरे गांव को, पूरे परिवार को, उसके गांव परिवार क्या, मेरे को लगता है पूरे देश को खुशी है, क्यों 400 मीटर इंडिविजुअल किसी का मेडल आना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। एक टीम नहीं है, उससे हटके उन्हें अपना पर्सनल मेडल लेकर आती है, वो 400 मीटर का बहुत बड़ी बात है। अभी उसका 400 मीटर की रिले है, 400 की रिले है उसकी, उसमें हमें उसकी गोल्ड की उम्मीद है। हमें क्या सबको उम्मीद है, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मेडल लगे हुए हैं गोल्ड की, तो उम्मीद हमें भी है कि इसमें गोल्ड तो टंगना चाहिए।
1: बेटी की कामयाबी से बुजुर्ग माता पिता के चेहरों पर गर्व है। वैसे तो दीवार पर मेडल्स की भरमार है, लेकिन एशियन गेम्स में पदक जीतना बड़ी बात है।
5: बात तो नहीं करती मम्मी, कैसा लगा? मगा बहुत अच्छा लगा। अनु मगा हमने तो टीवी पर देखी, तो भागती हुई कह रही हाँ बहुत अच्छा करा, मगा बहुत बढ़िया करा, तेरा तीसरा वो आया नंबर, मगा बहुत बढ़िया लगा।
1: इसी तरह देश को विद्या रामराज पर भी गर्व है, जिन्होंने एशियन गेम्स में महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड का समय निकालकर पीटी उषा का 55.42 सेकंड का 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया।
6: I'm so happy. The record, I know, I don't know how to express it. I did good. I never thought I will go below 55. My coach said you will do it.
1: खेल की दुनिया में बेटियां ना सिर्फ नए कीर्तिमान बना रही हैं, बल्कि आगे भी देश को बड़ी जीत का भरोसा दे रही हैं। बेटियों की प्रतिभा की कहानी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक है। कोल्हापुर के सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने का कारनामा किया। हैरत नहीं कि जब वो अपने घर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ।
7: हाँ बहुत खुशी हो रही है, लोगों का इतना प्यार देख के अच्छा लग रहा है कि मेडल के बाद आज घर आई हूँ तो इतने सारे लोग स्वागत के लिए खड़े हैं।
8: गेम में ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर ही मिला, गोल्ड का आशा थी आपको?
7: कहीं ना कहीं दूसरी टीम भी स्ट्रांग थी, पर हमने हमारा 100% किया है तो हम सिल्वर से भी खुश हैं, पर अगली बार गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे।
1: सोनम के लिए मेडल का ये सफर आसान नहीं रहा। दौर ऐसा भी आया जब बेटी के सपने के लिए पिता ने अपनी जमीन और दुकान बेच दी ताकि शूटिंग के लिए जरूरी सामान खरीदा जा सके, उसकी ट्रेनिंग हो सके। आज जब सोनम की बदौलत भारत की झोली में एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल आया है तो सभी कुर्बानियां छोटी नजर आ रही हैं।
7: इक्विपमेंट्स लेने के लिए उतना फाइनेंशियली हमारा स्टेबिलिटी नहीं था, तो पापा ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी और सारा इक्विपमेंट्स लेके दिया था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कुछ तो करके दिखाना है क्योंकि इतना सेक्रीफाइस किया है उन्होंने, और आज वो दिख रहा है उसका फल, तो उनके बिना ये शायद नहीं हो पाता।
8: अभी आने वाले ओलंपिक में आपके किस तरह से आपको महसूस करेंगे आप भारत के लिए? अभी तो सिल्वर पहला लाया है,

0: गोल्ड में ओलंपिक में इस...
1: पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारा भी ध्येय वही रहता है कि गोल्ड ही है। ओलंपिक भी अभी 2 साल है, कहीं ना कहीं जहाँ पे कमी पड़ रही है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे 2 साल में।
0: देखिए अभी सोनम मस्कर, इन्होंने जैसे ही ऐसे में जैसे सिल्वर मेडल हासिल किया, अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की भारत के लिए एक जिम्मेदारी वो तय करने वाली है।
2: भारत की बेटियों ने एशियन गेम्स में अपने तीरों से भी इतिहास रचा है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनी पार्थी और प्रतिका प्रदीप की तीकड़ी ने वो कीर्तिमान बनाया है जिसे देख दुनिया दंग है। कंपाउंड आर्चरी में चिकिता तनी पार्थी ने ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप के साथ मिलकर महिला टीम इवेंट का गोल्ड जीता। भारतीय तीकड़ी ने चीन को 238-234 से हराया और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। महाराष्ट्र की प्रतिका प्रदीप भारतीय तीरंदाजी की दुनिया में उभरता नाम है। 2025 में प्रतिका पहली बार भारतीय महिला कंपाउंड टीम के लिए चुनी गई और अब तक वो 7 इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी है।
3: मैं मुंबई में काम करता हूँ, तो मैं अकेले देख रहा था मैच, तब पता चल गया अभी अगला एरो में हम गोल्ड जीतने वाले हैं, क्योंकि इनका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इतना तो क्लियर है, तो ये गोल्ड ही जीतने वाले हैं। ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग जो मन में चल रहा था पिछले 7-8 साल का जो उसका मेहनत है, उनका कोच का जो मेहनत है वो सामने आ रहा था।
2: 21 साल की चिकिता तनी पार्थी गोल्ड मेडलिस्ट टीम की तीसरी तीरंदाज थी। किसान परिवार से आने वाली चिकिता तेलंगाना की रहने वाली है। महिला कंपाउंड के बाद मिक्स्ड कंपाउंड में भी चिकिता ने साहिल जाधव के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने के बाद लौट रही बेटियों का ऐसा स्वागत स्वाभाविक है। अलग अलग राज्य, शहर और इलाकों से आने वाली इन बेटियों ने अपने संघर्ष से सफलता हासिल की है और एक बार फिर साबित किया है कि बेटियां किसी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए एशियन गेम्स में भारत के मेडल की संख्या 66 तक पहुंच चुकी है। इसमें 10 गोल्ड शामिल हैं, बाकी 23 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज भी शुमार हैं। भारत मेडल टैली में अगर हम देखा जाए तो 8वें पायदान पर पहुंच चुका है। प्रतियोगिता के 13वें दिन भारतीय तिरंगा एक बार फिर से शान के साथ लहराया। भारतीय खिलाड़ियों ने आर्चरी, स्क्वाश और सेलिंग में अपना लोहा मनवाते हुए देश को मेडल दिलाए हैं। 13वें दिन भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल समेत 6 पदक अपने नाम कर लिए। पूरे अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो आर्चरी के कंपाउंड मुकाबले में गणेश मणि ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया, तो वहीं पर रेसलिंग में नितेश सिवाच ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इसके अलावा पुरुषों की स्क्विफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और कुरी सिंकल नोबल की जोड़ी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। स्क्वैश में भी भारत का दम देखने को मिला। भारतीय पुरुष और महिला दोनों स्क्वैश टीमों ने सेमीफाइनल्स में हार के बाद कांस्य पदक जीत लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बैडमिंटन में भी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। HS प्रणॉय ने पुरुष एकल के सेमीफाइनल्स में जगह बनाकर भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। एशियन गेम्स क्रिकेट में भी भारत का जलवा देखने को मिला। सेमीफाइनल्स मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रनों से मात देकर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन होगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीमें। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। कल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में

0: 25 फीसदी धान कटाई का काम पूरा, अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नीब करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास, फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशी शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इजराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जावास को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में हो रही है स्मिथ की तारीफ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने के लिए कालकाजी मंदिर में विशेष पूजा। 180 जिंदगियां बचाने वाले पायलट के जल्द स्वस्थ होने के लिए कामनाएं की जा रही है। काशी में हुआ हनुमान चालीसा, कैप्टन के लिए विश्रांत मंदिर में 11 शास्त्रियों द्वारा 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप। पूरे के मशहूर सैंड आर्टिस्ट दर्शन पटनायक ने कैप्टन स्मिथ के सम्मान में बनाई तस्वीर। ओडिशा के ही एक और सैंड आर्टिस्ट ने भी कांच पर रेस से बनाई पायलट स्मिथ की तस्वीर। कैप्टन मच्छार की जल्द स्वस्थ होने की कामना करने के साथ वाराणसी में पूजा अर्चना। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर पहुंचे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, कैप्टन स्मिथ के स्वस्थ होने की प्रार्थना। कैप्टन स्मिथ को इसराइल करेगा सम्मानित, इसराइली राजदूत ने जानकारी दी। मुंबई में स्मिथ मच्छार के घर के बाहर लगा बधाई देने वालों को दाता, हाथों में कैप्टन की फोटो लेकर लोगों ने मनाया जश्न। कैप्टन मच्छार के घर बाहर लगा लोगों का दाता, लोगों ने खुशी जाहिर की। भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की बहादुरी के लिए दुनिया कर रही है सलाम, इसराइल और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने तारीफ की। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्लाइट के यात्रियों से की मुलाकात, भारतीय पायलट को बताया असली हीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की तारीफ की। फ्लाइट कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान। फ्लाई दुबई की फ्लाइट में कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दिखाई बहादुरी, गंभीर चोट लगने के बावजूद विमान को संभाला। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, भारत माता के जयकारे। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाली अमनदीप का भी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। देश के लिए सोना और चांदी जीतने वाले खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने एक साथ दिया पोज। खिलाड़ियों के स्वागत में किसी ने पहनाई फूलमाला तो किसी ने करेंसी नोट में शामिल। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 के अंतर से हराया, फाइनल में जगह पक्की। एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को ऐतिहासिक सिल्वर, 64 साल बाद एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को मेडल। एशियन गेम्स में सेलिंग में पुरुषों के बाद महिलाओं ने दिलाया ब्रॉन्ज। एशियाई गेम्स के सेमीफाइनल्स में मैन स्क्वैश में भारत को ब्रॉन्ज, एशियाई गेम्स में अब तक 10 गोल्ड 23 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स मैन्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच। झांसी में शक्ति पर्व की तैयारियां हो गई शुरू, मां दुर्गा की प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप। मूर्तियां बनाने के लिए कोलकाता से मंगाई जा रही हैं मिट्टी और श्रृंगार करने सामान। मिट्टी और भूसे से तैयार की जा रही है मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पूरे बुंदेलखंड में इन प्रतिमाओं की विशेष मांग। मां दुर्गा के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकी की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पिछले 34 वर्षों से एक बंगाली परिवार झांसी में बना रहा है बंगाली शैली की प्रतिमाएं। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। पूर्व वर्धमान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे। पूर्व वर्धमान में मूर्ति निर्माण के साथ पंडाल बनाने का भी काम तेज, अंतिम चरण में पंडाल की तैयारियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। मुंबई के लालबाग चौराहा को मिले करोड़ों रुपए के दान और कीमती आभूषणों की नीलामी। दान में बप्पा को मिली 1 किलो 24 कैरेट सोने की ईंट, जिसकी कीमत 1,48,00,000। बप्पा को दान में मिली बाइक की भी हुई नीलामी। नीलामी में सोने के कई आभूषण, मोदक, चांदी की गदा और क्रिकेट बैट भी शामिल है। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अलग अलग समाज कल्याण के कामों में किया जाएगा। अंतिम चरण में है हेमकुंड साहिब यात्रा, 10 दिन शेष, अभी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बीच अब तक का लगभग 3,60,000 श्रद्धालु कर चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। दस अक्टूबर को बंद हो रहे हैं हेमकुंड साहिब के कपाट, अगले 9 दिनों में भारी संख्या में भक्तों की पहुंचने की उम्मीद। सीकर दौरे पर खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। उज्जैन महाकाल मंदिर में महाकाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ तेज, बाबा के भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है। अंतिम चरण में है हेमकुंड साहिब यात्रा, 10 दिन शेष, अभी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बीच अब तक का लगभग 3,60,000 श्रद्धालु कर चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। दस अक्टूबर को बंद हो रहे हैं हेमकुंड साहिब के कपाट, अगले 9 दिनों में भारी संख्या में भक्तों की पहुंचने की उम्मीद। सीकर दौरे पर खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। उज्जैन महाकाल मंदिर में महाकाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ तेज, बाबा के भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति अभियान में शामिल होने पहुंची फ्रांस की एयर एंड स्पेस टीम। फ्रांस ने 2024 में भी तरंग शक्ति एक्सरसाइज के पहले एडिशन में लिया था, सब 12 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में देश के पहले आधुनिक बायो पॉलीमर प्लांट की स्थापना की चल रही है तैयारी। विशाल का ट्रक वाराणसी के चांदमारी फेज 2 पहुंचा, फुट ओवर ब्रिज हटाने का हो रहा है काम। चीनी प्लांट में लगाया जाएगा बायोपॉलीमर प्लांट, चीनी उद्योग से मिलने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करके बायोपॉलीमर किए जाएंगे तैयार। करनाल में पराली जलाने वालों पर होगा ड्रोन का पहरा, कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। करनाल 25% धान कटाई का काम हुआ पूरा, लेकिन प्रशासन की सख्ती। पश्चिम बंगाल में बांग्ला पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने का फैसला, हटाए जाएंगे अरबी और फारसी मूल के पानी किताब आसमान दोस्त जैसे शब्द। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स का अनोखा प्रयास, 100 फीट एरिया में रंगोली। 80 स्टूडेंट्स ने 30 घंटे में बनाकर तैयार कर दी रंगोली, विकसित भारत की तस्वीर पेश की। यूपी सरकार करेगी नेब करौली बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास, फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्मस्थान। राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक भक्त ने प्रयागराज में लगाई बापू

से संबंधित सामान की प्रदर्शनी। 30 वर्षों तक जमा की बापू से संबंधित किताबें, डाक टिकट और पोस्टकार्ड्स। बागेश्वर के 16 युवाओं की जापान में रोजगार पाने की तैयारियां पूरी। उत्तराखंड सरकार ने जापान में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जापानीज कंपनी से किया है समझौता। रायपुर में स्टेशन मास्टर की तत्परता से बच गई महिला की जान, चलती ट्रेन के सामने कूदने जा रही थी महिला। बिहार के छपरा में बाढ़ प्रभावित 22 पंचायतों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, साथ ही पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है जरूरी सामग्री। दिल्ली एनसीआर में अब ईंधन भराने के लिए वैध पीयूसी जरूरी, सीएक्यूएम ने निर्देश दिए। गाजियाबाद में आज से नो पीयूसी नो फ्यूल लागू, बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र पेट्रोल डीजल पर रोक। यूपी के बागपत में भी प्रदूषण पर कंट्रोल की कोशिश, दिल्ली की तर्ज पर अपनाया जा रहा है नो सर्टिफिकेट नो फ्यूल फॉर्मूला। मन्ना टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र हो गया शुरू, पहले ही दिन 50 जिप्सी पहुंची।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: बात करते हैं जगत जननी की, जो जल्द ही विराजने वाली है शारदीय नवरात्र में। माँ दुर्गा के आह्वान के लिए भक्त तैयार हैं, माता रानी के स्वागत के लिए जगह जगह चल रही हैं तैयारियां, और ज्यादा तेज हो चुकी है। माँ की भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार पूर्ण करने में जुटे हुए हैं, तो कहीं कारीगर पंडालों के निर्माण में भी जुटे हुए हैं। पूर्व बर्धमान से लेकर मुंबई तक में दुर्गा पूजा को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए।

0: भक्ति और कला का अद्वितीय उत्सव, आस्था, भक्ति और एकता की भावना से जुड़ा अद्भुत पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। माता रानी के आवाहन के लिए भक्त तैयार हैं। माँ का दरबार सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को तेज गति से आकार देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं को 11 अक्टूबर की प्रतीक्षा है, जब माता रानी विराजेंगी और अपना आशीष देना शुरू करेंगी। पूरे वातावरण में अगले 9 दिनों तक माँ के जयकारे गूंजते रहेंगे। मंदिरों से लेकर पंडालों तक में हर दिन उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और भक्त अलग अलग छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले माता की उपासना के पर्व नवरात्र को पश्चिम बंगाल और पूर्वी में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है, इसलिए वहां तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान की हैं, जहां दुर्गा पूजा के लिए इसी तरह जगह जगह पंडाल बनाने का काम चल रहा है। कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु उन्हें निहार कर माँ की भक्ति में डूब जाए। यहाँ जो माता का दरबार सज रहा है, ये लालटू स्मृति संघ का है, जो अपने आकर्षक थीम और बड़े बजट के लिए जाना जाता है। इस वर्ष यहाँ बालाजी की थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसलिए कारीगर तेजी से काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोग देर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जगह थोड़ा देर से हम लोग लिए हैं, तो हम लोग का आशा है जो महालय का दिन इसका कंप्लीट हो जाएगा।
2: क्या थीम क्या है इसका?
1: त्रिकुटी बालाजी, जो मंदिर है बालाजी का, उसी का थीम है।
0: मूर्तिकार तेजी से देवी माँ की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं, साथ ही मूर्तियों के रंग रोगन का काम भी चल रहा है। मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ी हुई है, वो मिट्टी को गूंथ कर अलग अलग आकार की मूर्तियां गढ़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी अब इन्हें महंगी मिल रही है, लगभग 2 गुना दाम पर, लेकिन सवाल माता रानी का है तो ये मूर्तियों को समय से तैयार करने में पूरे मन से लगे हुए हैं।
3: आगे तो 80-100 रुपया में मिल जाते थे, अभी तो 150-200 रुपया हो गया, डबल हो गया, लेकिन ठीक समय में मिलता नहीं है। बनाना तो पड़ेगा, दिक्कत है तो तब भी बनाना पड़ेगा। वो सब खर्चा ये प्रतिमा के अंदर तो लग जाएगा ना, प्रतिमा के दाम बढ़ जाएगा, लेकिन पार्टी तो नाराज हो जाता है।
2: इस बार आप लोगों को बनाने के लिए ऑर्डर मिला है?
3: दुर्गा प्रतिमा 21-22 है।
2: 21-22 तभी बर्धमान का है या फिर बाहर
3: का? ना, थोड़ा ये इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
2: कितने कारीगर काम कर रहे हैं?
3: 6-7 जो है।
0: पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यह तस्वीरें मुंबई के परेल इलाके की है, जहां गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र की तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ये परेल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां मूर्तिकार तेजी से हाथ चलाते हुए माता की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं। कोई मूर्तियों के लिए ढांचा तैयार कर रहा है, कोई प्रतिमाओं को रगड़कर उसे चिकना बनाने में जुटा है, तो कोई प्राइमर या लेप लगा रहा है। गणेश उत्सव के ठीक बाद नवरात्र का समय आ चुका है, इसलिए मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे हैं।
4: मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार किस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है मूर्ति का काम और क्या कुछ मांग रहे हैं लोग?
5: इस साल का गणेश उत्सव बहुत अच्छा गया, और जैसे गणेश उत्सव गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्र का काम चालू हो गया, एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है, एक 10 दिन में हमें काफी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं।
4: क्या डिमांड है राजू भाई, क्या मांग रहे हैं लोग, किस तरह की देवी, किस तरह का अवतार होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए?
5: इस साल ज्यादा अष्टभुजा देवी वो ज्यादा है, मुंबई ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है और वो ट्रेंड अभी देवी में चालू हो गया है।
4: गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से बीता है और अब नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। कई ऐसे कारखाने हैं जहां पर देवियों को बनाने का काम शुरू हो रहा है, उनको आकार देने का काम शुरू हो रहा है।
0: जहां जहां माता रानी की प्रतिमाएं बनती हैं, वहां अधिकतर ऑर्डर मिल चुके हैं और मूर्तिकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो तेजी से मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी डिलीवरी समय पर की जा सके, जिससे भक्त भी भारतीय संस्कृति से जुड़े इस उत्सव का हिस्सा बन सके। पूर्व बर्धमान से सुजाता मेहरा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: हिमाचल प्रदेश विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मंडी जिले में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल का निर्माण किया जा रहा है। इससे 2030 की 23 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर के स्थान पर बनाया जाएगा, जिससे मंडी का थलौट बाजार में क्षतिग्रस्त हुआ 4 लेन का हिस्सा अब नए रूप में नजर आएगा।
7: हिमाचल, इस राज्य का नाम सुनते ही आंखों के सामने सुंदर वादियां और बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ जाता है, जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन ये प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा भी लिखने जा रहा है। दरअसल मंडी जिला के थलौट में प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। कीतरपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत इस बॉक्स टनल का निर्माण होगा, जिसके निर्माण कार्य को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
8: टनल बन रही है हमारी, ये बॉक्स RCC बॉक्स टनल है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल टनल है, ये नेचुरल हिल में टनल नहीं बन रही, आर्टिफिशियली बॉक्स हम RCC का बनाएंगे। प्लस इस बॉक्स को हम केबल एंकर से जो है बेड उसका एम्बेड करेंगे हिल साइड में, उसमें साइड में भी रहेगी और बॉटम में भी इसमें केबल एंकर रहेंगे, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिले। प्लस स्लोप में भी 70 मीटर हाइट तक हम इसकी केबल एंकर करके स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बनने के बाद जो है पूरा ये जो 500 मीटर का सेक्शन है जो डैमेज हुआ है, ये स्टेबलाइज हो जाना चाहिए।
7: ये आर्टिफिशियल टनल 500 मीटर लंबी होगी। इसका निर्माण ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। इस आर्टिफिशियल टनल का ढांचा सामान्य गोलाकार टनल की बजाय स्क्वायर होगा। इसके निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कट एंड कवर की जगह पर ही बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद थलौट में 4 लेन यातायात व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप मिलेगा। बॉक्स टनल तैयार होने के बाद कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को इसी रास्ते से भेजा जाएगा, जबकि कुल्लू मनाली से मंडी की तरफ आने वाला यातायात थलौट की पुरानी टनल से गुजरेगा। फिलहाल यहां बनाई जा रही प्रदेश की पहली बॉक्स टनल से इस पूरे हिस्से में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का स्केड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीमें। देशभर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारी। अंकल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही हैं गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में किया तैयार।

हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नींव करौरी। बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में हो रही है स्मिथ की तारीफ।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अगर आपके विवाह में या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा बन रहा है तो इसका प्रभाव क्या है और इसे ठीक करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये तमाम बातें पंडित जी से आज के इस शो में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है आज का गुड लक मंत्र जान लेने का।
1: जिन लोगों को या जिन लोगों के रोजगार में निरंतर समस्या रहती हो, ऐसे लोगों को ब्लैक इंक से काली स्याही से लिखना चाहिए। अगर आप ब्लैक इंक का प्रयोग करेंगे तो आपका शनि प्रबल होगा, आपके रोजगार में आपके करियर में दिक्कतें नहीं आएंगी।
0: और चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:15 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं 3:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड के अपने विषय की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे बृहस्पति की विवाह में भूमिका क्या होती है, क्या बृहस्पति भी विवाह में समस्या देता है?
1: जी, आज के कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे शुभ ग्रह, सबसे पवित्र ग्रह बृहस्पति क्या विवाह में दिक्कतें देता है, क्या ऐसा करता है? देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति की कृपा के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, पुरुष के वैवाहिक जीवन को बैलेंस करता है। अगर बृहस्पति विवाह में बाधा दे तो विवाह का होना और विवाह का निभना दोनों चुनौती हो जाता है, विवाह होता भी नहीं और अगर हो गया तो निभता नहीं। बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। उन स्थितियों को जानकर और समझकर अगर उपाय किए जाएं तो चीजें बेहतर कर सकते हैं।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मेष राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। ये जान लेते हैं कि बृहस्पति की पहली स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा उत्पन्न करती है।
1: देखिए, बृहस्पति की अलग अलग स्थितियां विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। पहली स्थिति कौन सी है? बृहस्पति की पहली जो नकारात्मक स्थिति है वो है नीच का बृहस्पति। अगर बृहस्पति मकर राशि में हो, कुंडली में जहां 10 नंबर लिखा है अगर वहां बृहस्पति हो तो ये बृहस्पति नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसके विवाह में विलंब होता है। और कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव आ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि विवाह करके करना क्या है, होना क्या है, एक डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है। और नीच का बृहस्पति हो तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कतें आती हैं। यानी अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो पहले तो विवाह होने में ही झंझट होगी और जब शादी हो जाएगी तो शुरुआत में शादी को निभा पाना, शादी को चला पाना बड़ा कठिन होगा। अब अगर बृहस्पति कुंडली में नीच का है, विवाह नहीं होने दे रहा या वैवाहिक जीवन में झंझटें दे रहा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करें और जिसकी भी पूजा उपासना करते हैं उसकी उपासना जरूर करिएगा। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाइए, प्रयोग करिए। अपनी तर्जनी उंगली में, अपने इंडेक्स फिंगर में सोने या पीतल का छल्ला धारण करिए, एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें, और अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहेगा, अतिथि का आगमन होगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में सुधार होगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपका सवाल ले लेते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला प्रश्न किसका लेने वाले हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न अर्पित विश्वकर्मा ने हमें लिखा है, ये लिखते हैं जौनपुर से, 8 दिसंबर 2004 का जन्म है, 4:45 प्रातः जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने आईटीआई की पढ़ाई की है, लेकिन बीच में मेरे पिताजी का देहांत हो जाने की वजह से मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, तो क्या आगे मैं प्राइवेट नौकरी में जाऊं या सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अर्पित जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली कहती है कि अभी आप प्राइवेट नौकरी के लिए कोशिश करिए, अभी आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी, और साथ में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साल 2028-29 में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, उसके पहले प्राइवेट नौकरी में ही कोशिश करना बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए, वक्त हो चला है आज के आपके दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज का दूसरा प्रश्न किसका होगा?
1: जी, अगला प्रश्न प्रतीक कहार ने हमें लिखा है, बड़ोदरा गुजरात से लिखते हैं। 16 दिसंबर 1995 का जन्म है, 10:10 रात को बड़ोदरा गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है तो क्या मुझे भविष्य में व्यापार करना चाहिए, और अगर व्यापार नहीं कर सकते तो नौकरी को बेहतर कैसे करें, कैसे अपनी नौकरी में स्थिरता ले आएं। प्रतीक आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। कर्क लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो करियर और जीवन पे असर डालता है वो मंगल है, और आपके मंगल के कमजोर होने की वजह से दिक्कतें ज्यादा बन रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए, पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि बृहस्पति की दूसरी स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा पैदा करती है और इसको ठीक करने के उपाय कौन से हैं?
1: देखिए, बृहस्पति की पहली निगेटिव स्थिति है नीच का बृहस्पति, आपको बताया। बृहस्पति की दूसरी स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा करती है वो कौन सी है? बृहस्पति की दूसरी नकारात्मक स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और

0: टकराव पैदा करता है। व्यक्ति गंभीर नहीं होता और विवाह का समय बीतता चला जाता है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में लॉयल्टी ईमानदारी नहीं रहती। गुरु चांडाल योग जिनकी कुंडली में हो ऐसे लोग अपने जीवन साथी के अलावा कहीं अन्य भी जुड़ जाते हैं या कहीं अन्य भी उनके प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। तो अगर गुरु चांडाल योग की वजह से विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए, सुबह शाम दोनों समय कम से कम 27 बार मांस मदिरा इत्यादि का सेवन मत करिएगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें अच्छा होगा। दाढ़ी और बाल ये आपको बड़े नहीं रखने हैं, पवित्रता सात्विकता और साफ सफाई से आपको रहना है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो बृहस्पति की पहली और दूसरी स्थिति के बारे में जान लेने के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति की तीसरी स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा पैदा करती है और इसके उपाय कौन से हैं।
0: तो पहला मामला हो गया नीच का बृहस्पति, दूसरा मामला हो गया बृहस्पति राहु यानी गुरु चांडाल योग, तीसरा क्या होता है?

0: तीसरी निगेटिव स्थिति जो विवाह के लिए होती है वो है सप्तम स्थान में बृहस्पति। सातवां भाव, सातवां खाना विवाह का खाना है, विवाह का भाव है। बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है, और सातवें स्थान का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब होता है, खास तौर से महिलाओं की कुंडली में। पुरुषों में उतना निगेटिव नहीं है, निगेटिव तो वहां भी है, लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति है तो ये विवाह होने में अति विलंब का कारण बनेगा, या बहुत प्रयास करने के बावजूद विवाह नहीं होने देगा। सातवें भाव में बृहस्पति हो तो वैवाहिक जीवन में ईगो की वजह से, अहंकार के कारण समस्या पैदा हो जाती है। बेवजह का अहंकार, बेवजह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठे महिला की कुंडली में तो पहले तो शादी होना ही मुश्किल है, और अगर शादी हो गई तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से, अहंकार की वजह से विवाह टूट सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? पहली बात तो ये कि देर रात तक जगने से बचिए, रात में जल्दी सोने का प्रयास करिए। माथे पर या अपने कंठ पर तिलक जरूर लगाइए। सप्ताह में एक दिन श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए या सुनिए, और भूल कर भी पीला पुखराज धारण मत करिएगा। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति है तो एक ओपल धारण करने से आपको विशेष लाभ होगा।
1: और चलिए, वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा प्रश्न किसका रहेगा।
0: जी अगला प्रश्न राजेंद्र सिंह खत्री जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 फरवरी 2002, 12:27 दोपहर में नई दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का करियर किस दिशा में रहेगा, उसका विवाह कब होगा और कैसा होगा। राजेंद्र जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा शनि की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी बेटी की कुंडली में स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है। इनको मानसिक चिंताओं से, मेंटल डिप्रेशन से बचना होगा और अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। जहां तक करियर की बात है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनका करियर बनेगा। साल 2027 में सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में इनको मिलेगी। विवाह में अभी विलंब है, साल 2029 में इनके विवाह की संभावना बनती है इनकी अपनी इच्छा से। फिलहाल ऐसा करें कि इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और चौथे प्रश्न की ओर। पंडित जी, चौथा प्रश्न आप किसका लेंगे?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न कशिश जायसवाल ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 14 जनवरी 2006 का जन्म है, 8:10 प्रातः कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं BCA कर चुकी हूं लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं MCA नहीं कर पा रही हूं। आगे मेरा करियर और मेरा जीवन कैसा रहेगा। कशिश, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए, अभी BCA के बेसिस पे नौकरी करने का प्रयास करिए, आपको नौकरी मिलेगी, सामान्य नौकरी, और आगे चल करके 2029-30 में आप फिर से MCA कर पाएंगी, यानी आगे आपकी पढ़ाई पूरी होगी। प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर्स में आपके सफलता की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: दिन 2 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, करियर और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी, संपत्ति और वाहन के लाभ के योग बन रहे हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है ये जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि क्या स्वास्थ्य खराब होने पर पलंग पर लेट कर भी मंत्र का जप कर सकते हैं? देखिए, विशेष स्थितियों में लेट कर भी मंत्र जप किया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखना होगा कि जप करते समय लेट कर भी पीठ एकदम सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 2 अक्टूबर शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की 7:30 का क्या हाल है। आज की गुडलक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इस समय आपकी 7:30 उतर रही है, इसलिए प्रभु अगर आपकी राशि कुंभ है तो बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा।
1: और चलिए आज पंडित जी से अपना अंतिम प्रश्न ले लेते हैं और जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या होने वाला है।
0: जी, आपकी किस्मत में कुंडली में शेयर बाजार से लाभ के योग हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। तो अगर शेयर बाजार में लाभ लेना चाहें तो क्या करेंगे? स्नान करते समय जल में जरा सा गोमूत्र डालकर स्नान करिए और इसके बाद ओम रां राहवे नमः, ओम रां राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेट कर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिएगा। ऐसा करने से आपको लाभ तो जरूर होगा, आप नुकसान से भी बच पाएंगे।
1: पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करते हैं जगत जननी की, जो जल्द ही विराजने वाली हैं शारदीय नवरात्र में। माँ दुर्गा के आह्वान के लिए भक्त तैयार हैं, माता रानी के स्वागत के लिए जगह जगह चल रही हैं तैयारियां और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। माँ की भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार पूर्ण करने में जुटे हुए हैं, तो कहीं कारीगर पंडालों के निर्माण में भी जुटे हुए हैं। पूर्व बर्धमान से लेकर मुंबई तक में दुर्गा पूजा को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए।

0: भक्ति और कला का अद्वितीय उत्सव, आस्था, भक्ति और एकता की भावना से जुड़ा अद्भुत पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। माता रानी के आवाहन के लिए भक्त तैयार हैं। माँ का दरबार सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को तेज गति से आकार देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं को 11 अक्टूबर की प्रतीक्षा है, जब माता रानी विराजेंगी और अपना आशीष देना शुरू करेंगी। पूरे वातावरण में अगले 9 दिनों तक माँ के जयकारे गूंजते रहेंगे। मंदिरों से लेकर पंडालों तक में हर दिन उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और भक्त अलग अलग छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले माता की उपासना के पर्व नवरात्र को पश्चिम बंगाल और पूर्वी में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है, इसलिए वहां तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। यह तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान की हैं, जहां दुर्गा पूजा के लिए इसी तरह जगह जगह पंडाल बनाने का काम चल रहा है। कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु उन्हें निहार कर माँ की भक्ति में डूब जाए। यहाँ जो माता का दरबार सज रहा है, ये लालटू स्मृति संघ का है, जो अपने आकर्षक थीम और बड़े बजट के लिए जाना जाता है। इस वर्ष यहाँ बालाजी की थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसलिए कारीगर तेजी से काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो पूर्ण इसके रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोग देर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जगह थोड़ा देर से हम लोग लिए हैं, तो हम लोग का आशा है जो महालय का दिन इसका कंप्लीट हो जाएगा।
2: क्या थीम क्या है इसका?
1: त्रिकुटि बालाजी, जो मंदिर है बालाजी का, उसी का थीम है।
0: मूर्तिकार तेजी से देवी माँ की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं, साथ ही मूर्तियों के रंग रोगन का काम भी चल रहा है। मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ी हुई है, वो मिट्टी को गूंथ कर अलग अलग आकार की मूर्तियां गढ़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी अब इन्हें महंगी मिल रही है, लगभग 2 गुना दाम पर, लेकिन सवाल माता रानी का है तो ये मूर्तियों को समय से तैयार करने में पूरे मन से लगे हुए हैं।
3: आगे तो 80-100 रुपया में मिल जाते थे, अभी तो 150-200 रुपया हो गया, डबल हो गया, लेकिन ठीक समय में मिलता नहीं है। बनाना तो पड़ेगा, दिक्कत है तो तब भी बनाना पड़ेगा। वो सब खर्चा ये प्रतिमा के अंदर तो लग जाएगा ना, प्रतिमा के दाम बढ़ जाएगा, लेकिन पार्टी तो नाराज हो जाता है।
2: इस बार आप लोगों को बनाने के लिए ऑर्डर मिला?
3: दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है।
2: बर्धमान का है या फिर बाहर?
3: ना, थोड़ा इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
2: कितने कारीगर काम कर रहे हैं?
3: 6-7 जो है।
0: पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह तस्वीरें मुंबई के परेल इलाके की है, जहां गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र की तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ये परेल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां मूर्तिकार तेजी से हाथ चलाते हुए माता की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं। कोई मूर्तियों के लिए ढांचा तैयार कर रहा है, कोई प्रतिमाओं को रगड़कर उसे चिकना बनाने में जुटा है, तो कोई प्राइमर या लेप लगा रहा है। गणेश उत्सव के ठीक बाद नवरात्र का समय आ चुका है, इसलिए मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे हैं।
4: मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार जिस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है मूर्ति का काम और क्या कुछ मांग रहे हैं लोग?
5: इस साल का गणेशोत्सव बहुत अच्छा गया, और जैसे गणेशोत्सव गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्र का काम चालू हो गया। एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है, एक 10 दिन में हमें काफी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं।
4: क्या डिमांड है राजू भाई, क्या मांग रहे हैं लोग, किस तरह की देवी, किस तरह का अवतार होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए?
5: इस साल ज्यादा अष्टभुजा देवी बहुत ज्यादा है, मुंबई ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है और वो ट्रेंड अभी देवी में चालू हो गया है।
4: गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से बीता है और अब नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। कई ऐसे कारखाने हैं जहां पर देवियों को बनाने का काम शुरू हो रहा है, उनको आकार देने का काम शुरू हो रहा है।
0: जहां जहां माता रानी की प्रतिमाएं बनती हैं, वहां अधिकतर ऑर्डर मिल चुके हैं और मूर्तिकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो तेजी से मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी डिलीवरी समय पर की जा सके, जिससे भक्त भी भारतीय संस्कृति से जुड़े इस उत्सव का हिस्सा बन सके। पूर्व बर्धमान से सुजाता मेहरा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब खबर मुंबई से, लालबाग चौराहा की। गणेश उत्सव में भक्तों ने मन्नतों के राजा को खूब चढ़ावा चढ़ाया। गणेश चतुर्थी से लेकर गणपति विसर्जन तक इस चढ़ावे में नगदी समेत सोने चांदी के कीमती सामान भी बप्पा को भक्तों ने अर्पित किए। इस वर्ष लालबाग के राजा के दरबार में 6 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा दान पेटियों में आया। महंगे सामानों की नीलामी भी की गई, जिसमें भक्तों ने बहुत ही उत्साह दिखाया।

0: बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक लाल बागचा राजा की महिमा अपरंपार है। भक्तों का उनमें गहरा विश्वास है। लाल बागचा राजा मन्नतों के राजा है। हर वर्ष गणेश उत्सव में लाखों श्रद्धालु उनके दरबार पे मन्नतों की झोली फैलाए पहुंचते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ आम से लेकर खास भक्त तक बप्पा के सामने शीश झुकाते हैं। इस विश्वास के साथ कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसी आस्था ने लाल बागचा राजा को भक्तों के बीच मन्नतों के राजा की पहचान दिलाई है। भक्तों की आस्था के साथ यहाँ चढ़ावे का आंकड़ा भी करोड़ों में पहुँचता है। इस वर्ष भी भक्तों ने लालबाग के राजा का दरबार सजने से लेकर उनकी विदाई तक चढ़ावे के रूप में अपनी गहरी आस्था दिखाई है। सोने, चांदी और अन्य कीमती सामान जो चढ़ावे में आए उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान देश और विदेश के श्रद्धालुओं से लाल बागचा राजा को 6,11,96,500 रुपए नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ, जिनमें बाबा के चरण स्पर्श की दान पेटी में 3,53,42,000 रुपए जमा हुए। वहीं रंग पेटी में 2,42,40,000 रुपए, जबकि विसर्जन पेटी में 16,14,500 रुपए का चढ़ावा आया। इसके अलावा दर्शन के लिए लगी कतार की पेटियों में भी काफी रकम जमा होने की बात कही गई है। इस नकदी में भारतीय करेंसी के साथ काफी डॉलर भी मिले हैं। गणेश उत्सव के दौरान लाल बागचा राजा को उनके भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया, जिनमें नकदी के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी अर्पित किए गए। नीलामी के लिए रखे गए सामान में लाल बागचा राजा को 1 किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईंट शामिल रही, जिसे एक अज्ञात भक्त ने भेंट की। सोने की इस ईंट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है। वहीं इस वर्ष एक और अज्ञात भक्त ने मन्नतों के राजा को 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भेंट की, जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए है।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में और गणेश उत्सव के दरमियान श्रद्धालुओं ने दिल खोल करके बप्पा को चढ़ावा चढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक 6,11,96,500 रुपए की नकद राशि आई है। लगभग 3 तरह की पेटियां लालबाग के राजा के रास्ते में रखी होती हैं। पहले तो जब श्रद्धालु चलते हुए आते हैं वो एक पेटी होती है, और इस समय मैं जिस मंच में मौजूद हूँ, ये राजा का दरबार है, राजा का मंच है, यहाँ पर एक पेटी होती है और विसर्जन के समय भी एक पेटी रखी जाती है। इन्हीं में जो राशियां डाली गई हैं, जो भी चढ़ाया है श्रद्धालुओं ने, उन सभी को जुटा करके आंकड़ा सामने आया है।
0: इन सब के अलावा नीलामी में सोने के कई आभूषणों के साथ सोने और चांदी की कई वस्तुएं शामिल रही। इनमें मोदक, चांदी का एक दंत, चांदी की कई गदाएं, सोने चांदी के कीमती हार, मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी, सुंदर फोटो फ्रेम भी शामिल रहे। यही नहीं, बाप्पा की सोने की मूर्ति, क्रिकेट के बैट और 2 बाइक भी इस विशेष नीलामी के मुख्य आकर्षणों में शामिल रहे।
1: बप्पा का विसर्जन हो चुका है और परंपरा के अनुसार हर साल श्रद्धालु गणपति बप्पा को, लालबाग के राजा को जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनमें सारी चीजें होती हैं, उनकी नीलामी की जाती है और कल वो संपन्न हुई है। जानकारी के मुताबिक 1 किलो का गोल्ड जो है वो भी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिका है। परंपरा के अनुसार जो भी बप्पा को श्रद्धालु लोग चढ़ाते हैं और विसर्जन के बाद में नीलामी होती है, लालबाग के राजा को जो भी चीजें चढ़ाई गई होती हैं, दिल खोल करके मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और बप्पा को चढ़ाई हुई चीजें मुंह मांगी कीमत पर अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा लालबाग के राजा का आशीर्वाद होता है।
0: हर वर्ष लाल बाग के राजा के दरबार में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नकदी समेत सोना चांदी और दूसरे कीमती सामानों का चढ़ावा अर्पित करते हैं। उनके चरणों में रखा गया करोड़ों रुपए का चढ़ावा सिर्फ रकम या संपत्ति भर नहीं बल्कि भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास की तस्वीर भी पेश करता है। लालबाग के राजा को चढ़ावे में मिली नकदी और आभूषणों की नीलामी से प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे गरीबों के लिए इलाज और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। साथ ही आपदा राहत कार्यों, समाज कल्याण और जनहित की योजनाओं को चलाने में भी राशि का उपयोग होता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बॉलीवुड में एक बार फिर से एक ऐसी कहानी दस्तक देने जा रही है जिसमें रोमांस, रिश्ते और ड्रामा का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इवेंट में सितारों का ग्लैमर भी देखने को मिला और खूब मौज मस्ती भी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही यामी गौतम की खास एंट्री जो मूवी में बवाल मचाने के लिए तैयार है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान नई नवेली दुल्हन के अंदाज में यामी ने जैसे ही एंट्री ली पूरा माहौल ही बदल गया। फिल्म का ट्रेलर भी काफी धमाकेदार है।
3: ट्रेलर लॉन्च का अंदाज नई नवेली दुल्हन का, ढोल ताशे गाजे बाजे के साथ दुल्हन के लिबास में यामी गौतम की धमाकेदार एंट्री। बॉलीवुड की फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को नई नई तरकीबों से ग्रैंड बनाना आज के जमाने का शिगुफा बन चुका है, लेकिन जिस निराले अंदाज में यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया वो किसी नजीर से कम नहीं। बुधवार को मुंबई में हुए इस इवेंट में यामी गौतम ने पारंपरिक अंदाज के साथ किसी नई नवेली दुल्हन की तरह मोटर बग्घी पर धमाकेदार एंट्री की तो उनका स्वागत भी दुल्हन की तरह ही गाजे बाजे के साथ हुआ। यामी गौतम के साथ को एक्टर आदिनाथ कोठारे, प्रोड्यूसर आनंद एल राय और फिल्म की पूरी टीम रेड कार्पेट पर नजर आई। इवेंट के दौरान मंच की कमान कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने संभाली और अपने चिरपरिचित अंदाज में स्टार कास्ट के साथ मजेदार बातचीत की। नई नवेली दुल्हन एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें यामी गौतम मोहिनी का किरदार निभा रही है। शादी के बाद जब वो ससुराल आती है तो कोई उसे डायन समझता है तो कोई असीम शक्तियों की मालकिन जो अपने अदृश्य शक्तियों से घर वालों की रक्षा करती नजर आती है।
4: पंटू, बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
5: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी।
6: उसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
3: यामी गौतम इस फिल्म में अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली है। नई नवेली के ट्रेलर को देखकर सवाल उठता है कि भाभी सच में डायन है या फिर छुपा है कोई ऐसा राज जो पूरी कहानी बदल देगा।
7: क्या बिल्कुल घुइया है क्या हम?
8: जो अच्छी अच्छी बातें हुई ना दादी, ये सब तो घर के अंदर हुई ना। असली खून खराबा तो घर के बाहर हुआ था दादी।
3: इस रात से पर्दा उठेगा 16 अक्टूबर को यानी दशहरे के मौके पर, जब नई नवेली सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: अरे यार, तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
12: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इजराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तानी की वीरता और साहस की, वो साहस जिसके दम पर आज 170 से ज्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत के एक लाल की वो वीरता जिसके बूते आज दर्जनों परिवार उजड़ने से बच गए। संभवतः ऐसे ही वीरों के लिए भारत के एक और लाल ने लिखा था कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और वाकई हिंदुस्तान के इस जांबाज बेटे ने कांटों में नहीं बल्कि जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में राह बनाकर दिखा दी जिंदगी के लिए। देखिए फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव जा रहे विमान में ओमान की पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला कर दिया। विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश कराना हो सकता है। हालांकि हमले को असली मकसद अभी तक जांच के दायरे में है और फिर निकल कर आएगा कि आखिर सही मकसद था क्या। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की असाधारण वीरता ने टाल दिया।

0: when we are up there and if something happens, you know, who's going to save you?
1: कोई डेढ़ साल पहले कैप्टन स्मिथ मछार ने ये सवाल पूछा था, When you are up there, who is going to save you?
0: When we are up there and if something happens, you know, who's going to save you?
1: तब किसे मालूम था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब कैप्टन स्मिथ खुद ही वो सेवियर, वो रक्षक बन जाएंगे, वो रक्षक जो आसमान में खुद लहूलुहान होकर भी दर्जनों फ्लाइट पैसेंजर्स को अपने हौसले के दम पर सुरक्षित जमीन पर उतार लाएगा।
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
1: उड़ान के दौरान फ्लाइट के कैप्टन और क्रू पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कैप्टन स्मिथ ने ये बात कही थी। आज उसी भरोसे को कैप्टन स्मिथ ने कई गुना पक्का कर दिया है। अपने साहस और हौसले से कैप्टन स्मिथ ने वो कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कैप्टन स्मिथ के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
2: And this young man just acts with incredible heroism and saves the day. Along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ मछार ने घायल होते हुए भी आसमान में वो हिम्मत दिखाई जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाला जा सका। स्मिथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और क्रू सबकी जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। कैप्टन की हालत गंभीर थी। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। यात्री उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछार सच्चे मायने में एक नायक है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने उसका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछार ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। वे सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और नेतन्याहू ही क्यों, बल्कि कैप्टन स्मिथ ने जो किया है उसके बाद सारा इजराइल उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। इजरायली टीवी कमेंटेटर इनाओ अविज़मेर ने कैप्टन स्मिथ को वो शानदार हीरो बताया है जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचाया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को धन्यवाद दिया है।
4: तो I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. And he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he's in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
1: स्मिथ की बहादुरी से 150 से ज्यादा इसराइलियों की जान बची है. सो इसराइली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्मिथ की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं.
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
1: आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मित मछार का फिलहाल सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है. स्मित की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

0: दुनिया उसके साहस को सलाम कर रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मचार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में आज विशेष महापूजा की गई। टेल अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम करके 170 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मचार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना जारी और अविरल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। देश के साथ गुड न्यूज टुडे की भी यही कामना है कि इस जामाज युवा को भगवान शिव अपनी कृपा से जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे। भारतीय पायलट स्मिथ मचार को आज दुनिया सलाम कर रही है, देश में भी उनके लिए आज सराहना और शुभकामनाएं लगातार संदेश से गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्टन स्मिथ को अद्भुत साहस और दिलेरी को सलाम किया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं पर यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ मचार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
1: कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
0: तो कैप्टन की तारीफ चारों ओर हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई की टेल अवीव जा रही फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और कब कितने मुश्किल हालात से गुजरकर कैप्टन स्मिथ ने ये कारनामा करके दिखाया। ये मामला कल यानी 30 सितंबर का है भारतीय समय के अनुसार। अगर हम देखें तो अगर समझने की कोशिश करें, सुबह 8:35 पर दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 टेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। सुबह 10:51 पर अचानक विमान की ऊंचाई में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में विमान करीब 14,000 फीट नीचे आ जाता है। इसी दौरान कॉकपिट में बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ओमानी को पायलट भारतीय कप्तान स्मिथ मचार पर चाकू से हमला कर देता है। कप्तान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यात्रियों में से यानिव, हायुन और दूसरे यात्री कॉकपिट में पहुंचते हैं और हमलावर को काबू कर लेते हैं। विमान में मौजूद डॉक्टर शोता मुसाइव घायल कप्तान का इलाज शुरू कर देते हैं। 10:58 पर विमान 7700 यानी इमरजेंसी कोड डालता है, लेकिन 11:05 पर कोड बदलकर 7500 कर दिया जाता है, जो संभावित हाईजैकिंग या अनलॉफुल इंटरफेरेंस का संकेत है। संकेत मिलते ही इजराइल फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया जाता है। 11:14 पर विमान सऊदी अरब के तबुक ATC से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। 12:15 पर विमान तबुक में सुरक्षित उतर जाता है। इसके बाद आरोपी को पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और 9:04 पर यात्रियों को लेकर रिप्लेसमेंट फ्लाइट टेल अवीव पहुंचती है। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, उस कॉकपिट में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे हुई, ये आपको समझा सके इसके लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली के द्वारका में मौजूद चार्ली फॉक्सटॉट एकेडमी पहुंचे। जीएनटी संवाददाता ने सिमुलेटर के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कॉकपिट के अंदर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं।
2: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे, सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है इस वक्त।
3: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं।
2: जी
3: जी,
2: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा?
3: So, उन्होंने यहां से ऑल्टीट्यूड चेंज कर लिया होगा। सपोज आई हैव चेंज इट टू 20,000 और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
2: नीचे जाना
3: स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहां से डिसेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हम यहां से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया और फिर यहां से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा,
2: नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया?
3: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
2: जी।
3: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूँ तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा, स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा स्पीड से
2: किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं अभी वहां रफ्तार बढ़
3: वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है अभी
2: जी।
3: मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट की रेट से बढ़ रहा है,
2: तो ये
3: और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी
2: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी।
3: ये देखो अभी 27,200, 27,100 कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंड कर रहे हैं,
2: और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने
3: का,
2: कई बार ऊपर नीचे
3: ऊपर नीचे हुआ। हाँ जी,
2: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
3: उस वक्त? यही है, कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट कैप्टन जो है, फर्स्ट ऑफिसर, उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, उसको चेंज करके फिर से उसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करने की कोशिश कर
2: लगातार कई बार दोनों के बीच जी। फिजिकल अटैक के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
3: नहीं, वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में।
2: चाकू छोटा सा भी नहीं है,
3: वो पूरा
2: ब्लेड
3: की होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
2: कुछ भी नहीं,
3: कुछ भी शार्क ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
2: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
3: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
2: और वो किस काम के लिए?
3: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
2: ओके, तो मतलब इस बहस के बाद, मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है, इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा, वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा, और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है। एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर, ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। पूरा खेल अंदर क्या हुआ, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे फ्लाइट रिकॉर्डर्स यही है,
3: ये रहा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड, हाँ
2: जो वॉइस रिकॉर्डर है यहाँ आप देखिए, मैं एक बार मनीष को कहूंगा वो थोड़ा करीब आए तो आपको दिखाएंगे, ये वॉइस रिकॉर्डर है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि दोनों पायलट्स के बीच जो भी बातचीत हुई वो
3: यहाँ पे रिकॉर्ड होता है,
2: सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये FDR है, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है जो ऑन रहता है। तो CVR और FDR ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं जिसको लेकर एक बार मैं चाहूंगा कि दरवाजा खुलने वाला सीक्वेंस भी आप हमें दिखाएं। अब आपके स्क्रीन पे वो आखिरी मोमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जब कैप्टन स्प्रिट ने अपनी

0: मस्ट हैव बिजी इनसाइड द कैबिन, तो उनको क्या पता आवाज से ना पता चला हो,
1: जी
0: क्योंकि इंजन का लाउड होता है, शोर होता है, तो आवाज से नहीं पता चलता है कॉकपिट का।
1: कैप्टन स्मिथ ने अभूतपूर्व ब्रेवरी साहस दिखाया और खून से लथपथ होने के बावजूद वो बाहर निकले। उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने, जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया और उसके बाद फिर को पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ सीवीआर और एपीआर के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सहयोगी मनीष भिदूड़ी के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली।
2: तो आज दुनिया जो है कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर रही है। इसी बीच आपको बताते चलें कि इतिहास में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पायलट की असाधारण सूझबूझ, शांत दिमाग, बेहतरीन कौशल और दिलेरी ने बड़े हादसों को टाल दिया, दर्जनों लोगों की जान बचाई, निश्चित तबाही को बड़ी कामयाबी या चमत्कार में तब्दील कर दिया। देखिए ऐसा ही एक घटना 15 जनवरी 2009 को घटी थी, जब यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की ऐतिहासिक लैंडिंग हडसन नदी पर करवाई गई थी। एयरबस A320 विमान ने न्यूयॉर्क के ला ग्वाडिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियाई गीस पक्षियों का एक पूरा झुंड विमान के दोनों इंजनों से टकरा गया। इसके कारण दोनों इंजनों ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। विमान बिना किसी इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि विमान के कैप्टन चेस्ली और फर्स्ट ऑफिसर जेफ के पास किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लौटने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं बचा था। तब कैप्टन सली ने तुरंत भांप लिया कि अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो विमान शहर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान की वाटर लैंडिंग यानी पानी पर लैंडिंग का बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने विमान को पानी की सतह पर इतनी सटीकता से उतारा कि विमान के टुकड़े नहीं हुए। हादसे के चंद मिनटों के भीतर ही नावों और रेस्क्यू टीमों की मदद से विमान में सवार सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये आधुनिक विमान इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और साहसिक लैंडिंग मानी जाती है। इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 से जुड़ा हादसा भी बता दें आपको। ये घटना विमानन इतिहास में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। 19 जुलाई 1989 को DC-10 विमान अमेरिका के डेनवर से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ा था। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसकी टेल में लगे इंजन का पंखा फट गया और इस धमाके से विमान के सभी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। एरोनॉटिक्स के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो बिना हाइड्रोलिक के विमान के पंखों यानी फ्लैप्स को हिलाना नामुमकिन हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि विमान पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो चुका था और उसका क्रैश होना लगभग तय था। कैप्टन अल हैंस और उनके क्रू ने हार नहीं मानी। विमान में एक यात्री के रूप में सफर कर रहे ट्रेनर पायलट डेनिस फिच भी मदद के लिए कॉकपिट में फौरन पहुंचे और इस टीम ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने विमान को मोड़ने और उसकी ऊंचाई नियंत्रित करने के लिए केवल बचे हुए 2 इंजनों की थ्रॉटल पावर का इस्तेमाल किया और वे किसी तरह विमान को आयोवा के सू सिटी एयरपोर्ट तक लाने में कामयाब हो गए। लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वो पलट गया, जिससे उसमें आग भी लग गई, लेकिन क्रू की इस सूझबूझ की बदौलत बिना विमान सीधे शहर या जमीन पर टकरा जाता। उनकी इस बहादुरी की बदौलत विमान में सवार 296 लोगों में से 185 लोगों की जान बच गई। करते हैं उस विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि एक विमान हवा में एक कन्वर्टेबल कार की तरह खुल गया था। जी हां, हुआ कुछ यूं कि एक बोइंग 737 विमान अमेरिका के हवाई द्वीप के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेटल फैटिक के कारण अचानक विमान की कॉकपिट के ठीक पीछे की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ गया। तेज हवा के दबाव के कारण यात्री

0: उनके सिर के ऊपर का हिस्सा सीधे आसमान में खुला था। हवा का बहाव बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां के दबाव में बाहर बह गई थी। तब कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विमान तेज हवा के दबाव में बीच से दो टुकड़ों में टूट सकता था। इसके अलावा यात्रियों और क्रू के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पायलटों ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की, विमान को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि इतनी भीषण तबाही और कॉकपिट के पीछे का वो हिस्सा पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद पायलटों ने सूझबूझ से विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। और इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा विमान में सवार बाकी सभी 94 यात्री और क्रू सुरक्षित बच गए। तो बहादुर के इन किस्सों के बीच ही फ्लाई दुबई हादसे से जुड़ी एक खबर है कि इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्ज़ोग ने फ्लाई दुबई फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले 4 इसराइली नागरिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी देने का ऐलान कर दिया है। उसमें देखिए सबसे ज्यादा चर्चा यानिव हायून की है जो पेशे से प्लमर हैं। वहीं पर चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में घुसे हमलावर को चोक होल्ड में लिया और नीचे गिरते विमान के कंट्रोल्स को संभाल कर उसे सीधा किया। यानिव वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो विमान उड़ाने के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन टेलीविजन पर आए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने सीखा था कि जब विमान नीचे गिर रहा हो तो स्टीयरिंग लीवर्स या योक को पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचकर ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए यानिव की बहादुरी और सूझबूझ की चिंता आज हर कोई कर रहा है। यानिव के अलावा ज़्विका मैंस को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ज़्विका मैंस ने यानिव हायून के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर ओमान मूल के को पायलट को दबोचने और उसे पूरी तरीके से काबू करने में मदद की थी। इसके अलावा हमलावर को काबू करने में मदद करने वाले दो और यात्री असाफ रजवन और डॉक्टर शोटा को भी ये सम्मान दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: क्या बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। नेपाल देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली। अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है जहां एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या है वायरल तस्वीर और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि अर्णब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: क्या योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या योगी राज में सरेराह हिंदुओं पर हमला हो रहा है? योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा सख्त रवैया अख्तियार करती रही है। ऐसे में एक वीडियो के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये वीडियो और खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
8: शख्स की कुछ लोगों के साथ बहस होती है और फिर देखते ही देखते माहौल एकदम बदल जाता है। इस्लामिक टोपी लगाए और मास्क लगाए एक व्यक्ति शख्स पर हमला कर देता है। शख्स भागता है और उसके पीछे दो लोग धारदार हथियार लेकर दौड़ने लगते हैं। वीडियो को धार्मिक रंग देकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इसे शेयर करते दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो यूपी का है, लेकिन किस जगह और किस कारण से हुआ इसका पता नहीं। जो तलवार फरसा लेकर एक अकेले हिंदू पर झुंड बनाकर टूट पड़े। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
6: साल चुनाव होने और इसी को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है और इन सब के बीच इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरने वालों का नया हथियार उनको मिल गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा से सख्त दिखने की कोशिश करती रही है और इस वीडियो के जरिए उसी छवि पर हमले की कोशिश की गई है। इस वीडियो के जरिए इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू युवक पर सरेआम हमला किया, एक खास नैरेटिव फैलाया जाने लग गया और चुनावी माहौल में ऐसा होना मकसद साफ साफ समझ में आ रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसके लिए योगी सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्हें लग रहा है कि योगी के होते उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके जरिए योगी सरकार को घेर भी रहे हैं। इसीलिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो किसी गली का है और इसके पीछे एक मस्जिद भी दिख रही है। रेड टी शर्ट और जीन्स पहने एक युवक का पहले कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होती है और उसके बाद कुछ लोग युवक को धारदार हथियार से मारने के लिए दौड़ते हैं और अचानक हुए हमले से युवक घबरा जाता है। वो तेजी से मस्जिद की तरफ भागने लगता है और पीछे कुछ लोग हथियार लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट फ्रेम में हमें मस्जिद के बोर्ड पर बांग्ला में कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। हमने भाषा एक्सपर्ट से इसके बारे में भी पूछा तो सामने आया कि बोर्ड पर कुरानुल करीम फजल मदरसा लिखा हुआ था। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये उत्तर प्रदेश के कुरानुल करीम फाजिल मदरसा है, लेकिन लगातार खोजबीन के बाद भी हमें इस नाम का कोई भी मदरसा यूपी में नहीं मिला और ये जानकर हमें शक हुआ कि वीडियो कहीं किसी और जगह का तो नहीं है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात थी कि इस वक्त यूपी में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे वक्त में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो का आना और सोशल मीडिया पर ही इसका वायरल हो जाना बहुत ही अजीब लग रहा था। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई। वीडियो में सिर्फ बांग्ला ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई बांग्ला बोलता नहीं है, तो ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो यूपी का है तो फिर इसमें सिर्फ बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है। यूपी सरकार का ये स्ट्रॉन्ग पहलू है। अगर यूपी का ये मामला है तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया। हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं हो रही।
9: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें ये मार्च 2026 के कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया पोस्ट में मिला। एक न्यूज आउटलेट के 11 मार्च के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ढाका में एक मदरसे पर हमले के दौरान का है। बेहतर क्वालिटी वाले इस वीडियो में मदरसे के गेट पर इसका नाम भी नजर आता है, कुरानुल करीम फाजिल मदरसा। ये मदरसा बांग्लादेश के सावर उपजिला के आशुलिया में है। हमें गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मिल गई। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद एक बांग्लादेश न्यूज चैनल के फेसबुक अकाउंट पर 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में आशुलिया स्थित दारुल इहसान मदरसे पर हमले और तोड़फोड़ की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हमलावरों और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के बीच समानता साफ साफ देखने को मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें 9 मार्च की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ मदरसे में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 से 60 लोगों ने मदरसे पर हमला किया था। मदरसा संचालकों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे की जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश का है और वहाँ एक मदरसे पर हुए हमले से जुड़ा ये वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
6: बात करते हैं एक और वायरल हो रही खबर की। दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। इस वीडियो की हमने पड़ताल की।
10: सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान से कहर ढाया। खासतौर पर लगातार बारिश के कारण यूपी में कई लोग मारे गए और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण तूफान के बीच किसी एयरपोर्ट में गोल गोल घूमते हवाई जहाज को देखा जा सकता है। इस दौरान वीडियो में ये भी दिख रहा है कि घूमते हुए जहाज वहां मौजूद ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट से टकरा रहा है। पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है, जहां अर्नब चक्रवात की वजह से ये घटना घटित हुई। ये वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लोग बिना सोचे समझे इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
6: इसे उठा चक्रवात अर्नब देश के 14 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश, कहीं बाढ़ की वजह से हालात खराब है और कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। दावा यह किया जा रहा है कि यह गुजरात के अहमदाबाद का वीडियो है, जहां पर अर्नब चक्रवात के चलते एक हवाई जहाज बेकाबू होकर घूमने लगा। ये वीडियो हमारे सामने भी आया और वीडियो में दो बातें गौर करने वाली थी। पहला तो ये कि बारिश और तूफान के बीच प्लेन गोल गोल घूम रहा है और दूसरा ये कि वीडियो में सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसका ये अर्थ हो सकता है कि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और इसीलिए सायरन बजाया गया हो। जांच के दौरान हमारा ध्यान वीडियो के ऑडियो पर गया और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी अटपटी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें घूमते हुए जहाज पर लिखे गए टेक्स्ट अटपटे से नजर आए। इसके अलावा भागते हुए ग्राउंड स्टाफ की गति सामान्य नहीं थी। वीडियो में एक ग्राउंड स्टाफ प्लेन से टकराता है लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अक्सर ऐसा दृश्य एडिटेड वीडियो में ही मौजूद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर देखने की कोई खबर सामने नहीं आई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखी, मेनस्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। रनवे पर फिसलन होने से प्लेन गोल गोल नहीं घूमता बल्कि वो अपनी दिशा से भटककर सीधा या फिर तिरछा फिसल सकता है, क्योंकि बारिश, बर्फ या पानी जमा होने के कारण रनवे और पहियों के बीच ग्रिप कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
10: जब ये वीडियो तेजी से चर्चा में आया, फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर दिखने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। पड़ताल के लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर इसमें विमान पर अटपटे से शब्द लिखे हैं। इसके बाद पुष्टि के लिए हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.3% संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और एआई डिटेक्शन टूल एआई और नॉट ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित एआई जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि एयरपोर्ट पर घूमते हुए हवाई जहाज का ये वायरल वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। इसका गुजरात के अहमदाबाद या अर्नब चक्रवात से कोई वास्ता नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
11: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का और आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। दूसरों की मदद करने का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा सड़क किनारे सामान बेच रहे जरूरतमंद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें खाने की चीजें दे रहा है। बच्चे की मासूमियत और दूसरों की मदद करने का ये छोटा सा प्रयास लोगों का दिल जीत रहा है। उम्र छोटी है लेकिन सोच और संस्कार देकर लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: बेटी को जंक फूड से बचाने के लिए पिता का ये जुगाड़ इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पिता ने लैपटॉप और माउस से बेटी के पेट का नकली अल्ट्रासाउंड किया, स्क्रीन पर पेट में कीड़े दिखाने का नाटक किया। ये देखकर बच्ची बहुत डर गई, रोते हुए माँ के पास भागी और कभी जंक फूड ना खाने की कसम खा ली। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने इसे बच्चे को जागरूक करने का स्मार्ट तरीका बताया तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे डराने से बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ेगा।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
0: पेरेंट्स के लिए ये सोचना भी मुश्किल होता है कि बेटी कभी शादी ही नहीं करेगी, मगर एक बेटी ने जब शादी ना करने की बात पापा के सामने रखी तो उन्होंने जवाब में उसे आत्मविश्वास से भर दिया, समझा दिया कि शादी तुम्हारी चॉइस है, पूछ नहीं।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
2: मैं तेरे लिए इतनी मजबूती का मकान बनवा दूंगा, अगर उसमें 10 किराएदार रहेंगे तो जिंदगी भर तू पूजा कर उसका किराया।
1: अच्छा, मतलब ये मेरा फ्यूचर प्लान है। तो अगर बिना
2: मेरे न होने के बाद तुझे कौन देखेगा? आजकल कोई भाई बहन, भाई को बहन नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखता, और भाई भाई को नहीं देखता। तो तेरा मैं अपने जीते जी इतना बना जाऊंगा कि तू आराम से सुकून की रोटी खा।
1: तो आपको दिक्कत नहीं होती ना, सोसाइटी या रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे कि गुप्ता जी आपकी बेटी ने तो शादी नहीं करी?
2: अरे मैं तो उनसे पूछूंगा, मायावती नहीं करी तो तुम उनसे क्यों सवाल करते हो, हमसे क्यों सवाल करते हो?
0: हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को लुभा रहा है।

0: कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देख रहे होंगे। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरी तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से।
1: हो गए 3-2 हो गए।
0: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे, तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चालान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से ये जादू नहीं बच पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना है ही नहीं। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए? बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा, कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वो ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
1: 3-2 हो गए मुझे देख के वहाँ। बहुत बढ़िया, ये लगाओ स्ट्रिप हेलमेट के, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं लग जाएगी, इतना भी लगाओगे इसे लगवाओ, इससे जरूरी है। दो ही बैठो यार, एक आदमी को ऑटो में बैठा दो, ऑटो वाले का फायदा हो जाए और अपने भी सुरक्षित रहो, ठीक है।
0: इस महिला के कारनामे को देखकर लोग दंग है। महिला ने इतने बड़े खतरनाक मगरमच्छ को ऐसे उठाया हुआ है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या फिर पालतू कुत्ता हो। ये हैरान करने वाला वीडियो कैलिफोर्निया के मशहूर द रेप्टाइल जू का है। वीडियो में जो महिला नजर आ रही है उनका नाम है जूलियट ब्रूअर और वो मशहूर रेप्टाइल एक्सपर्ट जे ब्रूअर की बेटी है। जिस विशाल मगरमच्छ को जूलियट ने गोद में उठाया हुआ है उसका नाम डार्थ है। वो सालों से इस मगरमच्छ की देखभाल कर रही है। दोनों के बीच ऐसा भरोसा और प्यार है कि जब जूलियट उसे उठाती है तो खतरनाक मगरमच्छ भी बिल्कुल शांत रहता है। भले ही वीडियो में जूलियट और मगरमच्छ की दोस्ती देखकर ये आसान लग रहा हो, लेकिन जूलियट खुद मानती है कि डार्थ एक जंगली जानवर है। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एक्सपर्ट की देखरेख के ऐसा खतरनाक स्टंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पैनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां भी बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े ही चाव के साथ खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है। सिलेक्शन करना हो तो कोई इन बंदर भाइयों से सीखे, क्योंकि पसंद का मामला हो तो ये भी किसी से कम नहीं है। वीडियो में मंदिर में चढ़े प्रसाद के बीच बंदर अपनी अपनी पसंद के फल चुनते नजर आ रहे हैं। किसी को केला पसंद आया तो किसी ने सेब उठा लिया, जो फल पसंद नहीं आया उसे वहीं पर छोड़ दिया। यानी प्रसाद में भी अपनी चॉइस बिल्कुल साफ है। बंदरों की ये चालाकी और शरारत देख कर लोग खूब हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो को जमकर वायरल भी कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: भी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां, आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली, 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी, इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा, अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास, फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान, साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इजराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तानी की वीरता और साहस की, वो साहस जिसके दम पर आज 170 से ज्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत के एक लाल की वो वीरता जिसके बूते आज दर्जनों परिवार उजड़ने से बच गए, संभवतः ऐसे ही वीरों के लिए भारत के एक और लाल ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और वाकई हिंदुस्तान के इस जांबाज बेटे ने कांटों में नहीं बल्कि जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में राह बनाकर दिखा दी जिंदगी के लिए। देखिए फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव जा रहे विमान में ओमान की पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला कर दिया, विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश कराना हो सकता है, हालांकि हमले को असली मकसद अभी तक जांच के दायरे में है और फिर निकल के आएगा कि आखिर सही मकसद था क्या। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मछार की असाधारण वीरता ने टाल दिया।

0: when we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: कोई डेढ़ साल पहले कैप्टन स्मिथ मछार ने ये सवाल पूछा था, When you are up there, who is going to save you?
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: तब किसे मालूम था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब कैप्टन स्मिथ खुद ही वो सेवियर, वो रक्षक बन जाएंगे, वो रक्षक जो आसमान में खुद लहूलुहान होकर भी दर्जनों फ्लाइट पैसेंजर्स को अपने हौसले के दम पर सुरक्षित जमीन पर उतार लाएगा।
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
1: उड़ान के दौरान फ्लाइट के कैप्टन और क्रू पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कैप्टन स्मिथ ने ये बात कही थी। आज उसी भरोसे को कैप्टन स्मिथ ने कई गुना पक्का कर दिया है। अपने साहस और हौसले से कैप्टन स्मिथ ने वो कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कैप्टन स्मिथ के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
2: एंड दिस यंग मैन जस्ट एक्ट्स विद इनक्रेडिबल हीरोइज्म एंड सेव्स द डे along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ मछार ने घायल होते हुए भी आसमान में वो हिम्मत दिखाई जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाला जा सका। स्मिथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और क्रू सबकी जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। कैप्टन की हालत गंभीर थी, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। यात्री उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछार सच्चे मायने में एक नायक है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने उसका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछार ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। वे सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और नेतन्याहू ही क्यों, बल्कि कैप्टन स्मिथ ने जो किया है उसके बाद सारा इसराइल उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। इसराइली टीवी कमेंटेटर इनाओ अविजमेर ने कैप्टन स्मिथ को वो शानदार हीरो बताया है जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचाया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को धन्यवाद दिया है।
4: Thank you. I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. And he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he's in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
1: स्मिथ की बहादुरी से 150 से ज्यादा इसराइलियों की जान बची है. सो इसराइली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्मिथ की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं.
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight-by-flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
1: आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मिथ मछार का फिलहाल सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है. स्मिथ की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है. वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
6: दुनिया उसके साहस को सलाम कर रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है. राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मछार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में आज विशेष महापूजा की गई. टेल अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम करके 170 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मछार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना जारी और अविरल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया. देश के साथ गुड न्यूज टुडे की भी यही कामना है कि इस जामाज युवा को भगवान शिव अपनी कृपा से जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे. भारतीय पायलट स्मिथ मछार को आज दुनिया सलाम कर रही है, देश में भी उनके लिए आज सराहना और शुभकामनाएं लगातार संदेश से गूंज रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्टन स्मिथ को अद्भुत साहस और दिलेरी को सलाम किया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. तो वहीं पर यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ मछार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया.
7: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है. मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
6: तो कैप्टन की तारीफ चारों ओर हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई की टेल अवीव जा रही फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और कब कितने मुश्किल हालात से गुजरकर कैप्टन स्मिथ ने यह कारनामा करके दिखाया। ये मामला कल यानी 30 सितंबर का है भारतीय समय के अनुसार। अगर हम देखें तो अगर समझने की कोशिश करें, सुबह 8:35 पर दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 टेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। सुबह 10:51 पर अचानक विमान की ऊंचाई में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में विमान करीब 14,000 फीट नीचे आ जाता है। इसी दौरान कॉकपिट में बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ओमानी को पायलट भारतीय कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला कर देता है। कप्तान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यात्रियों में से यानिव हायुन और दूसरे यात्री कॉकपिट में पहुंचते हैं और हमलावर को काबू कर लेते हैं। विमान में मौजूद डॉक्टर शोता मुसाइव घायल कप्तान का इलाज शुरू कर देते हैं। 10:58 पर विमान 7700 यानी इमरजेंसी कोड डालता है, लेकिन 11:05 पर कोड बदलकर 7500 कर दिया जाता है, जो संभावित हाईजैकिंग या अनलॉफुल इंटरफेरेंस का संकेत है। संकेत मिलते ही इजराइल फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया जाता है। 11:14 पर विमान सऊदी अरब के तबुक ATC से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। 12:15 पर विमान तबुक में सुरक्षित उतर जाता है। इसके बाद आरोपी को पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और 9:04 पर यात्रियों को लेकर रिप्लेसमेंट फ्लाइट टेल अवी पहुंचती है। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, उस कॉकपिट में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे हुई, ये आपको समझा सकें इसके लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली के द्वारका में मौजूद चार्ली फॉक्सटॉट एकेडमी पहुंचे। GNT संवाददाता ने सिमुलेटर के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कॉकपिट के अंदर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं।
8: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ-1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे, सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है इस वक्त।
9: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं।
8: जी
9: जी,
8: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा?
9: So, उन्होंने यहाँ से ऑल्टीट्यूड चेंज कर लिया होगा। सपोज आई हैव चेंज इट टू 20,000 और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
8: नीचे जाना
9: स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहाँ से डिसेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हम यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया, और फिर यहाँ से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा,
8: नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया?
9: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
8: जी।
9: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूँ तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा स्पीड से
8: किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं अभी वहां रफ्तार बढ़
9: वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है अभी
8: जी।
9: मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट के रेट से बढ़ रहा है,
8: तो ये
9: और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी
8: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी।
9: ये देखो अभी 27,200, 100 कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंड कर रहे हैं,
8: और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने
9: का, ले जाने का
8: कई बार ऊपर नीचे
9: ऊपर नीचे हुआ। हाँ जी
8: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
9: उस वक्त? यही है, कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट कैप्टन जो है फर्स्ट ऑफिसर, उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, उसको चेंज करके फिर से उसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करने की कोशिश कर
8: लगातार कई बार दोनों के बीच
9: जी।
8: फिजिकल अटैक के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
9: नहीं वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में,
8: चाकू
9: चाकू
8: छोटा सा चाकू
9: छोटा सा भी नहीं है, वो पूरा
8: ब्लेड
9: की होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
8: कुछ भी नहीं,
9: कुछ भी शार्क ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
8: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
9: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
8: और वो किस काम के लिए?
9: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
8: ओके तो मतलब इस बहस के बाद मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा, और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है। एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर। ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। पूरा खेल अंदर क्या हुआ वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे फ्लाइट रिकॉर्डर्स यही है,
9: ये रहा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। हाँ
8: जो वॉइस रिकॉर्डर है यहाँ आप देखिए, मैं एक बार मनीष को कहूंगा वो थोड़ा करीब आए तो आपको दिखाएंगे, ये वॉइस रिकॉर्डर है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि दोनों पायलट्स के बीच जो भी बातचीत हुई वो
9: यहाँ पे रिकॉर्ड होता है,
8: सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये FDR है, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है जो ऑन रहता है। तो CVR और FDR ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं जिसको लेकर एक बार मैं चाहूंगा कि दरवाजा खुलने वाला सीक्वेंस भी आप हमें दिखाएं। अब आपके स्क्रीन पे वो आखिरी मोमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जब कैप्टन स्प्रिट ने अपनी आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस दरवाजे का नॉब खोला, दरवाजा खुल गया और सामने इस वक्त क्या पता चला होगा क्रू को,
9: वो तो अंदर दिख जाएगा फिर सारा कि अंदर कुछ
8: खून में
9: नॉर्मल नहीं है
8: जी,
9: अनयूजुअल
8: है
9: हुआ है।
8: और इतनी देर आवाजों से भी बाहर पता चला होगा जो क्रू है एटलीस्ट जो रहता है जो
9: दे मस्ट हैव बिजी इनसाइड द कैबिन, तो उनको क्या पता आवाज से ना पता चला हो कि इंजन का लाउड होता है शोर होता है तो आवाज से नहीं पता चलता है कॉकपिट का।
8: कैप्टन स्मिथ ने अभूतपूर्व ब्रेवरी साहस

0: निकले, उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने, जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया और उसके बाद फिर को पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ सीवीआर और एपीआर के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सहयोगी मनीष भिदूड़ी के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली।
1: तो आज दुनिया जो है कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर रही है। इसी बीच आपको बताते चलें कि इतिहास में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पायलट की असाधारण सूझबूझ, शांत दिमाग, बेहतरीन कौशल और दिलेरी ने बड़े हादसों को टाल दिया, दर्जनों लोगों की जान बचाई, निश्चित तबाही को बड़ी कामयाबी या चमत्कार में तब्दील कर दिया। देखिए ऐसा ही एक घटना 15 जनवरी 2009 को घटी थी जब यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की ऐतिहासिक लैंडिंग हडसन नदी पर करवाई गई थी। एयरबस A320 विमान ने न्यूयॉर्क के ला ग्वाडिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियाई गीस पक्षियों का एक पूरा झुंड विमान के दोनों इंजनों से टकरा गया। इसके कारण दोनों इंजनों ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। विमान बिना किसी इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि विमान के कैप्टन चेस्ली और फर्स्ट ऑफिसर जेफ के पास किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लौटने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं बचा था। तब कैप्टन सली ने तुरंत भांप लिया कि अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो विमान शहर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान की वाटर लैंडिंग यानी पानी पर लैंडिंग का बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने विमान को पानी की सतह पर इतनी सटीकता से उतारा कि विमान के टुकड़े नहीं हुए। हादसे के चंद मिनटों के भीतर ही नावों और रेस्क्यू टीमों की मदद से विमान में सवार सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये आधुनिक विमान इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और साहसिक लैंडिंग मानी जाती है। इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 से जुड़ा हादसा भी बता दें आपको। ये घटना विमानन इतिहास में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। 19 जुलाई 1989 को DC-10 विमान अमेरिका के डेनवर से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ा था। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसकी टेल में लगे इंजन का पंखा फट गया और इस धमाके से विमान के सभी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। एरोनॉटिक्स के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो बिना हाइड्रोलिक के विमान के पंखों यानी फ्लैप्स को हिलाना नामुमकिन हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि विमान पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो चुका था और उसका क्रैश होना लगभग तय था। कैप्टन अल हैंस और उनके क्रू ने हार नहीं मानी। विमान में एक यात्री के रूप में सफर कर रहे ट्रेनर पायलट डेनिस फिच भी मदद के लिए कॉकपिट में फौरन पहुंचे और इस टीम ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने विमान को मोड़ने और उसकी ऊंचाई नियंत्रित करने के लिए केवल बचे हुए 2 इंजनों की थ्रॉटल पावर का इस्तेमाल किया और वे किसी तरह विमान को आयोवा के सू सिटी एयरपोर्ट तक लाने में कामयाब हो गए। लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वो पलट गया, जिससे उसमें आग भी लग गई, लेकिन क्रू की इस सूझबूझ की बदौलत बिना विमान सीधे शहर या जमीन पर टकरा जाता। उनकी इस बहादुरी की बदौलत विमान में सवार 296 लोगों में से 185 लोगों की जान बच गई। करते हैं उस विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि एक विमान हवा में एक कन्वर्टेबल कार की तरह खुल गया था। जी हां, हुआ कुछ यूं कि एक बोइंग 737 विमान अमेरिका के हवाई द्वीप के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेटल फैटिक के कारण अचानक विमान की कॉकपिट के ठीक पीछे की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ गया। तेज हवा के दबाव के कारण यात्रियों के सिर के ऊपर का हिस्सा सीधे आसमान में खुला था। हवा का बहाव बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां के दबाव में बाहर बह गई थी। तब कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मेडलिन के सामने। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विमान तेज हवा के दबाव में बीच से दो टुकड़ों में टूट सकता।

0: था।
1: इसके अलावा यात्रियों और क्रू के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पायलटों ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की, विमान को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि इतनी भीषण तबाही और कॉकपिट के पीछे का वो हिस्सा पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद पायलटों ने सूझबूझ से विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। और इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा विमान में सवार बाकी सभी 94 यात्री और क्रू सुरक्षित बच गए। तो बहादुर के इन किस्सों के बीच ही फ्लाई दुबई हादसे से जुड़ी एक खबर है कि इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्ज़ोग ने फ्लाई दुबई फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले 4 इजरायली नागरिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी देने का ऐलान कर दिया है। उसमें देखिए सबसे ज्यादा चर्चा यानिव हायून की है जो पेशे से प्लमर हैं। वहीं पर चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में घुसे हमलावर को चोक होल्ड में लिया और नीचे गिरते विमान के कंट्रोल्स को संभाल कर उसे सीधा किया। यानिव वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो विमान उड़ाने के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन टेलीविजन पर आए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने सीखा था कि जब विमान नीचे गिर रहा हो तो स्टीयरिंग लीवर्स या योक को पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचकर ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए यानिव की बहादुरी और सूझबूझ की चिंता आज हर कोई कर रहा है। यानिव के अलावा ज़्विका मैंस को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ज़्विका मैंस ने यानिव हायून के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर ओमान मूल के को पायलट को दबोचने और उसे पूरी तरीके से काबू करने में मदद की थी। इसके अलावा हमलावर को काबू करने में मदद करने वाले 2 और यात्री असाफ रजवन और डॉक्टर शोटा को भी यह सम्मान दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए वुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां, आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली, 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी, इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा, अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। योगी सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली, अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान, साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात करिमा सम्मान, दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है, जहां एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या है वायरल तस्वीर और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: क्या योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या योगी राज में सरेराह हिंदुओं पर हमला हो रहा है? योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा सख्त रवैया अख्तियार करती रही है। ऐसे में एक वीडियो के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये वीडियो और खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
3: पहले एक शख्स की कुछ लोगों के साथ बहस होती है और फिर देखते ही देखते माहौल एकदम बदल जाता है। इस्लामिक टोपी लगाए और मास्क लगाए एक व्यक्ति शख्स पर हमला कर देता है। शख्स भागता है और उसके पीछे दो लोग धारदार हथियार लेकर दौड़ने लगते हैं। वीडियो को धार्मिक रंग देकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इसे शेयर करते दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो यूपी का है, लेकिन किस जगह और किस कारण से हुआ इसका पता नहीं, जो तलवार फरसा लेकर एक अकेले हिंदू पर झुंड बनाकर टूट पड़े। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: साल चुनाव होने और इसी को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है और इन सब के बीच इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरने वालों का नया हथियार उनको मिल गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा से सख्त दिखने की कोशिश करती रही है और इस वीडियो के जरिए उसी छवि पर हमले की कोशिश की गई है। इस वीडियो के जरिए इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू युवक पर सरेआम हमला किया, एक खास नैरेटिव फैलाया जाने लग गया और चुनावी माहौल में ऐसा होना मकसद साफ साफ समझ में आ रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसके लिए योगी सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्हें लग रहा है कि योगी के होते उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके जरिए योगी सरकार को घेर भी रहे हैं। इसीलिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो किसी गली का है और इसके पीछे एक मस्जिद भी दिख रही है। रेड टी शर्ट और जीन्स पहने एक युवक का पहले कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होती है और उसके बाद कुछ लोग युवक को धारदार हथियार से मारने के लिए दौड़ते हैं और अचानक हुए हमले से युवक घबरा जाता है। वो तेजी से मस्जिद की तरफ भागने लगता है और पीछे कुछ लोग हथियार लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट फ्रेम में हमें मस्जिद के बोर्ड पर बांग्ला में कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। हमने भाषा एक्सपर्ट से इसके बारे में भी पूछा तो सामने आया कि बोर्ड पर कुरानुल करीम फजल मदरसा लिखा हुआ था। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये उत्तर प्रदेश के कुरानुल करीम फाजिल मदरसा है, लेकिन लगातार खोजबीन के बाद भी हमें इस नाम का कोई भी मदरसा यूपी में नहीं मिला और ये जानकर हमें शक हुआ कि वीडियो कहीं किसी और जगह का तो नहीं है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात थी कि इस वक्त यूपी में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे वक्त में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो का आना और सोशल मीडिया पर ही इसका वायरल हो जाना बहुत ही अजीब लग रहा था। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई। वीडियो में सिर्फ बांग्ला ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई बांग्ला बोलता नहीं है, तो ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो यूपी का है तो फिर इसमें सिर्फ बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है। यूपी सरकार का ये स्ट्रांग पहलू है। अगर यूपी का ये मामला है तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया। हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं हो रही।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें ये मार्च 2026 के कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया पोस्ट में मिला। एक न्यूज आउटलेट के 11 मार्च के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ढाका में एक मदरसे पर हमले के दौरान का है। बेहतर क्वालिटी वाले इस वीडियो में मदरसे के गेट पर इसका नाम भी नजर आता है, कुरानुल करीम फाजिल मदरसा। ये मदरसा बांग्लादेश के सावर उपजिला के आशुलिया में है। हमें गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मिल गई। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद एक बांग्लादेश न्यूज चैनल के फेसबुक अकाउंट पर 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में आशुलिया स्थित दारुल इहसान मदरसे पर हमले और तोड़फोड़ की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हमलावरों और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के बीच समानता साफ साफ देखने को मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें 9 मार्च की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ मदरसे में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 से 60 लोगों ने मदरसे पर हमला किया था। मदरसा संचालकों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे की जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश का है और वहाँ एक मदरसे पर हुए हमले से जुड़ा ये वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
2: बात करते हैं एक और वायरल हो रही खबर की। दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। इस वीडियो की हमने पड़ताल की।
4: सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान से कहर ढाया। खासतौर पर लगातार बारिश के कारण यूपी में कई लोग मारे गए और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण तूफान के बीच किसी एयरपोर्ट में गोल गोल घूमते हवाई जहाज को देखा जा सकता है। इस दौरान वीडियो में ये भी दिख रहा है कि घूमते हुए जहाज वहां मौजूद ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट से टकरा रहा है। पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है, जहां अर्नब चक्रवात की वजह से ये घटना घटित हुई। ये वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लोग बिना सोचे समझे इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: इसे उठा चक्रवात अर्नब देश के 14 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश, कहीं बाढ़ की वजह से हालात खराब है और कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। दावा यह किया जा रहा है कि यह गुजरात के अहमदाबाद का वीडियो है, जहां पर अर्नब चक्रवात के चलते एक हवाई जहाज बेकाबू होकर घूमने लगा। ये वीडियो हमारे सामने भी आया और वीडियो में दो बातें गौर करने वाली थी। पहला तो ये कि बारिश और तूफान के बीच प्लेन गोल गोल घूम रहा है और दूसरा ये कि वीडियो में सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसका ये अर्थ हो सकता है कि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और इसीलिए सायरन बजाया गया हो। जांच के दौरान हमारा ध्यान वीडियो के ऑडियो पर गया और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी अटपटी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें घूमते हुए जहाज पर लिखे गए टेक्स्ट अटपटे से नजर आए। इसके अलावा भागते हुए ग्राउंड स्टाफ की गति सामान्य नहीं थी। वीडियो में एक ग्राउंड स्टाफ प्लेन से टकराता है लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अक्सर ऐसा दृश्य एडिटेड वीडियो में ही मौजूद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर देखने की कोई खबर सामने नहीं आई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखी, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। रनवे पर फिसलन होने से प्लेन गोल गोल नहीं घूमता बल्कि वो अपनी दिशा से भटककर सीधा या फिर तिरछा फिसल सकता है, क्योंकि बारिश, बर्फ या पानी जमा होने के कारण रनवे और पहियों के बीच ग्रिप कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
4: जब ये वीडियो तेजी से चर्चा में आया, फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर दिखने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। पड़ताल के लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर इसमें विमान पर अटपटे से शब्द लिखे हैं। इसके बाद पुष्टि के लिए हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.3% संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और एआई डिटेक्शन टूल एआई और नॉट ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित एआई जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि एयरपोर्ट पर घूमते हुए हवाई जहाज का ये वायरल वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। इसका गुजरात के अहमदाबाद या अर्नब चक्रवात से कोई वास्ता नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: तो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का और आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। दूसरों की मदद करने का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा सड़क किनारे सामान बेच रहे जरूरतमंद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें खाने की चीजें दे रहा है। बच्चे की मासूमियत और दूसरों की मदद करने का ये छोटा सा प्रयास लोगों का दिल जीत रहा है। उम्र छोटी है लेकिन सोच और संस्कार देकर लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: बेटी को जंक फूड से बचाने के लिए पिता का ये जुगाड़ इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पिता ने लैपटॉप और माउस से बेटी के पेट का नकली अल्ट्रासाउंड किया, स्क्रीन पर पेट में कीड़े दिखाने का नाटक किया। ये देखकर बच्ची बहुत डर गई, रोते हुए माँ के पास भागी और कभी जंक फूड ना खाने की कसम खा ली। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने इसे बच्चे को जागरूक करने का स्मार्ट तरीका बताया तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे डराने से बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ेगा।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
0: पेरेंट्स के लिए ये सोचना भी मुश्किल होता है कि बेटी कभी शादी ही नहीं करेगी, मगर एक बेटी ने जब शादी ना करने की बात पापा के सामने रखी तो उन्होंने जवाब में उसे आत्मविश्वास से भर दिया, समझा दिया कि शादी तुम्हारी चॉइस है, पूछ नहीं।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
2: मैं तेरे लिए इतनी मजबूती का मकान बनवा दूंगा, अगर उसमें 10 किराएदार रहेंगे तो जिंदगी भर तू पूजा कर उसका किराया।
1: अच्छा, मतलब ये मेरा फ्यूचर प्लान है। तो अगर बिना
2: फ्यूचर के मेरे न होने के बाद तुझे कौन देखेगा? आजकल कोई भाई बहन भाई को बहन नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखता और भाई भाई को नहीं देखता, तो तेरा मैं अपने जीते जी इतना बना जाऊंगा कि तो आराम से सुकून की रोटी खा।
1: तो आप, मतलब आपको दिक्कत नहीं होती ना, सोसाइटी या रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे कि गुप्ता जी आपकी बेटी ने तो शादी नहीं करी?
2: अरे मैं तो उनसे पूछूंगा, मायावती ने नहीं करी तो तुम उनसे क्यों सवाल करते हो, हमसे क्यों सवाल करते हो?
0: हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को लुभा।

0: कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देख रहे होंगे। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरी तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से।
1: हो गए 3-2, 3-2 हो गए।
0: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे, तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चालान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से ये जादू नहीं बच पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना है ही नहीं। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए? बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा, कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वो ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
1: 3-2 हो गए मुझे देख के वहाँ। बहुत बढ़िया, ये लगाओ स्ट्रिप हेलमेट के, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं लग जाएगी, इतना भी लगाओ, इसे लगवाओ, इससे जरूरी है। दो ही बैठो यार, एक आदमी को ऑटो में बैठा दो, ऑटो वाले का फायदा हो जाए और अपने भी सुरक्षित रहो, ठीक है।
0: इस महिला के कारनामे को देखकर लोग दंग है। महिला ने इतने बड़े खतरनाक मगरमच्छ को ऐसे उठाया हुआ है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या फिर पालतू कुत्ता हो। ये हैरान करने वाला वीडियो कैलिफोर्निया के मशहूर द रेप्टाइल जू का है। वीडियो में जो महिला नजर आ रही है उनका नाम है जूलियट ब्रूअर और वो मशहूर रेप्टाइल एक्सपर्ट जे ब्रूअर की बेटी है। जिस विशाल मगरमच्छ को जूलियट ने गोद में उठाया हुआ है उसका नाम डार्थ है। वो सालों से इस मगरमच्छ की देखभाल कर रही है। दोनों के बीच ऐसा भरोसा और प्यार है कि जब जूलियट उसे उठाती है तो खतरनाक मगरमच्छ भी बिल्कुल शांत रहता है। भले ही वीडियो में जूलियट और मगरमच्छ की दोस्ती देखकर ये आसान लग रहा हो, लेकिन जूलियट खुद मानती है कि डार्थ एक जंगली जानवर है। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एक्सपर्ट की देखरेख के ऐसा खतरनाक स्टंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लैब ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पैनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां भी बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कैपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े ही चाव के साथ खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है। सिलेक्शन करना हो तो कोई इन बंदर भाइयों से सीखे, क्योंकि पसंद का मामला हो तो ये भी किसी से कम नहीं है। वीडियो में मंदिर में चढ़े प्रसाद के बीच बंदर अपनी अपनी पसंद के फल चुनते नजर आ रहे हैं। किसी को केला पसंद आया तो किसी ने सेब उठा लिया, जो फल पसंद नहीं आया उसे वहीं पर छोड़ दिया। यानी प्रसाद में भी अपनी चॉइस बिल्कुल साफ है। बंदरों की ये चालाकी और शरारत देख कर लोग खूब हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो को जमकर वायरल भी कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात।
3: क्या बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। 4 मिनट पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीबा 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली, अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इजराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तानी की वीरता और साहस की, वो साहस जिसके दम पर आज 170 से ज्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत के एक लाल की वो वीरता जिसके बूते आज दर्जनों परिवार उजड़ने से बच गए। संभवतः ऐसे ही वीरों के लिए भारत के एक और लाल ने लिखा था कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और वाकई हिंदुस्तान के इस जांबाज बेटे ने कांटों में नहीं बल्कि जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में राह बनाकर दिखा दी जिंदगी के लिए। देखिए, फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव जा रहे विमान में ओमान की पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला कर दिया। विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश कराना हो सकता है। हालांकि हमले को असली मकसद अभी तक जांच के दायरे में है और फिर निकल कर आएगा कि आखिर सही मकसद था क्या। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की असाधारण वीरता ने टाल दिया।

0: when we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: कोई डेढ़ साल पहले कैप्टन स्मिथ मछार ने ये सवाल पूछा था, When you are up there, who is going to save you?
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: तब किसे मालूम था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब कैप्टन स्मिथ खुद ही वो सेवियर, वो रक्षक बन जाएंगे, वो रक्षक जो आसमान में खुद लहूलुहान होकर भी दर्जनों फ्लाइट पैसेंजर्स को अपने हौसले के दम पर सुरक्षित जमीन पर उतार लाएगा।
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
1: उड़ान के दौरान फ्लाइट के कैप्टन और क्रू पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कैप्टन स्मिथ ने ये बात कही थी। आज उसी भरोसे को कैप्टन स्मिथ ने कई गुना पक्का कर दिया है। अपने साहस और हौसले से कैप्टन स्मिथ ने वो कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कैप्टन स्मिथ के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
2: And this young man just acts with incredible heroism and saves the day. Along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ मछार ने घायल होते हुए भी आसमान में वो हिम्मत दिखाई जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाला जा सका। स्मिथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और क्रू सबकी जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। कैप्टन की हालत गंभीर थी। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। यात्री उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछार सच्चे मायने में एक नायक है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने उसका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछार ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। वे सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और नेतन्याहू ही क्यों, बल्कि कैप्टन स्मिथ ने जो किया है उसके बाद सारा इसराइल उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। इसराइली टीवी कमेंटेटर इनाओ अविजमेर ने कैप्टन स्मिथ को वो शानदार हीरो बताया है जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचाया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को धन्यवाद दिया है।
4: I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. And he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he's in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
1: स्मिथ की बहादुरी से 150 से ज्यादा इसराइलियों की जान बची है। सो इसराइली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्मिथ की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं।
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the Fly Dubai flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. He chose to be a hero, and that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
1: आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मिथ मछार का फिलहाल सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है। स्मिथ की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है। वीरे रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दुनिया उसके साहस को सलाम कर रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मछार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में आज विशेष महापूजा की गई। टेल अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम करके 170 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मछार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना जारी और अविरल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। देश के साथ गुड न्यूज टुडे की भी यही कामना है कि इस जामाज युवा को भगवान शिव अपनी कृपा से जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे। भारतीय पायलट स्मिथ मछार को आज दुनिया सलाम कर रही है, देश में भी उनके लिए आज सराहना और शुभकामनाएं लगातार संदेश से गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्टन स्मिथ को अद्भुत साहस और दिलेरी को सलाम किया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं पर यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ मछार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
7: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
6: तो कैप्टन की तारीफ चारों ओर हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई की टेल अवीव जा रही फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और कब कितने मुश्किल हालात से गुजरकर कैप्टन स्मिथ ने ये कारनामा करके दिखाया। ये मामला कल यानी 30 सितंबर का है भारतीय समय के अनुसार। अगर हम देखें तो अगर समझने की कोशिश करें, सुबह 8:35 पर दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 टेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। सुबह 10:51 पर अचानक विमान की ऊंचाई में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में विमान करीब 14,000 फीट नीचे आ जाता है। इसी दौरान कॉकपिट में बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ओमानी को पायलट भारतीय कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला कर देता है। कप्तान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खुलने में कामयाब हो जाते हैं। यात्रियों में से यानिफ हायुन और दूसरे यात्री कॉकपिट में पहुंचते हैं और हमलावर को काबू कर लेते हैं। विमान में मौजूद डॉक्टर शोता मुसाइव घायल कप्तान का इलाज शुरू कर देते हैं। 10:58 पर विमान 7700 यानी इमरजेंसी कोड डालता है, लेकिन 11:05 पर कोड बदलकर 7500 कर दिया जाता है, जो संभावित हाईजैकिंग या अनलॉफुल इंटरफेरेंस का संकेत है। संकेत मिलते ही इसराइल फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया जाता है। 11:14 पर विमान सऊदी अरब के तबुक ATC से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। 12:15 पर विमान तबुक में सुरक्षित उतर जाता है। इसके बाद आरोपी को पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और 9:04 पर यात्रियों को लेकर रिप्लेसमेंट फ्लाइट टेल अवीव पहुंचती है। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, उस कॉकपिट में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे हुई, ये आपको समझा सकें इसके लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली के द्वारका में मौजूद चार्ली फॉक्सटॉट एकेडमी पहुंचे। GNT संवाददाता ने सिमुलेटर के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कॉकपिट के अंदर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं।
8: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे, सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है इस वक्त?
9: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं।
8: जी
9: जी,
8: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा?
9: So, उन्होंने यहाँ से ऑल्टीट्यूड चेंज कर लिया होगा। सपोज आई हैव चेंज्ड इट टू 20,000, और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
8: नीचे जाना
9: स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहाँ से डिसेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हम यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया, और फिर यहाँ से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाए,
8: नीचे गिरना शुरू हो जाए।
9: ओके,
8: एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया?
9: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
8: जी।
9: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूं तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा स्पीड से
8: किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं अभी वहां रफ्तार बढ़
9: वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है अभी
8: जी।
9: मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट की रेट से बढ़ रहा है,
8: तो ये
9: और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी
8: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी।
9: ये देखो अभी 27,200-27,100 कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंड कर रहे हैं,
8: और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने का,
9: ले जाने का
8: कई बार ऊपर नीचे
9: ऊपर नीचे हुआ। हाँ जी
8: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
9: उस वक्त? यही है कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट कैप्टन जो है फर्स्ट ऑफिसर, उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, उसको चेंज करके फिर से उसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करने की कोशिश कर
8: लगातार कई बार ये दोनों के बीच
9: जी।
8: फिजिकल अटैक के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
9: नहीं वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में,
8: चाकू
9: चाकू छोटा सा भी नहीं है, वो पूरा
8: ब्लेड
9: स्कीम होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
8: कुछ भी नहीं,
9: कुछ भी शार्क ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
8: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
9: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
8: और वो किस काम के लिए?
9: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
8: ओके तो मतलब इस बहस के बाद मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा, और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है, एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर। ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। पूरा खेल अंदर क्या हुआ वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे फ्लाइट रिकॉर्डर्स यही है,
9: ये रहा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड।
8: हाँ जी वॉइस रिकॉर्डर है, यहाँ आप देखिए मैं एक बार मनीष को कहूंगा वो थोड़ा करीब आए तो आपको दिखाएंगे, ये वॉइस रिकॉर्डर है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि दोनों पायलट्स के बीच जो भी बातचीत हुई वो
9: यहाँ पे रिकॉर्ड होता है,
8: सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये FDR है, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है जो ऑन रहता है। तो CVR और FDR ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं जिसको लेकर एक बार मैं चाहूंगा कि दरवाजा खुलने वाला सीक्वेंस भी आप हमें दिखाएं। अब आपके स्क्रीन पे वो आखिरी मोमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जब कैप्टन स्प्रिट ने अपनी आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस दरवाजे का नॉब खोला, दरवाजा खुल गया और सामने इस वक्त क्या पता चला होगा क्रू को,
9: वो तो अंदर दिख जाएगा फिर सारा कि अंदर कुछ
8: खून में
9: नॉर्मल नहीं है
8: जी,
9: अनयूजुअल है
8: हुआ है, और इतनी देर आवाजों से भी बाहर पता चला होगा जो क्रू है एटलीस्ट जो रहता है जो
9: दे मस्ट हैव बिजी इनसाइड द कैबिन, जो उनको क्या पता आवाज से ना पता चला हो क्योंकि इंजन का लाउड होता है शोर होता है तो आवाज से नहीं पता चलता है कॉकपिट का।
8: कैप्टन स्मिथ ने अभूतपूर्व ब्रेवरी साहस दिखाया और खून से लथपथ होने के बावजूद वो बाहर निकले, उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया, और उसके बाद फिर को पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ CVR और PR के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सहयोगी मनीष भिदूड़ी के साथ मैं भारद्वाज दिल्ली।
10: तो आज दुनिया जो है कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर रही है, इसी बीच आपको बताते चलें

देखिए, ऐसा ही एक घटना 15 जनवरी 2009 को घटी थी, जब यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की ऐतिहासिक लैंडिंग हडसन नदी पर करवाई गई थी। एयरबस A320 विमान ने न्यूयॉर्क के ला ग्वाडिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियाई गीस पक्षियों का एक पूरा झुंड विमान के दोनों इंजनों से टकरा गया। इसके कारण दोनों इंजनों ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। विमान बिना किसी इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि विमान के कैप्टन चेस्ली और फर्स्ट ऑफिसर जेफ के पास किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लौटने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं बचा था। तब कैप्टन सली ने तुरंत भांप लिया कि अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो विमान शहर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान की वाटर लैंडिंग यानी पानी पर लैंडिंग का बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने विमान को पानी की सतह पर इतनी सटीकता से उतारा कि विमान के टुकड़े नहीं हुए। हादसे के चंद मिनटों के भीतर ही नावों और रेस्क्यू टीमों की मदद से विमान में सवार सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये आधुनिक विमान इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और साहसिक लैंडिंग मानी जाती है। इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 से जुड़ा हादसा भी बता दें आपको। ये घटना विमानन इतिहास में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। 19 जुलाई 1989 को DC-10 विमान अमेरिका के डेनवर से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ा था। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसकी टेल में लगे इंजन का पंखा फट गया और इस धमाके से विमान के सभी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। एरोनॉटिक्स के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो बिना हाइड्रोलिक के विमान के पंखों यानी फ्लैप्स को हिलाना नामुमकिन हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि विमान पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो चुका था और उसका क्रैश होना लगभग तय था। कैप्टन अल हैंस और उनके क्रू ने हार नहीं मानी। विमान में एक यात्री के रूप में सफर कर रहे ट्रेनर पायलट डेनिस फिच भी मदद के लिए कॉकपिट में फौरन पहुंचे और इस टीम ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने विमान को मोड़ने और उसकी ऊंचाई नियंत्रित करने के लिए केवल बचे हुए 2 इंजनों की थ्रॉटल पावर का इस्तेमाल किया और वे किसी तरह विमान को आयोवा के सू सिटी एयरपोर्ट तक लाने में कामयाब हो गए। लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वो पलट गया, जिससे उसमें आग भी लग गई, लेकिन क्रू की इस सूझबूझ की बदौलत बिना विमान सीधे शहर या जमीन पर टकरा जाता। उनकी इस बहादुरी की बदौलत विमान में सवार 296 लोगों में से 185 लोगों की जान बच गई। करते हैं उस विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि एक विमान हवा में एक कन्वर्टेबल कार की तरह खुल गया था। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि एक बोइंग 737 विमान अमेरिका के हवाई द्वीप के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेटल फेटिक के कारण अचानक विमान की कॉकपिट के ठीक पीछे की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ गया। तेज हवा के दबाव के कारण यात्रियों के सिर के ऊपर का हिस्सा सीधे आसमान में खुला था। हवा का बहाव बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां के दबाव में बाहर बह गई थी। तब कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विमान तेज हवा के दबाव में बीच से 2 टुकड़ों में टूट सकता था। इसके अलावा यात्रियों और क्रू के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पायलटों ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की, विमान को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि इतनी भीषण तबाही और कॉकपिट के पीछे का वो हिस्सा पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद पायलटों ने सूझबूझ से विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया और इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा विमान में सवार बाकी सभी 94 यात्री और क्रू सुरक्षित बच गए। तो बहादुर के इन किस्सों के बीच ही फ्लाई दुबई हादसे से जुड़ी एक खबर है कि इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्जोग ने फ्लाई दुबई फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले 4 इजरायली नागरिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी देने का ऐलान कर दिया है। उसमें देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा यानिव हायून की है, जो पेशे से प्लमर हैं। वहीं पर

0: चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में घुसे हमलावर को चोक होल्ड में लिया और नीचे गिरते विमान के कंट्रोल्स को संभाल कर उसे सीधा किया। यानी वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो विमान उड़ाने के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन टेलीविजन पर आए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने सीखा था कि जब विमान नीचे गिर रहा हो तो स्टीयरिंग लीवर्स या योक को पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचकर ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए, यानिव की बहादुरी और सूझबूझ की चिंता आज हर कोई कर रहा है। यानिव के अलावा ज्विका मैंस को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ज्विका मैंस ने यानिव हायून के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर ओमान मूल के को पायलट को दबोचने और उसे पूरी तरीके से काबू करने में मदद की थी। इसके अलावा हमलावर को काबू करने में मदद करने वाले दो और यात्री असाफ रजवन और डॉक्टर शोटा को भी ये सम्मान दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए वुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: क्या बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: ICC ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। योगी सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली, अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है, जहां एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या है वायरल तस्वीर और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: क्या योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या योगी राज में सरेराह हिंदुओं पर हमला हो रहा है? योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा सख्त रवैया अख्तियार करती रही है। ऐसे में एक वीडियो के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये वीडियो और खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
6: पहले एक शख्स की कुछ लोगों के साथ बहस होती है और फिर देखते ही देखते माहौल एकदम बदल जाता है। इस्लामिक टोपी लगाए और मास्क लगाए एक व्यक्ति शख्स पर हमला कर देता है। शख्स भागता है और उसके पीछे दो लोग धारदार हथियार लेकर दौड़ने लगते हैं। वीडियो को धार्मिक रंग देकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इसे शेयर करते दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो यूपी का है, लेकिन किस जगह और किस कारण से हुआ इसका पता नहीं। जो तलवार फरसा लेकर एक अकेले हिंदू पर झुंड बनाकर टूट पड़े। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: साल चुनाव होने और इसी को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है, और इन सब के बीच इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरने वालों का नया हथियार उनको मिल गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा से सख्त दिखने की कोशिश करती रही है, और इस वीडियो के जरिए उसी छवि पर हमले की कोशिश की गई है। इस वीडियो के जरिए इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू युवक पर सरेआम हमला किया, एक खास नैरेटिव फैलाया जाने लग गया, और चुनावी माहौल में ऐसा होना मकसद साफ साफ समझ में आ रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसके लिए योगी सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्हें लग रहा है कि योगी के होते उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके जरिए योगी सरकार को घेर भी रहे हैं। इसीलिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो किसी गली का है और इसके पीछे एक मस्जिद भी दिख रही है। रेड टी शर्ट और जीन्स पहने एक युवक का पहले कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होती है, और उसके बाद कुछ लोग युवक को धारदार हथियार से मारने के लिए दौड़ते हैं, और अचानक हुए हमले से युवक घबरा जाता है। वो तेजी से मस्जिद की तरफ भागने लगता है और पीछे कुछ लोग हथियार लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट फ्रेम में हमें मस्जिद के बोर्ड पर बांग्ला में कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। हमने भाषा एक्सपर्ट से इसके बारे में भी पूछा तो सामने आया कि बोर्ड पर कुरानुल करीम फजल मदरसा लिखा हुआ था। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये उत्तर प्रदेश के कुनारल करीम फाजिल मदरसा है, लेकिन लगातार खोजबीन के बाद भी हमें इस नाम का कोई भी मदरसा यूपी में नहीं मिला। और ये जानकर हमें शक हुआ कि वीडियो कहीं किसी और जगह का तो नहीं है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात थी कि इस वक्त यूपी में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, और ऐसे वक्त में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो का आना और सोशल मीडिया पर ही इसका वायरल हो जाना बहुत ही अजीब लग रहा था। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई, वीडियो में सिर्फ बांग्ला ही आवाजें सुनाई दे रही हैं, उत्तर प्रदेश में तो कोई बांग्ला बोलता नहीं है। तो ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो यूपी का है तो फिर इसमें सिर्फ बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है, यूपी सरकार का ये स्ट्रांग पहलू है। अगर यूपी का ये मामला है तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया। हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं हो रही।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें ये मार्च 2026 के कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया पोस्ट में मिला। एक न्यूज आउटलेट के 11 मार्च के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ढाका में एक मदरसे पर हमले के दौरान का है। बेहतर क्वालिटी वाले इस वीडियो में मदरसे के गेट पर इसका नाम भी नजर आता है, कुरानुल करीम फाजिल मदरसा। ये मदरसा बांग्लादेश के सावर उपजिला के आशुलिया में है। हमें गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मिल गई। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद एक बांग्लादेश न्यूज चैनल के फेसबुक अकाउंट पर 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में आशुलिया स्थित दारुल इहसान मदरसे पर हमले और तोड़फोड़ की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हमलावरों और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के बीच समानता साफ साफ देखने को मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें 9 मार्च की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ मदरसे में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 से 60 लोगों ने मदरसे पर हमला किया था। मदरसा संचालकों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे की जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश का है और वहाँ एक मदरसे पर हुए हमले से जुड़ा ये वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
2: बात करते हैं एक और वायरल हो रही खबर की। दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। इस वीडियो की हमने पड़ताल की।
8: सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान से कहर ढाया। खासतौर पर लगातार बारिश के कारण यूपी में कई लोग मारे गए और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण तूफान के बीच किसी एयरपोर्ट में गोल गोल घूमते हवाई जहाज को देखा जा सकता है। इस दौरान वीडियो में ये भी दिख रहा है कि घूमते हुए जहाज वहां मौजूद ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट से टकरा रहा है। पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है, जहां अर्नब चक्रवात की वजह से ये घटना घटित हुई। ये वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लोग बिना सोचे समझे इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: इसे उठा चक्रवात अर्नब देश के 14 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश कहीं बाढ़ की वजह से हालात खराब है और कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। दावा यह किया जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद का वीडियो है, जहां पर अर्नब चक्रवात के चलते एक हवाई जहाज बेकाबू होकर घूमने लगा। ये वीडियो हमारे सामने भी आया और वीडियो में दो बातें गौर करने वाली थी। पहला तो ये कि बारिश और तूफान के बीच प्लेन गोल गोल घूम रहा है और दूसरा ये कि वीडियो में सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसका ये अर्थ हो सकता है कि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और इसीलिए सायरन बजाया गया हो। जांच के दौरान हमारा ध्यान वीडियो के ऑडियो पर गया और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी अटपटी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें घूमते हुए जहाज पर लिखे गए टेक्स्ट अटपटे से नजर आए। इसके अलावा भागते हुए ग्राउंड स्टाफ की गति सामान्य नहीं थी। वीडियो में एक ग्राउंड स्टाफ प्लेन से टकराता है लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अक्सर ऐसा दृश्य एडिटेड वीडियो में ही मौजूद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर देखने की कोई खबर सामने नहीं आई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखी, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। रनवे पर फिसलन होने से प्लेन गोल गोल नहीं घूमता बल्कि वो अपनी दिशा से भटककर सीधा या फिर तिरछा फिसल सकता है, क्योंकि बारिश, बर्फ या पानी जमा होने के कारण रनवे और पहियों के बीच ग्रिप कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
8: जब ये वीडियो तेजी से चर्चा में आया, फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर दिखने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। पड़ताल के लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर इसमें विमान पर अटपटे से शब्द लिखे हैं। इसके बाद पुष्टि के लिए हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.3% संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और एआई डिटेक्शन टूल एआई और नॉट ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित एआई जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि एयरपोर्ट पर घूमते हुए हवाई जहाज का ये वायरल वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। इसका गुजरात के अहमदाबाद या अर्नब चक्रवात से कोई वास्ता नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला।
2: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का और आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। दूसरों की मदद करने का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा सड़क किनारे सामान बेच रहे जरूरतमंद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें खाने की चीजें दे रहा है। बच्चे की मासूमियत और दूसरों की मदद करने का ये छोटा सा प्रयास लोगों का दिल जीत रहा है। उम्र छोटी है लेकिन सोच और संस्कार देखकर लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: बेटी को जंक फूड से बचाने के लिए पिता का ये जुगाड़ इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पिता ने लैपटॉप और माउस से बेटी के पेट का नकली अल्ट्रासाउंड किया, स्क्रीन पर पेट में कीड़े दिखाने का नाटक किया। ये देखकर बच्ची बहुत डर गई, रोते हुए माँ के पास भागी और कभी जंक फूड ना खाने की कसम खा ली। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने इसे बच्चे को जागरूक करने का स्मार्ट तरीका बताया तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे डराने से बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ेगा।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
0: पेरेंट्स के लिए ये सोचना भी मुश्किल होता है कि बेटी कभी शादी ही नहीं करेगी, मगर एक बेटी ने जब शादी ना करने की बात पापा के सामने रखी तो उन्होंने जवाब में उसे आत्मविश्वास से भर दिया, समझा दिया कि शादी तुम्हारी चॉइस है, पूछ नहीं।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
2: मैं तेरे लिए इतनी मजबूती का मकान बनवा दूंगा, अगर उसमें 10 किराएदार रहेंगे तो जिंदगी भर तू पूजा कर उसका किराया।
1: अच्छा, मतलब ये मेरा फ्यूचर प्लान है। तो अगर बिना
2: मेरे न होने के बाद तुझे कौन देखेगा? आजकल कोई भाई बहन, भाई को बहन नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखता, और भाई भाई को नहीं देखता। तो तेरा मैं अपने जीते जी इतना बना जाऊंगा कि तू आराम से सुकून की रोटी खा।
1: तो आपको दिक्कत नहीं होती ना, सोसाइटी या रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे कि गुप्ता जी आपकी बेटी ने तो शादी नहीं करी?
2: अरे मैं तो उनसे पूछूंगा, मायावती ने नहीं करी तो तुम उनसे क्यों सवाल करते हो, हमसे क्यों सवाल करते हो?
0: खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये बेल लोगों को लुभा

0: कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देख रहे होंगे। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरी तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से।
1: हो गए 3-2, 3-2 हो गए।
0: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे, तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चालान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से ये जादू नहीं बच पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना है ही नहीं। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए? बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा, कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वो ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
1: 3-2 हो गए मुझे देख के वहाँ। बहुत बढ़िया, ये लगाओ स्ट्रिप हेलमेट के, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं लग जाएगी, इतना भी लगाओ, इसे लगवाओ, इससे जरूरी है। दो ही बैठो यार, एक आदमी को ऑटो में बैठा दो, ऑटो वाले का फायदा हो जाए, अपने भी सुरक्षित रहो, ठीक है।
0: इस महिला के कारनामे को देखकर लोग दंग है। महिला ने इतने बड़े खतरनाक मगरमच्छ को ऐसे उठाया हुआ है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या फिर पालतू कुत्ता हो। ये हैरान करने वाला वीडियो कैलिफोर्निया के मशहूर द रेप्टाइल जू का है। वीडियो में जो महिला नजर आ रही है उनका नाम है जूलियट ब्रूअर और वो मशहूर रेप्टाइल एक्सपर्ट जे ब्रूअर की बेटी है। जिस विशाल मगरमच्छ को जूलियट ने गोद में उठाया हुआ है उसका नाम डार्थ है। वो सालों से इस मगरमच्छ की देखभाल कर रही है। दोनों के बीच ऐसा भरोसा और प्यार है कि जब जूलियट उसे उठाती है तो खतरनाक मगरमच्छ भी बिल्कुल शांत रहता है। भले ही वीडियो में जूलियट और मगरमच्छ की दोस्ती देखकर ये आसान लग रहा हो, लेकिन जूलियट खुद मानती है कि डार्थ एक जंगली जानवर है। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एक्सपर्ट की देखरेख के ऐसा खतरनाक स्टंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पैनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां भी बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कैपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े ही चाव के साथ खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है। सिलेक्शन करना हो तो कोई इन बंदर भाइयों से सीखे, क्योंकि पसंद का मामला हो तो ये भी किसी से कम नहीं है। वीडियो में मंदिर में चढ़े प्रसाद के बीच बंदर अपनी अपनी पसंद के फल चुनते नजर आ रहे हैं। किसी को केला पसंद आया तो किसी ने सेब उठा लिया, जो फल पसंद नहीं आया उसे वहीं पर छोड़ दिया। यानी प्रसाद में भी अपनी चॉइस बिल्कुल साफ है। बंदरों की ये चालाकी और शरारत देख कर लोग खूब हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो को जमकर वायरल भी कर रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: क्या बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही हैं गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तानी की वीरता और साहस की, वो साहस जिसके दम पर आज 170 से ज्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत के एक लाल की वो वीरता जिसके बूते आज दर्जनों परिवार उजड़ने से बच गए। संभवतः ऐसे ही वीरों के लिए भारत के एक और लाल ने लिखा था कि सच है, सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और वाकई हिंदुस्तान के इस जांबाज बेटे ने कांटों में नहीं बल्कि जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में राह बनाकर दिखा दी जिंदगी के लिए। देखिए, फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव जा रहे विमान में ओमान की पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला कर दिया। विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश कराना हो सकता है। हालांकि हमले को असली मकसद अभी तक जांच के दायरे में है और फिर निकल कर आएगा कि आखिर सही मकसद था क्या। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की असाधारण वीरता ने टाल दिया।

0: when we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: कोई डेढ़ साल पहले कैप्टन स्मिथ मछार ने ये सवाल पूछा था, When you are up there, who is going to save you?
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: तब किसे मालूम था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब कैप्टन स्मिथ खुद ही वो सेवियर, वो रक्षक बन जाएंगे, वो रक्षक जो आसमान में खुद लहूलुहान होकर भी दर्जनों फ्लाइट पैसेंजर्स को अपने हौसले के दम पर सुरक्षित जमीन पर उतार लाएगा।
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
1: उड़ान के दौरान फ्लाइट के कैप्टन और क्रू पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कैप्टन स्मिथ ने ये बात कही थी। आज उसी भरोसे को कैप्टन स्मिथ ने कई गुना पक्का कर दिया है। अपने साहस और हौसले से कैप्टन स्मिथ ने वो कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कैप्टन स्मिथ के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
2: एंड दिस यंग मैन जस्ट एक्ट्स विद इनक्रेडिबल हीरोइज्म एंड सेव्स द डे along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ मछार ने घायल होते हुए भी आसमान में वो हिम्मत दिखाई जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाला जा सका। स्मिथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और क्रू सबकी जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। कैप्टन की हालत गंभीर थी, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। यात्री उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछार सच्चे मायने में एक नायक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने उसका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछार ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। वे सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और नेतन्याहू ही क्यों, बल्कि कैप्टन स्मिथ ने जो किया है उसके बाद सारा इजराइल उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। इजरायली टीवी कमेंटेटर इनाओ अविज़मेर ने कैप्टन स्मिथ को वो शानदार हीरो बताया है जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचाया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को धन्यवाद दिया है।
4: तो I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. And he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he's in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
1: स्मिथ की बहादुरी से 150 से ज्यादा इसराइलियों की जान बची है. सो इसराइली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्मिथ की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं.
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
1: आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मित मछार का फिलहाल सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है. स्मित की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

0: दुनिया उसके साहस को सलाम कर रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मचार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में आज विशेष महापूजा की गई। टेल अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम करके 170 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मचार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना जारी और अविरल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। देश के साथ गुड न्यूज टुडे की भी यही कामना है कि इस जामाज युवा को भगवान शिव अपनी कृपा से जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे। भारतीय पायलट स्मिथ मचार को आज दुनिया सलाम कर रही है, देश में भी उनके लिए आज सराहना और शुभकामनाएं लगातार संदेश से गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्टन स्मिथ को अद्भुत साहस और दिलेरी को सलाम किया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं पर यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ मचार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
1: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
0: तो कैप्टन की तारीफ चारों ओर हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई की टेल अवीव जा रही फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और कब कितने मुश्किल हालात से गुजरकर कैप्टन स्मिथ ने ये कारनामा करके दिखाया। ये मामला कल यानी 30 सितंबर का है भारतीय समय के अनुसार। अगर हम देखें तो अगर समझने की कोशिश करें, सुबह 8:35 पर दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 टेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। सुबह 10:51 पर अचानक विमान की ऊंचाई में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में विमान करीब 14,000 फीट नीचे आ जाता है। इसी दौरान कॉकपिट में बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ओमानी को पायलट भारतीय कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला कर देता है। कप्तान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खुलने में कामयाब हो जाते हैं। यात्रियों में से यानिव, हायुन और दूसरे यात्री कॉकपिट में पहुंचते हैं और हमलावर को काबू कर लेते हैं। विमान में मौजूद डॉक्टर शोता मुसाइव घायल कप्तान का इलाज शुरू कर देते हैं। 10:58 पर विमान 7700 यानी इमरजेंसी कोड डालता है, लेकिन 11:05 पर कोड बदलकर 7500 कर दिया जाता है, जो संभावित हाईजैकिंग या अनलॉफुल इंटरफेरेंस का संकेत है। संकेत मिलते ही इजराइल फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया जाता है। 11:14 पर विमान सऊदी अरब के तबुक ATC से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। दोपहर 12:15 पर विमान तबुक में सुरक्षित उतर जाता है। इसके बाद आरोपी को पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और 9:04 पर यात्रियों को लेकर रिप्लेसमेंट फ्लाइट टेल अवीव पहुंचती है। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, उस कॉकपिट में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे हुई, ये आपको समझा सके इसके लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली के द्वारका में मौजूद चार्ली फॉक्स ट्रॉट एकेडमी पहुंचे। जीएनटी संवाददाता ने सिमुलेटर के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कॉकपिट के अंदर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं।
2: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे, सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है इस वक्त।
3: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं।
2: जी
3: जी,
2: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा?
3: So, उन्होंने यहां से ऑल्टीट्यूड चेंज कर लिया होगा। सपोज आई हैव चेंज्ड इट टू 20,000 और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
2: नीचे जाना
3: स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहां से डिसेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हम यहां से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया और फिर यहां से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा,
2: नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया?
3: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
2: जी।
3: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूँ तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा, स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा स्पीड से
2: किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं। अभी वहां रफ्तार बढ़
3: रही है, वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है अभी
2: जी।
3: मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट की रेट से बढ़ रहा है,
2: तो ये
3: और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी
2: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी।
3: ये देखो अभी 27,200, 27,100, कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंट कर रहे हैं।
2: और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने का, कई बार ऊपर नीचे
3: ऊपर नीचे हुआ। हाँ जी,
2: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
3: उस वक्त? यही है, कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट कैप्टन जो है।
2: हाँ।
3: फर्स्ट ऑफिसर उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्टन उसको चेंज करके फिर से उसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करने की कोशिश कर,
2: लगातार कई बार दोनों के बीच
3: जी।
2: फिजिकल अटैक के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
3: नहीं, वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में।
2: चाकू छोटा सा भी नहीं है,
3: वो पूरा
2: ब्लेड
3: की होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
2: कुछ भी नहीं,
3: कुछ भी शार्क ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
2: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
3: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
2: और वो किस काम के लिए?
3: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है, या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
2: ओके, तो मतलब इस बहस के बाद, मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है, इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा, वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा, और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है। एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर, ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। पूरा खेल अंदर क्या हुआ वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे फ्लाइट रिकॉर्डर्स यही है,
3: ये रहा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड, हाँ
2: जो वॉइस रिकॉर्डर है यहाँ आप देखिए, मैं एक बार मनीष को कहूंगा वो थोड़ा करीब आए तो आपको दिखाएंगे, ये वॉइस रिकॉर्डर है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि दोनों पायलट्स के बीच जो भी बातचीत हुई वो
3: यहाँ पे रिकॉर्ड होता है,
2: सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये FDR है, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है जो ऑन रहता है। तो CVR और FDR ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं जिसको लेकर एक बार मैं चाहूंगा कि दरवाजा खुलने वाला सीक्वेंस भी आप हमें दिखाएं। अब आपके स्क्रीन पे वो आखिरी मोमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जब कैप्टन स्प्रिट ने अपनी आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस दरवाजे का नॉब खोला, दरवाजा खुल गया और सामने इस वक्त क्या पता चला होगा क्रू को,
3: वो तो अंदर दिख जाएगा फिर सारा कि अंदर कुछ
2: खून में
3: नॉर्मल नहीं है
2: जी, अनयूजुअल है
3: हुआ है।
2: और इतनी देर आवाजों से भी बाहर पता चला होगा जो क्रू है एटलीस्ट जो रहता है जो
3: दे मस्ट हैव बिजी इनसाइड द कैबिन, जो उनको क्या पता आवाज से ना पता चला हो कि इंजन का लाउड होता है शोर होता है तो आवाज से नहीं पता चलता है कॉकपिट का।
2: कैप्टन स्मिथ ने अभूतपूर्व ब्रेवरी साहस दिखाया और खून से लथपथ होने के बावजूद वो बाहर निकले, उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने, जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया और उसके बाद फिर को पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ CVR और PR के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सहयोगी मनीष भिदूड़ी के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली।
0: तो आज दुनिया जो है कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर रही है। इसी बीच आपको बताते चलें कि इतिहास में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पायलट की असाधारण सूझबूझ, शांत दिमाग, बेहतरीन कौशल और दिलेरी ने बड़े हादसों को टाल दिया, दर्जनों लोगों की जान बचाई, निश्चित तबाही को बड़ी कामयाबी या चमत्कार में तब्दील कर दिया। देखिए ऐसा ही एक घटना 15 जनवरी 2009 को घटी थी जब US एयरवेज फ्लाइट 1549 की ऐतिहासिक लैंडिंग हडसन नदी पर करवाई गई थी। एयरबस A320 विमान ने न्यूयॉर्क के ला ग्वाडिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियाई गीस पक्षियों का एक पूरा झुंड विमान के दोनों इंजनों से टकरा गया। इसके कारण दोनों इंजनों ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। विमान बिना किसी इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। हालात

अफसर जेफ के पास किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लौटने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं बचा था। तब कैप्टन सली ने तुरंत भांप लिया कि अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो विमान शहर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान की वाटर लैंडिंग यानी पानी पर लैंडिंग का बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने विमान को पानी की सतह पर इतनी सटीकता से उतारा कि विमान के टुकड़े नहीं हुए। हादसे के चंद मिनटों के भीतर ही नावों और रेस्क्यू टीमों की मदद से विमान में सवार सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये आधुनिक विमान इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और साहसिक लैंडिंग मानी जाती है। इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 से जुड़ा हादसा भी बता दें आपको। ये घटना विमानन इतिहास में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। 19 जुलाई 1989 को DC-10 विमान अमेरिका के डेनवर से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ा था। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसकी टेल में लगे इंजन का पंखा फट गया और इस धमाके से विमान के सभी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। एरोनॉटिक्स के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो बिना हाइड्रोलिक के विमान के पंखों यानी फ्लैप्स को हिलाना नामुमकिन हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि विमान पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो चुका था और उसका क्रैश होना लगभग तय था। कैप्टन अल हैंस और उनके क्रू ने हार नहीं मानी। विमान में एक यात्री के रूप में सफर कर रहे ट्रेनर पायलट डेनिस फिच भी मदद के लिए कॉकपिट में फौरन पहुंचे और इस टीम ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने विमान को मोड़ने और उसकी ऊंचाई नियंत्रित करने के लिए केवल बचे हुए 2 इंजनों की थ्रॉटल पावर का इस्तेमाल किया और वे किसी तरह विमान को आयोवा के सू सिटी एयरपोर्ट तक लाने में कामयाब हो गए। लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वो पलट गया, जिससे उसमें आग भी लग गई, लेकिन क्रू की इस सूझबूझ की बदौलत बिना विमान सीधे शहर या जमीन पर टकरा जाता। उनकी इस बहादुरी की बदौलत विमान में सवार 296 लोगों में से 185 लोगों की जान बच गई। करते हैं उस विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि एक विमान हवा में एक कन्वर्टेबल कार की तरह खुल गया था। जी हां, हुआ कुछ यूं कि एक बोइंग 737 विमान अमेरिका के हवाई द्वीप के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेटल फेटिक के कारण अचानक विमान की कॉकपिट के ठीक पीछे की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़कर हवा में उड़ गया। तेज हवा के दबाव के कारण यात्रियों के सिर के ऊपर का हिस्सा सीधे आसमान में खुला था। हवा का बहाव बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां के दबाव में बाहर बह गई थी। तब कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विमान तेज हवा के दबाव में बीच से 2 टुकड़ों में टूट सकता था। इसके अलावा यात्रियों और क्रू के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पायलटों ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की, विमान को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि इतनी भीषण तबाही और कॉकपिट के पीछे का वो हिस्सा पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद पायलटों ने सूझबूझ से विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। और इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा विमान में सवार बाकी सभी 94 यात्री और क्रू सुरक्षित बच गए। तो बहादुर के इन किस्सों के बीच ही फ्लाई दुबई हादसे से जुड़ी एक खबर है कि इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्जोग ने फ्लाई दुबई फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले 4 इजरायली नागरिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी देने का ऐलान कर दिया है। उसमें देखिए सबसे ज्यादा चर्चा यानिव हायून की है, जो पेशे से प्लमर हैं। वहीं पर चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में घुसे हमलावर को चोक होल्ड में लिया और नीचे गिरते विमान के कंट्रोल्स को संभाल कर उसे सीधा किया। यानि वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो विमान उड़ाने के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन टेलीविजन पर आए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने सीखा था कि जब विमान नीचे गिर रहा हो तो स्टीयरिंग लीवर्स या योक को पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचकर ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए यानिव की बहादुरी और सूझबूझ की चिंता आज हर कोई कर रहा है। यानिव के अलावा ज्विका मैंस को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ज्विका मैंस ने यानिव

0: हायून के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर ओमान मूल के को पायलट को दबोचने और उसे पूरी तरीके से काबू करने में मदद की थी। इसके अलावा हमलावर को काबू करने में मदद करने वाले दो और यात्री असाफ रजवन और डॉक्टर शोटा को भी यह सम्मान दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: क्या बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां। आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही हैं गांधी जी की शिक्षाएं। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली। 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी। इलाके में करीब 25% धान कटाई का काम पूरा। अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास। फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान। साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित। मुसाफिरों की जान बचाने वाले जांबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान। दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: क्या योगी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या योगी राज में सरेरा हिंदुओं पर हमला हो रहा है? योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा सख्त रवैया अख्तियार करती रही है। ऐसे में एक वीडियो के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये वीडियो और खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
6: शख्स की कुछ लोगों के साथ बहस होती है और फिर देखते ही देखते माहौल एकदम बदल जाता है। इस्लामिक टोपी लगाए और मास्क लगाए एक व्यक्ति शख्स पर हमला कर देता है। शख्स भागता है और उसके पीछे दो लोग धारदार हथियार लेकर दौड़ने लगते हैं। वीडियो को धार्मिक रंग देकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इसे शेयर करते दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो यूपी का है, लेकिन किस जगह और किस कारण से हुआ इसका पता नहीं। जो तलवार फरसा लेकर एक अकेले हिंदू पर झुंड बनाकर टूट पड़े। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: साल चुनाव होने और इसी को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है और इन सब के बीच इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरने वालों का नया हथियार उनको मिल गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा से सख्त दिखने की कोशिश करती रही है और इस वीडियो के जरिए उसी छवि पर हमले की कोशिश की गई है। इस वीडियो के जरिए इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक हिंदू युवक पर सरेआम हमला किया, एक खास नैरेटिव फैलाया जाने लग गया और चुनावी माहौल में ऐसा होना मकसद साफ साफ समझ में आ रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसके लिए योगी सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्हें लग रहा है कि योगी के होते उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके जरिए योगी सरकार को घेर भी रहे हैं। इसीलिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो किसी गली का है और इसके पीछे एक मस्जिद भी दिख रही है। रेड टी शर्ट और जीन्स पहने एक युवक का पहले कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होती है और उसके बाद कुछ लोग युवक को धारदार हथियार से मारने के लिए दौड़ते हैं और अचानक हुए हमले से युवक घबरा जाता है। वो तेजी से मस्जिद की तरफ भागने लगता है और पीछे कुछ लोग हथियार लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट फ्रेम में हमें मस्जिद के बोर्ड पर बांग्ला में कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। हमने भाषा एक्सपर्ट से इसके बारे में भी पूछा तो सामने आया कि बोर्ड पर कुरानुल करीम फजल मदरसा लिखा हुआ था। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये उत्तर प्रदेश के कुरानुल करीम फाजिल मदरसा है, लेकिन लगातार खोजबीन के बाद भी हमें इस नाम का कोई भी मदरसा यूपी में नहीं मिला और ये जानकर हमें शक हुआ कि वीडियो कहीं किसी और जगह का तो नहीं है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात थी कि इस वक्त यूपी में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे वक्त में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो का आना और सोशल मीडिया पर ही इसका वायरल हो जाना बहुत ही अजीब लग रहा था। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई। वीडियो में सिर्फ बांग्ला ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई बांग्ला बोलता नहीं है, तो ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो यूपी का है तो फिर इसमें सिर्फ बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है। यूपी सरकार का ये स्ट्रांग पहलू है। अगर यूपी का यह मामला है तो फिर यह मुद्दा क्यों नहीं बना? ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया? हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं हो रही?
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें ये मार्च 2026 के कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया पोस्ट में मिला। एक न्यूज आउटलेट के 11 मार्च के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ढाका में एक मदरसे पर हमले के दौरान का है। बेहतर क्वालिटी वाले इस वीडियो में मदरसे के गेट पर इसका नाम भी नजर आता है, कुरानुल करीम फाजिल मदरसा। ये मदरसा बांग्लादेश के सावर उपजिला के आशुलिया में है। हमें गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मिल गई। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद एक बांग्लादेश न्यूज चैनल के फेसबुक अकाउंट पर 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई एक वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया स्थित दारुल इहसान मदरसे पर हमले और तोड़फोड़ की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हमलावरों और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के बीच समानता साफ साफ देखने को मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें 9 मार्च की एक वीडियो रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, इसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ मदरसे में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 से 60 लोगों ने मदरसे पर हमला किया था। मदरसा संचालकों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे की जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश का है और वहाँ एक मदरसे पर हुए हमले से जुड़ा ये वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
2: बात करते हैं एक और वायरल हो रही खबर की। दावा यह किया जा रहा है कि अर्नब चक्रवात के चलते गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाई जहाज बेकाबू होकर रनवे पर गोल गोल घूमने लगा। इस वीडियो की हमने पड़ताल की।
7: सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान से कहर ढाया। खासतौर पर लगातार बारिश के कारण यूपी में कई लोग मारे गए और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण तूफान के बीच किसी एयरपोर्ट में गोल गोल घूमते हवाई जहाज को देखा जा सकता है। इस दौरान वीडियो में ये भी दिख रहा है कि घूमते हुए जहाज वहां मौजूद ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट से टकरा रहा है। पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है, जहां अर्नब चक्रवात की वजह से ये घटना घटित हुई। ये वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लोग बिना सोचे समझे इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: इसे उठा चक्रवात अर्नब देश के 14 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश, कहीं बाढ़ की वजह से हालात खराब है और कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। दावा यह किया जा रहा है कि यह गुजरात के अहमदाबाद का वीडियो है, जहां पर अर्नब चक्रवात के चलते एक हवाई जहाज बेकाबू होकर घूमने लगा। ये वीडियो हमारे सामने भी आया और वीडियो में दो बातें गौर करने वाली थी। पहला तो ये कि बारिश और तूफान के बीच प्लेन गोल गोल घूम रहा है और दूसरा ये कि वीडियो में सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिसका ये अर्थ हो सकता है कि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और इसीलिए सायरन बजाया गया हो। जांच के दौरान हमारा ध्यान वीडियो के ऑडियो पर गया और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी अटपटी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें घूमते हुए जहाज पर लिखे गए टेक्स्ट अटपटे से नजर आए। इसके अलावा भागते हुए ग्राउंड स्टाफ की गति सामान्य नहीं थी। वीडियो में एक ग्राउंड स्टाफ प्लेन से टकराता है लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अक्सर ऐसा दृश्य एडिटेड वीडियो में ही मौजूद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर देखने की कोई खबर सामने नहीं आई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखी, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। रनवे पर फिसलन होने से प्लेन गोल गोल नहीं घूमता बल्कि वो अपनी दिशा से भटककर सीधा या फिर तिरछा फिसल सकता है, क्योंकि बारिश, बर्फ या पानी जमा होने के कारण रनवे और पहियों के बीच ग्रिप कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
7: जब ये वीडियो तेजी से चर्चा में आया, फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है। गुजरात में इसका असर दिखने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। पड़ताल के लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर इसमें विमान पर अटपटे से शब्द लिखे हैं। इसके बाद पुष्टि के लिए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.3% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित AI जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि एयरपोर्ट पर घूमते हुए हवाई जहाज का ये वायरल वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। इसका गुजरात के अहमदाबाद या अर्नब चक्रवात से कोई वास्ता नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
8: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।
2: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का और आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। दूसरों की मदद करने का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा सड़क किनारे सामान बेच रहे जरूरतमंद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें खाने की चीजें दे रहा है। बच्चे की मासूमियत और दूसरों की मदद करने का ये छोटा सा प्रयास लोगों का दिल जीत रहा है। उम्र छोटी है लेकिन सोच और संस्कार देख कर लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: बेटी को जंक फूड से बचाने के लिए पिता का ये जुगाड़ इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पिता ने लैपटॉप और माउस से बेटी के पेट का नकली अल्ट्रासाउंड किया, स्क्रीन पर पेट में कीड़े दिखाने का नाटक किया। ये देखकर बच्ची बहुत डर गई, रोते हुए माँ के पास भागी और कभी जंक फूड ना खाने की कसम खा ली। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने इसे बच्चे को जागरूक करने का स्मार्ट तरीका बताया तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे डराने से बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ेगा।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
0: पेरेंट्स के लिए ये सोचना भी मुश्किल होता है कि बेटी कभी शादी ही नहीं करेगी, मगर एक बेटी ने जब शादी ना करने की बात पापा के सामने रखी तो उन्होंने जवाब में उसे आत्मविश्वास से भर दिया, समझा दिया कि शादी तुम्हारी चॉइस है, पूछ नहीं।
1: तो बताओ, अगर मैंने शादी नहीं करी तो फिर मैं क्या करूँगी फिर आगे, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करूँगी।
2: मैं तेरे लिए इतनी मजबूती का मकान बनवा दूंगा, अगर उसमें 10 किराएदार रहेंगे तो जिंदगी भर तू पूजा कर उसका किराया।
1: अच्छा, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। तो अगर
2: फ्यूचर क्या, मेरे न होने के बाद तुझे कौन देखेगा? आजकल कोई भाई बहन, भाई को बहन नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखता और भाई भाई को नहीं देखता, तो तेरा मैं अपने जीते जी इतना बना जाऊंगा कि तू आराम से सुकून की रोटी खा।
1: तो आप, मतलब आपको दिक्कत नहीं होती ना, सोसाइटी या रिश्तेदार है वो क्या कहेंगे कि गुप्ता जी आपकी बेटी ने तो शादी नहीं करी?
2: अरे मैं तो उनसे पूछूंगा, मायावती ने नहीं करी तो तुम उनसे क्यों सवाल करते हो, हमसे क्यों सवाल करते हो?
0: हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को लुभा।

0: कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देख रहे होंगे। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरी तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से।
1: हो गए 3-2, 3-2 हो गए।
0: ट्रैफिक के बीच बाइक पर तीन लोग जा रहे थे, तभी सामने पुलिसकर्मी नजर आ गया। इसके बाद ऐसा जुगाड़ हुआ कि बाइक पर अचानक सिर्फ दो लोग रह गए। लगा कि चालान से बचने की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांस्टेबल की नजरों से ये जादू नहीं बच पाया। उसने तुरंत पूरी कहानी समझ ली और फिर जो अंदाज अपनाया उसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल पुलिसकर्मी के पास पहुंचते ही बाइक पर बैठा एक व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गया और बिना कुछ कहे ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे उसका बाइक से कोई लेना देना है ही नहीं। उसे शायद लगा कि इस तरह पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की नजरें पहले ही उसकी चाल पकड़ चुकी थी। पुलिसकर्मी ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत रोक लिया, फिर मजेदार अंदाज में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, 3-2 कैसे हो गए? बस यही वो पल था जिसने पूरे वीडियो को मजेदार बना दिया। इसके बाद मामला सिर्फ चालान तक नहीं पहुंचा, कांस्टेबल ने शख्स को समझाया कि बाइक पर तीन लोगों के बैठने के बजाय वो ऑटो से जाए, यानी पुलिस से बचने के लिए की गई छोटी सी तरकीब आखिरकार काम नहीं आई।
1: 3-2 हो गए मुझे देख के वहाँ। बहुत बढ़िया, ये लगाओ स्ट्रिप हेलमेट के, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं लग जाएगी, इतना भी लगाओ, इसे लगवाओ, इससे जरूरी है। दो ही बैठो यार, एक आदमी को ऑटो में बैठा दो, ऑटो वाले का फायदा हो जाए, अपने भी सुरक्षित रहो, ठीक है।
0: इस महिला के कारनामे को देखकर लोग दंग है। महिला ने इतने बड़े खतरनाक मगरमच्छ को ऐसे उठाया हुआ है जैसे कोई छोटा सा खिलौना या फिर पालतू कुत्ता हो। ये हैरान करने वाला वीडियो कैलिफोर्निया के मशहूर द रेप्टाइल जू का है। वीडियो में जो महिला नजर आ रही है उनका नाम है जूलियट ब्रूअर और वो मशहूर रेप्टाइल एक्सपर्ट जे ब्रूअर की बेटी है। जिस विशाल मगरमच्छ को जूलियट ने गोद में उठाया हुआ है उसका नाम डार्थ है। वो सालों से इस मगरमच्छ की देखभाल कर रही है। दोनों के बीच ऐसा भरोसा और प्यार है कि जब जूलियट उसे उठाती है तो खतरनाक मगरमच्छ भी बिल्कुल शांत रहता है। भले ही वीडियो में जूलियट और मगरमच्छ की दोस्ती देखकर ये आसान लग रहा हो, लेकिन जूलियट खुद मानती है कि डार्थ एक जंगली जानवर है। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एक्सपर्ट की देखरेख के ऐसा खतरनाक स्टंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पैनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां भी बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े ही चाव के साथ खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है। सिलेक्शन करना हो तो कोई इन बंदर भाइयों से सीखे, क्योंकि पसंद का मामला हो तो ये भी किसी से कम नहीं है। वीडियो में मंदिर में चढ़े प्रसाद के बीच बंदर अपनी अपनी पसंद के फल चुनते नजर आ रहे हैं। किसी को केला पसंद आया तो किसी ने सेब उठा लिया, जो फल पसंद नहीं आया उसे वहीं पर छोड़ दिया। यानी प्रसाद में भी अपनी चॉइस बिल्कुल साफ है। बंदरों की ये चालाकी और शरारत देख कर लोग खूब हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो को जमकर वायरल भी कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: Good news today.

0: बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 6 टीम। देश भर में 157वीं गांधी जयंती की जोरदार तैयारियां, आज राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम नेता। प्रयागराज में संग्रहालय के जरिए युवाओं तक पहुंच रही है गांधी जी की शिक्षा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाई अनूठी रंगोली, 100 फीट एरिया में विकसित भारत की झलक। 80 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स ने मिलकर 30 घंटे में तैयार किया। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने वालों की ड्रोन कैमरों से निगरानी, इलाके में करीबा 25% धान कटाई का काम पूरा, अब तक पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया सामने। यूपी सरकार करेगी नीम करौरी बाबा की जन्मस्थली अकबरपुर का विकास, फिरोजाबाद जिले में टूंडला के पास है बाबा का जन्म स्थान, साल 1900 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था जन्म। कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल करेगा सम्मानित, मुसाफिरों की जान बचाने वाले जाबाज को गुजरात सरकार देगी विशिष्ट गुजरात गरिमा सम्मान, दुनिया भर में स्मिथ की हो रही है तारीफ। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक हिंदुस्तानी की वीरता और साहस की, वो साहस जिसके दम पर आज 170 से ज्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत के एक लाल की वो वीरता जिसके बूते आज दर्जनों परिवार उजड़ने से बच गए, संभवतः ऐसे ही वीरों के लिए भारत के एक और लाल ने लिखा था कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और वाकई हिंदुस्तान के इस जाबाज बेटे ने कांटों में नहीं बल्कि जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में राह बनाकर दिखा दी जिंदगी के लिए। देखिए फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव जा रहे विमान में ओमान की पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला कर दिया, विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश कराना हो सकता है, हालांकि हमले को असली मकसद अभी तक जांच के दायरे में है और फिर निकल कर आएगा कि आखिर सही मकसद था क्या। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की असाधारण वीरता ने टाल दिया।

0: when we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: कोई डेढ़ साल पहले कैप्टन स्मिथ मछार ने ये सवाल पूछा था, When you are up there, who is going to save you?
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you?
1: तब किसे मालूम था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब कैप्टन स्मिथ खुद ही वो सेवियर, वो रक्षक बन जाएंगे, वो रक्षक जो आसमान में खुद लहूलुहान होकर भी दर्जनों फ्लाइट पैसेंजर्स को अपने हौसले के दम पर सुरक्षित जमीन पर उतार लाएगा।
0: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
1: उड़ान के दौरान फ्लाइट के कैप्टन और क्रू पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कैप्टन स्मिथ ने ये बात कही थी। आज उसी भरोसे को कैप्टन स्मिथ ने कई गुना पक्का कर दिया है। अपने साहस और हौसले से कैप्टन स्मिथ ने वो कर दिखाया है जो सारी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कैप्टन स्मिथ के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
2: Along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ मछार ने घायल होते हुए भी आसमान में वो हिम्मत दिखाई जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को टाला जा सका। स्मिथ का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और क्रू सबकी जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। कैप्टन की हालत गंभीर थी, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। यात्री उन्हें जगाए रखने के लिए लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे। हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछार सच्चे मायने में एक नायक है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने उसका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है।
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
1: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछार ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। वे सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage. They saved many lives. They prevented a major disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot has been arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities.
1: और नेतन्याहू ही क्यों, बल्कि कैप्टन स्मिथ ने जो किया है उसके बाद सारा इसराइल उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। इसराइली टीवी कमेंटेटर इनाओ अविजमेर ने कैप्टन स्मिथ को वो शानदार हीरो बताया है जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचाया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को धन्यवाद दिया है।
4: I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. And he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he's in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
1: स्मिथ की बहादुरी से 150 से ज्यादा इसराइलियों की जान बची है। सो इसराइली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्मिथ की तारीफ में वीडियो डाल रहे हैं।
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight-by-flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
1: आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मिथ मछार का फिलहाल सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है। स्मिथ की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है। वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दुनिया उसके साहस को सलाम कर रही है और देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मछार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में आज विशेष महापूजा की गई। टेल अवीव की उड़ान के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम करके 170 से ज्यादा अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मछार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना जारी और अविरल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। देश के साथ गुड न्यूज टुडे की भी यही कामना है कि इस जामाज युवा को भगवान शिव अपनी कृपा से जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे। भारतीय पायलट स्मिथ मछार को आज दुनिया सलाम कर रही है, देश में भी उनके लिए आज सराहना और शुभकामनाएं लगातार संदेश से गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्टन स्मिथ को अद्भुत साहस और दिलेरी को सलाम किया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं पर यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ मछार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
7: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
6: तो कैप्टन की तारीफ चारों ओर हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई की टेल अवीव जा रही फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और कब कितने मुश्किल हालात से गुजरकर कैप्टन स्मिथ ने ये कारनामा करके दिखाया। ये मामला कल यानी 30 सितंबर का है भारतीय समय के अनुसार। अगर हम देखें तो अगर समझने की कोशिश करें, सुबह 8:35 पर दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 टेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। सुबह 10:51 पर अचानक विमान की ऊंचाई में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में विमान करीब 14,000 फीट नीचे आ जाता है। इसी दौरान कॉकपिट में बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ओमानी को पायलट भारतीय कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला कर देता है। कप्तान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यात्रियों में से यानिफ हायुन और दूसरे यात्री कॉकपिट में पहुंचते हैं और हमलावर को काबू कर लेते हैं। विमान में मौजूद डॉक्टर शोता मुसाइव घायल कप्तान का इलाज शुरू कर देते हैं। 10:58 पर विमान 7700 यानी इमरजेंसी कोड डालता है, लेकिन 11:05 पर कोड बदलकर 7500 कर दिया जाता है, जो संभावित हाईजैकिंग या अनलॉफुल इंटरफेरेंस का संकेत है। संकेत मिलते ही इजराइल फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया जाता है। 11:14 पर विमान सऊदी अरब के तबुक एटीसी से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। 12:15 पर विमान तबुक में सुरक्षित उतर जाता है। इसके बाद आरोपी को पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और 9:04 पर यात्रियों को लेकर रिप्लेसमेंट फ्लाइट टेल अवीव पहुंचती है। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई, उस कॉकपिट में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे हुई, ये आपको समझा सकें इसके लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली के द्वारका में मौजूद चार्ली फॉक्सटॉट एकेडमी पहुंचे। जीएनटी संवाददाता ने सिमुलेटर के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कॉकपिट के अंदर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। चलिए आपको दिखाते हैं।
8: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ। ये कॉकपिट है, एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे, सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है इस वक्त।
9: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं।
8: जी
9: जी,
8: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा?
9: सो उन्होंने यहां से ऑल्टीट्यूड चेंज कर लिया होगा। सपोज आई हैव चेंज्ड इट टू 20,000 और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
8: नीचे जाना
9: स्टार्ट कर देगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहाँ से डिसेंट स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे हम यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया और फिर यहाँ से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाए,
8: नीचे गिरना शुरू हो जाए।
9: ओके,
8: एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया?
9: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं। जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
8: जी।
9: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूँ तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा। अच्छा स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा स्पीड से
8: किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं अभी वहां रफ्तार बढ़
9: वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है अभी
8: जी।
9: मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट के रेट से बढ़ रहा है,
8: तो ये
9: और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी
8: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी।
9: ये देखो अभी 27,200-27,100 कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंड कर रहे हैं,
8: और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने
9: का, ले जाने का
8: कई बार ऊपर नीचे
9: ऊपर नीचे हुआ। हाँ जी
8: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
9: उस वक्त? यही है, कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट कैप्टन जो है फर्स्ट ऑफिसर, उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, उसको चेंज करके फिर से उसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करने की कोशिश कर
8: लगातार कई बार दोनों के बीच
9: जी।
8: फिजिकल अटैक के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
9: नहीं वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में,
8: चाकू
9: चाकू
8: छोटा सा चाकू
9: छोटा सा भी नहीं है, वो पूरा
8: ब्लेड
9: होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
8: कुछ भी नहीं,
9: कुछ भी शार्क ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
8: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
9: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
8: और वो किस काम के लिए?
9: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
8: ओके तो मतलब इस बहस के बाद मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा, और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है। एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर। ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। पूरा खेल अंदर क्या हुआ वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे फ्लाइट रिकॉर्डर्स यही है,
9: ये रहा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। हाँ
8: जो वॉइस रिकॉर्डर है यहाँ आप देखिए, मैं एक बार मनीष को कहूंगा वो थोड़ा करीब आए तो आपको दिखाएंगे, ये वॉइस रिकॉर्डर है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि दोनों पायलट्स के बीच जो भी बातचीत हुई वो
9: यहाँ पे रिकॉर्ड होता है,
8: सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये FDR है, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है जो ऑन रहता है। तो CVR और FDR ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाले हैं जिसको लेकर एक बार मैं चाहूंगा कि दरवाजा खुलने वाला सीक्वेंस भी आप हमें दिखाएं। अब आपके स्क्रीन पे वो आखिरी मोमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जब कैप्टन स्प्रिट ने अपनी आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस दरवाजे का नॉब खोला, दरवाजा खुल गया और सामने इस वक्त क्या पता चला होगा क्रू को,
9: वो तो अंदर दिख जाएगा फिर सारा कि अंदर कुछ
8: खून में
9: नॉर्मल नहीं है
8: जी,
9: अनयूजुअल
8: है
9: हुआ है।
8: और इतनी देर आवाजों से भी बाहर पता चला होगा जो क्रू है एटलीस्ट जो रहता है जो
9: दे मस्ट हैव बिजी इनसाइड द कैबिन, तो उनको क्या पता आवाज से ना पता चला हो कि इंजन का लाउड होता है शोर होता है तो आवाज से नहीं पता चलता है कॉकपिट का।
8: कैप्टन स्मिट ने अभूतपूर्व ब्रेवरी साहस दिखाया और खून से लथपथ होने के बावजूद वो बाहर निकले, उन्होंने तमाम वर्बल कमांड्स दिए, फिजिकल कमांड्स दिए, एक तरह से दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुआ, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, खून बहता रहा और आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने, जैसा कि इजरायली एजेंसीज भी कह रहे हैं, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए किया और उसके बाद फिर को पायलट को एक तरह से कंट्रोल किया गया, फ्लाइट को तबुक एयरपोर्ट में ले जाके लैंड कराया गया। अब क्या हुआ, क्यों इंस्टिगेशन हुआ, कैसे टेक ओवर हो रहा था, क्यों को पायलट का मोटिव क्या था, ये सब कुछ CVR और PR के डेटा से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सहयोगी मनीष भिदूड़ी के साथ मैं भारद्वाज दिल्ली।
10: तो आज दुनिया जो है कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम कर रही है। इसी बीच आपको बताते चलें कि इतिहास में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पायलट की असाधारण सूझबूझ, शांत दिमाग, बेहतरीन कौशल और दिलेरी ने बड़े हादसों को टाल दिया, दर्जनों लोगों की जान बचाई, निश्चित तबाही को बड़ी कामयाबी या चमत्कार में तब्दील कर दिया। देखिए ऐसा ही एक घटना 15 जनवरी 2009 को घटी थी जब US एयरवेज फ्लाइट 1549 की ऐतिहासिक लैंडिंग हडसन नदी पर करवाई गई थी। एयरबस A320 विमान ने न्यूयॉर्क के ला ग्वाडिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर कैनेडियाई गीस पक्षियों का एक पूरा झुंड विमान के दोनों इंजनों से टकरा गया। इसके कारण दोनों इंजनों ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। विमान बिना किसी इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि विमान के कैप्टन चेस्ली और फर्स्ट ऑफिसर जेफ के पास किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर लौटने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं बचा था। तब कैप्टन सली ने तुरंत भांप लिया कि अगर वे एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो विमान शहर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और न्यूयॉर्क की हडसन नदी में विमान की वाटर लैंडिंग यानी पानी पर लैंडिंग का बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने विमान को पानी की सतह पर इतनी सटीकता से उतारा कि विमान के टुकड़े नहीं हुए। हादसे के चंद मिनटों के भीतर ही नावों और रेस्क्यू टीमों की मदद से विमान में सवार सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये आधुनिक विमान इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और साहसिक लैंडिंग मानी जाती है। इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 से जुड़ा हादसा भी बता दें आपको। ये घटना विमानन इतिहास में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। 19 जुलाई 1989 को DC-10 विमान अमेरिका के डेनवर से फिलाडेल्फिया के लिए उड़ा था। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसकी टेल में लगे इंजन का पंखा फट गया और इस धमाके से विमान के सभी 3 हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गए। एरोनॉटिक्स के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो बिना हाइड्रोलिक के विमान के पंखों यानी बात करते हैं उस विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि एक विमान हवा में एक कन्वर्टेबल कार की तरह खुल गया था। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि एक बोइंग 737 विमान अमेरिका के हवाई द्वीप के ऊपर 24,000 फीट

0: अब बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां के दबाव में बाहर बह गई थी। तब कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विमान तेज हवा के दबाव में बीच से दो टुकड़ों में टूट सकता था। इसके अलावा यात्रियों और क्रू के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पायलटों ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की, विमान को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए गति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि इतनी भीषण तबाही और कॉकपिट के पीछे का वो हिस्सा पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद पायलटों ने सूझबूझ से विमान को माउई के काहुलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। और इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा विमान में सवार बाकी सभी 94 यात्री और क्रू सुरक्षित बच गए। तो बहादुर के इन किस्सों के बीच ही फ्लाई दुबई हादसे से जुड़ी एक खबर है कि इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्ज़ोग ने फ्लाई दुबई फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले 4 इजरायली नागरिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर सिविलियन ब्रेवरी देने का ऐलान कर दिया है। उसमें देखिए सबसे ज्यादा चर्चा यानिव हायून की है जो पेशे से प्लमर हैं। वहीं पर चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में घुसे हमलावर को चोक होल्ड में लिया और नीचे गिरते विमान के कंट्रोल्स को संभाल कर उसे सीधा किया। यानिव वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि वो विमान उड़ाने के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन टेलीविजन पर आए एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने सीखा था कि जब विमान नीचे गिर रहा हो तो स्टीयरिंग लीवर्स या योक को पीछे की तरफ यानी अपनी तरफ खींचकर ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए यानिव की बहादुरी और सूझबूझ की चिंता आज हर कोई कर रहा है। यानिव के अलावा ज़्विका मैंस को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ज़्विका मैंस ने यानिव हायून के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर ओमान मूल के को पायलट को दबोचने और उसे पूरी तरीके से काबू करने में मदद की थी। इसके अलावा हमलावर को काबू करने में मदद करने वाले 2 और यात्री असाफ रजवन और डॉक्टर शोटा को भी यह सम्मान दिया जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए वुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।